0: के साथ प्रवेश किए। वेदाचार और लोकाचार को यथो चित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की। दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है। लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं,
1: वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा।
0: तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चलते आगे आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी। तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मेना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
2: वही विधि विधान,
1: वही विधि
2: मंत्रोच्चारण द्वारा,
1: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
2: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
1: जी,
2: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखला से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरे पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो है जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं, प्राय सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
2: बड़े आराम से।
1: हाँ,
2: बड़े आराम से लग जाते हैं,
1: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
2: लीला जी आप याद करिए कि अभी भी अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं तक बस वही लगभग वही
1: हो जाते हैं।
2: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
1: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
2: क्योंकि एक
1: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
2: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
1: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
2: हुआ, दिन
1: में, दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
2: लीला जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
1: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थीं, नगर की वधुएँ थीं, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया, गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधु ने वर का क्या किया, पूजन किया, दही अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की। जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था, पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
2: तभी से है,
1: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाई ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती हैं हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
2: सबसे बड़ा दान,
1: ये सबसे बड़ा दान
2: दान कहलाता है।
1: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट स्वपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम शंभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम माँ कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः। एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को

0: तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था, इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानस शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
1: हैं
3: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
3: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
3: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
3: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की। तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है उस

0: बताइए।
1: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात पार्थ अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना उसमें बहुत फर्क होता है, तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है। और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहां मेरा मेंटल फाइट है, जहां द्वंद है, जहां मैं कंफ्यूज हूं, जहां डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
0: जी।
1: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना, ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है, जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
0: जी।
1: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है।

0: और फिर उसको एक्सपर्ट जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावास कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य, मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज अकई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी, माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी है, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी. एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
2: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
2: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है जब वो नीचे फ्लो कर रहा है? एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
2: जीवन.
1: किसको?
2: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
2: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
2: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
2: उन्हें
1: nourish. और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
2: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
2: and give them happiness, you know?
1: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इमेजिन हाउ द डे विल पास एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा. Do I have to think is satisfaction kya hoti hai, contentment kya hoti hai,
2: stress management kya hoti hai? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think hum, mujhe lagta hai ki hamare darshak bhi zarur is baat ko anubhav kar pa rahe honge ki is puri baatcheet mein stress kahin dikha hi nahi, kahin tha hi.
1: Stress ke bare mein bahut zyada nahi baat karni thi. Stress, this is more the solution. Ye solution hai because a lot of people go to work very unwillingly. I have to go to work.
2: Work is a stress. इतनी बार ये कहा जाता है कि my work area is a stress area. The most stressing part of my life is my work.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू.
2: वंडरफुल, यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
2: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
2: You know, we, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
2: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
2: हमसे होके
1: आई फील ब्यूटीफुल।
2: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे, कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
2: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे, दैट्स गुड फॉर मी, देन आई शुड फॉलो दैट। तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पास ऑन टू एवरीवन एज दे कम एंड लिसन इनसाइड। सिंपल सिंपल थिंग्स। सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल, नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल सिंपल।
2: हाँ, और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट,
2: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज़ मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। बट वॉट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवरसेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना या कहीं एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी, कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके

0: I am not liking it. You know, me not liking it is my
1: irritation.
0: Yeah, is my first stage of irritation. Irritation thoda sa andar aana shuru ho gaya. To usi time wo first stage hai awareness, jagrata, ki mere andar kya create ho raha hai. तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है तो अवेयरनेस क्रिएट की एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है और फिर उससे डिटैच हो जाए अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे
1: वॉचिंग
0: इट वॉच इट एंड सी इट तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है अभी क्या है हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं
1: फ्यूल करते रहते हैं ना वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी
0: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं वो इमोशन फिनिश हो जाती है अभी हम क्या करते थे उसको एनर्जी देते क्यों बोला ऐसे नहीं बोलना चाहिए था अगली बार मैं ये देखूंगी सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन It builds up more and more, and it can stay with me till a very, very long time. So, usse detach ho jayenge, and then come back to my stage, the center. Ki main kaun? Om Shanti. Ye bhi agar yaad rahe, to it means main ek shant swarup atma hu. So, I come back to my stage that I am a peaceful being. The awareness, acknowledge, accept ke haan aa raha hai. Fir usse detach ho jaye, and then come back to my original stage. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था क्या हुआ था तो क्या होगा एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
1: गुस्से के दौरान
0: वो अवेयरनेस बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी बिकॉज़ अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी सो दिस ऑल स्टेज विद अस सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स I think gradually we should be able
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? Because those belief systems don't go in one day. If the beliefs all break in one day, that without anger it can be done, that without anger no result, then it will go in one day. But it takes a little time to finish one belief. But the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा. क्योंकि awareness चाहिएगी. You know, awareness चाहिए. बस गुस्सा आ रहा है, and then it will go. And ये justification खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से. जब तक वो belief system सबसे strong है कि औरों की वजह से गुस्सा, then I will not change. Then I will keep waiting for you to change.
1: Yes, you know, we've always been saying it's just a you know thought way. So again, the thought that I am responsible, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, even if उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है, गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, वो तो ये कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया,
0: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा कर मतलब पहले गुस्सा कर देंगे अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था फिर और जोर से बोलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए था मुझे तो करना चाहिए था आपने यू नो सो इट इज जस्ट
1: बिकम्स
0: वेरी cycle process and it just doesn't break anywhere.
1: And definitely, Sister Shivani, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि it can change. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीफ कह सकते हैं हम या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है, यू नो. एंड एट दैट टाइम वी से आई वॉन्ट पीस. पीस इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ द बीइंग. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज, यू नो. तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए.
0: Absolutely.
1: है ना, लेकिन मेरे अगर मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते हैं
0: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं आने की आरजे साक्षी आ जाती हूँ आपके पास लेके अपने प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए, अब ना मैं आपको बता दूं, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। और जल्दी से ऐप जैसे आप डाउनलोड करते हैं, ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर उपर हिट एवरग्रीन सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और विदाउट एनी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं ये ऐप को डाउनलोड। इसी के साथ आप हमें हमारे इंस्टा पर भी या फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे रेडियो मानव रचना के नाम से। तो बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है और सारी जानकारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी और वो भी चुटकियों में। तो बस देरी इस बात की, जुड़ जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। और इसी के साथ आज हमारे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुमित भटेजा फ्रॉम एमआरडीसी मानव रचना डेंटल कॉलेज से। बहुत सारी होने वाली इनसे बातें और आज वर्ल्ड टोबैको डे पे क्या खास जानकारी आप तक लेकर के मैं और देखिए आज हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, feel like

0: गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है वर्ल्ड टबैको डे और इस स्पेशल एपिसोड में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तंबाकू के बारे में जानने वाले हैं, कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और साथ ही बहुत सारी जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुमित भटेजा, जो एक एक्सपीरियंस्ड ओरल हेल्थ एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, ओरल डिजीज जो है और कैंसर अवेयरनेस पर ये काम करते हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ और एडिक्शन बिहेवियर को भी डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सुमित भटेजा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: डॉक्टर सुमित, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड टोबैको डे है, तो इसका मेन पर्पस क्या है?
1: जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, दिस इज बीन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ये हर साल 31 मई को जो है मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस, जो है अवेयरनेस, जागरूकता बनाने के लिए फॉर दी टोबैको यूज़ और उसके साथ एसोसिएटेड जो भी हेल्थ रिस्क हैं टोबैको से, तो वो सब चीज़ों के बारे में जो है जनता को अवेयरनेस करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ये दिन को है। ग्लोबली जो है WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 1987 में। तब से अब तक रेगुलरली ये हर साल 31 मई को ये डे इस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्टली अमंग दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑल ओवर दी कंट्री। सो इसका जो बेसिक पर्पस ये है कि इस जो अभी अगर हम करंट ट्रेंड्स में जाएं, 1.3 बिलियन टोबैको यूजर्स हैं इस समय वर्ल्ड वाइड। तो अब उसमें से ऐसा देखा जाता है टोबैको जो है 1 in 4 seconds जो है एक लाइफ क्लेम कर रहा है। सो रफली आप देखिए 8 million प्रीमैच्योर डेथ्स होती हैं ग्लोबली हर साल। तो इस तरीके से जो है टोबैको के बहुत सारे हेल्थ रिस्क हैं जो कि लोग जानते नहीं हैं, तो उसी को जागरूकता, इसको आप ये है तंबाकू का जागरूकता दिवस है, जिस उसमें ये इनिशिएटिव जो है मनाया जाता है।
0: जी डॉक्टर सुमित, मैं जानना चाहूंगी कि इस बार की थीम क्या है?
1: हर साल जो है WHO एक नई थीम देता है वर्ल्ड नो टोबैको को, तो जो 2026 की जो थीम है वो उसका है अनमास्किंग द अपील। बेसिकली इसके अनमास्किंग द अपील के अंदर आता है जो भी ये जो मैन्युपुलेटिव जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं और जो फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो तंबाकू के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे यंग लोगों को टारगेट करते हैं और वो इस चीज़ के नशे में जो है एडिक्शन के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो जिस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं और जो मीडिया प्रोजेक्ट करता है टोबैको को, तो इसीलिए जो है हमारा आज का यूथ है वो बहुत जल्दी इन चीज़ों की वजह से प्रभावित हो जाता है। तो इस बार की जो मेन जो थीम यही है कि जो मार्केटिंग टैक्टिक्स जो हो रही हैं इसको सेल करने की, चाहे कोई बड़ा कोई फिल्म स्टार हो, वो भी किसी और तरीके से, चाहे वो तंबाकू ना कहे पर वो किसी और तरीके से एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है, वो इसे कि इलायची बताएंगे या कुछ भी, तो ऐसे में क्या है जो यूथ में हैबिट पड़ जाती है, जो हमारा नौजवान है देश का, वो सबसे बड़ा टारगेट है इस चीज का, बिकॉज वो एज WHO बोलता है सबसे मोस्ट वल्नरेबल एज मानी जाती है कोई भी तरह की नशे पदार्थ की लत लगने के लिए।
0: जी जी
1: बिल्कुल, इसीलिए इस बार की थीम इस पे ही टारगेट कर रही है।
0: बिल्कुल, देखिए अगर आप भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट आज मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में। आज है वर्ल्ड टोबैको डे और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमित भटेजा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट भी है मानव रचना इंस्टीट्यूट से, और बहुत सारी बातें जो है आज हो रही है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी से। आज हमारे साथ सुमित भटेजा जुड़े हुए हैं। अगर आप भी कुछ सवाल जानना चाहते हैं, आपके जवाब आपको चाहिए, जरूर मिल सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं हमारा जो नंबर है वो है 8010781078। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। आज वर्ल्ड टोबैको डे और आज हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर सुमित भटीजा। डॉक्टर सुमित, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ। आजकल यंगस्टर्स, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, इसमें स्मोकिंग और वेपिंग, यहाँ मैं वेपिंग पे थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पर जरूर डालूंगी क्योंकि ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है, आपके अकॉर्डिंग इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्ट्रेस है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, क्या है?
1: जी, मुख्य रूप से जो भी कारण होते हैं टोबैको एडिक्शन के, या कोई भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज हो, वीट, अल्कोहल या कोई भी और तरह की ड्रग एडिक्शन हो, इन सबके जो मैंने आपको जैसे अभी बताया भी है, वल्नरेबल एज होती है इन चीज़ों की, जो कि यंगस्टर्स होते हैं, जो टीन एज के बाद, तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण होता है, जो पीयर ग्रुप आपका, आपकी संगत, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स जो आपका आसपास है, जो भी चाहे आपका पड़ोस है कोई भी, उसे हम बोलते हैं पीयर ग्रुप, जिनके साथ हमारा रोज मिलना जुलना, उठना बैठना है, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं कोई भी तरह की हैबिट, बीट वेपिंग और तंबाकू किसी भी और फॉर्म में, नशे में लेने में। तो एक तो वो सबसे बड़ा कारण होता है इस चीज में, और दूसरा जो कि वेपिंग की हम बात करें तो ये आजकल एक स्टाइल स्टेटमेंट की तरह भी प्रोजेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो है थोड़ा सा हमारा जो मीडिया का ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इन चीजों में, कि इन चीजों का जो है ऐसा प्रोजेक्शन होता है कि ये चीजें करने से, अब अगर एक ऐसी एडवर्टाइज या इस तरीके की चीजें आती हैं कि अगर एक लड़का है वो अगर ऐसी चीजें करता है, स्मोक कर रहा है, वेपिंग कर रहा है, तो ही अपीयर्स टू बी वेरी कूल, या बहुत ही मैचो लग रहा है, तो ऐसी अगर एक इमेज हम एडवर्टाइजमेंट में बना रहे हैं तो नेचुरली जो यंगस्टर्स हैं इन चीजों को कॉपी करेंगे, और वो भी इसको एज अपना स्टाइल स्टेटमेंट मानेंगे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैं बहुत ज्यादा जो है अपोजिट जेंडर की जो मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है, जो कि इस एज में बहुत कॉमन होता है, तो जैसा उनकी जो थॉट प्रोसेस चलता है। So, ये यहीं पे जो चीजें आती हैं, जैसे जो हमारी इस बार की थीम से भी यही सब चीजें रिलेटिव हैं, कि यही जब जिस तरीके से हम जो उसकी अपील बनाते हैं उस चीज की, ताकि वो चीज ऐसे लगे कि अब जैसे किसी ने कोई वेपिंग में क्या है, लोगों को लगता है कि ये तो बहुत हेल्दी है, इसमें बहुत सारे फ्रूट के फ्लेवर्स डाले जाते हैं, तो ऑरेंज है, बीट, चेरी, एप्पल फ्लेवर्स, पाइन एप्पल ऐसे भी आते हैं, तो जो यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं ये तो हेल्दी ऑप्शन है, इसमें फ्रूट भी है, फ्रूट कॉम्पोनेंट, बट उनमें सिर्फ कुछ भी फ्रूट नहीं होता, ये सिर्फ बच्चों को, यंगस्टर्स को इन चीजों की एडिक्शन लग जाती है, उनमें कोई भी ऐसा कोई फ्रूट कॉम्पोनेंट नहीं होता इन चीजों में, इनमें सिर्फ आर्टिफिशियल ऐसे फ्लेवर्स डाले जाते हैं जो अपने आप में कैंसरस भी होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स जो कि अपने, या स्वीटनर्स जो अपने आप में बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो है मुख्य रूप से रहे।
0: बिल्कुल डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो सिर्फ कभी कभी स्मोक करते हैं, हमें एडिक्शन नहीं है, तो क्या ये ओकेजनली स्मोकिंग भी बॉडी को हार्म करती है?
1: देखिए, जो टोबैको की जब हम बात करें तो ये शुरुआत तो ओकेजनल से ही होता है, ठीक है, कभी किसी दोस्त ने, यार दोस्त ने किसी को बोला कि एक बार करके देखो, तो हर चीज जो भी कोई भी हैबिट हमारे को स्टार्ट होती है लाइफ में, वो होती एक से ही है, एक के बाद वो चीज अगेन होती है, अगेन के बाद वो एक हैबिट एडिक्शन में कन्वर्ट होती है, चीजें ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। तो आपने वो चीजों का सेवन करते हो, फिर ये चीजें इंसान पहले तो ग्रुप में करता है, फिर उसको इसका धीरे धीरे इन चीजों की वजह से एक प्लेजर जैसे गुड जो है फील गुड फैक्टर जिसे हम कहते हैं प्लेजर सेंसेशन आने लगती है। तो इंसान जब भी स्ट्रेस में या किसी तरह के मानसिक तनाव में, तो वो ये चीज खुद से ही अकेले में नशे शुरू करता है, तो ऐसे करके एडिक्शन बनती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे इजी वे आउट है अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए कि इसका सेवन करें, क्योंकि इसकी उन्होंने पहले ये चीजें ली होती हैं कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी ओकेजनल पार्टी में, जैसे भी, तो उनको उससे वो फील गुड फैक्टर आता है, ठीक है। बहुत से लोग ये चीजें करते हैं कि पार्टी में थोड़ा मजा लेने के लिए, लोगों के साथ थोड़ा इंजॉय होने के लिए, पर उस समय वो चीजें करते हैं ऐसे ही, फिर जब वो अकेले होते हैं, वो कोई भी तरह के मानसिक तनाव से गुजर होते हैं, तो वो ये चीजों को स्टार्ट कर देते हैं, यहां से हमारी एडिक्शन साइकिल जो है शुरू हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आपको भी कुछ जानना है टबैको के लिए रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ आज डॉक्टर सुमित भटीजा जुड़े हुए हैं, आप जान सकते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मिल जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन. बहुत सारी होती हैं बातें. आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुमित भटेजा. आज है वर्ल्ड टोबैको डे और इस खास दिन पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी गाइडेंस हमारे साथ हमारे पास लेकर के आ गए हैं. और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं 8010781078 ये हमारा नंबर है, इस पे आप मैसेज द्वारा अपना सवाल भेज सकते हैं. डॉक्टर सुमित, मैं आपसे अब अगला सवाल जानना चाहूँगी. बात करें तंबाकू की तो सबसे पहला इफेक्ट बॉडी के किस पार्ट पर पड़ता है, दिखता है?
1: जो तंबाकू के जो इमीडिएट जो इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे पहले क्योंकि इसका जो सेवन है वो माउथ से किया जाता है, तो उसके जो भी लक्षण होते हैं वो मुंह से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे माउथ में, क्योंकि हम टोबैको, चाहे वो बीट सिगरेट स्मोकिंग फॉर्म में टोबैको या स्मोकलेस जिसे हम च्यूइंग टोबैको कहते हैं, तो उसके माउथ में हमें अर्ली साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं. तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मसूड़े हमारे गलने लगते हैं, मुंह के अंदर भी बहुत सारे छाले और लाल सफ़ेद धब्बे ऐसे दिखने शुरू होते हैं जो भी तंबाकू लेते हैं. उसके अलावा जो हम जैसे देखें बॉडी पार्ट्स में, सबसे पहले जो हमारी सर्कुलेशन जैसे बोलते हैं ब्लड फ्लो अफेक्ट करता है बॉडी का, उससे जो है हार्ट अटैक होने का चांस ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा डबल टेंडेंसी हो जाती है देन अ नॉन स्मोकर. तो और उसके साथ अगर जो नेक्स्ट जिस ऑर्गन पे अफेक्ट होता है वो होता है लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं. तो लंग कैंसर का एक सोल कॉज है टोबैको का सेवन करना, तंबाकू का. जो बाकी इलनेसेस जैसे जो और हो जाती हैं इसमें आती हैं ब्रेन के, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब कम होती है तो ब्रेन के, तो ऐसे में जो ब्रेन में स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. तो वैसे तो तंबाकू लगभग हर उसमें ऑर्गन्स पे काम करता है, मतलब उसका जो इफेक्ट दिखता है, पर जो ये मुख्य ये तीन होते हैं, हार्ट हो गया, उसमें लंग हो गया, और थर्ड हमारा जो होता है स्ट्रोक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है ब्रेन में.
0: जी, तो डॉक्टर ये भी एक धारणा है लोगों की कि अगर वो स्मोक करते हैं तो उनका वजन जो है वो कम हो जाएगा या फिर आवाज़ अच्छी हो जाएगी, ग्रेनी हो जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, जहाँ तक की ये बात है जो वेट से संबंधित है, तो ये एक ज़रूर इसका एक निकोटीन जो इसके अंदर होता है तंबाकू के अंदर, उसका एक एक्शन होता है. बस वो मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ हम कह सकते हैं 2 से 5 किलो वजन पे काम करता है, कम कर देता है. और उसका भी एक्शन क्या है, वो एपिटाइट जो हमारी भूख होती है उसको सप्रेस करता है, और हमारा जो टेम्परेरली जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, जिसे हम हमारा BMR बोलते हैं, जिसमें ज़्यादातर जब भी हम वेट लॉस प्रोग्राम की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो भी जो BMR पे वर्क करते हैं, तो यस ये करता है. तो इसीलिए बहुत लोग जो स्मोकिंग करते हैं कई बार वेट लॉस के लिए, बट ये चीज़ बहुत ही गलत है, बिकॉज अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और तरह के जो बैलेंस तरीके हैं जिनसे मैनेज करना चाहिए. और जहाँ तक कि आवाज़ और ऐसी चीज़ें भी जो आप बता रहे हैं संबंधित हैं, तो इन सब चीज़ों का भी बेसिकली वही होता है कि उस समय हम डेफिनेटली इन चीज़ों को जब करते हैं, बहुत सारे हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं बॉडी में, ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स जिसे हम बोलें रिलीज होते हैं, इन चीज़ों से इफेक्ट होता है हमारी जो है वॉइस, और इसकी जो हस्कीनेस बढ़ जाती है, तो उससे हो जाता है. तो बहुत से सिंगर्स ये सब चीज़ें करते भी हैं, स्मोकिंग और ये सब चीज़ें, और जो स्मोक करके ही कोई अच्छा गाना, ये भी बड़ा जो हमारी अगर आप देखिए जो हमारी बॉलीवुड में तो ये बड़ा कॉमन है, जैसा मैंने सुना भी था ये किसी पीछे किसी न्यूज़पेपर में मैंने, आई विल नॉट नेम द सिंगर, उन्होंने बोला था कि मैं तो जब भी स्मोक करके गाना गाता हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आती है. तो ऐसी बट ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब गलत तरह की धारणाएँ हैं, और इनकी वजह से गलत जो प्रचार होता है इन चीज़ों का, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए. चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. हमारे साथ आज के एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित भटेजा जुड़े हुए हैं, और आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.

0: वेलकम बैक रेडियो मैन रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और आज वर्ल्ड टोबैको डे है और इस दिन पर बहुत ही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकर के जुड़ गए हैं डॉक्टर सुमित भटेजा और बहुत सारी बातें कर रहे हैं. डॉक्टर सुमित, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी. ओरल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं आप, तो क्या आप इजी लैंग्वेज में ये बता सकते हैं कि माउथ कैंसर के लिए जो अर्ली साइंस हैं वो क्या होते हैं?
1: माउथ कैंसर का जो सबसे पहले तो आपको अगर मैं प्रमुख कारण जो माना जाता है वो है टोबैको कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में. अब चाहे आप स्मोकिंग करते हों चाहे आप च्यू करते हों टोबैको, दोनों फॉर्म से कैंसर होने का जो है मुख्य कारण वो रहता है. सबसे पहले ज़्यादातर पेशेंट्स जो ये हमारे पास ऐसी कंप्लेंट लेके आते हैं और कि उनके माउथ में वाइट पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं जब भी वो अपने माउथ को एग्जामिन करते हैं, सफ़ेद धब्बे पैच दिखते हैं. ठीक है, सफ़ेद के बाद ये धीरे धीरे, ये एक इनिशियल स्टेज होती है. अगर इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट इसको इग्नोर कर रहा है सफ़ेद धब्बे को माउथ में, धीरे धीरे वो आगे जाके लाल भी बन जाते हैं जो कि और ज़्यादा कैंसर जिसके अंदर जो और ज़्यादा कैंसर के जो मेलिग्नेंसी रेट हाई हो जाता है, जैसे कैंसर और जिसे हम कहेंगे आम भाषा में बढ़ने का और खतरा बढ़ जाता है. तो अगर ऐसा कुछ भी हम सबसे कहेंगे कि ऐसा सफ़ेद लाल धब्बे, मुंह में जलन होना, जलन ऐसा नहीं है कि कुछ तीखा खाने भी होगी, अगर वो नॉर्मल भी खाना खा रहे हैं और बाकी लोग घर में कह रहे हैं कि उनको ऐसा कुछ नहीं जलन होना पर उनके साथ उसी हल्के मसाले में भी उनको जलता है मुँह, तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण हो जाता है. ये है, इसको हम एक वार्निंग साइन मान सकते हैं. साथ में मुंह कम खुलना, नॉर्मल से जो है माउथ ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं वो कम हो जाती है. तो ये जो कुछ चार साइंस

0: लंग कैंसर और माउथ कैंसर होने का मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन करना किसी भी फॉर्म में। जब हम तंबाकू को च्यू करते हैं, च्यूइंग फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे देश की अधिकतर जनता, जो खासकर की जो हमारे, मैं देखता हूँ जो फार्मर्स हैं या जो भी हार्ड तरह के जो लेबरर्स होते हैं, जो फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व हैं, जो हमारी मोस्टली जो हमारी जनता देश की इसमें इन्वॉल्व है, वो लोग ये चीज़ें बहुत कॉमन है अपने मुँह में जो इसको ऐसे थोड़ा सा इसका सेवन रखते हैं, पुड़िया सी दबा के रख लेते हैं। तो ये उससे इनको लगता है कि ठीक है, हमें थोड़ा एक्टिव रहते हैं काम करने में, पर ऐसा कुछ होता नहीं। वो जो चीज़ है वो डायरेक्ट हमारे माउथ से एब्जॉर्ब होती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो इस चीज़ का अगर, क्योंकि वो तो जो है लंग्स के थ्रू जाता है स्मोक, पर ये तो डायरेक्ट जो अगर हम रख रहे हैं तो हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। और बहुत से लोग सिर्फ इसको च्यू करते करते निगल भी लेते हैं, तो या तो उसमें तो फिर बिल्कुल 100% जिसे हम बोलते हैं अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक कैंसर, मतलब गैस्ट्रिक कैंसर होने का भी साथ में चांस, स्टमक कैंसर का भी चांस हो जाता है। तो इसीलिए ये भी बिल्कुल ऐसी गलत धारणा है कि उसका कम इफेक्ट है या नहीं है, वो अलग तरह के कैंसर और प्रॉब्लम्स करेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर। अच्छा ये भी होता है कि कई सारे, मैंने एक बार पेशेंट को अभी देखा था, तो हुआ ये कि उन्होंने पान मसाला या कुछ खाया, काफ़ी टाइम से खा रहे थे, लाल उनके दांत हो रखे थे, तो वो आए थे अपने दांतों की वाइटनिंग कराने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि मतलब अगर आपको जो है तंबाकू से भागना है तो बस आपने दांतों की वाइटनिंग करा ली है और उसके बाद कुछ टाइम तक वो चल जाते हैं, लेकिन दांतों पर इसका क्या असर पड़ रहा है जब आप रेगुलरली पान मसाला गुटखा खा रहे हैं तो?
0: देखिए दांतों पे डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जो हमारे मसूड़े हैं जो दांतों को हमारे जड़ों से पकड़ के रखते हैं, उनकी सेहत को मेंटेन करते हैं जो हमारे मसूड़े होते हैं, तो मसूड़ों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जिसे हम बोलते हैं पायरिया, एक बीमारी है। मैं लेन टर्म में आपको पायरिया शब्द यूज़ करके बता रहा हूँ। पायरिया लग जाता है, उससे क्या है हमारे मसूड़े गल जाते हैं, दांत हिलने डुलने लगते हैं, कुछ टाइम बाद वो निकलने लायक हालत में हो जाते हैं। तो और ज़्यादा जो च्यूइंग टोबैको जिसमें हम फॉर्म में खाते हैं, तो उससे दांत बिल्कुल घिस जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अब्रेसिव कंटेंट होता है, तो ये हमारे दांतों को घिस देते हैं बुरे तरीके से। उनके अंदर धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ठंडा गर्म, और अल्टीमेटली वो दांत जो हैं खराब हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इनका इसका है मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है दांतों।
1: बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारी बातें आज हमारी हो रही हैं, कुछ और भी सवाल हैं और ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, आपके भी अगर कुछ सवाल हैं तो आप जान सकते हैं 8010781078 ये हमारा नंबर है। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुमित भटेजा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी मानव रचना डेंटल कॉलेज से। बहुत सारी आज हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर। मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी और वो ये कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से तंबाकू एडिक्शन सिर्फ फिजिकल होती है या मेंटली भी, ये थोड़ा सा बताइए। क्योंकि इंसान उस पर डिपेंडेंट हो जाता है कि आपको जो है अगर अच्छा फील करना है, जैसे कि आपने कहा फील गुड हार्मोन आपका रिलीज भी होता है, तो सिर्फ ये मेंटली, ये फिजिकली आपको परेशान कर रहा है ओरल या आपकी पूरी बॉडी में, या मेंटली भी इसका असर है?
1: देखिए, टोबैको या कोई भी ड्रग एडिक्शन हो, किसी भी तरीके का या अल्कोहल एडिक्शन हो, सबका जो है एक एडिक्शन का जो मेंटल कंपोनेंट ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ की आदत लगना, एडिक्शन होना, बीट एनीथिंग, वो दैट हैज़ टू डू विद हमारी जो मेंटल कैपेसिटी। तो इसके अंदर अब जैसे हम तंबाकू की बात करते हैं, तो तंबाकू में एक जो कॉम्पोनेंट है निकोटीन, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। अब निकोटीन क्या करता है, जब भी जैसे ही स्मोकिंग करेंगे या तंबाकू खाएंगे तो निकोटीन रिलीज होता है, वही हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, चाहे वो स्मोकिंग से चाहे डायरेक्ट च्यूइंग से। जैसे ही वो जाता है, वो ब्रेन को सबसे पहले स्टिमुलेट करता है, उसको टारगेट करता है। जैसे ही वो ब्रेन को हमारे टारगेट करता है, तो वहां से एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसका जो एक केमिकल है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर में आपको बता रहा हूं, तो उसका नाम है डोपामाइन। जो डोपामाइन है, ये एक जो है जैसे ही रिलीज होगा आपके ब्रेन में, तो ये एक जो है प्लेजर सेंसेशन देगा, जिसे हम फील गुड फैक्टर बोलते हैं। तो जब आपको उस चीज का आनंद आएगा, मजा आएगा, तो फिर वो इंसान उस चीज को दोबारा करेगा। तो ये जो हमारा ब्रेन के थ्रू ये एक्टिविटी होती है, तो ये जो एडिक्शन प्रोसेस है, ये डेफिनेटली इट हैज टू डू विद मेंटल थिंग। तो इसके अंदर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तभी हम चीज की हमें कोई लत लगती है, आदत लगती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर, आजकल स्कूल्स और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी निकोटीन प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को कौन से अर्ली बिहेवियरल साइंस नोटिस करने चाहिए जो कि सामने आ सकते हैं और इससे बच्चे को फिर रोका जा सकता है?
1: देखिए, जो जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा एक रेस्ट्रिक्टिव एज ग्रुप होता है वो टीनेजर्स का है WHO के अकॉर्डिंग भी, तो इनके वैसे तो एक एक्ट है जो WHO ने लागू किया हुआ है, पर हमारे इंडिया में भी वो चीज़ लागू है, कोटपा एक्ट इसे बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए स्कूल और कॉलेजेस के प्रीमाइसेस के कहीं भी, विच इज़ कम्प्लीटली। अगर कोई भी हॉकर या कोई भी जो वहाँ पे अपना तंबाकू का वो लगाता है शॉप या कोई तरह की दुकान, तो ये अगर स्कूल या कॉलेज अथॉरिटीज सिंपली वहाँ पे पुलिस को, प्रशासन को एक फोन करें, तो उसे वहाँ से हटाना होगा। तो ऐसा नंबर वन तो ये होता है कि इसमें स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि इन चीज़ों की सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों की खरीदारी पे बैन होना चाहिए इन एंड अराउंड अपने कैंपस के अंदर और आसपास भी प्रीमाइसेस के। तो जब तक इन चीज़ों की सेल होगी, तभी वहाँ से बच्चे इन चीज़ों की लत लगेगी। तो ये तो एक वो पार्ट रहा। बाकी जैसे कुछ बच्चे जो इन चीज़ों के नशे में ग्रस्त हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर होता है पेरेंट्स का रोल ये होता है कि अपने बच्चों को, खासकर जो इस एज ग्रुप में होते हैं, उनके साथ बहुत सारे ऑलरेडी जो ये जो हमारा टीन एज ग्रुप है, दे आर अंडरगोइंग लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जा रहे होते हैं अपनी बॉडी में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। एंड अगर हम इसको उसमें साइकोलॉजिकल टर्म्स में स्टेज को डिस्क्राइब करते हैं, तो इस स्टेज के अंदर बच्चों में बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन रहता है। तो उनके अंदर ये बहुत, वैसे भी क्योंकि अभी उनको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट, तो ये उनके अंदर हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं। तो ना वो पूरे तरीके से बड़े होते हैं अडल्ट, ना वो बच्चे रह जाते हैं, तो अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं हॉर्मोनल, क्योंकि अगर एक लड़का है उसके अंदर जो है वैसे चेंजेस आ रहे हैं, लड़की के अंदर भी वैसे चेंजेस आ रहे हैं फीमेल, तो बॉडीली चेंजेस हैं। तो ऐसे में जो है बच्चों के अंदर बहुत सारे पहले ही सवाल होते हैं। तो जो पेरेंट्स का रोल होता है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनकी रूटीन को शाम को भी उनके साथ थोड़ी देर बैठें, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ बैठने का, बट मैं फिर भी कहूँगा कि उन्हें एक एफर्ट करना चाहिए, चाहे कुछ भी है, डिनर टाइम पे भी साथ बैठें अपने बच्चों के साथ, एटलीस्ट आधा घंटा उनके पैसा जरूर क्वालिटी टाइम जो इसे हम बोलते हैं स्पेंड करिए, चाहे टाइम आपका कम हो बट क्वालिटी टाइम होना चाहिए, जिससे आप अपने बच्चों के साथ जाने कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बातचीत। बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे टेंशन होती है पर वो बताते नहीं है पेरेंट्स को, और उस टेंशन को कम करने के लिए ऐसी हैबिट्स में आ जाते हैं। तो अगर घर का माहौल वो एक तो अच्छा रखें, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, दूसरा बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उन्हें कोई तरह का अगर एकेडमिक या कोई तरह का पीयर प्रेशर है, कोई सोशल प्रेशर है, या बहुत से बच्चों में इस समय पे बॉडी इमेज डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है क्योंकि अपनी बॉडी के बारे में खुद ही नहीं पता होता कुछ लोगों को, तो ऐसे में इसे हम बॉडी इमेज डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं ओवरवेट हूं, कुछ को लगता है बहुत पतला हूं, कई बार अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर गर्ल्स में बहुत इश्यूज हो जाते हैं, डार्क हैं फेयर, तो इसे हम बोलते हैं बॉडी इमेज डिसऑर्डर। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी लोग नशे में ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें अपने बच्चों को खुद ही काउंसिल करके समझाना चाहिए पेरेंट्स को। अगर उन्हें लगता है कि वो ये चीजों पे खुल के बात कुछ ऐसे इश्यूज हैं नहीं कर पा रहे, मैं बच्चे उनके साथ नहीं खुल पा रहे, तो डेफिनेटली एक एक्सपर्ट हेल्प लेने में भी कोई बुराई नहीं है। और जनरली ऐसे जो नशे में बच्चे अगर ग्रस्त होंगे तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि ऐसा बच्चा ज्यादातर जैसे फैमिली के साथ पहले इंटरेस्ट लेता था, उठते बैठते थे या जो कॉमन एक्टिविटीज फैमिली की, कोई मूवी देखना, बाहर घूमने जाना या टेम्पल जाना, ऐसी सब चीजें कम हो जाती हैं और ऐसे बच्चे अपने में या अपने कमरे में या अलग रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चेंजेस होते हैं जो पेरेंट्स को एकदम से वार्निंग साइंस होने चाहिए कि बच्चे से बात करें और जानने की कोशिश करें उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि मोस्टली ऐसे में ही बच्चे जो हैं सोशली सबसे पहले कट ऑफ फैमिली मेंबर से होते हैं और इन चीजों में रहते हैं।
0: डॉक्टर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर फैमिली में कोई एक इंसान है जो स्मोक कर रहा है तो दूसरे फैमिली मेंबर पर जो बाकी हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग बहुत डेंजरस है, इसके बारे में बताएं।
1: जी, आपने बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट इशू ये रेज किया है। नॉट ओनली मैं इसको बोलूंगा फैमिली, इवन पब्लिक प्लेसेस में भी लोग जो करते हैं स्मोकिंग उसका भी इफेक्ट आता है आसपास के लोगों पे। तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, जैसे आपने बताया। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है दुष्प्रभाव होते हैं हमारी बॉडी पे, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट इसको हम बोलते हैं हाफ ऑफ दी, जितना एक एक्टिव स्मोकर को इफेक्ट होंगे हाफ इफेक्ट उसके आसपास के लोगों पे भी आ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली जो मेंबर्स हैं घर के उन्हें ही इस चीज़ को, जो भी उनके घर में अगर कोई भी ऐसा स्मोकर है, सबके बीच में बैठ के स्मोकर है, तो ये उन सब मेंबर्स को भी उसे रोकना चाहिए कि उनके बीच में, खासकर घर में बच्चे होते हैं, कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो वो सब भी ये स्मोकिंग के थ्रू जा रही होती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ तो डेफिनेटली उन्हें ऐसे स्मोकिंग के एनवायरनमेंट में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो प्रूवन है ऐसे में जो है जो पैदा होता है बच्चा, एक तो लो बर्थ वेट होता है और प्री टर्म बर्थ हो जाते हैं या और भी तरीके के जो है बीमारियां या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरीज भी होती है, कई बार तो बहुत से केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो ये सब चीजें पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो ऑटिज्म का भी एक बहुत बड़ा लिंक, जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो बहुत ज्यादा आजकल बच्चों में पाया जा रहा है, उसका भी एक मेजर लिंक है इस चीज से, या तो मदर खुद ही स्मोक करती थी या आसपास में पैसिव स्मोक को इनहेल करती थी। तो ये सब चीजों का बहुत ज्यादा जो है जो रहते हैं इफेक्ट्स बॉडी में।
0: बिल्कुल डॉक्टर, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, जो क्विट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? क्या क्विटिंग इजी है या नहीं? क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि अब छोड़ नहीं पाते हैं, चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे हमारे पास भी ऐसे आते हैं लोग जिनको हम काउंसिल करते हैं, समझाते हैं, तो पहला तो इसमें एक चीज़ होती है, इसे हम बोलते हैं आप पहले उस चीज़ को पहचानें। जैसे आपने बताया, इस तरह के केस तो बहुत इजी होते हैं जो हमारे पास खुद आ रहा है और खुद ही बोल रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटनी नहीं। ये केस को हैंडल करना बहुत ईजी है। कई जहाँ प्रॉब्लम उन केसेस में आती है जिनको इस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं है, वो कर रहे हैं बस उनके घर वाले ये चीज़ समझ रहे हैं कि गलत है। तो पहले तो अगर कोई इतना भी अगर जिसे बोलते हैं हाफ द बैटल वन, अगर आपने उतना रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये एक नेगेटिव हैबिट है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, अगर आपने सोच लिया तो वो चीज छूट भी जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं जिसे विल पावर ऑफ द पेशेंट, अगर उसकी इतनी विल पावर है तो वो इस चीज को जो भी तरह से वो डेफिनेटली छोड़ेगा। बट हाँ, जहाँ पे जो प्रॉब्लम यही आती है कि जब उनको खुद से ही रियलाइज नहीं होता कि इसका कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं बॉडी पे और अपने आसपास के लोगों पे, एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे, तो वहाँ पे तो वो जागरूकता जो है, इन्हीं मौकों से हम जागरूकता लाते हैं जिससे कि लोगों को ये चीज समझ आए कि ये एक गलत आदत है। बहुत से लोगों को जब तक ये नहीं, जब तक माइंडसेट होगा कि ये गलत आदत नहीं है, तो तब तक ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तो वहां एक बार किसी ने ये डिसीजन ले लिया या उसको इतनी समझ आ गई कि ये गलत हैबिट है, नेगेटिव हैबिट है, जिसका मेरी अपनी हेल्थ पे, मेरे अपने फैमिली की हेल्थ पे, सब पे इसका फर्क पड़ेगा। तो और डेफिनेटली अगर हम देखें देश के पे भी, क्योंकि अगर हमारी आदत, जो जनता अगर इन चीजों की आदत में ग्रस्त है, स्पेशली यूथ, तो आप सोचिए हमारा यूथ अगर इन नशे की आदतों में है, उसकी वजह से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमारी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री भी कम हो रही है। तो हम अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी जो है ये हैबिट हानिकारक है।
0: बिल्कुल।
1: तो उससे ये चीज हमें रियलाइजेशन, तो जनरली जो हमारे पास इस तरह के ग्रस्त जो आदतों से लोग आते हैं, तो पहला ये जो होते हैं, ऐसे होते हैं रियलाइजेशन कराना, जिसे हम साइकोलॉजिकल टर्म में इनसाइट बोलते हैं। आपको जब तक उस चीज का समझ नहीं आता कि आप इस चीज के, आपको ये बीमारी है, ये एक बीमारी के रूप से होता है, जिसको हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। अगर उनको ये समझा दें, जैसे कोई डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, वो भी एक बीमारी है, आप मान के आते हो डॉक्टर के पास कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, इसको भी एक बीमारी मान के आएंगे, तो वो उसको मान लेंगे, तो वो फिर आगे ट्रीटेबल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं और साथ ही देखिए गवर्नमेंट और मानव रचना जो संस्थान है वो क्या कर रहा है टबैको पर, और क्या कुछ नया जो है ये हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। क्या कुछ अहम कदम, कड़े कदम लिए जा रहे हैं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ बातें आज हमारी चल रही हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुमित भटेजा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी मानव रचना डेंटल कॉलेज से। बहुत सारी बातें हो रही हैं डॉक्टर, आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि पेशेंट्स काफी सारे आते हैं, तो मानव रचना जो है संस्था जो है वो क्या कुछ कड़े कदम जो है उठा रही है इस आज के दिन पर भी, और साथ ही साथ पूरा जो लोग ग्रसित हैं या लोग क्विट करना चाहते हैं उनके लिए?
1: मानव रचना ने जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव 2018 से शुरू किया है अंडर मानव रचना डेंटल कॉलेज, जो टोबैको सेसेशन क्लिनिक जो है, तो तंबाकू का नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, जिसमें हम फ्री टोबैको या तंबाकू की जो है छुड़ाने की आदत की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, इन फॉर्म ऑफ काउंसलिंग करी जाती है पेशेंट्स की। अब काउंसलिंग चाहे वो पेशेंट्स की हमें जहाँ ज़रूरत लगती है इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, या जब हमारे पास कुछ पेशेंट्स को हम कुछ ऐसे स्लॉट्स देते हैं जिसमें हम उनकी ग्रुप काउंसलिंग भी, ग्रुप थेरेपी भी करते हैं। और उसके अलावा जो है हम जैसे जहाँ हमें लगता है कुछ पेशेंट्स को हमें ज़रूरत होती है, या जो लोग खुद भी एग्री करते हैं, तो हम उनको ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो देते हैं जिससे वो इस आदत को छोड़ने में और उनको मदद करती हैं, तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। या एक तरह की फॉर्म ऑफ थेरेपी आती है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो कुछ ऐसे च्यूइंगम्स जिसे आती हैं जो कॉमनली आजकल बहुत इजीली फार्मेसीज पे भी अवेलेबल होती हैं, बस उसकी जो डोजेजेस वगैरह हम उस हिसाब से पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि ये उनको बहुत सहायता करता है उनके जो तंबाकू छोड़ने के या नशा मुक्ति प्रोग्राम में उनको बहुत मदद करता है। तो ये हमारा एक जो है तंबाकू का इनिशिएटिव जो है, तंबाकू नशा मुक्ति का बहुत अच्छा हमारा इनिशिएटिव है जो मानव रचना डेंटल कॉलेज में चल रहा है। तो मैं सबसे ये भी इसमें आग्रह करूंगा कि फरीदाबाद या आसपास के हरियाणा में जो भी लोग हों, जो या जो भी फैमिलीज हों जो परेशान हैं अपने घर वालों की इस तरह की तंबाकू से जुड़ी नशा मुक्ति की जो चाहते हैं, तो वो ज़रूर यहाँ आएँ और अपनी हमारी जो इन सेवाओं का लाभ उठाएँ जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, फ्री हैं, और ये हमारे ऑल वर्किंग डेज होते हैं। उन सब में हम यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक यहाँ होते हैं, तो आप आइए और हमें इसका मौका दीजिए कि हम आपको किसी तरीके से इसमें आपकी जो है नशा मुक्ति की जर्नी में हेल्प कर सकें। और हमें भी इस चीज़ के लिए बहुत खुशी होगी कि हमने डेफिनेटली किसी की लाइफ में बहुत चेंज ला पाए। और गवर्नमेंट या सरकार के लेवल पे बहुत कड़े इसमें जो है स्टेप्स लिए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने एक नेशनल टोबैको क्विट लाइन नंबर लॉन्च किया है
0: जी।
1: जिसको भी कोई तरह, देखिए जो नहीं जा पा रहा भी, ठीक है कोई भी रीज़न की वजह से, ठीक है या उनको लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें, तो गवर्नमेंट ने फ्री सर्विसेज शुरू करी हैं। तो ऐसा एक क्विट लाइन, नेशनल क्विट लाइन नंबर है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, आप उस सबको आप लोग प्लीज़ उसको नोट करिए। वो एक टोल फ्री नंबर है, उस पर लोग कॉल करें, चाहे वो इंसान ना भी करे, जो उसके घर वाले भी करेंगे तो भी वो अटेंड करेंगे इस बात पे, अगर जो चाहते हैं नशा मुक्ति के लिए तो वो भी बात करेंगे, कोई तरह का तनाव है उससे रिलेटेड तो उस पे भी वहां पे सर्विसेज मिलती हैं। तो वो नंबर है 1800112356, मैं दोबारा बताऊंगा, रिपीट करूंगा, 1800112356। तो ये एक टोल फ्री नंबर है जो कि ऑपरेट हो रहा है दिल्ली में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से, जिसे कि नेशनल जो टोबैको सेसेशन सेंटर माना गया है। उसी के साथ गवर्नमेंट ने रीजनल सैटेलाइट सेंटर्स भी शुरू किए थे 2018 से, जहां पे फ्री जो है ऐसे पेशेंट्स की काउंसलिंग या कोई भी तरह की उन्हें जो भी जो इसको नशा मुक्ति या टोबैको को क्विट करने के लिए हेल्प करेंगी। तो उसमें जो है मेनली जो उसमें रूप से नाम है डॉक्टर भुवनेश्वर बुरा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज निमेंस बैंगलोर, और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। तो ये भी जो गवर्नमेंट के निर्धारित सेंटर्स हैं जहां पे लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस चीज़ में जो उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी।
0: बिल्कुल, तो देखिए कई बार ऐसे होता है ना कि हम पूछते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, जब कोई ऐसे बोलता है कि अरे आपके अगर पिताजी को अगर उनको आदत है, बहुत ज़्यादा तंबाकू की आदत है, तंबाकू नहीं छोड़ पा रहा है, तो हम बच्चे यही बोलते हैं कि क्या करें, हम क्या ही कर सकते हैं। जो वाइफ होती है वो यही कहती है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो अब जैसा कि अभी डॉक्टर सुमित भटेजा ने बताया है कि आप बता सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं नंबर पे 1800112356। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी परेशानी है, आपके जो भी जिस फैमिली मेंबर को ये परेशानी है, आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आप जल्द से जल्द इससे आप जो है बाहर निकल पाए, जो भी ग्रसित है उसको बाहर निकाला जाए और तंबाकू फ्री इंडिया बनाया जाए। तो चलिए इसी के साथ डॉक्टर सुमित, एक आखिरी सवाल आपसे कि वो क्या खास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक आज पहुंचाना चाहेंगे?
1: देखिए जो इस मैं अपने जो यूथ जो हमारी कंट्री का है, मैं उनसे ही बस इस चीज़ में डेफिनेट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को देखें, जैसे हम बोलते हैं स्मोकिंग किल्स एंड नॉट थ्रिल्स। तो जो उनको लगता है कि ये बहुत ही, जैसे जो इस बार की हमारी थीम भी थी जिस पर हमने बात करी थी, तो ये हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी है, स्टाइल स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है सिंपली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम बोलते हैं उम्र भी कई सालों तक कम कर देता है। तो जो एक स्मोकर है और नॉन स्मोकर है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देर इज फाउंड टू बी अ डिफरेंस। ठीक है, हम अपनी उम्र को करीब 10 से 15 साल खुद कम करते हैं अगर हम इसे अपनी यंग एज में, यूथ स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं यूथ ऑफ द कंट्री से कहना चाहूँगा कि उन्हें देश की प्रोडक्टिविटी में जो है सहयोग देना चाहिए, ना कि इस तरह की जो है आदतों में ग्रस्त हो के अपना भी जीवन, अपने परिवार का भी और अपने देश का भी ले भी कुछ उधार ना कर पाना। तो इसीलिए इस बार मैं सबसे ये रिक्वेस्ट है स्पेशली जो हमारे यूथ से, कि इन आदतों को बिल्कुल भी जो है आप ना शुरू करिए, चाहे आपको कोई फ्रेंड एक दिन के लिए भी बोले कि आज पार्टी में करेंगे या कल, नहीं, आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे कोई भी आपसे, और आपने उसकी भी छुड़वानी है जो आपको ये चीज़ बोल रहा है कि एक बार करके देखो कुछ फ़र्क नहीं।

0: तो ये चीज है।
1: तो चलिए इसी के साथ अब ये सारी बातचीत आपने सुना, और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हम आपके सवाल जरूर हमारे एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर सुमित भटेजा आज हमारे साथ जुड़े, और थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित कि आप आए और इतनी सारी बातें जो है आपने करी है, गाइडेंस दी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस मंच के द्वारा हमने भी एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो कैंपेन था वो आप लोगों के द्वारा हमारा पूरा हो पाया। थैंक यू।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत और कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर। आज को हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और यकीनन कामयाब कहानियों की बात होती है यहां पर। कामयाब एजन जिनकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन पाए हैं, वो कामयाब कहानियां जो ये कामयाब हो पाया हमारा सपना। हम इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ पर शो के माध्यम से आपके दो फायदे हों। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको सर्व करता है ये शो, जो आपको बताता है कि क्या प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पीछे, एंड एग्जैक्टली इंडस्ट्री कैसे काम करती है कोई भी अगर करती है तो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से हम ऐसे अलग अलग सर्विसेज देख पाते हैं अपनी कंट्री में, और दूसरा ये कि हमारे देश में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसका। तो आज फिर से आयो लेकर के ये शो, बहुत सारी बातें करेंगे, बताएंगे आपको कौन सी इंडस्ट्री है, बात करेंगे कंपनी कौन सी है। बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उस म्यूजिकल ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो,
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है, अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला। बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसे हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने हैं, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा। उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपनी स्किन के ऊपर और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइक
1: ज्वाला। समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहाँ से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है। ज्वाला

0: जी से।
1: फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे रेडियो मानवप्रस्थ 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान की पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहां पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहां पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड फील।

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीजें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां

दोस्तों, अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेस होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए, हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा, कल्चर, सब चीज होती है, तो तमाम चीजें पढ़ के जहां पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर आपको वहां की कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

बिना किसी देरी के आपको बताते हैं भैया, आज की जो कंपनी है उसका नाम है कलर बार। कलर बार 2004 में स्टार्ट हुई थी और एग्जैक्टली आप इसको टेक के स्टार्टअप के तौर पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस आपको टेक का फीचर नहीं देखने को मिलता है। बट देर आर सो मैनी थिंग्स जो इस कंपनी के विजन फॉलो करती है। इमेजिन यू आर एंटरिंग अ स्टोर जहां पर मेकअप का सामान आपको मिलता है, एंड दिस इज द टाइम ऑफ अर्ली 2000s, जहां पर आपको या तो एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स मिलते हैं या फिर आपको चीप लोकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं क्वालिटी के ऊपर। तो एक गैप था इन दो चीजों के बीच में। नाउ व्हाट दिस कंपनी डिड इज उन्होंने सिंपली इस थॉट को चैनलाइज किया कि इंडियन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज अफोर्डेबल प्राइस पर क्यों नहीं ले सकते, या फिर व्हाई कांट वी गेट क्वालिटी स्टफ विदाउट पेइंग फॉर लग्जरी प्राइस। दैट वाज अ थॉट बिहाइंड दिस कंपनी, एंड जिसके बाद ये कंपनी स्टार्ट हुई। तो एक इंडियन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स कंपनी है जो डील करती है मेकअप में, स्किन केयर में, नेल प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी एक्सेसरीज में, प्रीमियम ब्यूटी एक्सपीरियंस में। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली से, एंड इट ऑपरेट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड आउटलेट्स एंड मल्टी ब्रांड स्टोर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स। सो बेसिकली ये कंपनी जो है टाइम के साथ इवॉल्व हुई है काफ़ी, इसने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया है। सो दिस इज अ थॉट बिहाइंड इट कि आपको या तो लग्जरी ब्रांड मिलते थे या फिर चीप ब्रांड्स आपको मिलते थे जिनके ऊपर आप क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वालिटी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस कंपनी ने दोनों को मर्ज करके बीच का एक ऑप्शन आपको दिया कि अच्छी क्वालिटी का सामान आपको मिलेगा विदाउट पेइंग हाई एंड प्राइसेस। दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड इट। आई होप यहां तक आप शो को समझ पाए हैं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। ऑन दिस नोट शो को आगे लेकर चलेंगे। शो हमारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत एंड द स्टार्टअप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कलर बार। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। सो हाउ डिड स्टार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये कंपनी स्टार्ट इसलिए नहीं हुई कि किसी को मेकअप से प्यार था। ये कंपनी इनफैक्ट स्टार्ट इसलिए हुई, किसी ने मेकअप से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस गैप को फिल किया, और वो इंसान थे समीर मोदी। उन्होंने देखा कि इंडियन कंज्यूमर्स बहुत फैशन कॉन्शियस तो हो गए हैं बट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। और जैसा मैंने प्रीवियसली कहा कि या तो आप हाई एंड प्राइस पे करेंगे अगर आपको अच्छी क्वालिटी का स्टफ चाहिए, या फिर अगर आप कम प्राइस में ले रहे हैं तो आप क्वालिटी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने लग्जरी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उन्होंने इंडिया के लिए उनको अफोर्डेबल बना दिया। और बिगिनिंग बहुत स्मॉल थी, मात्र 16 लिपस्टिक्स एंड 16 नेल कलर्स जो है इतना वो लेकर के आए थे। बट दैट वॉज द थिंग, पर्सनली इन्होंने खुद जाके स्टोर्स पे विजिट किया, रिटेलर्स को कन्विंस किया कि उनके प्रोडक्ट्स को आप रखिए यहाँ पर, लगाइए, देखिए लोग इनको पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो पैशन के साथ स्टार्ट नहीं करते, ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक स्टार्टअप आप इसको बोल सकते हैं। सिमिलर स्टोरी रितेश अग्रवाल की रही है, हु स्टार्टेड ओयो। उनका भी सेम था कि एक पर्टिकुलर चीज उन्होंने देखी कि यार यहाँ पर ना गैप है एक बहुत बड़ा, लोग बहुत ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं और जो होटल्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो उसको मर्ज किया। सो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग कि वो जाकर होटल्स को कन्विंस करते थे कि मैं आपके होटल को कुछ दिन के लिए लिस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लगे तो हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। और एग्जैक्टली ऐसे अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी मार्केट्स में आपको ऐसे गैप नजर आएंगे। इट्स जस्ट हाउ टू मर्ज दीज टू थिंग्स, दैट्स हाउ द आइडिया वर्क्स। So, ये एक उसका परफेक्ट एग्जांपल है कि आपको बहुत ज्यादा पैशनेट अगर आप नहीं हुए किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, आपको समझ में आ रहा है कि बॉस यहां पर गड़बड़ है, इसको फिक्स किया जा सकता है, यू आर स्टिल गुड टू गो। दैट्स हाउ दिस होल कंपनी स्टार्टेड। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

ऑल राइट, बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. व्हाट वाज द मेन आइडिया? सो द आइडिया वाज नॉट टू सेल द लिपस्टिक और सेल द ब्यूटी प्रोडक्ट्स. द आइडिया वाज लेट्स डेमोक्रेटाइज द ब्यूटी. मतलब हर एक इंसान का अधिकार है सुंदर दिखने का, हर एक इंसान का अधिकार है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का. तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्सेस दिलाने का काम किया इस कंपनी ने. कलर बार ने फोकस किया कि आपका फील प्रीमियम हो, आपके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हो, इंडियन स्किन टोन्स के साथ वो मर्ज हो, ठीक है, वाइडर कलर चॉइसेस आपको मिले, इंक्लूसिविटी आपको मिले. एंड लेटर ऑन उन्होंने बाद में अपग्रेड किया खुद को. उसके बाद ये वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ गए, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ गए, सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ गए. जैसे जैसे टाइम बढ़ा उन्हें समझ में आया कि ओके, एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंच रहा है और लोगों की चॉइसेस चेंज हो रही हैं एंड वी एज अ कंपनी कुछ करना चाहिए. तो उन्होंने बाद में उन चीज़ों का अडॉप्ट किया जिससे आप मदर नेचर को यू नो एटलीस्ट ज़्यादा डैमेज पहुंचने से या ज़्यादा हार्म पहुंचने से बचा सकते हैं. सो हिज नेम इज समीर मोदी. फाउंडर की स्टोरी की बात करते हैं. सो पहले थोड़ा सा बात करेंगे बिफोर कलर बार वर्ड. बिफोर कलर बार उन्होंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम किया एट फिलिप मॉरिस जो कि यूएस की कंपनी है, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने मोदी केयर बिजनेस जो है स्टार्ट किया. उसके बाद मल्टीपल ग्रुप वेंचर्स जो है उन्होंने अपने स्टार्ट किए, ठीक है. एंड ही इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, स्टेट लेवल के बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, आर्ट एंथुजियास्ट रह चुके हैं, म्यूजिक लवर हैं, ठीक है. एंड दिस इज रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने सिर्फ बिजनेस पढ़ा होता है, बट ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स आपके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं. ओके, एंड कलर बार जो ये कंपनी है ये ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हुई थी. एंड याद रखिएगा 2004 की हम लोग बात कर रहे हैं, वे बिफोर यू स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल दिस स्टफ. उससे बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. उस टाइम पर इन्होंने इस चीज़ को देखा और वहाँ पर गिव अप नहीं किया अपना. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि ही वॉज कन्विंस्ड विद दिस बिजनेस आइडिया कि लोगों को पसंद आएगा. और अगर कोई आइडिया आपको अच्छा लग रहा है उसे सिर्फ अपने दिमाग तक क्यों रखना, लेट्स टेक अ शॉट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं. देन उसके बाद फिर बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स थे जो उस टाइम पर, उनके साथ कम्पीट भी किया, उसके बाद अपने बिजनेस को स्केल अप किया एंड कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते गए, कॉन्स्टेंटली रीडिजाइन करते गए, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव किया स्टोर एक्सपीरियंस को, कॉन्स्टेंटली कैटेगरीज को एक्सपेंड किया, कॉन्स्टेंटली ये भी ट्रैक किया कि लोगों की चॉइसेस क्या है. एजुकेशन है इनकी डून स्कूल, हिंदू कॉलेज एंड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. So this is the whole life of this founder, Mr. Samir Modi. Now we'll take another musical break. उसके बाद show continue करेंगे. कुछ और चीजें हैं जो इस company के बारे में आपको बतानी चाहिए, but वो later on discuss होगी. फिलहाल मजा लीजिए गानों का. Stay tuned, feel good, feel.

उम्मीद यही कि आपको गाने पसंद आए, साथ साथ उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आ रहा है और जो पर्पज है हमारा शो का फुलफिल हो पा रहा है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। कलर बार हमारी आज की कंपनी है। अब बात करेंगे इसकी यूएसपी की, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है कि आपको हजारों कंपनीज नजर आएंगी लेकिन हर एक कंपनी की अपनी यूएसपी होती है कि कौन सी वो चीजें हैं जो उस कंपनी को खास बनाती है। सो इस कंपनी की यूएसपी है लग्जरी फील एट एक्सेसिबल प्राइस, ठीक है। बट इसमें बहुत डीप लेयर्स भी हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी रेंजेस मिल जाती हैं शेड्स की, लार्ज रेंज ऑफ शेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको मिलते हैं, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, वीगन प्रोडक्ट लाइंस आपको मिलती हैं, एंड ब्यूटी पर्सनलाइजेशन का भी एक यहाँ पर अभी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलता है विदाउट पेइंग फॉर द लग्जरी प्राइस। की ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें, कंज्यूमर शिफ्ट, ठीक है, इंडियन कंज्यूमर्स चेंज हुए, नीड बेस्ड बाइंग से हट करके हम लोगों के थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सपेंड हुई, हमने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। तो लोगों ने क्या चेंज किया, मुझे लिपस्टिक चाहिए यहां से लेकर के आई वॉन्ट दिस ब्रांड, ये अभी आप देखते हैं कि लोगों की चीजें चेंज हो रही हैं, लोग ज्यादा खुल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो अब नीड से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है और इस बात से हम सब लोग अग्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम एंड ब्यूटी क्रिएटर्स जो हैं उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ, बाइंग बिहेवियर, ठीक है। ब्यूटी बिकेम लाइफस्टाइल, ब्यूटी बिकेम एक्सप्रेशन, ब्यूटी बिकेम आइडेंटिटी। देन उसके बाद प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ लोग जाने लगे, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट हो, क्वालिटी हो, ये भी इस कंपनी ने अच्छे से अडॉप्ट किया और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये कंपनी 2004 से लेकर अभी तक काम करती आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट इनोवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर ले, कितना ही अच्छी आप मार्केटिंग कर ले, कितना ही अच्छी आप चीजें कर ले, लेकिन अगर आप रेलिवेंट नहीं है, अगर आप अप टू द डेट अपने प्रोडक्ट्स को नहीं रख पा रहे हैं, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाई देंगे कि अगर लेट्स से कोई कंपनी है जो डील करती है कि बर्थडे डेकोरेशन में, अब रिसेंटली कोई थीम आई है, कोई मूवी आई है, फॉर एग्जाम्पल बीते दिनों बार्बी एक मूवी आई थी, तो हमने देखा कि कुछ कंपनीज ने ना जैसी बार्बी मूवी लॉन्च हुई एग्जैक्टली वैसे ही अपनी किट्स बनानी शुरू कर दी बार्बी बेस्ड थीम। व्हाट वाज दैट? अ मार्केटिंग थिंग, कि ऑलरेडी हाइप चल रही है, ऑलरेडी क्रेज चल रहा है, हम आपको आपके घर पर ही डिलीवर करके देंगे, दिस इज द थिंग। और अच्छा किया उन कंपनीज ने। सिमिलरली आपको हर एक ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहना पड़ता है, हर एक ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा, और जब आपको ट्रेंड समझ आने लगते हैं तब आपको ये भी समझ में आता है कि लोगों का टेस्ट चेंज होता है और बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है उनके आसपास का। दैट वॉज द कोर आइडिया बिहाइंड दिस। सो आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो या इनफैक्ट अगर आप जॉब भी करते हो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर बिजनेस, स्टे अप टू डेट, दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। आई होप यहां तक मैं समझा पाया हूं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

इस उम्मीद के साथ कि आपको मजा आ रहा है, शो को अपने आगे बढ़ाएंगे। एंड नाउ इज द टाइम टू कंक्लूड आवर शो। आज हमने जिस कंपनी की बात करी, उस कंपनी का नाम है कलर बार। अभी इस कंपनी के 100 से ज्यादा खुद के स्टोर्स हैं, 1200 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, मतलब अलग अलग ब्रांड के आउटलेट्स पे आपको इनके प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान्स हैं इनके पास, ठीक है। स्किन केयर एंड फ्रेग्रेंसेस के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, वैसे वैसे कंपनी ने खुद को चेंज किया है, खुद को इवॉल्व किया है। दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड इट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो स्टार्ट ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ होती हैं या कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होती है, बट नो, दैट्स इनकरेक्ट। परफेक्शन इज अ मिथ। दिस इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, चाहे कोई भी काम करते हैं, परफेक्शन इज जस्ट अ मिथ। और ये बात बार बार बार बार बार बार अलग अलग कंपनीज के थ्रू हमने प्रूव करके भी आपको दिखाई है, सिमिलरली यहाँ पर है। तो एक गैप देखा इन्होंने अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी के बीच का, उसको मर्ज किया, फिक्स किया उसको, देन उसके बाद खुद को इवॉल्व किया। लिपस्टिक और नेल पेंट से स्टार्ट करते करते आज इतनी वाइड वैरायटी इनके पास है कि लोग ट्रस्ट करने लगे हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, अफोर्डेबल प्राइस पर ये देते हैं और कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से जो बहुत लग्जरी आपको एक्सपीरियंस देते हैं। सिंपल आइडिया, आप मुझे बताइए आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी। और साथ साथ अगर आप ऐसा कोई सिमिलर केस जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं 8010781078 पे। फिलहाल वक्त है शो को यहाँ पर हॉल्ट देने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, बातें होती हैं आपकी सेहत की। और इस प्रोग्राम में हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग जनरली बात नहीं करते। बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और वो भी लेडीज यानी महिलाओं की। वो महिलाएं जो किसी भी घर की बैकबोन होती हैं। अगर किसी घर में महिलाएं हैं तो आप समझ लीजिए कि सिस्टम सब कुछ बेस्ट चल रहा है, और वहाँ के जो पुरुष होते हैं यानी जो मेल मेंबर्स होते हैं वो बहुत आराम से अपने जो जॉब है या बिजनेस है वो सब कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बागडोर लेडीज ने संभाल रखी है। लेकिन अगर घर में महिला ना हो, वो कुछ दिन के लिए कहीं घूमने ही चली जाए, तो फिर घर का क्या हाल हो जाता है ये आप सब जानते होंगे। तो आप समझ ही रहे होंगे कि घर को एकदम सही तरीके से चलाने वाली ये लेडीज कभी कभी फिजिकली नहीं मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि कभी कभी अपना दुख अपनी परेशानी शेयर तो कर पाती हैं पर एकदम गुस्से में, और तभी उन्हें कहा जाता है कि तुम चिड़चिड़ी क्यों रहती हो। आप खुद सोचिए, सुबह 5:30 बजे उठकर सारे घर के लिए नाश्ता तैयार करने वाली वो लेडी अगर ऑफिस भी जा रही है तो वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ निभा रही है, घर का खाना भी बना रही है, बच्चों को रेडी भी कर रही है, घर को ठीक भी कर रही है, और सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रही हैं। और अगर वो इसके बदले थोड़ा सा गुस्सा कर भी देती है तो फिर कहा जाता है कि तुम बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो। पर क्या कभी किसी ने आराम से बैठकर पूछा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तुम मेंटली एग्जॉस्ट तो नहीं हो? क्या तुम्हें आराम की जरूरत है, सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी? ऐसी कुछ बातें आज हम करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बहुत सारे घरों की है। और लेडीज अक्सर अपनी परेशानी तब तक नहीं बताती जब तक वो सिर के ऊपर से नहीं निकल जाती। सो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, खास तौर पर से वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि शर्मा, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर सुरभि, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर सुरभि, सबसे पहले तो हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो लोगों को ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि दिमाग की भी सेहत हो सकती है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ बेसिकली वुमेन के कंटेक्स्ट में क्या होती है?
1: वुमेन के कंटेक्स्ट में एंड इन जनरल मेंटल हेल्थ मतलब होता है कि हम सुकून से जी रहे हैं कि नहीं। हम जो भी आसपास एनवायरनमेंट है या जो भी सिचुएशन है उसमें भी हम खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, हमें नींद अच्छी आ रही है, हमारा बोलना चालना, हमारा रिलेशनशिप या हमारा काम का प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक चल रहा है, अगर वो सब ठीक है तो उसको हम मेंटल वेलबींग कहते हैं।
0: ओके, सो मेंटल वेलबींग यानी आपका दिमाग सुकून से है, शांति से है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर परेशानी में नहीं है, जो भी आपके आसपास है आप खुश तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही हैं और रेसिप्रोकेट भी कर रही हैं, ये वेलबींग होती है, मेंटल वेलबींग होती है। लेकिन डॉक्टर सुरभि, लेडीज़ के केस में हमने अक्सर देखा है कि लोग यही कहते हैं कि भाई तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और वो गुस्सा चाहे इन-लॉज का हो, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे ऑफिस का हो, वो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर उतरता है। सो ये गुस्सा भी क्या मेंटल हेल्थ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है?
1: ये एक बहुत बड़ा एंड बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है मेंटल स्ट्रेस का, या मेंटली बहुत हेल्दी ना फील करने का, जिसे आप एग्जॉशन का नाम दे दो या डिप्रेशन का नाम दे दो, कुछ भी लेबल लगा देते हैं, या फिर जनरली ज्यादातर लोग घर की औरतों को यही बोलते हैं कि तू तो मूडी हो गई है।
0: सो ये एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है।
1: राइट
0: जी। सो हम लेडीज की मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप अक्सर ऐसे पेशेंट से मिलती रहती होंगी। लेडीज के मेंटल हेल्थ के बारे में हम खुलकर चर्चा नहीं करते हैं। किसी पुरुष को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद जाके डॉक्टर को दिखा देगा, या वाइफ उसको कन्विंस करेगी कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं, तुम डिप्रेशन में हो या बहुत स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हो। लेकिन लेडीज की हेल्थ को क्यों नहीं प्रेफरेंस दी जाती, स्पेशली मेंटल हेल्थ का? तो मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचा ही नहीं जाता है।
1: ये अक्सर यही होता है, लेडीज़ को बोल दिया जाता है कि मतलब ज़्यादातर हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर्स दे जस्ट से कि ठीक है थोड़ा सा बातचीत कर लो, या फिर ये चीज़ नॉर्मल है, या ये लेबल लगा दिया जाता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो वो एक्चुअल में मेंटल हेल्थ या फिर इवन फिजिकल हेल्थ में भी ना उनको नेग्लेक्ट या फिर मिनिमाइज कर दिया जाता है उनका प्रॉब्लम। चाहे वो सर में दर्द हो या बॉडी पेन हो, नींद का दिक्कत हो, उसमें बस ये बोलते थे कि ठीक है थोड़ी देर आराम कर लो एंड आप ठीक हो जाओगे। मैक्सिमम इतना ही अटेंशन मिलता है उन चीज़ों को
0: जी। तो क्यों ऐसा होता है कि लेडीज जो है वो बहुत साइलेंटली सफर ही करती रहती हैं?
1: वन इज द एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। सोसाइटी या फिर हमारा जो कम्युनिटी है ना, उसके हिसाब से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक नया ट्रेंड है।
0: ये है ही नहीं प्रॉब्लम,
1: एक्चुअल में उनके हिसाब से प्रॉब्लम है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह देंगे कि मे बी इनका नेचर ख़राब है या ये बदतमीज हो गए हैं या फिर अपनी अपनी चलाते हैं। इसके अलावा बीमारी का नाम नहीं दिया जाता है, कई बार स्टिग्मा के कारण, कई बार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर, या फिर पागल घोषित कर दिए जाएंगे ये कह के, तो वो बयान नहीं किया जाता है, बस अपने अंदर ही रखा जाता है।
0: कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, बेसिकली ये रीज़न होता है जिसकी वजह से औरतों की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत ही नहीं की जाती। मेंटल हेल्थ यानी आपके दिमाग के अंदर जो इतना सब कुछ भरा हुआ है, कभी गुस्सा है, कभी एंग्जाइटी है, कभी स्ट्रेस है, तो कभी इमोशंस हैं, कभी दुख है, पछतावा है, या जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, अगर वो आपके दिमाग में भरी रहेंगी और वेंट आउट नहीं होगी तो ऑफकोर्स मेंटल हेल्थ को कुछ तो नुकसान होगा ही, जिसके बारे में आप बात नहीं करती हैं। ख़ासतौर पर से जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो फिर बातचीत भी कम हो जाती है, क्योंकि समय नहीं बचता है, और जो समय बचता है वो आप रील्स देखने में गवा रहे हैं, तो फिर ऐसे में मेंटल हेल्थ थोड़ा सा तो इफेक्ट होगी। बट अगर अभी भी आपने किसी से बात नहीं करी है तो आपको बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अभी तक किसी से बात नहीं कर पाए हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको आपकी ये सारी बातचीत और हमारे इस सारे पॉडकास्ट को सुनने की ज़रूरत है, शायद उसे कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं या मेंटल हेल्थ की तरफ कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो ज़रूर हमारी ये पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा। हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको ये सारी जानकारी पॉडकास्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जिसको आप डॉक्टर सुरभि शर्मा के साथ हुई बातचीत कभी भी सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आपके सवाल कुछ भी हो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हमसे जरूर पूछिएगा 8010781078 पर।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद बातचीत चल रही है बहुत सारी मेंटल हेल्थ इन वुमेन यानी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात चल रही है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जनरली बात नहीं करते हैं लेडीज में डिप्रेशन होता है और उन्हें ये कह दिया जाता है कि तुम तो ऐसे ही परेशान रहती हो हमेशा दुखी रहती हो सीरियल कम देखा करो वीडियो कम देखा करो फोन कम देखा करो और सोचा कम करो वही दिमाग है तो सोचेंगे ही सही इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं तो वो गुस्सा या फिर जो अंदर एक भर जाता है ना गुबार सा वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा और फिर उसका शिकार बनते हैं घर के छोटे बच्चे जो मम्मी से डरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मम्मी बात बात पे डांट देती है बड़ों पर गुस्सा निकाल नहीं सकते हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है तो बच्चे ही बच्चे जिन पर गुस्सा निकलता है लेकिन ये सिर्फ मिडिल एज लेडीज की प्रॉब्लम नहीं है ये मेंटल हेल्थ क्या किसी और भी उम्र को इफेक्ट कर सकती है और अगर कर सकती है तो महिलाओं में किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखकर परेशान हो जाते हैं या कुछ ऐसे केसेस सुनकर स्ट्रेस में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कभी कभी हमारे अंदर ही ये कहीं ना कहीं कुछ पनप रहा होता है जिसको समझना जिसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है सो डॉक्टर सुरभि शर्मा कंसल्टेंट एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि अभी हम लेडीज की जब बात करते हैं तो जनरली एक लेडी के फॉर्म में दिमाग में आता है कि 30-32 साल से ये प्रॉब्लम शुरू होती है शादी के बाद ज्यादा या फिर करियर प्रेशर में ज्यादा दिक्कतें शुरू होती हैं और उसके बाद आप दिक्कतों से पीछा ही नहीं छोड़ा पाते हैं फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं हार्मोनल चेंजेस बहुत आ रहे होते हैं और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं एंग्जाइटी में हो जाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की आजकल बहुत ज्यादा बात होती है लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ 30-35 साल की उम्र में मेंटल हेल्थ में दिक्कत आनी शुरू होती है या फिर किसी भी एज की लेडी को बच्चियों को ये प्रॉब्लम आ सकती है
1: मेंटल हेल्थ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो बच्चा हो एडल्ट हो या फिर एल्डरली पॉपुलेशन हो
0: जी
1: जैसे स्कूल गोइंग बच्चों में टीनेज ईयर्स में बहुत प्रेवलेंट है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बच्चियों में माँ बाप कहते हैं कि ये तो चिड़चिड़ा हो गया है या ये मूडी हो गया है या फिर ये अपने दोस्तों में ज़्यादा घुलने लग गया है बाहर से सीख कर आ जाता है बट कहीं ना कहीं उनका मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30-35 की उम्र में आके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं ये बचपन से भी स्टार्ट हो सकती हैं और बुढ़ापे तक कभी भी
0: मतलब आप 11-12 साल के हैं प्यूबर्टी की दहलीज पर हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई गर्ल्स को स्पेशली जैसे ही हार्मोनल चेंजेस हुए गुस्सा बहुत आने लगता है चिड़चिड़ापन हो जाता है या फिर लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है अलग कमरे में बैठे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है उनके मूड स्विंग्स सिर्फ नहीं हो रहे हैं मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है
1: राइट सब कुछ मूड स्विंग्स या फिर नॉर्मल बोल के निगेट करना उससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि असल में क्या प्रॉब्लम है समझना पड़ेगा अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेंबर्स महिलाओं को उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है या कोई चीज़ को लेके कोई बात को लेके या फिर बिना किसी बात को लेके भी क्या वो बहुत परेशान या स्ट्रेस्ड आउट या उदास महसूस कर रही हैं क्या उनको नींद ठीक आ रही है क्या वो ठीक से खा पी रहे हैं ये सब बातें करनी पड़ेंगी तो ही लोग बताएंगे
0: बिल्कुल यानी ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर सुरभि अगर हम बच्चों की बात करें तो एज में आपने बताया कि टीनेजर में ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है फिर अगर कॉलेज में जाते हैं करियर की तरफ बढ़ते हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमें नोटिस करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्या क्या ऐसी स्थिति होती है
1: मैं एक एग्जांपल देके आपको ये बात बताना चाहूँगी मेरे पास कुछ समय पहले एक स्कूल गोइंग बच्चा आता है जो 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे रहा था एंड एग्ज़ाम्स के बीच में ही वो आके कंप्लेन करता है कि मैडम पढ़ा नहीं जा रहा है मैं हमेशा से अच्छा था पढ़ाई में बट अचानक पता नहीं क्या हो गया जब से एग्ज़ाम हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा या जो भी मैंने पढ़ा है मुझे कुछ याद नहीं है ना मैं सो पा रहा हूँ मेरे हाथ कांप रहे हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है
0: फोकस नहीं कर पा रहे हैं
1: एक आध एग्जाम दिया है उसमें ठीक गया है लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि मैं शायद फेल हो जाऊँगा तो ये सब दिक्कतें मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ को ही डिपेक्ट करती हैं
0: ये बच्चों के केस में हो गया,
1: ये बच्चे या स्कूल गोइंग केसेस में हो गया है।
0: और अक्सर हमने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाने से कई बार मना करते हैं। पेरेंट्स उनको स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ाई से बच रहे हैं, तो ज़बरदस्ती भेज देते हैं। और ये केसेस कई बार आए हैं कि बच्चा वापस आता है, परेशान होता है और सुसाइड भी कर लेता है। और ये स्कूल के बच्चों की बात है, कॉलेज तक हम यहाँ नहीं पहुँचे। कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, जैसे नीट के एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ तो पूरे देश भर में से कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बहुत जो साल है, प्रिपरेशंस है, वो ख़राब हो गई हैं, वेस्ट हो गया है सब कुछ, पता नहीं अगली बार अगला जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, ठीक जाएगा। सो ऐसे हमने बहुत सारे किस्से देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ कदम तब उठाए जाते हैं जब ये हादसे हो जाते हैं। सो डॉक्टर सुरभि, अब मैं बात करना चाहूँगी यंग वुमेन की। एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, शादी नहीं हो रही है, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उस पर बॉडी शेमिंग का एक धब्बा लगा दिया जाता है कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, या तुम्हारा रंग सांवला है इसलिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, और उसकी वजह से उनका जो एक मोरल है या फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी यंग बच्चियों में आजकल के पॉप कल्चर बहुत फेमस है, सो उनको एकदम के पॉप आइडल लगना है, उनको वैसा आर्टिस्ट दिखना है जो कोरिया में होते हैं। अब उनके जीन्स और उनका इन्वायरमेंट अलग है तो वो शक्ल हमें नहीं मिल सकती। और यही वजह है कि कोरियन स्किन केयर बहुत फेमस है इंडिया में, हज़ारों रुपए का कोरियन स्किन केयर खरीदते हैं लोग सिर्फ वैसा दिखने के लिए कि ग्लास लाइक स्किन हो जाए, कुछ वर्ड्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं। सो आपको क्या लगता है ये चीज़ें कैसे कंट्रोल हो सकती हैं और इसमें क्या सिम्टम्स हैं जो लोगों को समझने चाहिए?
1: सबसे पहले हम सिम्टम्स समझते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना अपने लुक्स को लेके, अपने बॉडी इमेज को लेके, मोटापा या वेट को लेकर। नॉर्मल वेट होने के बावजूद भी आजकल लड़कियों को बहुत लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, और वो डाइटिंग, स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती हैं, फिर खाते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट, जो कि एक्चुअली बहुत ही कम है ज़रूरत के हिसाब से, इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं। क्यों? वही के पॉप कल्चर को देख के या फिर उस तरीके से बनना चाहते हैं। मेनली एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, जो कि ऑनलाइन क्यूरेटेड चीज़ें हैं जो वो अपनी रियल ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं ये ये भी स्ट्रेस एड ऑन करता है। एंड यंग बच्चे, यंग लड़कियां बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती हैं इन चीज़ों को लेके, बिकॉज उनके लिए जो मेन चीज़ें मायने रखती हैं वो उनकी एज और उनके आइडल्स, ये दो चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। तो बाकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं, कैसी दिख रही हैं, कैसे कपड़े पहन रही हैं, क्या बॉडी शेप है, या फिर उनके जो आइडल्स हैं लाइक के पॉप आइडल्स, कोरियन स्टार्स, उनका क्या रहन सहन या कैसा दिखते हैं, उनसे मेन इन्फ्लुएंस होती हैं। और ये एक्चुअल में अनरियलिस्टिक हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो हम बच्चियां, टीनेज गर्ल्स, उनको अपने रियल लाइफ में ही अडेप्ट करना चाहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करती हैं एंड देन उससे फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें लोग कुछ खाते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल वेट से भी बहुत कम वेट अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, खा लिया तो उसको वॉमिट आउट कर देना या फिर परगेटिव्स ले लेना, मतलब उसको किसी तरीके से निकालना चाहते हैं अपनी बॉडी में से खाए पिए को। और ये मानसिक स्वास्थ्य को भी प्लस फिजिकल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करता है।
0: जी जी। सो डॉक्टर सुरभि, अब थोड़ी मिडिल एज वुमेन के बारे में बात करते हैं, वो जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जो ऑलरेडी उस फेज से गुजर रही हैं जो मदरहुड से कनेक्टेड होता है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में अब धीरे धीरे लोग बात करने लग गए हैं, सो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सबसे बड़े सिम्टम्स क्या होते हैं?
1: ये जो एज की महिलाएं होते हैं ना, वो बहुत सारे रोल्स निभा रही होती हैं, एक बेटी का, एक बहन का, एक वाइफ का, बहू का, माँ का, बहुत सारे रोल्स हैं ये। एक्चुअली जितने रोल्स हैं उतने ही महिलाओं का काम है, लेकिन वो इकलौती एक महिला कर रही होती है, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, जिसमें एग्जॉशन बहुत कॉमन होता है। ऊपर से सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की एक बहू या एक माँ ऐसी होनी चाहिए, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है लोगों को, लोग पॉइंट आउट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। प्रेगनेंसी जिसको एक बहुत ही खुशी का चीज़ माना जाता है और लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं उस होने वाली माँ से कि वो भी बस खुश रहे, बट उसके पीछे जो भी वो प्रॉब्लम्स, जो भी इमोशंस वो फेस कर रही है, किसी को दिखाई नहीं देता और ना ही कोई सुनना चाहता है।
0: बिल्कुल, उन पे बात नहीं करना चाहते और अगर बात कर भी लें तो उसका सोल्यूशन नहीं समझ पाते हैं। तो डॉक्टर सुरभि, बेसिकली अगर किसी को हम ऐसे सिम्टम्स में देख रहे हैं, वो बार बार गुस्सा कर रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, खाना नहीं खा रहा है या फिर ओवर ईटिंग कर रहा है, सो ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिनकी तरफ हमें बात करनी चाहिए। अब 60 प्लस एज में चलें, क्योंकि एज बढ़ रही है, आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस थे वो भी बदल चुके हैं और पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट आ गई है, तो अब क्या सिम्टम्स होंगे 60-65 में? जनरली लोग कहते हैं कि दवाइयों का असर होता है जी, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं, क्या एक्चुअली में ऐसा होता है?
1: दवाइयों के असर से गुस्सा नहीं आता है, इतने सारे बॉडी चेंजेस, हेल्थ में चेंजेस हो रहे हैं जिनको तुरंत कोप कर पाना डिफिकल्ट होता है, प्लस जो सोसाइटल एनवायरमेंटल स्ट्रेस थे वो कहीं गए नहीं है, वो स्टिल एग्जिस्टिंग है, और एड ऑन जो ये उम्र के साथ बॉडी और फिजिकल हेल्थ इश्यूज आए हैं वो एड हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस ज़्यादा कॉमन होता है। हार्मोन्स चेंज होना, मेनोपॉज मतलब महीना बंद होना, ये हार्मोनल चेंजेस डिपेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ जब उसी समय में बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं और माँ बाप अकेले रह जाते हैं, तो जो महिला हमेशा से अपने बच्चों के लिए ही पूरा समय व्यतीत करती आई थी, वो अचानक से खाली महसूस करती है। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक कारण होता है फैमिलीज में महिलाओं के लिए एक मेंटल हेल्थ इशू फेस करने का, जिसको नॉर्मल बोल के छोड़ दिया जाता है, बट एक्चुअल में इसकी तरफ ध्यान देना, इसको एड्रेस करना और अगर ज़रूरत है तो इलाज लेना बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज बुढ़ापा मतलब ये नहीं कि ऐसा ही चलेगा, बुढ़ापा बहुत अच्छा भी बीतता है।
0: बिल्कुल, यानी उम्र का बढ़ना ऐसा नहीं है कि आपको सब जो है बोल रहे हैं कि भैया आपकी तो उम्र बढ़ रही है इसलिए आप गुस्सा करते जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं और बहुत अपसेट रहने लगे हैं, तो इसका मतलब आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करने की भी ज़रूरत है, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की भी ज़रूरत है। आगे जानेंगे मेंटल हेल्थ इन वुमेन ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं मेंटल हेल्थ इन वुमेन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने वाले आपको लोग बहुत कम मिलेंगे और यही एक ऐसा रीज़न है कि बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि यंग बच्चों से लेकर बड़ी उम्र की लेडीज़ बहुत गलत कदम भी उठा जाती हैं। गलत कदम कभी खुद को ख़त्म कर लेना तो कभी कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जो सबके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है तो इसमें फिज़िकल जो भी आप फिटनेस चाहते हैं उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली महिलाओं के क्षेत्र में, क्योंकि नौकरी अगर आप कर रही हैं तो प्रेशर आप पर डबल है। ऑफिस के भी काम करने हैं, वहाँ का भी एक बैलेंस क्रिएट करना है, घर की जिम्मेदारियाँ भी निभानी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर कोई ले रहा है तो वो है घर की लेडीज़, और लेडीज़ का दिमाग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। तो ऐसे में इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, क्या ट्रीटमेंट कराना है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि देर हो जाए। सो डॉक्टर सुरभि शर्मा हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज के एक्सपर्ट। सो डॉक्टर सुरभि, बात करें हम मेंटल हेल्थ की। अब मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स तो आपने बता दिए कि बार बार गुस्सा जो कर रहे हैं या खाना वाना नहीं खा रहे हैं या ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं या फिर डिप्रेशन में अगर आप उनको देख रहे हैं तो ये आपको सिम्टम्स कुछ समझने चाहिए। और हर एज के सिम्टम्स जो होते हैं वो अक्सर मिले जुले ही होते हैं जिनको हम इग्नोर करते जाते हैं, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं और लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं तो बात कैसे करें, एक पेशेंट अपने दिल की बात समझाए कैसे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और वो खुद कैसे समझे कि ये प्रॉब्लम हो गई और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा।
1: सिम्टम से फोकस करते हैं तो हर एज में मोटा मोटा सिम्टम्स सेम होते हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप प्रेजेंट करती है। जैसे बच्चों में, टीनेज में, वो चिड़चिड़ापन या बात ना मानना, रिबेल करना पेरेंट्स के अगेंस्ट, या फिर बहुत ही विड्रॉन या अकेलापन पसंद करना, ये सब दिक्कतें आती हैं, या फिर सडन एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाना, ये एक बहुत मेन पॉइंटर होता है कि ये लक्षण है मेंटल हेल्थ इशू के। बड़ों में, महिलाओं में, जब वो करियर प्रॉस्पेक्ट्स में या फिर शादी होती हैं तब मेन जो लक्षण होते हैं वो दर्द की तरह प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मन ना लगना, थकान होना, हाँ ये सब होता है, बट जो एक मेन पॉइंटर होता है पेन, सर में दर्द, शरीर में दर्द, बहुत ही जल्दी थकान हो जाना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि भाई मे बी शरीर नहीं मानसिक दिक्कत चल रही है। ऐसे ही उम्र के साथ एल्डरली महिलाओं में चिड़चिड़ापन, ठीक है, नींद का बहुत ज़्यादा दिक्कत होना और भूलपन होना, चीज़ें याद ना रहना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंटर होता है कि कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम हो रही है
0: जी।
1: इलाज हर एक एज ग्रुप के लिए है, इलाज पर्सनलाइज होता है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी को थेरेपी की ज़रूरत है, या किसी को दोनों की ज़रूरत है। जितना जल्दी डॉक्टर के पास या थेरेपिस्ट के पास जाएं उतना जल्दी चीज़ें पहचान सकते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट करें उतना अच्छा सुधार आता है, जिसको हम अपनी भाषा में प्रोग्नोसिस कहते हैं
0: जी। यानी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि डॉक्टर से मिल के आखिर क्या हो जाएगा। फिज़िकल कोई प्रॉब्लम हो तो समझ आए भी, मेंटल प्रॉब्लम एक आम इंसान नहीं समझ पाता। लेकिन अगर आपके घर की कोई लेडी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील कर रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है या एकदम शांत है, आपसे बात ही नहीं करना चाहती है, तो भी ये कुछ रेड सिग्नल्स होते हैं जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और आपकी वाइफ हों, चाहे आपकी मदर हों, चाहे आपकी डॉटर हों, चाहे आपकी सिस्टर हों, अगर ऐसा कुछ बिहेवियर आपको दिख रहा है तो उनसे बैठ के ज़रूर बात कीजिए और फिर एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स दिखने में छोटी लगती हैं पर आगे जाकर ये पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर सुरभि, कैसे ये जो स्ट्रेस है इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि ये स्ट्रेस आज से मुझे लगता है 20 साल पहले लोग ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, ये शब्द का इस्तेमाल करते ही नहीं थे क्योंकि एक्चुअली में नहीं था। लेकिन अब इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करें, बार बार आ रही स्ट्रेस मैनेजमेंट की रील्स देखने से क्या ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर थेरेपी में क्या किया जाता है जिससे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके।
1: सो बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने का, और वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में क्या स्ट्रेस है, क्या प्रॉब्लम है, एंड हर एक इंसान के लिए वो चीज़ थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर इन जनरल टर्म्स में मैं बताऊँ तो स्ट्रेस एक अच्छे हेल्दी दिनचर्या से काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है कि रात में समय से सोना, फ़ोन बिना चलाए मिडनाइट तक, सवेरे टाइम से उठना, एक हेल्दी खाना खाना, जंक, तला भुना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज करना. एक्सरसाइज स्टडीज़ कहती हैं कि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है एंड हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. इसके अलावा मेडिटेशन या योगा, तो किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. बट हाँ, जब बीमारी ही आ जाए स्ट्रेस के चलते, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई और साइकेट्रिक इलनेस ही हो जाए, तब ये रूटीन नहीं हो पाएगा. चाहे लोग कितना ही बोल लें, परिवार वाले कितना ही समझा लें, जब बीमार हो जाता है इंसान तब उसको इलाज ही लेना पड़ता है. इलाज, दवाइयाँ, थेरेपी, जिसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं, उनका तबीयत को ध्यान में रखते हुए, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए ही दवाई, सेफ दवाइयाँ चूज की जाती हैं. और आजकल मैं बहुत सुनती हूँ कि एक मिथ होता है कि मैडम साइकेट्री की दवाइयाँ एक बारी शुरू हो जाएं तो वो तो ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं, हमने ऐसा सुना है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. एक कोर्स होता है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि बाकी स्पेशलिटीज़ में अगर हफ्ता दो हफ्ता की बुखार की दवाइयाँ चलती हैं तो साइकेट्री में चार छः महीना की दवाइयाँ चलती हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू, बट जिंदगी भर चलेंगी ऐसा नहीं होता है. और दवाइयों की आदत पड़ जाएगी वो भी नहीं होता है.
0: बिल्कुल. सो दवाइयों की आदत नहीं पड़ेगी, दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग नहीं चलेंगी, इसीलिए डॉक्टर से मिलने में कोई हर्ज नहीं होता है. डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से आपको ज़रूर मिलना चाहिए अगर कहीं पर कोई ऐसा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का कोई भी आपको सिम्टम नज़र आ रहा है. डॉक्टर सुरभि, एक बहुत कॉमन सी चीज़ आजकल देखिए, बहुत सारे यंगस्टर्स कहते हैं पैनिक अटैक आ गया, तो ये पैनिक अटैक क्या होता है, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पाते.
1: पैनिक अटैक, सबसे पहले तो जब पैनिक अटैक आता है लोगों को लगता है कि कोई दिल का दौरा पड़ गया है, हार्ट अटैक आ गया है.
0: ओके.
1: उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? दिल का धड़कन बहुत तेज लगना, सांस ठीक से ना आ पाने लगना, चक्कर महसूस होना, बोल ना पाना या पूरा शरीर कांपने लगना, ऐसा महसूस होना कि अब तो मेरी जान निकल जाएगी. ये सब कुछ लक्षण है जिसको पैनिक अटैक का नाम दिया जाता है. और इसमें इतना तेज घबराहट होती है कि इंसान को लगता है कि बस अब मेरे को अस्पताल ले चलो, मैं नहीं बचूंगा. और लगता है कि शायद हार्ट अटैक का ही दिक्कत है, तो सबसे पहले वो जाके सारी हार्ट की जांचें कराते हैं और उसमें कुछ नहीं निकलता है, फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं कि इतना प्रॉब्लम में फेस किया और जांचों में कुछ नहीं आया, ये क्या हुआ. तो उसका जवाब फिर उनको मिल नहीं पाता है. बट एक्चुअल में ये पैनिक अटैक, और अगर पैनिक अटैक बार बार हो रहा हो तो पैनिक डिसऑर्डर, ये एक साइकेट्रिक बीमारी होती है जो कि जाने अनजाने समहाउ स्ट्रेस के कारण होती है, या फिर जो हमारे बॉडी के नॉर्मल न्यूरो ट्रांसमीटर्स या केमिकल रसायन है उनका ऊपर नीचे होने के कारण होती है.
0: जी बिल्कुल, यानी पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन आजकल आपने शब्द सुना होगा, लेकिन इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डॉक्टर सुरभि, आप चलते चलते बस आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखना है, सो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी लेडीज़ को कि कैसे अपने आप को फिट रखें मेंटली, स्ट्रेस से दूर रहें, एंग्जाइटी से दूर रहें, डिप्रेशन से दूर रहें, इसके लिए क्या वो ऐसी चीज़ें करें जिससे वो फिजिकली तो फिट रहें मेंटली भी स्ट्रांग रह सकें.
1: उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को एक हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना.
0: जी,
1: मन में चीज़ें रखना, अपना गुस्से को अंदर पीना, या जो भी अगर किसी बात को बुरा लगा है वो ना कहना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो स्ट्रेस को बिल्डअप करता है. तो इट्स बेटर कि हम जो भी महसूस कर रहे हैं उसको बयान करें, उसको बोलें, बताएं, डिस्कस करें, तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है. एंड हस्बैंड की लड़ाई फ्रेंड से जाके डिस्कस करना, या फ्रेंड की लड़ाई घर पे आके डिस्कस करना, उससे एक्चुअली वेंट आउट तो होता है बट सोल्यूशन नहीं होता है. तो जिससे जो प्रॉब्लम है उससे वो ही डिस्कस करें हेल्दी तरीके से, वो बेस्ट वे है टू हैंडल स्ट्रेस.
0: जी,
1: उसके अलावा एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, एक अच्छा खान पान और अच्छी नींद, ये सब मेन चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छा सुकून की लाइफ जीने में मदद करती है.
0: जी बिल्कुल. और डॉक्टर सुरभि, अब लोग बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं 24 घंटे में से, मुझे लगता है 4 घंटे तो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो क्या ऐसा देखें जिससे आपका दिमाग खुश रह सके?
1: आजकल रील्स में नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लमैटिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और इसको हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, जिसमें इंसान ये सब नेगेटिव कंटेंट अपने अंदर बसाता जाता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इश्यूज होने के बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसमें यह है कि पहला, अपना मोबाइल या स्क्रीन यूज़ को लिमिट करें। रील्स देखने से जो अटेंशन या कंसंट्रेशन में ख़राबी होती है, जो मेमोरी में ख़राब आती है, वो बहुत सारी स्टडीज़ प्रूव कर चुकी हैं। सो आइडियली ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, अगर देखना भी है तो बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए।
0: जी।
1: अपना एक स्क्रीन फ्री जोन होना चाहिए, कि एक समय होना चाहिए कि इस समय बाद हमें फ़ोन या रील्स नहीं देखने हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये सब चीज़ें अपना लाइफ में ना पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, यानी कुछ समय ऐसा जब आपको फ़ोन से दूर रहना है, स्क्रीन टाइम से दूर रहना है और खुद पे फोकस करना है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे गाने सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है, जिनको हम थोड़ा भूलते चले आ रहे हैं। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। पार्क में टहलना पसंद है तो पार्क में जाइए, अपने लिए शॉपिंग करना पसंद है तो वो भी करिए, लेकिन खुश रहने की कोशिश ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने परिवार या अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके दिल में वो चीज़ ना बसी रहे, वो आगे जाकर एक बड़ा सा जख्म भी बन सकती है और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। डॉक्टर सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।
1: थैंक यू।
0: फिलहाल बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं प्रोग्राम ऑल इज़ वेल में। SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे नॉलेज पार्टनर रहे, और अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत, और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच विद फिटर और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो आज हर एज ग्रुप के लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड कर रही हैं। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लगभग 80 किलो से भी ज्यादा हो गया था और साथ ही PCOD, हाइपोथायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज से वो खुद भी जूझ रही थी। लो कॉन्फिडेंस और फिजिकली इतनी तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने चलने फिरने, दौड़ने और स्टेयर्स तक चढ़ने से मना भी कर दिया था। और इसी दौरान कोविड के वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस ने उनकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब लाइफ टफेस्ट होती है तो वही से स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी शुरू होता है। उन्होंने एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया और अपनी जर्नी को सीरियसली लेते हुए INFS से न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की पढ़ाई भी की, और फिर जो हुआ वो तो सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने 26 से 28 केजी वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ इम्प्रूव की, स्ट्रेंथ वापस पाई, और जहां उन्हें बेसिक मूवमेंट से भी रोका गया था वहीं आज वो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करती हैं, साथ ही वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और एंड्योरेंस एक्टिविटीज जैसे रनिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ICN में भी स्टेज पर कदम रखा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज वो लोगों को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को समझना, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना और एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कोच सिमरन का। तो सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
0: ओके, तो सिमरन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेजिंग वंडरफुल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे की आपने इस जर्नी की?
1: तो गौरी, मेरी फिटनेस जर्नी ऑनेस्टली एक चॉइस से ज़्यादा नेसेसिटी था। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट 78-80 केजी तक चला गया, जहाँ मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, बैक पेन, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ। और कोविड के टाइम पर जब मैंने अपने फादर को लूज़ किया, उसके बाद हेल्थ मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना ही पड़ा।
0: सो जब मतलब आपने जर्नी स्टार्ट किया आपकी, तो बहुत से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा
1: जी,
0: फिजिकली भी और मेंटली, तो उसके बारे में आप हमें बताइए।
1: फिजिकली चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, इसीलिए ज़रूरी हो गया कि अभी हम अपने हेल्थ पर काम करें, लेकिन मेंटल चैलेंज ज़्यादा बड़ा आया जब मैंने सोचा इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेशेंस रखना, और सबसे बड़ी बात, क्विक रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से बाहर आना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो कल ही क्यों, दो हफ्ते बाद ही क्यों ना मेरा 2 किलो वेट गिर जाए
0: जी।
1: लेकिन तब समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने अपना कुछ पढ़ाई करने के बाद ये जर्नी शुरू करी, तो एक माइंडसेट जरूर मेरा ये बन गया था कि मुझे क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए
0: जी।
1: तो वो मेंटल ब्लॉक ज्यादा था, बट काम करते करते फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीजों पे मैंने जीत पाई डेफिनेटली।
0: तो सिमरन, आपको कितना समय लगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए?
1: वैसे सच बोलूँ तो मुझे जर्नी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। शुरुआत तो मैंने कुछ किलो वेट कम करने के लिए ही की थी, लेकिन जब मैं इस जर्नी पर आ गई तो मेरे गोल्स भी चेंज होने लगे। सो अगर आप वजन की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे 1-1.5 साल लगा पहला अपना 30 kg के आसपास लूज़ करने के लिए, बट उसके बाद मेरे गोल्स चेंज होते ही चले गए। फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए मसल कितना ज़रूरी है, क्यों ना मैं मसल ट्रेनिंग करके थोड़ा गेनिंग करूं एंड अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करूं। तो आज मुझे इस जर्नी पे लगभग 4 साल हो गए, 4-4.5 साल।
0: और आप इतनी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस लग रही हैं। मतलब बहुत उम्दा मैं कहूंगी, आपने अपना एक जो वो चीज हासिल की है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग, वो तो देखकर ही आपको लग रहा है। सो उस टाइम पे आपका क्या, कितना वेट था?
1: हाँ, तो मेरा आई थिंक 80 के आसपास थी मैं, और जिस दिन मैंने ये ठाना कि आज मैं मतलब एक होता ना एक दिन जब आप सोचते हो कि आज तो स्टार्ट कर ही देंगे, कुछ दिनों से आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो. तो मुझे आज भी याद है कि 78 किलो का वजन मैंने देखा था स्केल पर
2: जी.
1: और खुद को जब मैं शीशे में देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसी कब हो गई. तो वो मेरे सेकेंड बेबी के बाद जो शुरू के 5-6 महीने मैं उनके साथ बिजी रही, और ऐसा बोलूंगी कि 6 महीने बाद खुद को शीशे में देखकर होश आया कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं कैसी दिखने लगी, क्या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी. और फिर फिजिकल चैलेंजेस अलग थे. तो वो 78 केजी का मार्क मुझे याद है. और एट द एंड 1.5 ईयर के बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज भी हिट किया तो मैं 52 केजीज पे थी.
2: वाओ, सुपर. सुन के भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपका ये सफर, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ. सो सिमरन, जैसे आपको डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इवन स्टेयर्स चढ़ने में भी, तो मतलब क्या वो दिक्कतें रहती थी क्या, जैसे नी पेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे?
1: तो मुझे नी पेन, नी में क्रैकलिंग साउंड उठने बैठने पर, हालांकि मेरी उम्र शुरू के 30 सालों में ही थी, और बहुत ज़्यादा साउंड नी में आना, पेन होना सीढ़ी चढ़ते समय, और तब मैंने जस्ट ट्रेनिंग शुरू ही की थी. जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी तो जैसा होता है ना इंडिया में, वैसे ही सबको लगता है कि ट्रेनिंग करने से ही बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वही चीज़ हुई. डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी बोल दिया अरे आप लिफ्ट मत कीजिए. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि आपको जो चीज़ एक्चुअली हेल्प करने वाली है उसी को ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज भी एक टैबू है. और तो और डॉक्टर की एडवाइस भी यही थी कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों को उठाकर गोदी नहीं घूमना चाहिए, मुझे नीचे ज़मीन पर पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए. तो ये

0: अपनी बॉडी की वो मसल्स जो कि आपकी नी को या आपके आपको चलने फिरने में हेल्प करती है उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं.
1: अच्छा.
0: तो आपकी क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल जो कि लेग चेन की वो मसल्स हैं, अगर वो ताकतवर हैं तो आपकी नी पे स्ट्रेन ही कम पड़ता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इसको बहुत ही माइंडफुली करना रहता है. अगर ऑलरेडी कहीं पेन है तो आपको इंजरी भी कॉज हो सकती है. तो वही, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए मैंने बहुत ध्यान से अपनी इंजरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बाकी सभी मसल्स को ऑब्वियसली ट्रेन किया. एंड फिर एक जिद ये भी हो गई कि मुझे चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया गया था. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन भी रन किया एक डेढ़ साल के बाद, तो 10 किलोमीटर्स पे मैंने पोडियम फिनिश भी किया.
1: वाओ, वंडरफुल. सो एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि मसल ट्रेनिंग क्या लेडीज़ के लिए भी उतनी ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए भी है?
0: हाँ बिल्कुल. मतलब ये तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे मैंने कहा कि एक टैबू है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विमेन के लिए भी है. तो आयरन ही देखिए कि इंडिया में ही हम सबसे ज़्यादा इसमें मुझे लगता है डरते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेन करें या ना करें. लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जैसे कि आपने अगर कभी एक टर्म सुनी हो सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस. सार्कोपीनिया मतलब नेचुरली 30s के बाद आप अपने मसल्स को लूज कर रहे हैं 1% रफली हर साल. सो एक हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर लूजिंग इट. अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा. और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरसिस मतलब पोरस, हॉलो बोन्स. तो अगर इसके बारे में भी मैं आपसे डेटा शेयर करूं, तो इंडिया में 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं. और सबसे बड़ी बात, उनमें से लगभग 80% महिलाएं हैं. यानी कि जब हम देखते हैं कि 40s-50s के बाद अचानक से कोई गिरा या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बहुत इजीली फ्रैक्चर हो गया और फिर उनको बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी लोग बेड रिडन हो जाते हैं. क्योंकि इसको हम साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं. ये पता ही तब चलती है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है.
1: अच्छा.
0: तब तक आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं. तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आप इस सब के शिकार और ज़्यादा होने के चांसेस में हैं. अगर आप 20s-30s से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी. तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग करें, भले ही बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन इसमें कोई फ़र्क नहीं है. मसल्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं. सबकी बॉडी तो वही है, एनाटॉमी तो वही है.
1: बिल्कुल.
0: तो हमें मसल्स को ट्रेन करना चाहिए अपनी अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए. और सबसे बड़ी बात, जब एक वुमन ट्रेन करती है तो पूरा घर चेंज होता है. मैंने अपने घर में इसे ट्रेडिशन बनते देखा है. जहाँ हम इंडिया में कल्चर ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम जो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते देखा, हमने पूजा करना शुरू किया, हमने समझा कि भगवान है क्योंकि पेरेंट्स ने बताया. लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमें फिटनेस को देखना है, हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना है. तो मैं कहूँगी विमेन का ये करना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा. और इस सब का जो एक तरीका जो मैं देख रही हूँ मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा 12 साल का हो जाएगा, मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, आप उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पूछिए, आप उन्हें एक्सरसाइज की अहमियत पूछिए, वो आपको बताएंगे. तो मेरी डॉटर को कभी मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो पुशअप और पुलअप्स करने के शौक रखती है. मुझे बोलती है मुझे बार पर लटकाओ, मुझे पुलअप करना है. पुशअप करके दिखाया उसने मुझे, स्क्वाट्स करके दिखाया. मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कल्चर की तरह फिटनेस आगे लेकर जा रही हूँ. तो वुमेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है.
1: बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है कि वुमेन को बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना है, क्योंकि हमें नहीं पता मसल ट्रेनिंग क्या है. हमें तो लगता है कि बस वेट कम करना है, डाइट कर लो या योगा या जिम चले जाओ 1 घंटा. और वहाँ पे भी जिम में भी नहीं समझ आता है अगर आपके पास ट्रेनर अच्छा ना हो, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते हैं लोग. सो मतलब आपका ये कहना है कि मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है.
0: बिल्कुल.
1: फिर चाहे वो एक लड़का ही हो चाहे लड़की.
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं सिमरन यहाँ पे. सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे कोच सिमरन के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन, जो हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके बता रही हैं वेट लॉस के, मसल ट्रेनिंग के। और ये खुद भी इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। तो हमें अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है इनकी बात सुनने में। आगे और अपनी इस बात को जारी रखते हैं। तो सिमरन जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अराउंड 26 to 28 kg वेट लॉस किया
1: जी,
0: तो सबसे इफेक्टिव चेंज क्या था जो आपने इम्प्लीमेंट किया?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा और ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ेक्टिव चेंज क्या है। सबसे इफ़ेक्टिव चेंज है स्ट्रक्चर।
0: अच्छा,
1: अगर हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सोचते रहेंगे हाँ आज कम खाकर देखती हूँ, दो दिन मैंने ये किया, आज फास्टिंग कर लेती हूँ, कल डिटॉक्स कर लेती हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीज को समझना। कैलोरी क्या है? एक एनर्जी यूनिट है। मैंने कोई खाना खाया, उसने मुझे कितनी एनर्जी दी, उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी सब में होती है, पानी को छोड़कर। सो कैलोरी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इंटेक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत समझना, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं होता। स्मार्ट खाना, न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सो यही इफेक्टिव चेंज है कि मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रक्चर डाला कि मुझे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिकवर कर पाऊँ, मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैं लाइफ में एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, जिसको आप स्टेप काउंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप काउंट करना कोई मैजिकल है, लेकिन हम एक बस एक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि इतना तो मुझे कम से कम चल देना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000, जो आपका डेली का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और आप जानेंगे गौरी, यही 5 चीज़ें हैं जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। आज भी मैं यही फॉलो करती हूँ, शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और मेरे कितने सारे मेंटीज, आई थिंक मैंने 400-500 लाइफ्स को टच किया, ये सब भी यही करते हैं। बट सबको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना कैलोरी चाहिए, किसको कैसा स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, यही एक स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर पे टिका है फिटनेस आपका
0: जी। मतलब आपने जो 5 चीज़ें बोली, जैसे कि एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर पोर्शन आपको पता होना चाहिए,
1: क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी से अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं नाप तोल करके खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं घर में एक जैसा ही खाना खाना चाहती हूँ, हम क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी डॉटर की, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, या घर में और किसी की, या हमारे इन लॉज की, जो पेरेंट्स की, उन सब की रिक्वायरमेंट अलग है, और सब एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं खा सकते। लेकिन हम वो देखते आए हैं कि हमने दाल रोटी बनाई और सब खा लिया। हाँ, लेकिन उसमें
0: सबकी बॉडी अलग,
1: बॉडी अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा। यहीं पर स्मार्ट न्यूट्रिशन काम आता है, और कोचिंग भी काम आती है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को फिटर ऐप के थ्रू हेल्प कर रही हूँ, तो आप फिटर ऐप पर जाकर अगर सर्च करेंगे सिमरन कौर, आपको मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचेस में मिलूंगी, वहाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशन
0: देखे हैं हमने, आपकी बहुत अमेजिंग वीडियोस देखे हैं, मतलब मैंने तो
1: जी। तो यही स्ट्रक्चर एज अ कोच भी मैं औरों के साथ बिल्ड करती हूँ, और यही सबसे इफेक्टिव चेंज है जो आप लेकर आ सकते हो
0: जी। तो सिमरन, आपने बात की आप कोच हैं जैसे कि, और बहुत से लोगों को आप ट्रेन कर रही हो, तो अभी आपके अंडर कितने लोग हैं?
1: मेरे पास अभी एक्टिवली 100 से 120 मेंटीज हैं, और टोटल फिटर ऐप पर आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 400 लाइव्स टच कर चुकी हूँ। आप देखेंगे ऐप पर, जब सिमरन कौर सर्च करेंगे वहाँ पर है, और फिटर से पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तो आई थिंक कुछ 100-150 लोगों को मैंने वहाँ भी ट्रेन किया है। सो मोर देन 500 पीपल मैं।
0: तो ये कैसे ऑनलाइन रहता है आपका?
1: हाँ, तो जैसे ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या वहीं पे प्लान्स हम शेयर करते हैं, डाइट वर्कआउट प्लान शेयर होते हैं, तो मेरे मेंटीज मुझे अपने वर्कआउट की वीडियोस, चाहे वो होम वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, जैसे आपने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं वो अपना वर्कआउट प्लान, वहाँ वीडियोस भी होती हैं, तो वो वीडियोस के थ्रू शेयर अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत पर्सनलाइज करके प्लान बनाती हूँ, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को नी में पेन है, किसी को और कोई इशू है, सब एक जैसा ट्रेन भी नहीं कर सकते, एज वाइज, हार्मोनल वाइज, वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेम फॉर न्यूट्रिशन, तो वहाँ प्लान्स होता है, एंड फिर वीकली हम अपने मेंटीज से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो अपना स्टैट्स अपने मेजरमेंट्स डालते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू हम डेली भी कनेक्ट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं पांच चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कि आज उनका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर इनटेक और उनके स्टेप काउंट कैसे रहे, क्या स्ट्रगल है. क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझा कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ एक कोच आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में.
0: और कोच क्या, हम तो कहेंगे हर चीज में गुरु होना तो बहुत जरूरी है ना. तो आप भी एक गुरु ही हैं जो दिशा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो वेट लॉस की जर्नी किसी की क्यों ना हो, तो वो बहुत जरूरी है. सो आपके जितने भी आप इंडिया में ही करते हैं, इंडिया से बाहर भी आपके कुछ हैं क्लाइंट्स?
1: फिटर बहुत सारी कंट्रीज में कर रहा है, मोर देन 100 कंट्रीज. तो मेरे पास बहुत सारे मेंटीज जो है NRIs भी हैं
0: जी,
1: जो बाहर रह रहे हैं, और उनके लिए स्ट्रगल्स और भी ज्यादा है. समझिए, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें घर काम, उनके बच्चे और वर्किंग वेमेन है, और बहुत सारे पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ये वहाँ सक्सेसफुल ज़्यादा देखा है जहाँ पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की जर्नी समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेल्प चाहिए. इंडिया में तो हमें फिर भी हाउस हेल्प या पेरेंटल हेल्प भी हो जाती है, और यहाँ पे लाइफ ईजियर है थोड़ी सी, शायद मैं ये कहना चाहूँगी. ये मैं अपने जैसा मेरा मैं देखती हूँ मेंटीज के साथ काम करती, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ. बट फिर भी अगर आप बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है.
0: बिल्कुल. तो सिमरन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमन के लिए क्यों इतनी जरूरी है, स्पेशली इंडिया में जहाँ मिथ्स बहुत ज्यादा हैं?
1: तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या सार्कोपेनिया, जहाँ पे मसल लॉस बहुत इजीली हो ही रहा है 30s के बाद, रफली 1%. या फिर मैंने आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, 80% से ज़्यादा विमेन है. और दूसरी बात, इंडिया में ही इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें लगता है घर के काम तो हम कर ही रहे हैं
0: जी.
1: बहुत सारे विमेन जो वर्किंग है, जिन्हें हम नॉन वर्किंग बता देते हैं, वो वर्किंग से भी ज़्यादा वर्किंग है, घर के काम उनके ख़त्म नहीं होते
0: जी.
1: फिर भी वही है जो स्ट्रेंथ लूज कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है झाड़ू पोछा कर देना या घर में कुकिंग कर देना या बच्चों की सारा दिन हेल्प करना, तो हम काम तो कर रहे हैं. लेकिन समझिए, ट्रेनिंग और काम एक ही चीज़ नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो ट्रेनिंग मतलब हर मसल को, कहाँ आपका मसल जॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको ट्रेन कैसा कर सकते हैं. तो मसल को आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है, आप उसे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप हर मसल को, भले ही वो चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल, ग्लूट मसल, सब मसल्स को हम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे इलास्टिक बैंड को अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे उसके कुछ कुछ रेशे आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ही मसल के भी फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
0: अच्छा.
1: अब बॉडी, अगर आपको एक चोट भी आए तो रिपेयर करेगी ना, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे ही जब आपने मसल को ट्रेन किया माइंडफुली कि मुझे आज ये मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, जो कि झाड़ू पोछे से या घर के काम से अकेले नहीं हो पाएगा, तो जब हमने माइंडफुली मसल्स को ट्रेन किया, आज मुझे यहाँ ट्रेन करना है ताकि उनकी रिकवरी भी हो पाए. रोज मैं एक ही काम करके ट्रेनिंग नहीं कर सकती. तो उसके बाद बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिकवर करती है. उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक भी अच्छा चाहिए. तो वेट लॉस में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कम खाने से वेट कम हो रहा है
0: जी.
1: लेकिन आपको क्या पता कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है.
0: अच्छा, कुछ लोग सिमरन ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डाइट बहुत कम होती है, बट वो बहुत मोटे क्यों होते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो अगर हम मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे या नहीं रख रहे हैं, तो हमारा BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, बहुत कम हो जाता है. यानी कि बॉडी जो एनर्जी बना पा रही है हमें प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, वो बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसे पता है आप स्लो खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो वो प्रिजर्व करती है. अब जब बॉडी ने मेटाबॉलिक रेट ही कम कर दिया और आप वैसे भी मसल ट्रेन नहीं कर रहे थे, आप किसी भी तरीके का फैट डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, यानी अपने आपके फैट से ज़्यादा आपका मसल गया. आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चल चल कर या खाना कम खाकर वेट लॉस करते हैं. तो आपने जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ये चीज़ आपको उनमें नहीं दिखेगी. वो एक बड़े एप्पल से एक छोटा एप्पल बन जाएंगे, लेकिन फैट जहाँ था वहीं रहेगा. तो जब हमारा मसल ही कम हो गया, हमारा BMR नीचे आ गया, अब हमारी बॉडी को कैलोरी रिक्वायरमेंट ही कम है, हम जितना भी कम खा लें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है कि आप ट्रेन करें. ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को पता चलेगा इन्हें प्रोटीन्स और मसल्स की जरूरत है. अब वो जो डेफिशिएट या आप 200-300 कैलोरी कम खाकर जो कर रहे थे, वहां फैट लॉस कर पाएगी और आपके मसल्स को बचा पाएगी.
0: आज तो मतलब हमें बहुत नॉलेज मिल रही है आपके थ्रू, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं. जनरली जो लोग होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, बिल्कुल ही नहीं पता हमें. जिसने आपने इतनी इसमें, आप कह रहे हो कि पढ़ाई भी की है और बहुत आगे आप और भी चीजें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को आज बहुत ही ज्ञान की बातें मिल रही होंगी.
1: धन्यवाद.
0: सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन। तो सिमरन, अभी आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अब एक यहाँ पर मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग में आप किस तरीके से गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, इसके बारे में बताइए।
1: मैंने जैसे बोला कि मेरी जर्नी की शुरुआत तो एक नेसेसिटी से ही हुई कि मुझे अब खुद के लिए कुछ तो करना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब आप जिस जर्नी में जाते हैं, आप अपने आसपास का वैसा ही माहौल ढूंढते भी हैं, आप और लोगों की तरफ देखते हैं जो आपके जैसी जर्नी पर हैं, तो वहाँ मुझे पता चला ICN के बारे में, आई कॉम्पीट नेचुरल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे वेमेन एंड मैन आते हैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और कैसे करा के लिए, तो मैं बोलूँगी इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, साथ में आप अपनी फैमिली और अपने काम को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेंटीज को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है आपको उस लेवल तक जाना जहाँ पर आप एक, जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच जाते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज भी आप काफ़ी कम कैलोरी पर होते हैं उस बॉडी की शेप के लिए जो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, आपके मसल्स की विजिबिलिटी के लिए। तो वहाँ मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैं अपने आप को जान पाई कि मैं कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ या कितना डिसिप्लिन ला सकती हूँ अपने अंदर।
0: और आप कितने घंटे मेहनत करते थे इसके लिए, मतलब दिन में कितनी, मतलब बोला जाए तो कितने आवर्स आप देते थे?
1: देखो, जनरली तो मैं एक घंटे से डेढ़ घंटा या दो घंटा वर्कआउट करती हूँ, और हफ्ते में चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, ऐसा मैं अपने गोल्स के हिसाब से चेंज करती हूँ कभी कभी। लेकिन ICN के टाइम पर मैंने ढाई घंटे के आसपास वर्कआउट, और फिर अलग से मुझे अपनी वॉक के लिए जाना या फिर ट्रेडमिल करने के लिए, कुछ HIIT के लिए जाना, वो भी मैंने साथ में किया, तो उसमें भी मुझे एक डेढ़ घंटा शाम को भी डिवोट करना पड़ता था। एंड देन जैसे मैंने कहा कि मेंटल चैलेंज है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रिसाइज होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत लगती है।
0: जी सिमरन, आज की बिजी लाइफ में और आज का ये जो दौर आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं ये PCOS और PCOD और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और छोटी छोटी गर्ल्स में भी, मतलब 15-16 साल, 20 साल, मतलब इस एज में भी लड़कियों को हो रही है और बड़ी एज की लेडीज को भी है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं?
1: जी, तो गौरी, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मुझे पूछी है। मैं खुद आपको बताऊंगी, आई थिंक 2008 में मुझे पता चला था मुझे PCOD है, तो और आज की भी अगर मैं बात करूँ, तब आई थिंक अराउंड 10% वेमेन इससे अफेक्टेड थी। आज इंडिया में लगभग 17% वेमेन PCOD से अफेक्टेड है।
0: अच्छा
1: जी, और इसमें जानने वाली बात ये है, 17% से मतलब है दिस इज़ नॉट रेयर एनी मोर, ये रेयर कंडीशन तो नहीं है, यानी कि ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है, ये हमारे लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे या जानेंगे PCOD के लिए हम क्या करें, जो आपने मुझे पूछा, तो आपको बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जो मुझे भी बोला जाता था। मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरा वेट तब हालांकि 55 के आसपास ही रहा होगा 2008 में
0: जी।
1: तब भी वो मुझे कहते थे थोड़ा वेट लॉस करिए, प्रोटीन ऐड करिए, प्रोटीन कैसे खाइए, क्या खाना है मुझे, तो बोलते थे चिकन खा लो। मैं थी ही वेजिटेरियन तब।
0: अच्छा।
1: तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रोटीन्स ऐड करने हैं, तो ये कुछ ट्रबल्स थी वहाँ पर और जो आज भी हैं। तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करिए बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे करें नहीं पता। तो जो पांच चीज़ें हम अभी बात कर रहे थे, यू नो, वही है इसका भी आंसर, कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर खाएं, जहाँ अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी को शायद वेट लॉस नहीं करना, लेकिन अगर मैं PCOD थायराइड्स की भी बात करूं, तो अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लेट ऐसा बनाएं जहां हमारे हर मील में कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आ जाए, है ना, हम वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स किसी से भी वो ले सकते हैं, तो अगर हम 20-25 ग्राम प्रोटीन, अच्छा फाइबर, 1/4 प्लेट को हम फाइबर यानी अच्छे सैलड से या सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं वहाँ उससे कवर करते हैं, एंड देन 1/4 पोर्शन कार्ब, अगर हम ऐसी प्लेटिंग भी फॉलो करना शुरू कर दें और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि मसल सिर्फ मांसपेशियाँ जो हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, मसल्स भी एक ऑर्गन है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा बीएमआर अच्छा होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो बॉडी एफिशिएंसी से उससे एनर्जी बना पा रही है जो आप खा रहे हैं। तो यानी कि आपका खाना जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है, उसमें वैसे भी प्रोटीन ज्यादा है जो आपकी रिकवरी में यूज हो रहा है। कार्ब्स या फैट्स को हम थोड़ा लिमिटेड रखें, बंद नहीं करना है, ना तो आपको आटा ना दूध ना चावल कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इवन इन पीसीओडी आई वुड से यू डोंट रियली नीड दैट, यू नीड टू बैलेंस योर प्लेटिंग।
0: हाँ जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, वो छोड़ दो।
1: देखो मैं तो आती हूँ एक पंजाबी फैमिली से और ऑनेस्टली अगर आपने बोला कि आप मेरी कुछ रील्स देखते हैं, मैंने रिसेंटली भी डाला, मैं आज भी नाश्ते में परांठे खाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, वो परांठे मेरी मम्मी के तरीके से नहीं बनाए जाते, वो परांठे एक सिंपल रोटी की तरह या कुछ स्टफिंग वेजीज की अगर डाल देते हैं, बीच में ऊपर हमने 2 ग्राम घी रखा, इस तरीके से वो बना के, एंड फिर उसको हम पेयर अप करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, है ना। हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसमें टोफू ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, हम एग्स ऐड या वे प्रोटीन हमने ले लिया और कुछ नहीं, तो ऐसी बैलेंसिंग की हमें जरूरत है।
0: मतलब चीजें वही है, बस तरीका
1: बदल गया, स्ट्रक्चर आ गया जो मेरी बॉडी के लिए सही है, कितना मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो और कुछ नहीं, जितना आपका बॉडी वेट है कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन तो खाइए। ये तो आरडीए रिकमेंडेड है कि अगर मैं आज 60 किलो की हूं तो 60 ग्राम तो मिनिमम मुझे खाना चाहिए। ये कोई थ्राइविंग नंबर नहीं है
0: जी,
1: ये सर्वाइवल नंबर है कि अगर आप ये भी नहीं खा रहे तो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं कर रहे। और आप हैरान हो जाएंगे इंडियन प्लेटिंग्स देखकर कि उसमें आपको बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
0: हाँ जी।
1: तो कैसे हम कहें कि हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, ट्रेनिंग हम करते नहीं, झाड़ू पोछा घर का काम को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लेते हैं, तो अगर हमारा मसल जा रहा है, ऊपर से हम प्रोटीन खा नहीं रहे, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस तरीके की कंडीशंस। और पीसीओडी एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशन है, अगर पीसीओडी है तो आप समझिए ये पूरा क्लस्टर है। आप उसमें जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे और चीजों के साथ जुड़ के, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये एक क्लस्टर में मेटाबॉलिक कंडीशंस की आप क्लस्टर में फंसेंगे। मुझे भी पीसीओडी के काफी सालों बाद फिर थायराइड हो गया, फिर हाइपोथायराइड में वो आ गया जहाँ मैं 125 mg की पिल ले रही थी। लेकिन देखिए यही लाइफस्टाइल, यही 5 चीज़ें फॉलो करते करते मैं आज पीसीओडी से भी बाहर हूँ। मैं बहुत गंदा एक्ने हुआ करता था मेरे फेस पे, हिर्सुटिज्म, एक्ने, एंड देन थायराइड का पिल, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो।
0: एंड आजकल एक दो चीजें बहुत ही कॉमन है कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मेलिज्मा बहुत ज्यादा कॉमन है, और हेयर फॉल तो पूछिए ही मत। मतलब कुछ यहाँ का पानी भी बहुत ही हम अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कितने भी आरओ लगा लो, क्या किस भी कंपनी के लगा लो, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का भी है कुछ फर्क पानी वगैरह का।
1: हम जो ह्यूमन है ना, हमें अपनी गलती का दोष कहीं और डाल देना बहुत आसान लगता है। तो जहाँ हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, जहाँ हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो हम ढूंढ रहे हैं सबसे ईजी क्या है, शायद कॉर्पोरेशन ने पानी ही खराब दिया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो कि you know, आप सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से अच्छा हो जाता है। आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज करके तो देखिए, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपको पेन फ्री हार्मोन बोलते हैं उसको, हमारे डोपामिन रिलीज होंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, पूरा दिन काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो सब चीज़ें सही रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हमें स्ट्रेस को भी कम करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर लाइफ बनानी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बिजी हों, आप कर सकते हैं।
0: जी, और ये जो स्लीप की बात आपने की, तो क्या 8 घंटे की ही जरूरी है या 6 में भी काम चल सकता है?
1: कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम रिकवर करें, डिपेंड करता है। कुछ लोगों की नेचुरली नींद 6 आवर्स होती है, कोशिश करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उसको कहीं से बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, रात का नेटफ्लिक्स कम कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ें टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, बच्चों को हम रूटीन पे जल्दी बेड पे डालें, ताकि हम अगर आधा घंटा खुद के लिए लेना भी चाह रहे हैं हम थोड़ा जल्दी जाएं। लेकिन हम तो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और सुबह आपके पास उठने की शक्ति नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपको सोना चाहिए, और ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। मैं भी इन्हीं 24 घंटे पे जीती हूँ, जहाँ यही 100 मेंटीज़, 120 मेंटीज से भी कनेक्ट करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, 2 घंटे जिम में भी देती हूँ, टाइमली सोती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे की नींद भी पूरी कर पाऊँ।
0: जी, तो मतलब 8 घंटे की नींद ज़रूरी है।
1: हाँ, नहीं हो रहा है तो 6.5-7 घंटे तो पहुँचिए, वहाँ तो पहुँचिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड। लेकिन स्लीप ना बहुत कंपाउंडिंग चीज़ है, हमें लगता है 5 दिन 5-5 घंटे सो के सैटरडे संडे मैं ज़्यादा सो लूँगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर मेरे फ़ोन की बैटरी 100 थी जब मैंने उसे चलाना शुरू किया, अगले दिन मैं 50% 30% पे वो भी डिम हो जाता है एंड वो आपको बताता है कि अभी रिकवरी चाहिए और वो बैटरी जो है वो लो होती जा रही है। सो अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूँ, जहाँ आपने पूरी एफिशिएंसी से डे 1 शुरू किया, वहाँ जहाँ पे आप डे 2 पे पहुँचे, आपकी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी 80-70% है क्योंकि आपने रिकवर नहीं किया। फिर दूसरे दिन उस थकी हुई बॉडी से, जहाँ ऊपर रेड बैटरी हो चुकी है 20%, उस थकी हुई बैटरी से जब आप अगला दिन निकाल रहे हैं तो आप और ज़्यादा थक रहे हैं। तो जहाँ शायद उस दिन 8 घंटे की ज़रूरत या 7 घंटे की ज़रूरत थी, आप सोचें कि कल 2 घंटे फालतू सो लूँगी, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। वहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, आपकी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाएगा। आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर PCOD या थायराइड जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी।
0: जी सिमरन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमारे लिसनर्स को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बातें आपसे जान के समझ के, क्योंकि वो जो एक तरीका है आपके समझाने का तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर और काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे लोग आज, इवन मैं भी हो रही हूँ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
1: थैंक यू गौरी।
0: सिमरन, अभी हमने बात की PCOD, PCOS, थायराइड और आपने जैसे खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सो क्या डायबिटीज भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिवर्स हो सकती है? मतलब हम सुनते हैं बहुत से एड्स भी आते हैं कि हो सकती है, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो, तो ये कहाँ तक सच है ये चीज़ या फिर मिथ है?
1: नहीं नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है। मैं खुद बहुत सारे ऐसे मेंटीज़ के साथ काम कर रही हूँ और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैंने अपने ऐप पर या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हैं, जहाँ पे हमने डायबिटीज़ रिवर्सल भी किया है, जहाँ HbA1c 7-8 से नीचे लाकर हम 5.1 नॉर्मल रेंजेस में लेकर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप ये कब शुरू कर रहे हैं। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं, आज 7 से 8 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है
0: जी।
1: और बहुत बड़ी बात यह है कि 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में जब आता है, धीरे धीरे धीरे जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है तब जाके इस चीज़ का डायग्नोसिस होता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है। तब तक आपके ब्लड वेसल्स या आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके होते हैं
0: जी।
1: तो एक तो अपना रूटीन में खून की जाँच, अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगाना 3-6 महीने में बहुत ज़रूरी है ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए। जहाँ तक बात रिवर्सल की है, लाइफस्टाइल से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। हाँ, अगर आप इंसुलिन पे पहुंच गए हैं या कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है तो टाइम ज़रूर लग सकता है, बट ये नॉट डूएबल नहीं है। डेफिनेटली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके ही ठीक किया जा सकता है।
0: और अब तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बहुत यंग एज में भी आने लगी है धीरे धीरे। तो वो कुछ नहीं है, वो वही पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और बोलते हैं अरे हम भी तो दाल चावल रोटी खा के पूरा दिन काम कर रहे थे तो तभी तो उनको ये कंडीशंस थी। हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को 40 के बाद 50 के बाद उनके एनर्जीज नहीं है, उनके इधर उधर हर जगह पे पेन है और फिर भी हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं, हम भी तो यही, तो वही तो गड़बड़ है, वहीं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहीं तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। आज की लाइफ तो और भी सिडेंट्री हो गई है, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो फिर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारी लाइफ तो और सिडेंट्री होती चली जा रही है। तो यहाँ कुछ घंटे अपने लिए निकालना और अपनी डाइट को मैनेज करना और वेट लॉस भी उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के क्लस्टर में फंसे हैं तो वेट भी डेफिनेटली काफ़ी ऊपर होता है मोस्टली लोगों का। तो अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, आपका HbA1c, आपके शुगर लेवल्स भी नीचे आ सकते हैं और आते हैं। जैसे मैंने कहा, मसल्स आपके एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी बाकी की चीज़ें जो बॉडी की हैं वो खुद से सुधरने लगती हैं।
0: जी, मतलब डायबिटीज़ से हम शुरू होने से पहले ही बच भी सकते
1: हैं? बच तो सकते हैं 100%। तो जब अगर हमें आज कोई कंडीशन नहीं है तब हेल्थ के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सब जब आए, जैसे मैंने आपको पोरस बोन्स के बारे में बताया, ये तब पता चलता है जब 60-70 की उम्र में गिर जाते हैं और पता चलता है कि हड्डी तो जुड़ भी नहीं रही, पोरस बोन्स थी आपकी, बहुत जल्दी से कोना लगते ही फ्रैक्चर आ गया। तो अगर वही ट्रेनिंग आप 30-40, आप बाहर की वेमेन को देखिए कैसे उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ट्रेनिंग। मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जहाँ बैटल रोप हो रहा है
0: जी।
1: एक तरफ में साड़ी वाली सारी जो हमारी गांव वाली विलेज वाली जो वुमेन है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो ताज़ा घर का खाना पीना और अच्छा भैंस का दूध लेती हैं और घी ले रही हैं, वो सारी विमेन अच्छी हट्टी कट्टी विमेन जिन्हें हम बोलते हैं कि ये हेल्दी हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ हमें लीन बॉडी विमेन दिख रही हैं ट्रेन करती हैं, जो शायद नहीं बोलूँगी डेफिनेटली, तभी वो इन विमेन से जल्दी वो बैटल रोप में जीत गए, क्योंकि वहाँ मसल की इंपॉर्टेंस है। घर के घी दूध की ज़रूरी ठीक है, आप ले रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, लेकिन जहाँ आप ट्रेन करेंगे तो वहाँ विन विल बी डेफिनेटली योर्स
0: जी। और साथियों, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से कोच सिमरन के साथ अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच फिटनेस, जो हमें हमारी बॉडी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें बता रही हैं। तो सिमरन, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत से लिसनर्स हमारे शो को सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच को, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारा शो सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से या तो डर रहे होंगे, बट डेफिनेटली करना चाहते होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट, कि उन्हें भी अपना वेट लॉस करना तो होगा। और आजकल 70% लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बिना वेट ट्रेनिंग के भी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं?
1: गौरी, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेनिंग के बिना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, शायद रिजल्ट और भी तेज़ होगा। ये जानकर आपको बहुत अलग लगेगा कि फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बोल ही क्यों रही हूँ। लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं, देखिए, हमें वेट लॉस करने के लिए एक कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, यानी कि मेरी बॉडी को अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 कैलोरी खाना शुरू किया और मुझे लगा कि जो 200 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी, मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन होता क्या है, बॉडी के लिए स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करना उससे ज़्यादा ईजी है आपके प्रोटीन से एनर्जी बनाना, यानी मसल से एनर्जी बनाना। तो वज़न तो आपको स्केल पर गिरता हुआ दिखेगा, तो ये जो स्केल का ऑब्सेशन है, इसको छोड़कर अगर हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बॉडी गेट्स अ रिस्पांस कि हमें मसल की रिक्वायरमेंट है। याद है मैंने आपको ब्रेकिंग ऑफ फाइबर के बारे में बताया, तो वहां जब बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, अभी बॉडी को सिग्नल है डेफिशिट का, अभी बॉडी को सिग्नल है रिपेयर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का, अब वो फैट को यूटिलाइज कर पाएगी आपके वेट लॉस के लिए। दोनों में फर्क क्या है, स्केल पे वजन तो गिर रहा है लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट का फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ की जर्नी में फंस जाते हैं, वो वेट लॉस करते हैं, शायद वहां मसल लॉस ज्यादा था, आपका बीएमआर, आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मसल नीचे जाता है, तो अब वो मुझे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई, तो ऐसे लोग बाद में आते हैं, सिमरन मुझे तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाता है। क्योंकि उन्होंने मसल लॉस कर दिया, स्केल पे तो वजन गिरा लेकिन ना तो वो सस्टेन रहेगा, ना वो लॉन्ग टाइम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे,
0: नहीं कर पाएंगे।
1: जहां मैंने ट्रेनिंग किया, मैंने बॉडी की ट्रेनिंग से बीएमआर थोड़ा अपना बचाया या बढ़ाया, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आज भी ज़्यादा है और मैं अब थोड़ा सा भी अभी डेफिशिएट कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, आप डेफिनेटली कम खाना खा के कर सकते हैं, जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो आई थिंक हम में से 90% लोगों ने ट्राई किया ही होगा कि आज कम खाना खाता हूँ, या मैं तो फास्टिंग, या सिमरन मैं तो खाना ही नहीं खाता फिर भी मेरा वेट नहीं जाता। इसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कम कैलोरीज में भी कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। तो आप 200-300 कैलोरी का डेफिशिएट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ऐसे प्लान्स पे चले जाते हैं जो 1200 कैलोरी, क्या 1200 कैलोरी खा के लिटरली सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ट्रेनिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, छोटे से डेफिशिट से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स भी अचीव करेंगे और सस्टेन कर पाएंगे उस वेट लॉस को, आपको बार बार ऑन एंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
0: जी, तो लिसनर्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो थोड़े टाइम वाला, 3 महीने कम होगा, देन उसके बाद फिर सेम। और सिमरन, हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो बस दिन में एक ही मील लेते हैं शाम को 6:30 या 6 बजे, तो ये क्या इससे वेट लॉस होता है?
1: सेम चीज़ है कि अगर आप सिर्फ कम खाना खा रहे हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि मैं तो 12 घंटे का फास्टिंग कर दे रहा हूँ, है वो भी कैलोरी डेफिशिट ही है। कैलोरी डेफिशिट के काफ़ी तरीके हैं कि या तो आप कैलोरी नाप तोल के ले रहे हैं आपको क्लॉक से, तो मेरी बॉडी को ये नहीं पता है कि 7 बज गए हैं, अभी चावल जो है वो 800 कैलोरी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर दिमाग को देने के लिए, मैं जो मेंटली नहीं कर पा रही हूँ क्वांटिफाइड डाइट कि मेरे को इतना राइस लेना है या इतना राइस नहीं लेना है, तो मैं उसको टाइम से बांध देती हूँ। तो टाइम से बांधिए या आप क्वांटिटी से बांधिए, करना तो आपको डेफिशिट ही है। और अगर आप बहुत ही कम, यानी कि एग्रेसिव डाइट पे चले जाएंगे, तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड, यानी जो मैंने आपको बताया अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस, अडैप्टिव बॉडी अडैप्ट कर जाती है। और अगर आप बहुत बड़े बड़े डेफिशिट्स क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी प्लेट्यू हिट करेंगे, फिर आप यही बोलेंगे कि हम तो एक ही मील खाते हैं लेकिन वेट तो जाता ही नहीं।
0: और बट मुझे लगता है कि उससे बॉडी अंदर से वीक होती है।
1: बिल्कुल होगी, अगर आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सो हम बात कर रहे हैं मैक्रोस की, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का फंक्शन, जो आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप एक सिंगल मील से कैसे कवर कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखें।
0: जी, तो सिमरन, हमने आपसे बहुत सी बातें आज सीखी, सुनी, और काफ़ी हमारे लिसनर्स आज इंस्पायर भी हो रहे होंगे ये सब सुन के कि वेट लॉस जर्नी अगर उन्हें शुरू करनी है तो किस तरीके से वो करें। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, तो आप रेडी हैं उसके लिए?
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, सो सिमरन, डाइट या वर्कआउट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
1: दोनों, बैलेंस इज रिक्वायर्ड।
0: कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?
1: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म।
0: ओके, चीट मील या डिसिप्लिन?
1: डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी।
0: अच्छा, स्मार्ट आंसर। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट?
1: जो आप सस्टेन कर पाए।
0: नाइस। एक फिटनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी?
1: कि कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा।
0: वाओ, ये तो सुपर। थैंक यू सो मच। तो सिमरन, अब लास्ट में हमारे लिसनर्स जो ये शो आज सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच पर आप आई हैं, क्योंकि क्रिएटिव मंच पे क्रिएटिव फील्ड के लोग आते हैं, और मैं तो ये मानूंगी कि आपने भी जो ये चीज़ की, ये कला ही है आपकी, जो आपने अपनी बॉडी को, क्या इतना वेट था और इतना खूबसूरत अब आपने बनाया है, तो ये भी एक कला ही है, फिर चाहे वो अलग तरीके से, अलग जरिए से बनाया है। सो अभी तक हमारे शो पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, फैशन इंडस्ट्री के भी लोग भी आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम क्रिएटिव मंच में एक फिटनेस कोच आई हैं। तो सिमरन, आप हमारे जो लिसनर्स अभी हमारा ये शो सुन रहे हैं, उन्हें आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे आपने बात की कला की, कि बहुत सारे कला, हर एक अपनी फील्ड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम कला की ही बात करें, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं हमें, उनका भी कोई ना कोई फील्ड है, और उस फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है उनका गोल।
0: जी,
1: तो ऐसे ही जब हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, लेकिन वो खुद ब खुद आ जाती है, तब जब हमारे पास कुछ गोल है और उसे अचीव कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बेसिक पांच चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, जो एक स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, वो शेयर करूं, और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपना एक गोल क्रिएट करिए, उस गोल को देखिए, आप वीकली अपना प्रोग्रेस लीजिए, नॉट ओनली थ्रू वेट बट थ्रू इंचेज ऑल्सो, और उसको रखते हुए आप आगे चलते जाइए, और एग्रेसिव अप्रोच मत रखिए। ना तो आपको बहुत एक्सट्रीम इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको एग्रेसिव कैलोरी डेफिशिट की ज़रूरत है। बैलेंस रखते हुए, छोटे से डेफिशिट के साथ, लिटिल बिट स्टिम्युलेशन ऑफ मसल्स के साथ, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं।
0: जी, थैंक यू सो मच सिमरन, इतना अच्छे तरीके से आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू सो मच गौरी फॉर कॉलिंग मी हेयर। मैं भी फर्स्ट टाइम किसी टॉक शो का हिस्सा बनी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर कर, और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आज सुन रहे होंगे, अगर मैं कुछ 10% लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ उनकी जर्नी में, या उन्हें स्ट्रक्चर दे पाऊँ, या उन्हें एक पाथवे बता पाऊँ कि ये कैसे करना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और अगर कोई इसमें मेरी गाइडेंस या हेल्प लेना चाहे, तो वो मुझे फिटर ऐप पे सर्च कर सकते हैं, सिमरन कौर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच, आई एम ऑल देयर टू गाइड देम। एंड मैं बहुत धन्यवाद करूँगी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा।
0: थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच, एंड हम आशा करते हैं फिर से आपसे जल्दी मुलाकात हो, और ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग बातों का ज्ञान हमें और हमारे लिसनर्स को मिलता रहे। सो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी इसी शो में, क्रिएटिव मंच में। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ शिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

0: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। शो बहुत खास होता है, हर बार एक एपिसोड हम लेकर के आते हैं हर हफ्ते, और जिसमें हम बहुत सारी बातें यहां पर करते हैं। हमारे साथ एक मेहमान होते हैं जो अपनी लाइफ से, ओवरऑल एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं। आज वापस से मैं एक और शो लेकर के आया हूं, लेकिन आज का शो एक यूजुअल शो जैसा शो नहीं होने वाला है, हमारा थोड़ा सा हटके होने वाला है। हमारे साथ हैं आज भुवन, भुवन सागर का पूरा नाम है, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वॉरियर। बहुत सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, आप भुवन के बारे में जान रहे होंगे जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस स्टोरी कैन बी समड अप विद दिस वर्ड एंड टाइटल, वॉरियर। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा होगा कि आप लोएस्ट पॉइंट पे अपने पहुंच जाओ, ठीक है, विच इज अगेन पॉसिबल, हर इंसान की लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आता है जब वो नीचे जाता है, एंड इट्स नॉट अबाउट सर्कमस्टेंसेस, इट्स नॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स, इट्स सिंपली अबाउट हाउ यू बाउंस बैक। एंड टुडे वी हैव द सेम स्टोरी। भुवन की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे और भी जो उस सिमिलर फेज से गुजरे हैं, शायद वो नहीं उठ पाते हैं इजीली या नहीं निकल पाते हैं। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, बट हाउ ब्यूटीफुली ही हैज परसीव्ड दैट एंटायर थिंग, एंटायर सिचुएशन, और कितना ब्यूटीफुल तरीके से इतना पॉजिटिवली अपनी लाइफ को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। सो वी गोना टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, लेकिन सबसे पहले भुवन का स्वागत करेंगे। सो हाई भुवन, वेलकम टू आवर शो।
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
0: एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू, प्लीज टेल आर लिसनर्स एंड टेल मी एग्जैक्टली आप क्या करते हो, क्या डोमेन है, क्या पैशन है, क्या क्या चीज़ें आपने करी हैं लाइफ में, जो भी ओवरऑल जर्नी रही है।
1: ओके, सो आई हैव कम्प्लीट माई कॉलेज इन 2017।
0: ओके,
1: सो सिंस देन आई एम वर्किंग, आई हैव वर्कड इन लाइक फोर डिफरेंट कंपनीज। फर्स्ट कंपनी वॉज इवेंट कंपनी फॉर 4 years, देन आई वेंट इन गेमिंग इन Roblox, where I used to test games, then I used to moderate the games. Then after that, I went for sales. Then again, I switched it according to the circumstances. I went for US banking. Then after 2 years, I met with an accident after that only.
0: Yeah, we're going to talk about the accident part, but I just want to know the Bhuvan side more as of now. Bhuvan, so,
1: okay.
0: You said that you love DIY, yes. You love creative stuff, and you showed me the aquarium. So I'm interested in knowing ki what exactly does it change within you? Matlab ye jo curiosity hoti hai ek insaan mein, creative jo field hota hai, obviously this is a creative side of you. Okay, kya change karta hai ek insaan ke andar ye? So that people should know this ki creativity, it's not just about the money part or the fame part. It does more than that in your life.
1: Like, when I find something DIY, it makes me feel like I can make something out of nothing. So, even if I find any scrap metals or like even broken LEDs, I can make something out of it. Like, when I was small, I used to find like small glasses at home. I patched them up, I made my own aquarium from scratch.
0: Okay.
1: So that became a hobby. I made terrariums for friends, for myself. Then I went into gaming again. Like, that's my oldest passion, for games. Still I play games. And like, when you do creative things, like, you're at your peace. Like, there's no disturbance. So it's like my zone.
0: So amazing. There are so many people out there, ठीक है, जिनको society बोलती है find your passion. Sometimes it's always against the passion, ठीक है, it works two ways. I'm interested in knowing कि what if someone doesn't even know about their passion, what should they do? जिसको पता ही नहीं है मेरा passion क्या है, उसको क्या करना चाहिए to discover their true passion?
1: They should go on a solo trip. Like, they'll find themselves, like, what they are lagging in. They'll get more exposure, they'll understand the world more better way, instead of like people telling him what to do, what not to do. That time he'll get to know like what he should do at the end. When you face the reality and it hits you very hard, then your instincts comes in and you know, yes, I should do this, and this is the right way to do it. then nobody is helping you. Your instincts will tell you and you'll feel good that at least you have done something on your own.
0: Yeah, so amazing. So the bottom line is कि अगर आपको नहीं पता आपका passion क्या है, just go on a solo trip, अकेले निकलिए अपने घर से. उसका एक बहुत logical एक explanation ये भी हो सकती है कि जब आप अपने घर से निकल के अकेले जाते हो तो 50 तरह की अलग problems आती हैं जिनको आपको instantly fix करना होता है, and you will realize about yourself कि आप कहाँ पर आपके emotions ज़्यादा हावी होते हैं, कहाँ पर आपका rational mind ज़्यादा हावी होता है, क्या चीज़ें करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है और कौन सी चीज़ें आप कभी नहीं करना चाहते हो. Things work this way. फिलहाल इसी नोट पर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे. भुवन हमारे साथ हैं एंड ट्रस्ट मी दिस इज द ट्रेलर ऑफ इट. अभी आगे हम कहानी को और थोड़ा अनफोल्ड करेंगे और लेयर्स की बात करेंगे. विल टेक इट अहेड, बट फिलहाल मजा लीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक का. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक मैट सागर शो, यहाँ पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आप लोग इस टाइम सुन रहे रेडियो मारवाश 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। शो बहुत खास है, हमारे साथ भुवन यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में। भुवन के बारे में अभी तक हमने बात करी है और बेसिक चीज़ें डेवलप करी हैं कि भुवन का एग्जैक्टली पैशन क्या है, क्या चीज़ें करते हैं, क्या इनको इंस्पायर करती हैं एंड एग्जैक्टली क्या इनका डोमेन रहा है। भुवन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनके पैर को चॉप ऑफ करना पड़ा और करने का डिसीजन उनके हाथ में छोड़ा गया था, बट ही चोज दैट पेनफुल थिंग कि निकाल दो, दैट इज द थिंग। भुवन, मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक्सीडेंट से, बताइए क्या था वो दिन, क्या था वो इंसिडेंस एंड कैसे हुआ और उसके बाद का टाइम कैसे रहा, सब कुछ मैं जानना चाहूंगा।
1: मेरा जैसे ही प्रमोशन हुआ था लास्ट जॉब का, उसके जस्ट वेरी नेक्स्ट डे आई वाज मीटिंग करके वापस घर आ रहा था अर्ली मॉर्निंग 5:30। तो जिस रास्ते

0: से मैं आ रहा था, उसके ऊपर वाला फ्लाईओवर रेनोवेट हो रहा था, तो मैं पहली बार नीचे से आया। नीचे बहुत सारे कट्स हैं, तो एक रेड लाइट पे मैं रुका और जैसे ही वो ग्रीन लाइट हुई मैं आगे बढ़ा। मैं आई वॉज नॉट इवन लाइक अबव 5 or 10, उतने में लेफ्ट साइड से एक ट्रक आता है स्पीड से और एकदम से वो चढ़ाता हुआ निकाल देता है। मेरे पैर पे बाइक गिरती है, वो बाइक के ऊपर से ट्रक निकाल देता है। अगर वो देख के मेरे को बाहर भी खींच के निकाल देता तो मैं बच जाता शायद। आई नो उसने भगा दिया डर के मारे, क्या किया, तो आई पेड द प्राइस, ही डिड, सो आई पेड अ वेरी बिग प्राइस। सो एंड नोबडी केम टू सेव मी ऑल्सो ऑन द रोड। सो बिफोर फेंटिंग आई कॉल्ड माई मॉम एंड माई ब्रदर, सो दे केम फ्रॉम फरीदाबाद टू नोएडा टू पिक मी अप एंड दे टुक मी टू द हॉस्पिटल, नॉट द पीपल हु आर वॉचिंग मी, इन नॉट इवन द पुलिस, दे लाइक नोबडी डिड नथिंग। सो माई फैमिली केम, दैट्स वाई लाइक बेटर देन एनी वन योर फैमिली शुड लाइक बी द फर्स्ट प्रियोरिटी।
1: कब की बात है?
0: लाइक 2024
1: 5th मे, एग्जैक्ट 2 साल पहले की।
0: यस,
1: ओके ओके ओके। ये 2 साल कैसे रहे?
0: लाइक वेरी वेरी पेनफुल, लाइक आई वॉज इन अ वेरी डार्क होल और डिच, लाइक आई डेंट वॉन्ट टू लिव, वैसा हाल था। लाइक आप रोज पेन में हो, आपके पैर पे पट्टियाँ चिपकी हुई हैं, उसे कोई ऐसे फाड़ रहा है, फिर उस पर कुछ थिनर डाल रहा है, ऐसी जलन भी हो रही है साथ में, और हड्डियाँ टूटने, आपका हल्का सा भी कुछ भी बॉडी पार्ट हिलता है, यू कैन फील द क्रैकलिंग ऑफ योर बोन्स, नॉट इवन हेयर देम, इट वॉज दैट पेनफुल। और ऐसा 1.5 साल तक हुआ मेरे साथ, क्योंकि आफ्टर फ्यू मंथ्स पेन किलर बंद कर देते हैं। तो आई वेंट थ्रू वेरी डार्क पैच ऑफ माई लाइफ, लाइक बट वेंट ओवर इट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, दे डिडन्ट लूज द होप एंड दे डिडन्ट लेट मी ऑल्सो लूज इट। तो लाइक हाँ, इवन मैं अपने दुश्मन को भी नहीं चाहूंगा ऐसा हो उसके साथ, इमेजिन इट वॉज दैट पेनफुल।
1: What kept driving you? What kept you positive?
0: Like after 3 months when I got my conscious back, so I started thinking like if this pain ends, what will I do? So I made a bucket list that I have to do so many things. So I've like thrown that bucket list also again and again. Because of the pain ki I don't want to live anymore, but whenever I used to see that list, like there was a hope that I have to do many things still. It's just one leg, I still have another leg with me. I know it's very painful, like couldn't help myself also sometimes. I used to cry, shout, people were holding me down. I went through it, I have to, because I have no other choice. I had to, for my family also.
1: The reason why I'm asking this question is कि हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ पर छोटी सी भी चीज़ होती है, हमें लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ देर इज नो वे दैट आई कैन लिव। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देर वॉज अ गर्ल, शी यूज टू क्रिएट कॉन्टेंट, शी वॉज अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड शी वॉज चेजिंग मार्क ऑफ 1 million फॉलोअर्स एंड शी गॉट ऑलमोस्ट 300K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, बट ऑल ऑफ सडन समथिंग हैपेंड दैट हर फॉलोअर्स स्टार्टेड अनफॉलोइंग हर, आई डोंट नो व्हाट वाज द पैटर्न। She literally died by suicide just because of this one thing, that I am not able to reach 1 million followers. And that is a real case of Gurgaon, of a content creator. I am not even taking the name of her. But so I see these edges of life. There are different phases. And you are coming from that black hole of life. Like there was no hope. Nothing was left in you. And probably अगर आपने वो भी नहीं किया होता शायद वहां से बाहर ना आते, शायद हम भी ना मिलते, शायद यहाँ पर ये शो भी ना हो रहा था, ये बात भी ना होती थी, और ये लोग जो सुन रहे हैं आपको ये भी ना सुन रहे होते। That's a beautiful thing. You did it. But I just want to know the mentality. कि how? Because 2 साल sum up करने में 2 साल हैं, but actually उसको देखा जाए तो 650 से ज़्यादा दिन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके ऊपर बहुत आवी रहा होगा। So I'm interested in knowing that mindset. That, I don't know how to say it, that eagle mindset. That okay, I'm bouncing back. What drove you in that phase?
0: Like my mother, I can say that. Like she was the only one who was with me 24 hours, and she was going through so much pain, even though I wanted to end my life in between, but I've already seen her like crying in front of me, so I don't want to see her cry again just because of me. I still have life left in me, so I want to make her happy again. Like, I don't want her to that you failed yourself. No, I don't want her to do that. That's why I want to live for myself and for my mother, that you did everything perfectly, you are the perfect person. So I don't want to fail you, so that's why I have to. That was my have to, like, do it. Couldn't back down from it. If your mother is there and crying, something like lights up in you, na, you can't go back.
1: So amazing, yeah. So amazing. And the way how you bounced back is just exceptional. More power to you, and more power to Mataji, more power to Aunty Ji. Genuinely from heart, man. Salute to her. And this courage has to be there. मतलब bottom line यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पड़ाव चल रहा है, कोई भी ऐसा phase चल रहा है, if you're getting a rough patch, just remember this thing कि यार आपको एक hope ढूँढनी है. Okay, let's take it this way. आप बोल रहे हो कि मेरे को ना यार, मैंने देखना 100 दरवाजे 100 doors को मैं knock कर चुका हूँ, एक भी दरवाजा नहीं खुला है. ठीक है, but यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक दरवाजे को खुलना है. अब 100 करें, 200 करें, 500 करें, सिर्फ एक दरवाजा खुलेगा, life completely change हो सकती है. So take it this way, don't do regret of not opening the 100 doors, just be hopeful for that one door जो कभी खुल सकता है. Just think about it, and that's how life works. तो मैं ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. मैं आज का शो बहुत अलग जा रहा है मेरे लिए, और आप भी ये चीज़ महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं एक बहुत अलग फेज में हूँ आज. आज मैं सिंपली उस एक माइंडसेट को देख रहा हूँ, जीवन को देख रहा हूँ, जीवन की खूबसूरती को देख रहा हूँ, जहाँ पर आपके पास 1000 वजह हैं गिव अप करने के लिए. जहाँ पर आप कह रहे हो कि जॉब चली गई है, एक पैर आपका चॉप ऑफ हो गया है, ठीक है, आपके पास वजह नहीं बची है, आप दुनिया से कट ऑफ हो गए हो, यू आर अनश्योर अबाउट योर फ्यूचर कि चल पाओगे, उठ पाओगे, क्या होगा. बट डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज थिंग्स, यू आर स्टिल होल्डिंग द हैंड ऑफ लाइफ, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट इट, कि लाइफ इन इटसेल्फ इज द most important thing within life. That's how it works. Just remember this. फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भाई साहब यहाँ उठ के आए हैं, एग्जैक्टली ये कैसा फेज है, आगे क्या प्लान है, और कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे पास, मैं डेफिनेटली यहाँ पर जानूंगा. बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए गानों का.

0: वंस अगेन वेलकम बैक, आई एम आरजे सागर। शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ, आप लोग सुन रहे हैं स्ट्रीम रेडियो 107.8 एफएम। मिस्टर भुवन हमारे साथ हैं और बहुत सारी बातें अभी तक हम कर चुके हैं। एक्सीडेंट की बात कर चुके हैं, क्या हुआ, कैसे वो वहां से निकल के आए, क्या वो होप थी, कैसे वो उसको होल्ड ऑन करके रहे, उस लाइट को पकड़ के रहे और यहां तक पहुंच पाए। अब आगे बात करना चाहूंगा। नाउ यू आर बैक ऑन द ट्रैक, सो टेल मी अबाउट योर करंट लाइफस्टाइल। आप क्या करते हो?
1: जब ये चॉप ऑफ हुआ, उसके 4 मंथ बाद से आई स्टार्टेड वॉकिंग, क्योंकि मैं चाहता था मेरी मॉम भी जाए जिम, और मॉम अकेले जाएंगी नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा भी करा रही हूँ तो साथ चल। तो शी टुक मी टू द जिम विद हर। सिंस देन आई हैव लॉस्ट लाइक 19 kgs इन 2 मंथ्स, एंड आई एम गोइंग स्विमिंग एवरी डे, एवरी सेकेंड डे और एवरी डे वेन एवर इट्स एम्प्टी। एंड I'm doing UI UX designing course. In few months it'll be over and join a good company also. With that I'm doing freelancing for my friends, like doing content creation, making some templates or PPT, anything.
0: And you're going to the gym?
1: Yeah, and I'm riding that same bike.
0: Are you afraid of anything?
1: Nope. Except my mother, nothing.
0: Okay, tell me about it. 2 saal pehle aapki jo आपका एक नजरिया रहा होगा, यू मस्ट बी हैविंग योर प्लान्स, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर।
1: यस,
0: ठीक है, लेकिन अचानक से लाइफ ने आपको बोला सब चेंज, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, कि पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया, ठीक है, यू वेंट टू दैट होल जहां से आप निकल के आए हो। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ नाउ?
1: लाइक आई शुड लिव इन प्रेजेंट, नॉट टेक, लाइक नॉट ओवर थिंक अबाउट फ्यूचर और माई पास्ट। Like, don't even think about your past, just be in the present right now, because you don't know about future, you can't predict that, so don't waste time on thinking of that, enjoy present, so you don't have to fly also straight like rocket, but be on the road, on the ground, just go slow.
0: And how to make it happen, how to live in the present? सुनने को बहुत कुछ मिलता है, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मैं भी जीना चाहता हूँ, बट मैं अपने दिमाग के कंट्रोल में, दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मेरा दिमाग भागता है। बट यू मस्ट हैव कंकर्ड दैट पार्ट, इफ यू कैन शेयर समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट।
1: डू थिंग्स व्हाट आर राइट फॉर यू एंड योर फैमिली, नॉट फॉर योर फ्रेंड्स। लाइक दे'ल टेक यू टू अ डच एंड दे'ल एंजॉय एंड थ्रो यू देयर, यू वोंट इवन नो। Like in this accident, I got to know the people who are with me and who are not with me. That was the biggest life change I had. Itne logon ko maine blindly dekha hai ki trust kiya sabko, sab kuch de diya ki ghar walon ko chhodo ki main iski madad karke aata hu. Jab mujhe zarurat thi tab koi bhi nahi tha, not even the one, that single person jisko main hamesha count karta tha. To tab bahut bura laga tha mujhe. Fir uske baad ghar walon ne bola, dekh tere ko samjhaya tha कि लाइक अपने पे ध्यान दे, लोग तेरे पे आएंगे ना कि तेरे को जाना पड़ेगा लोगों के पास। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ, लाइक अपने पे ध्यान दे रहा हूँ, स्किल्स अपग्रेड कर रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल चूज किया है इंस्टेड ऑफ पार्टिंग एवरी वीकेंड, एंड लाइक एंजॉयिंग द पीसफुल एंड शॉर्ट शॉर्ट मोमेंट्स विद फैमिली।
0: ओके, वन मोर थिंग, पीपल टेक हेल्थ फॉर ग्रांटेड।
1: यस,
0: अपनी लाइफ को मतलब हमेशा लगता है कि दिस बॉडी इज इमॉर्टल, ठीक है, एंड वी हैव बीन अब्यूजिंग इट, वी हैव बीन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर देयर, ठीक है, जिनको लोग ऐसे यूज करते हैं, एंड दे आर नॉट वर्किंग आउट, दे आर नॉट इवन मूविंग, ठीक है, दे आर जस्ट यूजिंग द जंक फूड, दे आर कंज्यूमिंग एवरी सिंगल डे, एंड योर लिवर इज लाइक आई एम गिविंग अ ब्रो, आई एम गिविंग अ ब्रो, आई एम गिविंग अ ब्रो, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। व्हाट डू यू वांट टू से टू दैम, द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी?
1: Like I've seen my dad doing all that. Like a bottle a day, it's a very bad for you, a whole bottle. So I've seen him, he also have lost his leg because of diabetes, he still was smoking and drinking, but at the end he has to give up, otherwise he'll die. And then he left everything, now he's so healthy, like he was not, matlab itne healthy nahi the wo kabhi bhi. तो फिर मेरे को उनको देख के भी थोड़ा सीखने को मिला कि आई शुड ऑल्सो स्टॉप एवरी थिंग, थोड़ा सा हेल्दी लाइफ लो, बहुत बहुत जी लिया हम तो 15 साल से ही कर रहे हैं, तो अब थोड़ा हेल्दियर लाइफ लिया है तो अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और रोज़ जिम जाके भी अच्छा लगता है अब। कि लाइक थोड़ा हल्का फील होता है रोज ही.
0: एंड ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लिसनर्स को, वापस से बोलता हूँ कि आपको बाहर की अगर नशों की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि आपको जीवन का जो जिंदगी का असली नशा है वो आपको अभी चढ़ा नहीं है. ठीक है, वो नशा होता है कुछ सीखने का, नशा होता है कुछ करने का, नशा होता है कि एक मिशन सेट करने का, उसके ऊपर निकलने का, उसको अचीव करने का. वो नशा सबसे अच्छा होता है. थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो, कि उसका रिटर्न थोड़ा लंबा होता है. इंस्टेंट डोपामाइन आपको नहीं देता है वो, बट देयर हैज़ टू बी अ मिशन. आई मीन दैट्स द बॉटम लाइन, कि हर एक इंसान के पास अपना एक मिशन होना चाहिए. अब क्या चीज़ कर रहे हो, व्हाट्स द प्लान?
1: Ab I'm changing for like more skills. Like even I have no job now, still people will come to me for my skills. So I'm looking for that. Like AI is getting like big now. So I'm going in AI and app developments. Doing everything home. Like I don't have to pay nothing. Everything is on online only. So I'm putting my head and work over there now.
0: Aren't you afraid of it? कि आप swimming वगैरह जाते हो तो.
1: Yeah, first day I was like, what if I drown? It's already like 8 feet deep. So I went in, I tried. It was like, I can feel my left leg, which is not there. I could feel it. And I was doing normally, better than other people who was, they have both the legs. So since that day, I'm doing swimming now. Even my mother was skeptic, like, tum nahi kar paoge. Maine kaha, at least try to karke aaun. Kya pata ho gaya to? At least मेरी ये प्रॉब्लम मतलब अंदर से निकल जाएगा कि ये नहीं हुआ तो कोई नहीं, लेकिन हो गया अब उसको. अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है.
0: ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एज पर यू?
1: स्ट्रॉन्ग फ्रॉम माय साइड, स्ट्रॉन्ग शुड बी लाइक मेंटली स्ट्रॉन्ग. पर्सन शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, नॉट फिजिकली.
0: एक्सप्लेन.
1: लाइक like you have fallen down very badly, उठने के लिए physical strength लगती है, लेकिन उस physical strength को आपका mind push करता है. तो उसके लिए mentally you have to be very strong. Like my dad, he is very scared of falling while walking on his prosthetic leg. So I always motivate him that I am with you. So when I am not there also, no, he is also trying. He like mentally he has like taught himself now. Like it's like re-engineering of your body or muscle. It works in that same way. Like you have to mentally be very strong. कोई तुम्हें कुछ भी बोल देगा, रोड पे देखते हो आप लड़ाइयाँ होती रहती हैं आजकल, कोई कुछ भी बोल देता है और फिर बस फट जाते हैं दोनों तरफ से लोग. मतलब वो दिमाग से स्ट्रांग है ही नहीं. जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो शांति से सुनते हैं और देखते हैं विच इज़ द पीसफुल वे एंड द राइट वे. दे चूज दैट, not the wrong way, which is short.
0: So amazing. और यहाँ पर मुझे जावेद साहब की बात याद आ रही है. मतलब जावेद अख्तर साहब ने, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, एंड ही सेड दिस ब्यूटीफुल थिंग कि आपकी गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो एक स्मूथ रोड के लिए नहीं होते हैं. स्मूथ रोड पे आपके नॉर्मल टायर चल रहे हैं, ठीक है. आपकी गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो रफ एंड टफ रोड जो होते हैं वहाँ के लिए होते हैं. जब गाड़ी ऊपर नीचे ठप ठप ठप होती है, जब आपको लगता है कि नॉर्मली काम नहीं हो पाएगा, वहाँ पर शॉक एब्जॉर्ब होता है वहाँ पर. तो एग्जैक्टली आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है, आपकी जो मेंटल टफनेस है या जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो वहाँ पर दिखती है जब रफ एंड टफ कुछ जा रहा है लाइफ में, ठीक है. स्मूथ रोड पर तो सब स्ट्रांग होते हैं. स्मूथ जब लाइफ चल रही है तो हर एक इंसान के पास स्ट्रेंथ है, वो होता स्ट्रांग भी है. बट दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, कि जब रफ एंड टफ कुछ होता है तो वहाँ पर आप कितना अच्छे से कोप अप कर पाते हो. आई एम डन विद माई क्वेश्चन भुवन. कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया और आप कहना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री.
1: नथिंग, जस्ट डोंट लूज होप. चाहे आप कितने भी नीचे जाओ, जॉब छूट जाए या लड़ाई हो जाए किसी से, शांत रहो, ठंडे दिमाग से सोचो, सब अच्छा ही होगा आगे वैसे भी.
0: होप इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि होप, आपके पास सब कुछ खत्म हो गया लेकिन अगर होप है तो आप बाउंस बैक कर लोगे. होप हैज टू बी देयर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर भुवन. इट मींस अ लॉट टू अस. इट मींस अ लॉट रियली. आई अप्रिशिएट इट.
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी.
0: थैंक यू. एंड आई जेन्युइनली वांट टू से ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर फैमिली ऑफ दिस वर्क स्पेस एंड फैमिली ऑफ लिसनर्स, प्लीज डू वेल एंड जस्ट कीप दिस पॉजिटिव एरा ऑलवेज. ओके, दिस इज सो इंस्पायरिंग टू मी एज वेल. मतलब आप मेरे जनरली शो सुनोगे इस तरह के नहीं होते हैं. आज का शो मेरा बहुत अलग हुआ है क्योंकि मैं बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है, एक जोन में हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पॉजिटिव वो मिला है आज कि मैं हर चीज़ को रीथिंक कर रहा हूँ, एंड आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू फॉर कमिंग यार.
1: मोस्ट वेलकम.
0: थैंक यू. अरे दोस्तों, वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का. भुवन से आज मैंने बात करी और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो एक एनर्जी है जो यहाँ पर अभी जनरेट हुई है, भुवन जब यहाँ पर बैठे, भुवन ने जो बातें करी वो आप तक कन्वे हो पाई है. फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन अब मुलाकात होगी हमारी अगले हफ्ते. अपना ख्याल रखिए. खैरियत से रहिए. दिस इज आरजे सागर, साइन ऑफ.

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

इसके पौधे को उकठा रोग से बचाने के लिए 6 से 7.5 pH मान की मिट्टी उपयुक्त होती है। इससे ज्यादा pH मान होने से उकठा रोग की संभावना बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं अमरूद की खेती के लिए मौसम कैसा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, अमरूद को गर्म और ठंडे दोनों मौसम में उगाया जा सकता है। ये 50 डिग्री तक का तापमान भी झेल लेता है और ठंड को भी बर्दाश्त कर लेता है। वैसे इसके लिए शुष्क मौसम भी अनुकूल होता है। सर्दियों में फल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी गर्मी के मौसम की नहीं हो पाती है। तो ये बात तो हो गई मौसम के बारे में, मिट्टी के बारे में। अब बात होगी उन्नत किस्मों के बारे में। अच्छी किस्मों का अगर आप चयन करते हैं तो आपकी फसल अच्छी होती है और लाभ भी आपको अच्छा ही मिलता है। करेंगे उन्नत किस्मों की भी बात करेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। देखिए किसान भाइयों, अगर हम अमरूद की किस्मों की बात करें तो सामान्यतः अमरूद की 5 या 6 किस्में आती हैं। इनमें प्रमुख रूप से इलाहाबादी, सफेदा, एप्पल कलर, चित्तीदार, सरदार, ललित और अर्का मृदला। अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत में अमरूद की प्रसिद्ध किस्में इलाहाबादी, सफेदा, लाल गूदे वाला, चित्तीदार, करेला, बेदाना और अमरूद सेब हैं। अब बात आती है दोस्तों कि अमरूद को उगाने का तरीका क्या है, तो वो भी सुन लीजिए। अमरूद को पौधे लगा के उगाया जाता है। इसकी भट कलम विधि से भी अच्छी पौध तैयार की जाती है। कलम के द्वारा तैयार किए हुए पौधे को एक तरह की पॉलिथीन होती है ना, उसमें कलम वाली जगह पर कवर कर दिया जाता है और जब कलम फूटने लगती है तो ऊपर का भाग अलग कर दिया जाता है और उस कपोल को विकसित होने देते हैं। कलम की विधि जून और जुलाई महीने में की जाती है। इसकी खास बात यह है किसान भाइयों कि इस महीने की 70-80% कलम सफल हो जाती है। लेकिन एक और यहाँ पर प्रश्न आता है कि अमरूद के पौधे लगाने का सही समय कौन सा होता है, तो उस समय की बात होगी और ये पौधे आपको कहाँ मिल सकते हैं वो भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, अमरूद के बारे में आज आपसे बात हो रही है। अब बात आती है कि इसको लगाने का समय कौन सा ज्यादा अच्छा माना जाता है। देखिए, सामान्यतः किसी भी पौधे को लगाने का सही समय मानसून में ही होता है। ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय पौधों के लिए मौसम अनुकूल होता है और पौधे अपनी जड़ें आराम से पकड़ लेते हैं। इसलिए अमरूद के लिए भी जुलाई से अगस्त का समय मुफीद होता है, बेहतर होता है। वैसे अगर सिंचाई की व्यवस्था हो तो आप इसको फरवरी से अप्रैल के बीच में भी लगा सकते हैं। वो समय भी पौधों के लिए मुफीद होता है, फायदेमंद होता है। अब बात आती है पौधे मिलने की जगह कहाँ है। भाई देखिए किसान भाइयों, आजकल सरकार भी आप लोगों की आय बढ़ाने पर काफी जोर दे रही है। इसकी वजह से सरकार भी पौधे फ्री में दे रही है, और नहीं तो आप किसी नर्सरी से भी पौधे ले सकते हैं और अमरूद के पौधे की फसल उगाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही देर में आपको बताऊंगा अमरूद के पौधे लगाने की विधि क्या होती है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं अमरूद के पौधे को लगाने की विधि के बारे में। देखिए किसान भाइयों, अगर आप बारिश के मौसम में पौधे लगा रहे हैं तो करीब 25 दिन पहले 2x2x2 यानी 2 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसे कुछ दिन खुला छोड़ दें। कुछ दिन के बाद उसमें गोबर की बनी खाद, फॉस्फेट, पोटाश और मिथाइल मिला के गड्ढे को ऊपर तक भर दें और या तो सिंचाई कर दें या उस पर एक बारिश निकलने दें, जिससे कि खाद गड्ढे में रम जाए और उसके बाद पौधे लगा के फिर सिंचाई कर दें। गड्ढे से गड्ढे की दूरी 5 या 6 फुट की रखें। इससे अमरूद के पेड़ को फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर अमूमन बोला जाता है कि जिस पेड़ पर फल आते हैं वो झुका हुआ होता है। अमरूद के लिए ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। इसकी डालियों को नीचे की तरफ बांध दिया जाता है, जिससे कि इसमें फूल और फल ज्यादा आता है। अमरूद के पौधों की कटाई करके उन्हें छोटा रखा जाता है ताकि फल अच्छा आए और आपको अच्छा फायदा हो। लेकिन किसान भाइयों, आपको अच्छा फायदा तभी होगा जब आप अपनी किसी भी फसल को किसी भी तरह के रोग से दूर रखेंगे। तो अमरूद के रोग कौन कौन से हैं और उन रोगों को भगाने के उपाय क्या क्या हैं, ये बात भी आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, बात हो रही है अमरूद के बारे में। अब देखिए, आप कोई भी फसल बोते हैं अपने खेत में तो कुछ रोग होते हैं उसमें लग जाते हैं। अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते तो आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। अमरूद की अगर हम बात करें तो अमरूद में भी कुछ रोग हो जाते हैं। अमरूद में सामान्यतः रोग ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इस फल की मिठास की वजह से इसमें कीड़ा निकलने, उगटा रोग और तना भेदक रोग लगने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, पौधे में नीचे चूना, जिप्सम और खाद मिला के लगाएं। तना भेदक के लिए पेड़ के तने के छेद में मिट्टी का तेल डाल के गीली मिट्टी से बंद कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अमरूद के किसी भी पेड़ को कोई रोग लगेगा नहीं और जो फल होगा वो फल बेहतर से बेहतर आएगा और आपको लाभ बेहतर से बेहतर मिलेगा। अब इसी बेहतर बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की, संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की? इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गोंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गोंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।
1: पल भर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त वहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

गुजरे कैसे बता आचारे आज जरा आ लहरकिया जरा आंखों से दिल में समा आचारे आ।

0: से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी, गुटका, जर्दा, पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
2: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
3: जरूरत है हर बच्चे को प्यार की, प्यार से बात की, चाहे हो सामान्य या हो विकलांग। उन्हें पंख दो और उन्हें उड़ने दो, तथा कथित अनुशासन के नाम पर पंख नोच न डालो, कतर न डालो, कभी यह कर कभी वह। उनका दिल टूट जाए चाहे, पर अपना अहम टूटने न पाए। दायरे बांध कर बना दोगे तुम उसे गिलास सा या किसी मर्तबान सा। जाने वो क्या बन सकता था, शायद सागर, आकाश, धरती या क्षितिज। सूरज सा चमक सकता था, चांद सा दमक सकता था, सितारों सा झिलमिला सकता था, पर तुमने अपने तथा कथित अनुशासन में बांध उसे बना दिया सिर्फ मर्तबान, सिर्फ मर्तबान, सिर्फ मर्तबान।

0: हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर आज तक की रिलीज फिल्म के गीत, गजल, भजन, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी, शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों। और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं या कैसा लग रहा है आपको रेडियो मानव रचना और सृजन भी, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी बेहदी बेहदी बेहदी खास मेहमान है नेहा अरोड़ा जी। आप कथाकार हैं, आप कविताएं लिखती हैं, आप लेखिका हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत कुछ काम कर रही हैं आप समाज के लिए, देश के लिए। नेहा अरोड़ा जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर इस रेडियो में। और इस शो का नाम भी इतना खास है, सृजन, जो हर चीज से जुड़ा हुआ है, तो वो है धन्यवाद मुझे यहाँ पर।
0: क्या बात है नेहा जी, जो हमारे दोस्त आप लोगों से जानना चाहते हैं, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आपके लेखन की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा?
1: तो लेखन तो मेरा बहुत, जब मैं छोटी थी तो तब से ही चालू हो गया था। पहले तो जब घरों में बिजली बहुत जाती थी तो छोटे से बच्चे होते थे तो रात शाम होते ही बाहर चारपाई बिछ जाती थी, और चारपाई पे लेटकर बादलों को देखते हुए मैं कितनी ही कहानियां बुनकर अपनी मम्मी को, दादी को सुनाती थी। उल्टा
0: क्या बात है, क्या उम्र रही होगी आपके, आपको याद है?
1: और ऐसी रही होगी 7-8।
0: आपने तो मुझे अपने बचपन की याद दिला दी, मेरा भी यही था कि मैंने पहली बार जो मेरी रचना आई थी अपनी दादी को कहानी मैंने सुनाई थी, उनकी ही कहानी उनको सुनाई थी।
1: तो वो सुना, उन्होंने मुझे सुनाई और मैं बना बना के उन्हें पता नहीं कहाँ कहाँ की कहानियां सुनाती थी। लेकिन जैसे होता है हमारे समाज,
0: आपकी शुरुआत वहीं से हुई।
1: हाँ जी,
0: आपको याद है किस विषय पर आपकी कहानी थी?
1: शुरू की कहानियां तो हर तरह से चलती थी, तो मुझे लगता है कि बचपन में तो वो बंदर और उन सब की कहानियां भी बहुत हैं, बादलों में जो शेप्स बन रही हैं उनकी कहानियां बहुत हैं। पर थोड़ा बड़े होते होते मेरी कहानियां ऐसे भी पक्षों को छूने लगी थी कि मेरे पापा को लगता था भाई ये तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, तो इतना सीरियस नहीं लिखना है। और पढ़ाई और इन सब चीजों में जैसे हमारे समाज में होता है कि थोड़ा लिखना और उसमें समय देना कम हो जाता है, तो कम भी हो गया था। पर दोबारा परिचय हुआ जब मेरा बेटा छोटा था। तो जब मेरा बेटा छोटा था और कोरोना आया,
0: कोरोना काल,
1: तो उस समय सब बच्चे सब कुछ छोड़ के टीवी और यूट्यूब, क्योंकि पूरा दिन था उनके पास, उस समय पर ये कहानियां दोबारा सृजन दोबारा सृजन होना शुरू।
0: किस विषय पर आपने पहली कहानी लिखी थी, आपको कुछ याद आता है?
1: बड़े होने के बाद तो अब ये बच्चों के लिए ही मैंने लिखी है, तो उसके साथ जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो मेरी
0: कहानियां भी बड़ी हो रही है।
1: बड़ी हो रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहाँ शुरुआत हुई थी कि नानी का घर और स्पेस में एलियंस जा रहे हैं, तो उस तरह की बाल मनोविज्ञान की कहानियाँ, बच्चे के दांत जब टूटते हैं तो वो क्या क्या सोचता है, और टूथ फेरी होती है या दांत को मिट्टी में गाड़ना है,
0: बचपन में आप ले गए।
1: इस तरह की कहानियाँ रही, और थोड़ा बड़े होते होते मिस्ट्री और थ्रिलर वाली कहानियाँ बच्चों के लिए। तो
0: आप क्या देना चाहेंगी, कहानी कविता क्या देना चाहेंगी शुरुआती तौर के हमारे दोस्तों को?
1: तो फिर जब बच्चों की इतनी बात हो रही है तो बच्चों से ही शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल स्वागत है, आपका ही शो है, आपकी ही बातें, आपकी ही रचनाएं, आपके ही पसंदीदा सॉन्ग चलेंगे यहाँ पर। तो आज
1: तो अभी हमने इतने सारे बिल्कुल ही अभी छोटे बच्चों की बात करी है, तो एक बाल रचना जो अभी थोड़ी दिन पहले लिखी थी उससे शुरुआत करती हूँ, जिससे शायद सुनने वालों को मजा भी आएगा उसमें थोड़ा।
0: स्वागत स्वागत।
1: सीधी होती अगर जलेबी, सीधी होती अगर जलेबी होती क्या इतनी अलबेली, ऐठी ऐठी सी रहती शायद, ऐठी ऐठी सी रहती शायद, बनती ना पोहे की शारगत।
0: क्या बात है,
1: रबड़ी उसको एक आंख न भाती, सबसे ही वो दूरी बनाती।
0: क्या बात है,
1: हो ना पाए ये कारनामा असबरदीन जानकी माता।
0: हम भी अगर
1: बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते।

0: వెల్కమ్ అగైన్ టు రేడియో మానవ రచన విత్ ఫీల్ గుడ్ ఫీల్ లైవ్ 107.8 FM పర్ ఆప్ హై మాధురి కే సాత్ ఔర్ మాధురి హాజిర్ హై ఆప్కి మహఫిల్ మే ఏక్ బార్ ఫిర్ సే సృజన్ లేకర్ ఔర్ ఆజ్ హమారే సాత్ హమారీ వెరీ వెరీ ఖాస్ మెహమాన్ హై కవిత్రి హై లేఖికా కథాకార్ ఉపన్యాసకార్ స్టోరీ టెలర్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ క్యా క్యా హమ్ ఉన్కే లియే కహే నేహా అరోడా జీ ఆప్కా స్టూడియోస్ మే ఫిర్ సే బహుత్ బహుత్ బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ హై
1: ఫిర్ సే బహుత్ ధన్యవాద్
0: नेहा जी, अभी आप कह रही थी कि आपके बेटे को आपने कहानियाँ सुनाने के लिए आपने दोबारा कहानियाँ लिखनी शुरू की और स्टोरी टेलर वाला एक आपके भूमिका में आप आ गई. तो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं बच्चों को, बच्चे लगातार सोशल मीडिया पर बिजी हैं, कुछ देख रहे हैं, पढ़ना लिखना वो छोड़ चुके हैं, कहानियाँ भी नहीं सुनते हैं. तो आपने तो बहुत काम किया है इस फील्ड में कि बच्चे कहानियाँ सुने, किताबें पढ़े, तो गुजारिश होगी सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए.
1: जी बिल्कुल माधुरी मैम, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है तो इसके ऊपर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है.
0: जी जी.
1: तो जब मैंने बेटे को कहानियाँ सुनानी शुरू करी तो उस समय मैंने कहानियाँ रिकॉर्ड भी करना शुरू करी और एक पॉडकास्ट हमने उस समय बनाया था जिसका नाम था फन स्टोरीज फॉर किड्स.
0: अच्छा.
1: तो सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं, मेरे जो दोस्तों के बच्चे थे जो कि लगभग उसी उम्र के थे, उनको भी वो कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था. और मेरा खास जो फोकस था वो इसी चीज पे था कि सुने और देखे ना, क्योंकि जो देखने का जो टाइम था बच्चों का फोन का और टीवी का वो काफी बढ़ रहा था. तो इसलिए हमने पॉडकास्ट जो स्पॉटिफाई है या अमेजोन है उन पे वो पॉडकास्ट सिर्फ सुन सकते हैं. तो मुझे था कि बच्चे सुने. फिर जब काफी सारी कहानियां पॉडकास्ट पर भी हो गई तो दिल में ख्याल आया कि ये कहानियां और दूर तक भी पहुंचनी चाहिए और किताबों के फॉर्म में आ सकती हैं. तो वहां से फिर मेरी पहली किताबें निकली जब मैंने वो कहानियां भेजी और फिर
0: उसके बारे में तो हम अलग से बात करने ही वाले हैं.
1: तो बच्चों के लिए यही है कि वो इतने सारे और तरीके हैं बच्चों के इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाने के, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं हमारा एक तरह से दिमाग उस तरफ चलना बंद हो जाता है. जब हम टीवी पर एक चित्र देखते हैं तो वो हम चित्र को चित्र की तरह देखते हैं और सिर्फ उतना ही ग्रहण करते हैं. लेकिन जब हम शब्दों में पढ़ते हैं, मान लीजिए हम शब्दों में पढ़ रहे हैं कि चांद आसमान में खिला हुआ है,
0: फिर हम इमेज
1: तो हम इमेजिन करते हैं. हमारे पटल पर एक चित्र अंकित होता है जो हमारी स्मृति से बनता है, कभी हमारे कल्पना से बनता है. हम उस चांद के साथ बादल तारे सब लाते हैं, लेकिन हमने अगर टीवी पे देखा कि एक चांद निकला है तो हम सिर्फ चांद देखेंगे. हम उतने में कई बार सीमित हो जाते हैं,
0: अपने दिमाग को हम फिर चलाने की कोशिश नहीं करेंगे. लिमिट
1: हो जाता है. और उसके अलावा बच्चों के साथ तो ये भी दिक्कत है कि फिर वो अगर लगातार उस तरह का कंटेंट, मतलब जिस तरह का कंटेंट वो देख रहे हैं वो शायद उनके लिए बना भी नहीं है. जब वो लगातार एक घंटा दो घंटा उसी चीज पे स्पेंड करते हैं तो हम इतनी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि बच्चे एक तरह के डिप्रेशन में जाने लगे हैं आजकल. वो उसी चीज, दिमाग इतना ओवरवर्कड हो जाता है, इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है कि उनका फिर वो सोच का दायरा सिकुड़ जाता है.
0: गुजारिश करूंगी इस मोड़ पर अपनी एक रचना दे दीजिए.
1: चलिए बिल्कुल
0: स्वागत है.
1: इस पे कहना चाहूंगी एक छोटी सी रचना, क्योंकि अभी हमने बच्चों के डर और सोच सीमित होने की बात करी. तो आने और जाने का डर, आने और जाने का डर आने और जाने से ही निकलता है. कुछ कह जाने का डर कुछ कह जाने से ही निकलता है. तो बच्चों के लिए भी यही है कि कहीं बात करें, आए जाएं.

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टोरी टेलर हैं, उपन्यासकार हैं, कवित्री, लेखिका, कथाकार नेहा अरोड़ा जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: नेहा जी, आप स्टोरी टेलर हैं, ठीक है, और आप एजुकेशन के फील्ड में भी आपने बहुत सारा काम किया, आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर भी आप बहुत सारा काम कर रही हैं, इस फील्ड में आपकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, उसके बारे में तो हम अलग से बात करेंगे ही, तो आप अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: जी बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जब बेटे को कहानी सुनानी शुरू की, फिर पॉडकास्ट आया, फिर उससे किताब का रूप लिया, तो फिर इसी तरह से मेरी किताबों की जो सफर है, जो जर्नी है, वो शुरू हुई। तो पहले दो जो है वो छोटे कहानी संग्रह आए, और फिर उसके बाद मेरा कहानियों ने उपन्यास का रूप भी लिया। लेकिन इससे थोड़ा सा अगर पीछे चले तो पहले मैं बाई एजुकेशन मैंने इंजीनियरिंग MCA किया था, और उसके बाद कॉर्पोरेट में 4 साल काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, बिजनेस एनालिस्ट की तरह। तो कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग पे हमारे यहाँ पर एजुकेशन खत्म होने के बाद फिर सोचना शुरू करते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो बचपन से ही मेरा सोशल सेक्टर की तरफ बहुत रुझान था, लेकिन दिमाग में ये भी था कि हाँ पहले खुद को एक जगह ऐसे पहुंचाना है कि जहाँ पे मैं खुद पहले अर्न कर सकूं। तो जब वो चीज़ हो गई और फिर एक कंफर्ट लेवल आया, तब दिमाग में वापस से वही ख्याल जो थे वो

0: थे ही, मतलब कहीं गए नहीं थे कि नहीं सोशल सेक्टर में जाना है, कुछ करना है। तो उस समय मौका मिला टीच फॉर इंडिया, एक संस्था है जो शाहीन मिस्त्री जी चलाती हैं, और वो बहुत बेहद खूबसूरत उस समय बड़ी संस्था थी जो जिसने शुरू किया था ये काम।
1: हम तो आपके संस्थाओं और किताबों के बारे में बात करने ही वाले हैं। आपका जो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से रिलेटेड भी आपने बहुत सारा काम किया
0: जी, तो वो भी चीजें साथ में ही आई। तो जब उस ये संस्था के बाद मैंने और भी संस्थाओं में जब काम किया तो मैं उनके साथ मैंने एक कमी देखी सब जगह कि मुझे और माइंडफुल और ध्यान का जो वो है ना वो भी लगा कि उससे
1: बहुत जरूरी
0: समाज,
1: है।
0: हाँ बहुत जरूरी है, और उससे समाज में जो इतने सारा जो हमें डिस्ट्रैक्शन मिलता है वो भी कम हो सकता है, और बच्चों के लिए भी बहुत अभी के समय में
1: मेडिटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, अपनी आत्मिक शांति के लिए उतना ही मेडिटेशन जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और माइंडफुलनेस समझ लीजिए कि उसके साथ ही चलता है।
1: तो हम
0: बैठे बैठे भी माइंडफुलनेस वाला चीज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता नहीं जी आपको स्थिर बैठ के आंख बंद करके कहीं पर अपने सांसों पर ध्यान लेके जाना है, कैसे होगा क्या होगा। माइंडफुलनेस आप चलते चलते भी अपने सांसों पर ध्यान ले जाएं तो बस आपका वो एक पल का जो है ध्यान वापस अपनी तरफ लेके जाना और आप उस क्षण में वापस आ जाएंगे।
1: गुजारिश करूंगी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए इस मोड पे।
0: बिल्कुल, तो कुछ पंक्तियां हैं जो बांटना चाहूंगी मैं अपने सभी श्रोताओं के साथ। खुशफहमी की गलतफहमी से बाहर निकल कर देखो, खुशफहमी की गलतफहमी से बाहर निकल कर देखो, गम अभी भी बहुत है जमाने में। भगवान न करे तुम पर कभी कोई कष्ट आए, भगवान न करे तुम पर कभी कोई कष्ट आए, पर असहाय अभी भी बहुत है जमाने में। तुम सशक्त हो, तुम सशक्त हो तो किसी और का संबल बनो, तुम सशक्त हो तो किसी और का संबल बनो, शक्तिहीन अभी भी बहुत है जमाने में।

0: रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहदी बेहदी बेहदी खास मेहमान है कवित्री, लेखिका, कथाकार, उपन्यासकार, स्टोरी टेलर, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट, क्या क्या हम उनको नाम दें। नेहा अरोड़ा जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम। और सृजन सिर्फ यहाँ हो रहा है जहाँ पर पृथ्वी का सृजन शुरू हुआ था, वहाँ से हम सृजन ही करते चले जा रहे हैं।
0: क्या बात है। नेहा जी, आपकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, मैं कुछ पुस्तकों के नाम लूंगी और आप गुजारिश करूंगी कि आप अपने उस सफर के बारे में बताइए। गोल्डन फाइव के कारनामे 1, 2, 3, 4 प्रकाशनाधीन है, मगध क्रॉनिकल्स, कहानियों का पिटारा, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी पुस्तकों की, गुजारिश करूंगी आप अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए।
1: जी बिल्कुल। तो जैसे मैं बताया था कि बेटे की उम्र के साथ रचनाओं की उम्र भी
0: शुरू हो गई थी,
1: तो जब पहले छोटी कहानियां आई थी तब वो बहुत छोटा था, उसको वही कहानियां,
0: तब आपकी कहानियों का पिटारा आई,
1: कहानियों का पिटारा आई थी तब उसे कहानियों के पिटारे में जादुई कहानियां, रोचक कहानियां, इस तरह की कहानियां थी। फिर उसके बाद एक कहानी छोटी सी लिखी थी मैंने गोल्डन फाइव के कारनामे करके, जिसमें रहस्य था, बच्चे जाते हैं किले में और अलग अलग तरह के रहस्य खोजते हैं, फिर कभी एलियंस के रहस्य खोजते हैं, तो इस तरह की एक छोटी कहानी मैंने भेजी थी फ्लाइट ड्रीम्स प्रकाशन में और उन्हें वह कहानी काफी पसंद आई। लेकिन उनके दिमाग में था कि इस कहानी को आप उपन्यास के रूप में लाइए, तो तब गोल्डन फाइव के कारनामे
0: तब जन्म हुआ,
1: तब उनका जन्म हुआ। तो
0: मैंने आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।
1: तो ये अब क्योंकि इस विधा में ना हमारे पास हिंदी साहित्य में कमी भी मुझे बहुत खटकती।
0: हाँ, आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि बहुत कम काम बच्चों के लिए हुआ है।
1: तो जब हम बात करते हैं बच्चों की रचनाओं की, तो जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि मैं चंपक नंदन पढ़ा, फिर सीधे प्रेमचंद और शरद चंद पर पहुंच गई,
0: और बीच में
1: पंचतंत्र तो बहुत मतलब है ही जो सब पढ़ते हैं, पर कुछ नया और नहीं था, या फिर सीधे अलग से बाल साहित्य के नाम पर नहीं था। अभी काफी सारी प्रकाशन है, जैसे एक तारा है, प्रथम है, तुलिका है, जो काम कर रही हैं और अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी मतलब जिस हिसाब से अगर अंग्रेजी विधा में देखूं तो जितने हैं उतने का तो हमारे पास अभी बूंद भी नहीं है। और तो वैरायटी भी बच्चों को चाहिए ना, कि मतलब कुछ एडवेंचर हो, मिस्ट्री हो, थ्रिलर हो, हर तरह की विधा में हो हमारे पास। तो इसलिए जो
0: हाँ प्रेमचंद की कहानियों में चिमटा था, तो अभी बदल के तो कंप्यूटर आना चाहिए।
1: आना चाहिए।
0: तो आगे
1: चुनिंदा ही कहानी थी बाल साहित्य में, अगर उन्हें मतलब सिर्फ बाल साहित्य में, तो ईदगाह ही है जो बहुत, उनका तो लेवल बहुत अलग है, लेकिन और हमें और बहुत चाहिए था। तो फिर अभी इसलिए उपन्यास के लेवल पे जब बच्चे, जैसे बच्चों ने पढ़ लिया शुरुआती बाल साहित्य कहानियां पढ़ ली छोटी छोटी, तो उनको उपन्यास चाहिए।
0: तो मगध क्रॉनिकल्स भी उसी,
1: मगध क्रॉनिकल्स एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जो 12-13 साल से ऊपर के बच्चों के, किशोर साहित्य में भी हो गया। तो इस तरह अलग अलग विधाओं में मुझे लगता है।
0: नेहा जी क्या देना चाहेंगी, यहाँ कहानियां देना चाहेंगी, कविता देना चाहेंगे, आपने वादा किया था कि आप शायद कहानी भी हमारे दोस्तों को देना चाहेंगी।
1: कहानी तो पूरी नहीं मैं सुना रही हूँ, लेकिन हाँ मैं जरूर छोटा सा बताना चाहूंगी।
0: स्वागत है
1: मगध क्रॉनिकल्स में से मैं उसका एक
0: स्वागत है।
1: 544 ईसा पूर्व मगध का स्वर्णिम युग, परंतु षड्यंत्रों से भरा, महान सम्राट बिंबिसार बुद्ध के अनुयायी अपने ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा कैद कर लिए गए। सत्ता की भूख ने रिश्तों को तोड़ डाला और साम्राज्य को संकट में डाल दिया। रानी कौशला ने अपने बेटे की निर्दयी महत्वाकांक्षाओं को रोकने का प्रण लिया। राज बदले, साम्राज्य ढहे, लेकिन गुफा का रहस्य अटूट रहा, जहां पर ये माना जाता है कि मगध के सम्राट बिंबिसार ने अपना खजाना छुपाया था उस सच्चे वारिस की प्रतीक्षा करते हुए जो उसे खोल पाएगा। फिर यह एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, तो हम वर्तमान में आते हैं, तो ये पूरी किताब वर्तमान और भूतकाल में जाती रहती है, जहाँ पर अब हम एक 14 वर्षीय शले है जो लॉकडाउन के बाद परिवार के साथ सोन भंडार गुफाओं में जाता है। लेकिन जैसे ही वह गुफा में कदम रखता है, उसके भीतर एक बिजली सी दौड़ जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ साधारण थकान है, लेकिन शले के अंदर कुछ अलग ही घट रहा है। उसके मन में लगातार एक प्राचीन मंत्र गूंज रहा है। तो क्या है सोन भंडार गुफाओं का रहस्य? क्यों शले वहाँ पहुँचते ही बेहोश हो गया? इसका इतिहास से भी कुछ तो नाता होगा। तो ये सब पढ़ते खुलेंगी और सामने आएगा
0: जब आप पढ़ेंगे दोस्तों,
1: जब आप पढ़ेंगे भूत भविष्यति, जो अतीत था वही भविष्य है मगध क्रॉनिकल्स।

0: వెల్కమ్ అగైన్ టు రేడియో మానవ రచన విత్ ఫీల్ గుడ్ ఫీల్ లైవ్ 107.8 ఎఫ్ఎం పర్ ఆప్ హై మాధురి కే సాత్ ఔర్ మాధురి హాజిర్ హై ఆప్కి మహఫిల్ మే ఏక్ బార్ ఫిర్ సే సృజన్ లేకర్ ఔర్ ఆజ్ హమారే సాత్ హమారి బేహదీ బేహదీ బేహదీ ఖాస్ మెహమాన్ హై ఉపన్యాసకార్ కవిత్రీ లేఖికా కథాకార్ స్టోరీ టెల్లర్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ నేహా అరోడా జీ. నేహా జీ స్టూడియోస్ మే ఆప్కా ఫిర్ సే బహుత్ బహుత్ బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ హై.
1: ధన్యవాద్.
0: నేహా జీ, आपसे जो मेरा संपर्क हुआ वो पंखुरी एक बहुत बड़ी संस्था है, साहित्यिक संस्था, उसके माध्यम से हुआ. इसके अलावा भी आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई, टीच फॉर इंडिया, क्षमता लय, लर्निंग इनिशिएटिव्स फॉर इंडिया, एकतारा प्रकाशन, अब पंखुरी तो है ही है. तो गुजारिश करूँगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए.
1: जी बिल्कुल. तो जैसे मैंने बताया था, टीच फॉर इंडिया के बाद मैंने फिर अलग अलग संस्थाओं के साथ जो एजुकेशन फील्ड में ही काम कर रही थी उनके साथ काम किया. क्षमतालय में मैंने माइंडफुलनेस के साथ हम बच्चों को पढ़ाते थे, और फिर उसके बाद मैं लर्निंग इनिशिएटिव्स फॉर इंडिया नाम की एक संस्था के साथ जुड़े भी हूँ, जिसमें हम आउट ऑफ स्कूल बच्चे या जो बच्चे अपने स्तर से काफी नीचे हैं उनको हम पढ़ाते हैं, और वहाँ पे हम कम्युनिटी टीचर्स वहीं से जो एलिजिबल हैं, यूथ हैं हमारे, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि वो अपने एरिया में ही बच्चों को पढ़ा पाएं. और इसी तरह से वहीं पर मैं स्टोरी टेलिंग के वर्कशॉप्स भी उन टीचर्स के लिए लेती हूँ, ताकि जो बात हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं वो एक नीरस पाठ ना होकर एक सरस तरीके से बच्चों में पहुंचे. तो अब हमारे टीचर्स बहुत ही

0: बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों तक पहुंच रहे हैं। लाइब्रेरी की हमारी वर्कशॉप चलती है।
1: इन संस्थाओं के माध्यम से आप न सिर्फ साहित्य की सेवा कर रही हैं बल्कि आप एजुकेशन की फील्ड में भी और सोशल एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी आप समाज सेवा भी बहुत कुछ कर रही हैं। गुजारिश होगी इस मोड़ पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए।
0: जी, जैसे आपने देखा कि सफर मेरा कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो शायद ये अंदर से भी आता है, तो एक रचना जो है।
1: स्वागत स्वागत।
0: बंधना नहीं चाहती मैं वक्त के दायरों में, घड़ी की सुइयों से और अपने ही ख्यालों से। चलना चाहती हूँ स्वच्छंद मुक्त पवन के झोंकों में, हर पल में आजाद, हर क्षण में आजाद। न घटों की पाबंदी, न भागते समय की, न सोचना इस भागती उम्र का, न सोचना कम बचे इस वक्त का, न रुकना कहीं, न झुकना कहीं, बस चलते जाना जब तक मन करे, बस लिखते जाना जब तक कलम चले, बस चलते जाना जब तक जीवन चले।
1: क्या बात है।
0: आज कल पाओ जमीन पर नहीं।

0: again to Radio Manav Rachna with Feel Good Feel Live 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर और आज हमारे साथ हमारी बेहदी बेहदी खास मेहमान है कवित्री लेखिका कथाकार उपन्यासकार स्टोरी टेलर सोशल एक्टिविस्ट एजुकेशनिस्ट नेहा अरोड़ा जी। नेहा जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: नेहा जी आपने इतना काम किया समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में और इतनी सफलता अर्जित की कि तो कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। आपकी सफलता के पीछे कौन है और साथ ही आपका फ्यूचर प्लान क्या है, दोस्तों को बताइए हमारे।
1: बिल्कुल, तो सफलता के पीछे ऑब्वियसली जब धरती पर लाने के लिए माता पिता का तो पहले धन्यवाद जरूर मैं करना चाहूंगी, और उन्होंने हमेशा मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरणा दी, मेरे को आगे बढ़ाया। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा पुश किया बेस्ट अचीव करने के लिए, परफेक्शन के लिए, और अभी इन सब चीजों के लिए मैं अपने पति देव का जरूर धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हर मोड पे वो मेरे साथ रहे हैं, मुझे सपोर्ट किया है। कई बार जैसे अब इतना ट्रेवल रहता है अलग अलग चीजों के लिए, बुक फेयर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए या पढ़ाने के लिए,
0: जैसे आज आई हैं आप रेडियो में
1: बिल्कुल, तो हमेशा वो मेरे साथ रहे हैं। He's always there to say कि मैं हूँ ना, कर लूंगा मैं, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और इनफैक्ट जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं, कभी ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठा कि मुझे सोचना पड़े मेरी जर्नी में इस चीज को आगे लेकर। और मेरा प्यारा सा बेटा जिसने जिसकी वजह से रचना शुरू हुई
0: आपने, और आपके फ्यूचर प्लान क्या है?
1: फ्यूचर प्लान अभी मेरा यही है कि मैं लेखन के क्षेत्र में और आगे बढ़ पाऊँ, इसीलिए मैं एक तारा प्रकाशन का एक छोटा प्रोग्राम है रियाज, उसके साथ भी जुड़ी हूँ ताकि मैं अपनी लेखनी को और बेहतर बना सकूँ और बच्चों तक पहुँचा सकूँ और बच्चों का कल्पना का दायरा और बढ़े।
0: तो मैं गुजारिश करूंगी अपने जिनके बारे में अभी आप इतना कह रही थी कि उनके साथ आप खड़ी हैं, उनकी उनकी वजह से आप खड़ी हैं, तो उनको एक रचना डेडिकेट कर दीजिए।
1: जी बिल्कुल। आज हवा में हल्की सी ठंडक है,
0: क्या बात,
1: चादर ओढ़ने पर जो सुकून है, क्या तुम भी मेरे लिए वैसे ही नहीं?
0: वाह।
1: जब दिल में खालीपन की ठंडक महसूस करती हूँ, मैं तुम्हारी यादों की चादर तान लेती हूँ।
0: बहुत कुछ
1: तुम मेरे लिए वो गर्माहट हो। तुम्हारी चाहत की बात थामे मैं दूर तक चलती चली जाती हूँ, और चलते चलते रास्तों और मंजिलों का फर्क मिट सा जाता है, और कभी कभी इस चलने में रास्ते ही मंजिल लगने लगते हैं।
0: वाह।
1: तुम मेरे लिए वो मंजिल हो, तुम मेरे लिए वो मंजिल हो।
0: नेहा जी आप स्टूडियोज में हमारे चले आए, आपने अपनी रचनाएं, अपनी बातें, अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों से शेयर की अपनी बातें, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, यह मौका देने के लिए, अपनी बात श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए, और साथ में ही मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगी मेघा जी का और उपमा जी का, जिनकी वजह से मैं आपसे
0: जिनके संस्था पंखुड़ी
1: हाँ जी पंखुड़ी मैगजीन जिसके लिए मैंने लिखा, उन्होंने उन्हें पसंद आया, उन्होंने प्रकाशित किया, और साथ में आपसे जोड़ा जिससे ये आवाज और दूर तक पहुँच सके।
0: क्या बात है। और दोस्तों लगातार सुन रहे हैं हमारे शो को संगीता अहलावत, राजेंद्र अर्जवाल, अरविंद सिंह, उमाशंकर शुक्ला, अलका शर्मा, प्रीता कौशिक, तनिष्क शर्मा, प्रियम वत्स, वीनू, नीता, अमृता, प्रभात, सुदर्शन, उपमा, रितेश, पूर्वा, आर के सिंह, सुजीत, सलमान, अंकित, मुकेश शर्मा, अनिता सिंह, महेश चंद जैन, आर बी कपूर, बहुत लंबी लिस्ट है हमारे दोस्तों की। आप भी हमें बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है ये शो और सृजन और रेडियो मानव रचना भी। 8010781078 पर SMS करके या कॉल करके। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना, फील गुड फील लाइव।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं फरीदाबाद पुलिस के एक ऐसे अधिकारी से जो विभिन्न विभागों की देखरेख कर रहे हैं, शहर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होती है जब आप और हम मिलकर इसमें पुलिस का साथ देते हैं। हम कमियां तो बहुत निकाल लेते हैं लेकिन कई बार अपनी कोशिशों से पीछे हट जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले हमसे प्यार से बात नहीं करते, पर क्या आपने देखा है कि वो 12-14 घंटे किस तरीकों से सड़कों पर खड़े रहकर बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में आपकी सेवा के लिए तत्पर भी रहते हैं। चाहे एक्सीडेंट हो या फिर किसी तरीके का कोई झगड़े का मामला, हर जगह पुलिस पहुंचती है और कोशिश करती है कि चीजों को वहीं पर सॉर्ट किया जाए। किसी की डेथ भी हो जाती है तो बॉडी को हाथ लगाने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं आता, अक्सर पुलिस ही आती है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, पुलिस वाले हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ परेशानियां होती हैं उनसे तो आप तो इधर उधर मुंह बनाकर चले जाते हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। खास तौर पर से मैं ट्रैफिक की बात करूं, क्योंकि ट्रैफिक तो हम सब अपने सामने 24 घंटे देखते हैं। हम सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं के लिए भी निकले, हमें ट्रैफिक दिखता ही दिखता है। और उन ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी निभाती है ट्रैफिक पुलिस। कैसे? ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो या फिर बारिश हो रही हो, ट्रैफिक पुलिस आपको हमेशा सड़कों पर दिख जाएगी। बारिश में भी घुटनों घुटनों पानी भरा हो और आप अगर ट्रैफिक में फंस गए हो या बारिश में फंस गए हो तो पुलिस वाला ही आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाल कर लाता है। जी हाँ, लेकिन इस बढ़ते हुए एक्सीडेंट और ट्रैफिक पे जो मैनेस हो रही है आजकल, या फिर हम कहें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा वायलेट करने लगे हैं लोग, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कदम उठा रही है, खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस, इस पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद जयबीर सिंह जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। जयबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। तो जयबीर जी, आपने हाल ही में ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है वो फरीदाबाद पुलिस के साथ निभानी शुरू की है, उठाई है।
1: जी मैम।
0: तो मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी।
1: जी मैम।
0: मैं सवाल वो पूछूंगी जो एक आम इंसान से जुड़े हुए हैं।
1: जी।
0: हम फरीदाबाद की बात करते हैं और कुछ साल पहले फरीदाबाद शहर में लोगों को सीट बेल्ट लगाने में भी दिक्कत होती थी।
1: जी मैम।
0: यहाँ पर अक्सर वो लोग देखे जाते थे जो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच के सीट बेल्ट लगाते थे।
1: जी मैम।
0: उससे पहले सीट बेल्ट नहीं लगाते थे।
1: जी मैम।
0: अगर बाइक या स्कूटी पे जा रहे हैं तो भी हेलमेट दिल्ली बॉर्डर के पास ही लगाया जाता था।
1: यस मैम।
0: लेकिन अब ये ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या फिर जेवर एयरपोर्ट को जाने वाली सड़कें एक्सप्रेसवेज बन गए हैं।
1: जी मैम।
0: जहाँ पर लगातार हाईवे पर एक के बाद एक 7 फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जहां पर सूरजकुंड रोड इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि आप गुड़गांव जाएं या फिर दिल्ली जाएं, आपको ट्रैफिक तेज रफ्तार से चलता हुआ मिलेगा।
1: जी मैम।
0: तो ऐसी परिस्थिति में जयबीर जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि कौन सी ऐसी सबसे कॉमन मिस्टेक है या गलती है जो हम जैसे नॉर्मल नागरिक करते हैं और ट्रैफिक को खराब कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट्स को बढ़ा देते हैं।
1: जी मैम। ड्राइविंग करता है तो आदमी का आजकल स्ट्रेस में बहुत रहता है या फोन पे बिजी रहता है।
0: जी।
1: वो अपने फोन पे बिजी होने के कारण सीट बेल्ट भी लगानी ध्यान नहीं रहती उनको। पहली गलती ये करता है।
0: जी।
1: और फिर वो सीट बेल्ट भी लगाता है, फिर ध्यान फोन पे, जैसे फोन पे चलाता है वहाँ पर से फोन आ गया या दोस्त आया, जैसे ऑफिस जा रहा है वहाँ से आ गया, तो ये चीज इसके लिए हम उसको रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का चलान करते हैं।
0: जी जी। यानी दो तीन चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं करते हैं।
1: और जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था उसका चलान करते हैं हम, और स्पीड में है तो उसका चलान करते हैं। और हमें ये लगता है भाई नशे में लगता है तो उसको चेक करके उसको अगर उसका नशे का संबंधित है वो चलान भी करते हैं।
0: जी जी। जयबीर जी, नशे की आपने बात करी है तो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वहाँ पर जो ठेके खुले हुए हैं, जिनको भाषा में, सिंपल भाषा में कहते हैं या फिर अंग्रेजी में आप वाइन शॉप्स भी कह सकते हैं, दूर से जगमगाती हुई दिख जाती है, ऐसा लगता है कोई 5-स्टार होटल खुला हुआ है, और वहां पर धड़ल्ले से आपको गाड़ियां दिख जाएंगी खड़ी।
1: जी मैम।
0: क्या जयबीर जी आपको लगता है कि ड्रंक ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है शहर में अपराध और ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स बढ़ने का?
1: जी मैम।
0: तो पुलिस इसको रोकने के लिए क्या करे?
1: पुलिस जैसे मैम ये रोड पे आते हैं तो हम जैसे नाका लगाते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे जिला पुलिस के द्वारा, जैसे फरीदाबाद पुलिस के द्वारा सप्ताह में एक दिन या दो दिन जैसी भी आवश्यकता है, तो जैसे CIA है, जिला पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मिलके हम जैसे पूरी नाइट को भी 10-11 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक नाका लगाते हैं,
0: जब मेन टाइम होता है लोगों के पी के जाने का।
1: उस टाइम हम उनको अच्छी तरह चेक करते हैं, जो भी ड्रिंक करे मिलता है तो हम उसका उनका भारी से भारी चालान करते हैं।
0: कितना चालान होता है सर इसमें? क्या गाड़ी इंपाउंड करने का भी कुछ सिस्टम है या सिर्फ चालान करके?
1: चालान ही का सिस्टम है,
0: चालान का सिस्टम। सो लोग डरते हैं इससे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक बार चालान 10,000-15,000 दे दिया, उसके बाद फिर से वही चीज चल रही है।
1: वैसे ये डरते नहीं मैम, आजकल फिर एक ये हो गया मैम, जैसे चालान कर देते हैं, ऑनलाइन चालान होते हैं, तो ये बात देखते हैं कोर्ट लगेगी।
0: हाँ,
1: तो कोर्ट में जैसे माफ हो जाता है,
0: ये कोर्ट में माफ हो जाता है, चलिए ठीक है आप आधा दे दीजिए।
1: हाँ, आधा दे दीजिए।
0: जी जी जी।
1: हाँ, इसलिए फिर भाई आजकल क्या है, जैसे माँ बाप की कमाई यूज करते हैं ना कि अपनी उसमें दुख महसूस होता है, तो ये माँ बाप जैसे बाप दादा है उनकी कमाई के लिए थोड़ा तो ही नहीं देते अपनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा

0: रीजन है कि अपराध भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, माता पिता ने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी हैं, पैसे काफी दे दिए हैं, फोन अच्छे हैं उनके पास, तो उनको ये अफसोस नहीं होता कि हमारी जेब से 10-15 हज़ार रुपए चला
1: ये मायने नहीं रखते हैं
0: जी, ये मायने नहीं
1: के लिए मायने नहीं रखते
0: जी जी
1: उनके जो जैसे कई बार पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स सॉरी फील करते हैं, बच्चे सॉरी फील नहीं करते, कहते हैं आप चलान करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स को दुख होता है, बच्चों को दुख नहीं होता,
1: बच्चों को दुख नहीं होता।
0: सो बहुत सारी बातें दोस्तों सुरक्षा संवाद में चलती रहेंगी। हमारे साथ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं और जयवीर सिंह जी से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं फरीदाबाद के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078, या फिर आप ये सारी बातचीत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, अलग अलग रील्स के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम रेडियो मानव रचना और फेसबुक पर भी, और इसके साथ साथ हमारी इंटरनेट ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर में मिल जाएगी। पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको मिल जाएगी सारी बातचीत ट्रैफिक इंचार्ज जयवीर सिंह के साथ हुई। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक जी, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम सुरक्षा संवाद एक ऐसा प्रोग्राम सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। और इस सीरीज में बहुत सारी बातें हम करते हैं पुलिस अधिकारियों से मिलकर, कभी ट्रैफिक के बारे में, कभी महिला सुरक्षा के बारे में, कभी साइबर फ्रॉड के बारे में, तो कभी किसी और मुद्दे के बारे में। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करें वो है ट्रैफिक, यानी रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद श्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इनके साथ जारी हैं, आइए जानते हैं और भी कुछ खास पहलू। तो जयवीर जी, जब हम बच्चों और पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं अंडर एज ड्राइविंग की बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, महंगी महंगी फीस है
1: जी,
0: और इन स्कूलों के बाहर हमने देखा है कि अक्सर बच्चे, स्कूल वाले प्रशासन मना करता है कि बच्चे स्कूटी या बाइक ना लाएं, लेकिन अब बच्चे स्कूटी बाइक से ज्यादा 18 साल से कम की उम्र में गाड़ियां भी ले आते हैं, खासतौर पर से एग्जाम वाले दिन के आज 2-3 घंटे में बाहर निकलेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए जयवीर जी क्या किया जा रहा है?
1: ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा था, इनको मैम अपना इनका जैसे लाइसेंस नहीं है अतः इन पर फाइन करते हैं। माँ बाप को, जो पेरेंट्स को हो, उनको भी बुला गए, कभी कभी समझाते भी हैं और चलान भी करते हैं, जो उसके बाद भी बावजूद नहीं जैसे बार बार चलान जाते हैं तो गाड़ी को भी इम्पाउंड कर लेते हैं और माँ बाप के पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब कानूनी कार्रवाई की जाती है,
0: FIR वगैरह दर्ज हो जाती है।
1: FIR माँ बाप का, इसमें दोष माँ बाप का ज्यादा माना जाता है, ना कि बच्चा 18 साल से नीचे बच्चा नाबालिग रहता है, तो उसकी बजाय पेरेंट्स पर ज्यादा कार्रवाई होती
0: यानी
1: है।
0: आपने हाँ, गाड़ी हाँ, दी क्यों बच्चे?
1: हाँ, बच्चे को क्यों, उसमें गलती पेरेंट्स की रहती है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को थोड़ा समझाए, गाइड
0: जी,
1: तब जान कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए
0: जी जी। तो इन बच्चों को सर आपने देखा है कि इन बच्चों को डर लगता है पुलिस से या नहीं लगता?
1: नहीं है, आजकल क्या है मैम, जो पहले पिटाई वाला था ना
0: जी, जी वो तो
1: स्कूल का लाले या पुलिस का लाले हो तो रहा नहीं, नियम अनुसार जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं
0: जी,
1: कार्रवाई में वो इतना डरते नहीं
0: हाँ। मतलब उनको लगता है कि चलो पेरेंट्स पे ये चीज हो रही है, हम तो बचे हुए
1: हैं। हाँ, पेरेंट्स से ही परेशान होते हैं वो
0: वैसे।
1: हाँ,
0: तो देखिए दोस्तों, बहुत ही एक विडंबना है आज के टाइम में, आयरनी है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और अगर बच्चे पे कोई, बच्चे की गलती से वो फंसते भी हैं तो पेरेंट्स ही फंसते हैं। और इसमें भी बच्चे को कई बार अफसोस नहीं होता है, उसे ये ग्लानी नहीं होती है, उसे ये तकलीफ नहीं होती कि उसके पेरेंट्स ही इस चीज़ में फंस रहे हैं, वो नहीं फंस रहा है। सो ये जिम्मेदारी जो है ये बच्चे की भी बनती है, सिर्फ पेरेंट्स की या स्कूल की नहीं बनती है कि आप गाड़ी ना दें। बच्चे को इस तरीके से समझाएं और मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इस मामले में जरूरी है, थोड़ी सी तो देखिए कठोरता चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे तब तक चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कई केसेस में नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। तो जयवीर जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा शहर को और ज्यादा बेहतर बनाने की। हेलमेट और सीट बेल्ट
1: जी मैम
0: पहनना कितना जरूरी है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि हमने कई बार समझाया, घर वालों ने भी कई बार समझाया, पर लोग समझते नहीं
1: है। ये बहुत जरूरी है मैम, हेलमेट पहनना, जैसे टू व्हीलर पर चलता है वह उसका पैर भी फिसल जाता है या कोई और कोई ओवरटेक कर देते हैं उसको, मतलब चोट लगनी ही है उसको मैम, तो हेलमेट तो बहुत जरूरी है। उसमें जैसे हमारा सिर बच जाता है तो जान बच जाती है, अगर जो हेलमेट नहीं है तो उसमें जान भी जाने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है।
0: जयवीर जी, छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं स्कूटर के या बाइक के आगे बैठे होते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए कोई हेलमेट नहीं होता है और उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो क्या इसका सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है? एक पुलिस अधिकारी हैं आप और ट्रैफिक इंचार्ज हैं, क्या सोल्यूशन है इसका?
1: जी मैम, बच्चे को भी पीछे बैठा जैसे उस पर अलाउड ही 2 आदमी अलाउड है, ये अनऑथराइज है भाई, जैसे 3-3, 4-4 जैसे 3 राइडिंग का हम चलान करते हैं।
0: अच्छा, मतलब चलान हाँ, कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बीच में दो बच्चे बैठे हैं।
1: हाँ, 3 राइडिंग का चलान होता है।
0: ओके,
1: हाँ, अगर तो 3 बैठे हैं तो 3 राइडिंग का चलान होता है।
0: पर फिर वो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ये भी आप सोच के कई बार छोड़ भी देते होंगे।
1: हाँ, वैसे उसमें थोड़ा
0: समझा के। तो इसमें क्या बच्चों के भी हेलमेट मिलते हैं मार्केट में?
1: बिल्कुल मिलते हैं,
0: मिलते हैं बच्चों के हेलमेट। देखिए मैं नहीं जानती हूँ ये चीज़ के बच्चों के हेलमेट मिलते हैं, लेकिन अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो उनका हेलमेट जरूर लेंगे।
1: 14-15 साल का बच्चा है उसका तो हेलमेट मिल जाता है
0: जी जी
1: हाँ।
0: तो वो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए पेरेंट्स को। और जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सब अपनी नानी दादी के घर जाते हैं, स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं या बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके जा रहे हैं, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। इसकी जगह अगर आप बस पे, ट्रेन पे, मेट्रो पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा, बहुत बहुत सेफ है, ना गर्मी लगेगी और ना ही कोई एक्सीडेंट होने का खतरा होगा।
1: आजकल तो ये जैसे भाई ऐप आ रहे हैं, ओला है, उबर है, टैक्सी वगैरह भी हो जाते हैं, जो ज्यादा ज्यादा स्ट्रेंथ है ना
0: जी,
1: दो से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो अपने वो फोर व्हीलर व्हीकल को ज्यादा,
0: बिल्कुल मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप एक बाइक पे पांच जने बैठ के जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है।
1: हाँ ये बहुत खतरनाक है
0: जी। जयवीर जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज स्पीड होती है कि आप उनको देख के डर जाते हैं, आपके साथ से निकलते हैं, और स्कूटी वाले लोग जो हैं, टू व्हीलर वाले, वो घबरा जाते हैं और बहुत बार वो गिर भी जाते हैं इस चक्कर में कि कोई गाड़ी वाला इतनी तेज निकला है। और ओवर स्पीडिंग का कंसेप्ट लोग समझते नहीं है, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि ओवर स्पीडिंग जो है, जैसे 50 लिखा है, 60 लिखा है, 70 लिखा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करें तो इंटरसेप्टर कैसे पकड़ता है?
1: वो जैसे हम ये मोबाइल ये वाकी टाकी सेट होते हैं मैम
0: जी,
1: उसी टाइम हम कॉल कर देते हैं भाई, जो भी जैसे भाई यहाँ से भाई अंकीर चौक है या बाटा चौक है, जहाँ भी जाओ कंट्रोल में मैसेज कर देते हैं भाई इस नंबर की गाड़ी है, बाइक है, अगर इसको अपना हाँ पकड़ लो, इसको इम्पाउंड कर लो। तो जैसे सभी जो नाके हैं, जेडो हैं, एरिया सभी सक्रिय हो जाता है, उस पर जहाँ भी जिधर कभी आते हैं वहीं वो कंट्रोल कर देते हैं
0: जी। जी, ये जो इंटरसेप्टर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये इनका काम ओवर स्पीडिंग पकड़ना होता है।
1: ओवर स्पीडिंग है, जैसे जाम लग रहा है मैम, वहाँ पे भी जैसे भाई एक मुलाजिम की ड्यूटी है या दो की है, वो उनसे काम नहीं चलता, व्हीकल से तरफ जाता है तो वो गाड़ी से जल्दी पहुंच जाते हैं, जो भी नजदीक है ना उसको हम मैसेज कर देते हैं, फोन भी कर देते हैं और वायरलेस साइट पर भी मैसेज दे देते हैं।
0: तो इंटरसेप्टर जो है वैसे ओवर स्पीडिंग पकड़ने के लिए उसमें कैमरास वगैरह लगे होते हैं।
1: हाँ, उसमें जैसे अगर जो उसका कंट्रोल में आता है ठीक नहीं, तो उससे वीटी भी कर देते हैं भाई, अगला जो अगला ट्रैफिक पॉइंट है वो जैसे हम बैरियर लगाते हैं, बैरियर लगा देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ हाँ,
0: तो ये गाड़ी जो है इसे पकड़ना है।
1: हाँ हाँ, इसे पकड़ना है
0: तो ये नजर में रखने के लिए।
1: हाँ, कंट्रोल से वीटी हो जाती है सभी के पास भाई, इस नंबर की गाड़ी है तो ये राउंड अप करनी है
0: जी। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप वीआईपी मूवमेंट में भी काफी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ के भी निकल जाते हैं आज के टाइम में
1: जी मैम,
0: सिर्फ बचने के लिए
1: जी मैम,
0: वो आगे जाके पकड़े जाते हैं, तो उनके साथ सुलूक क्या होता है?
1: सुलूक तो मैम जो अपना नियम अनुसार कार्रवाई है वही होती है
0: जी, जी।
1: हाँ, उसके एफआईआर होती है और जो चलान है ज्यादा से ज्यादा होता है उसका
0: जी जी।
1: हाँ, उस पे कानूनी कार्रवाई होती है पूरी,
0: मतलब एफआईआर वगैरह होगी, फिर उसके बाद जो है वो केस चलेगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ठीक है, ये बात तो होगी जी ओवर स्पीडिंग की, लेकिन आगे बात करते हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को
1: जी मैम।
0: सर क्या

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: तो दोस्तों बातें चल रही हैं बहुत सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले अधिकारी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जयबीर सिंह जी जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं और एनआईटी एरिया की पूरी देखरेख करते हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत में आइए जानते हैं कुछ और ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई बातें और कैसे एक आम इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल करना है बढ़ते हुए ट्रैफिक को भी, और उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। सर अब मैं चालान की बात पूछना चाहूंगी आपसे। 2025-26 में बहुत चालान कटे हैं, बहुत ज्यादा, तो कुछ आंकड़ा मुझे देंगे फरीदाबाद में कितने चालान कटे हैं पिछले 3-4 महीनों में।
1: हाँ जी मैम, ये मैम जैसे टोटल ऑफेंस चालान है ये जनवरी महीने में 57,866 है।
0: 57,000 चालान, ये सिर्फ फरीदाबाद का आंकड़ा?
1: हाँ ये ऑफेंस इन चालान है, जो टोटल चालान है वे 52,690 है मैम
0: जी।
1: और ये फरवरी महीने के जो टोटल ऑफेंस इन चालान है ये 45,200 है।
0: अच्छा
1: हाँ, और जो टोटल चालान है ये 40,807 है।
0: मतलब आपने एक महीने में 57,000 के आसपास, जनवरी की बात मैं करूं जिसमें न्यू ईयर भी आता है और सिक्योरिटी भी बहुत होती है 26 जनवरी को लेके,
1: जी मैम,
0: उस दौरान आपने 57,000 चालान जो है वो करे,
1: जी मैम,
0: तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सिर्फ फरीदाबाद के।
1: हाँ, फरीदाबाद ही है।
0: तो आप दोस्तों सुन रहे हैं कि 57,000 चालान अगर एक शहर में और आपके अपने शहर में एक महीने में चालान हो रहे हैं तो कितने लोग ट्रैफिक के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं तब जाके ये चालान होते हैं।
1: टोटल तो मैम ये 32,99,400 हमें
0: कैश जो कलेक्ट किया आपने।
1: हाँ, जो टोटल कैश है मैं
0: जी,
1: जो इतने रुपए के
0: जी, यानी टोटल अगर मैं इसको पैसे में कैलकुलेट करूं तो 32 लाख के आसपास पैसा जो है वो चालान जो है वो किए गए, मतलब
1: 32,99,000
0: यानी आप 33 लाख के आसपास मान लें
1: जी मैम
0: कि इतना पैसा का चालान जो है, इतने रुपए का चालान जो है वो किया गया है
1: जी मैम।
0: अब मैं आपसे जयवीर जी एक और चीज पूछना चाहूंगी, चालान को लेकर लोगों में इस टाइम इतना डर नहीं है
1: जी मैम।
0: डर इसलिए भी नहीं है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो कोर्ट में जाते हैं और वहां पर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उनको लगता है कि 4-5 चालान हो गए, 6 चालान हो गए, जब गाड़ी बेचेंगे तब उसको माफ करवा लें। ये ज्यादातर लड़कों के दिमाग में, मैं कहूँ यंग लड़कों के दिमाग में ये चीज रहती है
1: जी मैम।
0: सो इसको कैसे रोका जाए या चालान की प्रक्रिया क्या है आज की तारीख में? अगर सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने रेड लाइट तोड़ दी और मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका और चालान बनाया
1: जी मैम,
0: तो पहली बात तो चालान रेड लाइट जंपिंग का है कितना? 5,000 है।
1: हाँ, 5,000
0: मैम। 5,000 चालान है। अब 5,000 चालान को मैं वहाँ कैसे पे करूँ? अगर मेरे पास 5,000 नहीं है तो मैं कैसे पे कर सकती हूँ?
1: वो मैम अब तो जैसे या तो चालान ब्रांच है हमारी, जैसे अपना DCP ऑफिस है ना सेक्टर 12 में जो लघु सचिवालय है उसमें चालान ब्रांच है
0: जी,
1: वहाँ जाके भर सकते हैं आप।
0: अच्छा, वहाँ जाकर मैं चालान भर सकती
1: हूँ जी मैम।
0: ओके।
1: और अब ये जैसे QR है ये कम काम कर रहा है, हमारी जो मशीन है ना वहाँ भी जमा करा सकते, जो हम मौके पर जो चालान करते हैं इंटरनेट कम चलने की वजह से कई बार काम कम करता है, उसकी बजाय चालान ब्रांच में जो ट्रैफिक पुलिस है सेक्टर 12 लघु सचिवालय में वहाँ पर जाके जमा कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: और जो मौके पर भी जमा कराना चाहो है तो मौके पर भी हो जाता है, कई बार इंटरनेट की वजह से सर्वर
0: रुक जाता, हाँ, सर्वर
1: रुक जाता है। और बाकी जैसे कोर्ट की में जाना चाहता है तो कोर्ट में भी, और जैसे कोर्ट लगती स्पेशल
0: जी जी
1: 2-3 महीने में
0: तो उसका नोटिस आता है उस व्यक्ति के पास कि आपके चालान बचे हैं वो बकाया
1: नहीं, वो जैसे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं अखबार में भी निकाल देते हैं भाई इस तारीख की
0: अदालत लग रही है तो आप वहाँ पहुँचे।
1: हाँ, अपना जो चालान भरना चाहो तो भर सकता है अपना वहाँ जज साहब के सम्मुख पेश हो गए, जो भी उसकी वे गलती है जो भी सॉरी फील करता है तो उसमें कुछ उसके उनके माफ कर देते हैं
0: जी जी जी। यानी अगर आपके चालान ऑलरेडी कट चुके हैं, आपको फाइन जो है वो लगाया गया है और आपने अभी तक वो फाइन नहीं भरा है तो आप अगर ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं किसी वजह से तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अखबार में ऐड देखते रहिए, अगर कोई ऐसी ट्रैफिक की अदालत का जहां पर चालान जो है वो आपको सबमिट कराने हैं, फाइन जमा करना है, इसका कोई ऐड आपको दिखता है लोकल अखबार में तो आप जरूर उसका लाभ उठाएं और वहां पर जाकर अपने चालान भरें। शायद यही वजह है जयबीर जी के लोगों में डर थोड़ा कम हो गया कि चालान का अमाउंट जो है वो 5,000 से 2,500 हो जाएगा
1: जी, जी मैम
0: जी, ये दिक्कत है। तो लोगों में बेसिकली मुझे लगता है कि डर कम हो गया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से भी हल्के में ले लेते हैं
1: जी मैम
0: ट्रैफिक रूल्स को
1: जी मैम।
0: पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने एरिया को, क्योंकि आप एनआईटी के ट्रैफिक इंचार्ज है और एनआईटी में वो सारी सड़कें आती हैं जहां पर दिन भर ट्रैफिक होता
1: जी
0: है। नीलम फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, बाटा फ्लाईओवर भी एनआईटी में आता है, ओल्ड कांडर पास भी एनआईटी में आता है। और ऐसी परिस्थिति में
1: जी
0: कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, क्या प्लान है आपका?
1: इस समय हम ज्यादा से ज्यादा अपने मुलाजिम लगा के और गाड़ी को रोक रोक के, जैसे बत्ती पे है तो वो रोक रोक के चलाते हैं, जो ट्रैफिक है वो दाएं बाएं से नहीं घुसे, नियम अनुसार ही चले
0: जी। और जयवीर जी, अगर कोई व्यक्ति अपने सामने कोई अपराध होते हुए देख रहा है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करें, जैसे मैं आज आपको आज का अपना किस्सा बताना चाहती हूँ। मैं सुबह ऑफिस आ रही थी सूरज कुंड रोड से
1: जी,
0: और अचानक से अनखीर वाले गोल चक्कर पे आगे एक ऑटो वाला अचानक से आ गया, तो सबकी गाड़ियां रुक गईं
1: जी मैम।
0: लेकिन मेरे पीछे बिल्कुल एक वैगनार थी
1: जी मैम,
0: और उस वैगनार वाले ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया कि मुझे निकलना है, रास्ता दो
1: जी मैम,
0: और बजाता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप हॉर्न बजाता जा रहा है। आसपास वाले सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसको आगे निकलने का रास्ता मिला
1: जी मैम,
0: वो आगे गया और उसने पीछे वाले सबको देख के जोर जोर से शीशे के अंदर से ही अपनी गालियां देना शुरू कर दिया
1: जी मैम,
0: बदतमीजी करी
1: जी मैम।
0: अब गाड़ी का नंबर भी बहुत सारे लोगों ने नोट किया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें, क्योंकि वो बहुत तेज आगे निकला और बहुत सारे लोगों रैश ड्राइव करता हुआ ओवर स्पीडिंग में आगे निकल गया। अब ऐसे में अगर मेरे जैसी कोई महिला है और वो फंसना नहीं चाहती किसी चक्कर में कि भाई उसको कल को कोई परेशान करे या कोई पुलिस स्टेशन में बुलाए, तो वो क्या करे?
1: जी मैम, उसकी वीडियो बना के, और जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
0: पर सर जैसे मैं भी गाड़ी चला रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती उस टाइम, तो क्या करना चाहिए? अब गाड़ी का नंबर मुझे याद है,
1: नंबर नोट करके उसकी डिटेल लिख जाती है मैम
0: जी,
1: हमारे पास भी निकल आएगी।
0: अच्छा,
1: हाँ मशीन हमारे पास, उसका जो भी उसका नाम है, एड्रेस है, वो सभी निकल आएगा, और उसके अपने बयान दिए जाएंगे, जैसे जो अपना DCP की साहब की जीमेल आईडी है उस पर डाल सकते हो आप
0: जी जी,
1: फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस,
0: मतलब उस पर अपनी कंप्लेंट।
1: हाँ हाँ, तो उस पर फिर उसको गाड़ी का राउंड अप करेंगे, उस पर जो जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई है, वो की जाएगी नियम अनुसार
0: जी। यानी मतलब अगर मामला सुबह का भी है तो दोपहर में भी कंप्लेंट कर सकते हैं जी। और इसके अलावा कोई फोन नंबर जो आप देना चाहें जिस पे कॉल करके हम ये सारी जो सिचुएशन है ये बता सकते हैं?
1: हाँ हाँ मैम, ये हमारा जैसे PS ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद का नंबर है 01292225999
0: जी। तो दोस्तों, अगर आप फरीदाबाद शहर में हैं और आप किसी तरीके का ऐसा ट्रैफिक वॉयलेट होते हुए देख रहे हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन ट्रैफिक में कॉल करना है 01292225999। सिंपल सा नंबर है, 3 बार 2 फिर 5 और 3 बार 9, बहुत सिंपल सा नंबर है। इस नंबर को आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं
1: जी।
0: जब भी आपको दिखे ऐसी परिस्थिति कि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, राह चलते रोड रेज कर रहा है, या फिर आपकी गाड़ी को टक्कर मार गया है, या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट आप देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 01292225999। तो बातों का सिलसिला जारी है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर है बहुत आसान, 8010781078।

ತಾನು ತಾನ ನೂ ತದ ಸುರನ ತಿಲಕ.

0: Dim tanana dir da tanum tanana dere na dim tanana dir da tanum tanana dere na dim tanana dir da tanum tanana dere na dim tanana dir da tanum tanana dere na dim tanana dir da
1: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ दीक्षा, आपके साथ बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, और ट्रैफिक को ठीक रखने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्या चालान करना ही सही है, कभी कभी स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है, मुझे भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हम आप सड़कों पर जाते हुए देखते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, जो रॉन्ग साइड जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्पीडिंग कर जाते हैं, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे गलियां, चाहे हाईवे, कहीं पर भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और जब इनका चालान काटा जाता है तो फिर ये इधर उधर फोन मिलाना शुरू कर देते हैं। आपके भी नोन को इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें जरूर बताइएगा 8010781078 पर, या फिर आप अगर कभी ऐसे सिचुएशन होते हुए देखें तो 112 पे कॉल भी कर सकते हैं, खुद भी एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपको कोई शख्स ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ता हुआ मिलता है तो बस आपको ये बातचीत, ये जानकारी या फिर कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया फरीदाबाद पुलिस ट्विटर यानी एक्स और इंस्टाग्राम पर डालनी है, या फिर आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी नंबर आपको असाइन किया जाएगा, जो भी पुलिस अधिकारी आप तक पहुंचेंगे, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बात चल रही है बहुत सारी ट्रैफिक से जुड़ी हुई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जयवीर सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद। जयवीर जी, ट्रैफिक की बात तो हमने कर ली है और बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि एक्सप्रेस वे पर अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, बीच में एक बहुत बड़े वकील थे जिनकी डेथ हो गई रॉन्ग साइड गाड़ी आने की वजह से, और अक्सर एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पर होते रहते हैं, तो ऐसे में एक्सप्रेस वे के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि रॉन्ग साइड कोई आएगा तो गाड़ी इंपाउंड कर ली जाएगी।
2: बिल्कुल मैम।
1: तो क्या ऐसा होगा या हो रहा है?
2: हाँ, हो रहा है मैम। जैसे वहाँ पर हमारी ड्यूटी रहती है, गाड़ी रहती है इंटरसेप्टर वगैरह, जो रॉन्ग साइड मिलता है उसका चालान करते हैं। अगर जो किसी कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है तो तुरंत क्रेन को बुला के अपना साइड में करवा के, जो लोकल पुलिस बुला के ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से नियम तोड़ा।
1: तो रॉन्ग साइड गाड़ियों को क्या आप इंपाउंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि रॉन्ग साइड बहुत कॉमन है हमारे देश में।
2: हाँ, ये जो भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलती है, वो हमारे DCP साहब के आदेश के अनुसार उन गाड़ियों को हम राउंड अप कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, फरीदाबाद पुलिस भी अब स्ट्रिक्ट हो गई है रॉन्ग साइड को लेकर। तो अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, खासतौर पर से एक्सप्रेस वे से, जो कि सबसे खतरनाक होता है अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गाड़ियां 100, 80, 110 की स्पीड में चलती हैं।
2: जी मैम।
1: वहां से अगर रॉन्ग साइड आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी को चालान तो देना ही पड़ेगा, जो कि काफी हैवी चालान है, पेनल्टी काफी हैवी है। इसके साथ साथ फरीदाबाद पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है, यानी इंपाउंड भी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी पर FIR, आप पर FIR दर्ज कर सकती है। ये हाल ही में अभियान चलाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें 22 और 23 मई के सिर्फ दो दिन में 1170 FIR हो चुकी है रॉन्ग साइड वालों की। बाकी चीजों की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ रॉन्ग साइड की बात करें, क्योंकि रॉन्ग साइड एक ऐसा रूल ब्रेक है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस 110 गुना बढ़ जाते हैं।
2: जी मैम।
1: आप सीधे सीधे अपनी रोड पे चल रहे हैं, आप अपनी धुन में आराम से चल रहे हैं, सामने से अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। तो इसीलिए रॉन्ग साइड को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो पुलिस लेके चल रही है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस हो या कोई और पुलिस हो। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो फिर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्यों ऐसी गलती करें जिससे जो है आपको ही नुकसान हो। तो क्या कहना चाहेंगे जयवीर जी, अब चलते चलते

0: लोगों से कुछ जानकारी देना
1: जैसे उनको स्पेशल अभियान चला जाता है, समझाया भी जाता है भाई रॉन्ग साइड में कितना मतलब खुद को भी कैजुअल्टी है और आगे से आने वाला हाथ अपना टारगेट करके चलता है
0: जी,
1: और वो एकदम व्हीकल देखता है सहम जाता है
0: जी बिल्कुल,
1: और स्पीड में गाड़ी रहती है उस कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उसको भी और खुद को भी, और आसपास से तो उसको दूसरे व्हीकल आगे पीछे उनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है
0: जी। तो मैं बस जयबीर जी आपसे अब ये चाहूंगी चलते चलते आप हमें थोड़े चालान का अमाउंट बता दें
1: जी मैम।
0: कुछ चालान ऐसे होते हैं जैसे सीट बेल्ट ना पहनना, कितना उसका चालान है, या फिर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोग निकल लेते हैं
1: इनके ज्यादातर 5,000 के चालान है मैम
0: जी।
1: जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो 5,000 रुपए चालान है इसके
0: जी।
1: सेक्शन 318 लगती है
0: जी। अंडर एज ड्राइविंग का कितना चालान है
1: इनका भी 5,000 रुपए चालान है।
0: 5,000 रुपए चलाना, और इसमें पेरेंट्स को भी जो है उन पर कार्रवाई होगी।
1: हाँ कार्रवाई होगी
0: जी जी। साथ ही ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां हमने बहुत देखी हैं, रोकी भी जाती हैं सड़कों पर, ऐसा नहीं है
1: जी मैम,
0: लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि साथ में चलता हुआ ट्रक है, गाड़ी है, उस पे से पत्थर गिर गए
1: जी मैम,
0: तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं
1: जी मैम। ये मैम सेंक्शन 113(3), 194(1) के तहत कार्रवाई होती है, उनके FIR भी होती है और उनका भारी चालान किया जाता है
0: जी जी। यानी इसमें FIR का सीधा,
1: FIR का इसका सीधा FIR का वो।
0: इसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूंगी मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है गाड़ी चलाते हुए, इसका कितना चालान है?
1: इसमें मैम 10,000 का चालान है और 184 सेंक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है
0: जी। यानी 10,000 का चालान है सिर्फ फोन का इस्तेमाल करने
1: जी मैम
0: जी। अगर आप अपना फोन का इस्तेमाल करें गाड़ी चलाते हुए जो कि बहुत कॉमन है, तो 10,000 रुपए का चालान आप पर हो सकता है। इसके साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग की बात आपने करी थी, बहुत बड़ा अभियान जो है वो फरीदाबाद पुलिस द्वारा चलाया भी जाता है, अक्सर सैटरडे संडे नाइट को बहुत लोगों को देखा गया है कि वो पकड़े भी जाते हैं
1: जी मैम।
0: सो ऐसे में कितना चालान होता है?
1: इसमें मैम 185 सेक्शन 185(88) के तहत FIR भी होती है,
0: सीधा FIR
1: उसमें कोर्ट
0: एक समस्या और है जयवीर जी, जो मुझे लगता है पूरे देश में गलत पार्किंग करना, इतनी गलत पार्किंग हो रही है मोहल्लों में, गलियों में, मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है?
1: इसमें 500 से 1500 तक अमाउंट का चालान का हमें,
0: यानी आपने अगर गलत गाड़ी पार्क,
1: जैसे हम देख भाई कहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करती है ना, 500 से 1500 तक चलाना रहता है
0: जी जी,
1: तो ट्रैफिक में बाधा पहुंचाते हैं
0: जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि कहीं भी पार्किंग कर रहे हैं, एक तो अगर मार्केट एरिया में जा रहे हैं तो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी ना लेके जाएं, दूर खड़ी करें
1: जी मैम।
0: और अगर आप किसी वजह से लेके भी जा रहे हैं सो आप ऐसी जगह पर पार्क करें जहां पर रास्ता ना रुके, क्योंकि अगर ट्रैफिक लगा रास्ता रुका तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, फंसी जाएगी। इसके साथ साथ जयवीर जी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है सीट बेल्ट का ना लगाना
1: जी मैम।
0: तो फरीदाबाद में इसका कितना चालान है?
1: इसका मैम 1,000 रुपए चालान है, जो सीट बेल्ट लगाता है ना
0: जी जी,
1: 1,000 रुपए चालान है
0: जी, 1,000 रुपए चालान है। और एक समस्या और बहुत बड़ी है जो यंगस्टर्स के साथ देखी गई है, गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ मजाक करना
1: जी मैम।
0: गाड़ी का नंबर अगर 8055 है तो उसको ऐसे फॉन्ट में लिखवाएंगे कि वो बॉस दिखता है
1: जी मैम,
0: और गाड़ी के नंबर ऐसे डिजाइन से बनाए जाएंगे, यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो नहीं लगवाते,
1: नहीं लगाते मैम।
0: तो इसका कितना चालान है और क्या कार्रवाई होती
1: है? इसका 500 से 1500 रुपए तक चालान है,
0: सिर्फ 500 से 1500 रुपए चालान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो गलत नंबर की, जो नंबर प्लेट एक्सचेंज कर ली जाती है, बदल दी जाती है, इसकी वजह से भी होते हैं, और बाद में ये चीज जो है वो खुल के आती है। सो
1: इनको जैसे अभियान भी चलाते हैं, चेक भी करते हैं कि जैसे RC के साथ भी मिलान करते हैं, जैसे मशीन में हम नंबर डालते हैं तो उसको पता भी लग जाता है भाई इस बंदे की है और दूसरे का नाम है ये
0: जी जी, क्योंकि गाड़ी के शीशे पे जो नंबर लिखा हुआ वो अलग होता है और गाड़ी की नंबर प्लेट पे नंबर है वो अलग होता है, तो ऐसे में नकली नंबर जी जी
1: जी।
0: तो बहुत सारे चालान और उनके अमाउंट हमने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ अपने शहर को और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सेफ बनाएंगे। जयवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए
1: जी मैम,
0: और आपने जानकारी दी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम जी मैम, वेलकम।
0: तो दोस्तों बहुत सी बातें हमने आपके साथ की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ट्रैफिक पुलिस की बात आती है ना तो ये दो तरफा बातें होती हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा जो है या फिर स्ट्रिक्टनेस जो है वो ही चीज़ों को कंट्रोल कर पाती है। ये बात आज की नहीं है, ये बात बरसों पुरानी भी है, क्योंकि जब भगवान राम को समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा था, बिने नमानत जल्दी जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय भिन होई न प्रीत। समझे आप, यानी भय के बिना प्रीत भी नहीं हो सकती है, कई चीजें आसानी से ठीक नहीं हो सकती हैं। तो चालान और स्ट्रिक्टनेस अगर ट्रैफिक पुलिस आपके लिए कर रही है तो उसको समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस का साथ नहीं देंगे तो फिर आप जिंदगियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमारे देश में लगभग 2.25 लाख लोग हर साल अपनी जान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में गंवाते हैं और 4 से 5 लाख घायल हो जाते हैं, और घायल भी ऐसे जो कई बार ठीक भी नहीं हो पाते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, उनके रूल्स को फॉलो करिए। ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही आपको इन सब रूल्स को समझना है और इन्हें फॉलो करना है। बस अपना ख्याल रखिए। सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ, आपकी सुरक्षा को लेकर करेंगे बातचीत और वार्तालाप। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आती हूं जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं उन लोगों के बारे में जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। और डॉक्टर्स जो होते हैं ना, ये तो हमेशा से मानवता की राह पर चल रहे होते हैं, लेकिन ये अपने काम के अलावा भी अगर ढेर सारा नेकी का काम करें। तो मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ एक पूरी टीम से, जो टीम है एडोलेसेंट हेल्थ एसोसिएशन हरियाणा की। सो ये न सिर्फ एडोलेसेंट हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन युवाओं में होने वाले परेशानियों को वो पहले ही आगाह करके उसके बारे में ढेर सारी जानकारी उन्हें देने की कोशिश करते हैं।
2: अब आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। और टोबैको की चपेट में अक्सर लोग यंग यानी युवा जो हैं वो आ जाते हैं, और जब एक युवा एडोलेसेंट होता है तो वो बड़ा अट्रैक्टेड होता है इन सारी चीजों को देखकर। और इसीलिए इसी उम्र से अगर उसको इस लत से छुड़वा दिया जाए तो उसका पूरा जीवन बिल्कुल सफल हो सकता है।
1: सो आज हम चल रहे हैं एडोलेसेंट हेल्थ एसोसिएशन के साथ, जिसकी सेक्रेटरी डॉक्टर मेघना आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेघना, हम करेंगे आपका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: डॉक्टर मेघना। वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। इस साल की एक थीम है, हर साल एक थीम आती है, इस साल की एक थीम है अनमास्किंग द अपील। मैं चाहती हूँ आप हमारे लिसनर्स को सबसे पहले इस थीम के बारे में बताएं।
3: यस डेफिनेटली, अनमास्किंग द अपील ये थीम हाईलाइट करती है कि कैसे टोबैको निकोटिन कंपनीज अट्रैक्टिव पैकेजिंग, फ्लेवर, स्टाइल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, एडवर्टाइजमेंट, इन सबसे ये हार्मफुल प्रोडक्ट को कूल एंड फैशनेबल और स्ले, आजकल की लैंग्वेज में बोला जाता है, वो बनाता है। तो जो स्ले लुक है दैट मेक्स इट वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू नॉट जस्ट एडोलेसेंट्स बट ऑल्सो प्रीटीन्स, जैसे हम 10-10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, इनके लिए।
2: ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि बॉलीवुड ने आजकल एक चीज अच्छी कर दी है कि जब कभी भी स्मोकिंग या टोबैको की कहीं कोई ऐसा शॉट या सीन होता है तो नीचे एक डिस्क्लेमर आता है विच सेज कि स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो एक बहुत ज्यादा झुकाव है यंगस्टर्स का, और खास तौर पर सोशल मीडिया या फिर मीडिया या बॉलीवुड या कहना चाहिए वेब सीरीज, इनसे बहुत ज्यादा लोग मुझे लगता है कि इसको देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
3: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और एक प्रकार का स्टाइल भी आता है। और आजकल नॉन स्मोक निकोटीन मतलब वेपिंग का बड़ा चक्कर ज्यादा है, ओवरऑल अल्कोहल से ज्यादा स्मोक की तरफ जेन ज़ी के बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड।
2: डॉक्टर मेघना, एक बड़ा अहम सवाल। हाल ही में मैं एक स्कूल में गई थी और वहाँ पर स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका ये कहना था कि भाई हमारे स्कूल के भी जो 8th, 9th, 10th, 11th के बच्चे हैं, कई बार उनके बैग्स में वेपिंग मशीन्स पाई जाती हैं और ये जो डिवाइस है मतलब कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो लोग अलग अलग किस्म के कैंपेन चलाते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तरफ हम हमेशा यंगस्टर्स को कहते थे भाई अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो कोई ना कोई सिम्टम या फिर हमें कोई मार्क मिल जाता था, सिगरेट का स्मेल आती थी बच्चे के मुंह से या हमें पता लग जाता था वो सिगरेट खरीदने जा रहा है। अब लेकिन क्या वेपिंग सिगरेट के बराबर हार्मफुल है या ऐसा लगता है कि ये सेफ है, इसे लिया जा सकता है?
3: एब्सोल्युटली वेपिंग उतना ही हार्मफुल है क्योंकि उसके अंदर निकोटीन का लिक्विड होता ही होता है, एट द सेम टाइम दूसरे भी कई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो सिर्फ लंग्स ही नहीं ब्रेन को, न्यूरॉन्स को भी डैमेज करते हैं। इट इज एडिक्टिव पावर बहुत ज्यादा है इसकी, लॉन्ग टर्म एडिक्शन होती है, और फिर छोटी छोटी चीजें लाइक एग्जाम वगैरह के लिए भी बच्चे को वो लेना मजबूरन हो सकता है। इसके अलावा सिंगल यूज वेप का बहुत यूज होता है कि मतलब यूज किया और फेंक दिया, ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट भी उतना ही है जितना कि सिगरेट का जो बैट होता है उतना. सो वेपिंग इज कम्प्लीटली नो नो, इट्स नॉट एट ऑल सेफ, इट शुड नॉट बी डन बाय एनीबडी आई वुड से.
2: वाकई डॉक्टर मेघना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. अब एक आखिरी सवाल, और वो है आज के हमारे युवाओं के लिए और हमारे

0: ये सभी सुनने वालों के लिए संदेश, क्या संदेश आप देना चाहेंगी?
1: मैं चाहूंगी संदेश ये देना कि टोबैको की डोज को आप एक एक्सरसाइज की डोज में बदलिए, आपको उतनी ही ऊर्जा और क्षमता प्राप्त होगी जो एक टोबैको या वेप या स्मोक देता है। एंड अपनी बॉडी का ख्याल रखिए एंड बी केयरफुल विथ योर बॉडी, बी केयरफुल विथ योर माइंड। थैंक यू।
0: थैंक यू डॉक्टर मेघना, बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग स्मोकिंग की तरफ रुझान रखते हैं उन सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल भावना जी, आपका ये रेडियो टॉक शो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दों के बारे में बात कर रहा है। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर टेकन अप। थैंक यू सो मच।
2: जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के साथ चल रहे हैं। आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर विकास जैन हैं, जो कि ट्रेजरर हैं एडोलेसेंस हेल्थ एसोसिएशन और साथ के साथ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के पास्ट मेंबर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। डॉक्टर विकास, अब एक अहम सवाल, वर्ल्ड नो टोबैको डे, दरअसल जब भी ये मनाया जाता है तो इसके बारे में बात की जाती है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इसको मनाने की जरूरत क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस होती क्या है।
1: गुड इवनिंग एवरीबॉडी, रेडियो मानव रचना के सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बेसिकली हम सब देख रहे हैं कि सब जगह एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, पर्टिकुलरली यंग एज पे, और जो जितना यंग एडिक्शन कैच करता है वो लंबे समय तक रहता है। इसीलिए हमें टोबैको और निकोटिन के डेंजर के बारे में बताने के लिए हमने एक डे मनाना चालू किया ऑन 31st of May, वर्ल्ड नो टोबैको डे। पर्पस हमारा ये है कि यंग और सारे लोग, यंग एडल्ट और यंग एट हार्ट आल्सो, वो अवेयर हो कि स्मोकिंग के, वेपिंग के, टोबैको च्यूइंग के, गुटका च्यूइंग के क्या क्या सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, और अवेयर होंगे तो वो गंदी आदतों को नहीं डेवलप करेंगे।
0: वाकई डॉक्टर विकास, ये बड़ा जरूरी भी है कि हमें ये पता हो एग्जैक्टली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी पीयर प्रेशर के बारे में। अक्सर ये कहा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग, वेपिंग, इन सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो होते हैं ना, वो यंगस्टर्स के पीयर प्रेशर होते हैं, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त को पहली बार ऑफर करता है और उसके बाद वो फिर लत लग ही जाती है। सो मुझे बताइए कि पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंस कैसे करता है।
1: बेसिकली आप ये सोचो, चार दोस्त खड़े हुए हैं, दो लोग पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, दे हैव अ थर्ड पर्सन, कि एक कश ले ले, एक कश से कुछ नहीं होगा। एंड देन देखो, हम सब बड़े हो गए हैं, तुम भी बड़े हो जाओ, अपनी मम्मी पापा की छाया से बाहर निकलो, एक बार लेके तो देख, फिर तेरे को मजा आएगा। दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। आप उन सब दोस्तों में फिट होने के चक्कर में आप पहला स्टेप लेते हो, गलत स्टेप लेते हो, दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। तो अगर आप पहली बार कॉन्फिडेंटली मना कर दो, नो आई वोंट टेक, सो दिस विल इंक्रीज योर रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको हाँ कहना जरूरी है। अगर आप पहली बार कॉन्फिडेंटली ना करते हो और सही रीजन देते हो तो वो आप पीयर प्रेशर से ऊपर आ सकते हो। अगर आपके दोस्त आपकी विश की इज्जत नहीं करते हैं तो दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स, देन यू हैव टू डेवलप नॉर्मल एंड हेल्थी फ्रेंडशिप rather than this peer।
0: और डॉक्टर विकास, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लीजिए दो दोस्तों ने ऑफर किया, फिर आजकल एक ट्रेंड है ना कि मजाक बड़ा उड़ाते हैं कि अरे ये तो बच्चा ही है, ये तो इसको तो आता ही नहीं है, चलिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पहली चीज आप यू कैन शिफ्ट योर ब्लेम टू योर पेरेंट्स कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मना किया है, ये मेरे संस्कार है, ये मैं नहीं करूंगा। सही दोस्त वही होते हैं जो सही डिसीजन की वैल्यू करें। अगर आपने सिंपल टर्म्स में बोल दिया नहीं ये मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुझे यह दिक्कत हो जाएगी, या फिर मैं एडिक्शन चाहता ही नहीं हूं, तब आपको अगर वही फ्रेंड आपको एक्सेप्ट करते हैं तो दिस मीन्स ट्रू फ्रेंडशिप, अदरवाइज नॉट अ ट्रू फ्रेंडशिप।
0: भाई ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर विकास ने कि अगर आपके अच्छे और सच्चे दोस्त हैं तो इस चीज का भरोसा रखिए कि अगर आप मना करेंगे सिगरेट को, वेपिंग प्रोडक्ट्स को, सो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि अरे तू नहीं पीता है, हम तुझसे बात नहीं करेंगे या हमारे ग्रुप में शामिल मत हो। लेकिन अगर आप ना कहेंगे तो वो इस चीज का रिस्पेक्ट करेंगे। सो चलिए, इसी से एक चीज हो सकती है कि आप अगर ऐसे दोस्तों से घिरे हुए हैं तो इसी बहाने आपको सच्चे और अच्छे दोस्तों की पहचान भी हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इसी बहाने आपको ये तो पता लगेगा कि कौन वाकई आपका अच्छा दोस्त है और कौन आपका अच्छा दोस्त नहीं है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे और आज के दिन मैं ऐसे लोगों से आपको मिलवा रही हूँ जो कि इस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। इस कड़ी में अब हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता वाइकर। डॉक्टर ममता जो कि एडोलेसेंट पीडियाट्रिशियन हैं, आज हमारे साथ हैं और ये हमें बताने वाली हैं कि यंगस्टर्स में इस तरीके का जो एडिक्शन है, निकोटीन का या सिगरेट का या कहना चाहिए स्मोकिंग का, ये कैसे आता है, टोबैको उनकी जिंदगी में कैसे एंटर करते हैं। डॉक्टर ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। देखिए, जो आपने सवाल किया कि टीनएजर्स की, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनके जीवन में निकोटीन का प्रवेश कैसे हो, इनका प्रवेश होने के मेन कारण होते हैं उनका पीयर ग्रुप, उनके साथ के जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको देखकर ये एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा, नया कुछ थ्रिल पाने की इच्छा उनको इस तरफ लेके जाती है। और चूंकि इनका जो ब्रेन है अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी ग्रो कर रहा है, पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है, तो निकोटीन का जो असर है, जो कि ब्रेन ग्रोथ पे, जो हमारी ध्यान करने की, कंसंट्रेशन की क्षमता है या मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने की, डेवलप करने की क्षमता है, हमारा इमोशनल कंट्रोल, जो हमारी भावनात्मक स्थिरता की जो क्षमता है, उन तीनों को असर तो ये करता ही है, पर तीन

0: की यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं और खास तौर पर टोबैको की कंपनीज, तो इनके क्या तरीके होते हैं? क्योंकि कायदे से देखा जाए तो हर एड के साथ, यहाँ तक कि सिगरेट के डब्बे पर भी अब तो डिस्क्लेमर्स आते हैं।
1: ये सच है कि वो डिस्क्लेमर्स देते हैं, लेकिन वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि वो दिखे ही ना। जो कंपनीज हैं उनके दो तीन खास तरीके होते हैं। एक तो वो पैकेजिंग बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। दूसरा, उसके फ्लेवर्स को वो एनहांस करते हैं कि वो इसमें फ्रूटी फ्लेवर है। फिर वो सेलिब्रिटीज यूज करते हैं उनके पिक्चर्स डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में सेलिब्रिटीज को यूज करते हुए दिखाते हैं। पीयर यूज कर रहे हैं, ट्रेंड कितना ट्रेंडी है, आप सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, इस तरह का इम्प्रेशन वो यंग माइंड्स के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, एक यंग बच्चा यंग एज में जब वो चीज एक्सपेरिमेंट करने लगता है, तो जैसे अभी अभी मैंने कहा, उसको एडिक्टेड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक बच्चा जो यंग कैच कर लिया किसी कंपनी में, वो तो उसका लंबा कस्टमर बन गया। तो ये तरीके होते हैं उनके जल्दी कैच करने के। और वो एक चीज और करते हैं, वो केवल अट्रैक्टिव नहीं बनाते पैकेजिंग, वो उसको ये भी बताते हैं कि दिस इज हार्मलेस, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो कन्विंस हो जाते हैं बच्चे और ज्यादा प्रयोग करते हैं।
0: वाकई ये बहुत ही ज्यादा अहम है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। जितने भी एडोलसेंट होते हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए टीनेजर्स होते हैं, कई बार इनके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं लग पाता है कि ये सिगरेट की या फिर इन्हें निकोटीन की या टोबैको की एडिक्शन है, क्योंकि छुप छुप कर मैनेज किया जा सकता है। सो क्या इसके कोई साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे ये पता लग जाए, या कोई वार्निंग साइंस होते हैं जिनसे पता लग जाए कि भाई इस टीनेजर को किसी भी तरीके से निकोटीन का एडिक्शन है?
1: देखिए, जो पेरेंट्स हैं या किसी बच्चे के आसपास के जो भी ग्रोन अप्स हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए ये जानना इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा केयरफुली देखने की जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा जो कि पहले शांत सुंदर स्वभाव का था, अपना काम अच्छा कर रहा था, वो अचानक इरिटेबल हो गया है, वो अलूफ हो गया है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, उसकी स्कूल परफॉर्मेंसेस कम हो रही हैं, ग्रेड्स डाउन हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हैं, काफ़ी इरिटेबल हो गया है, और उसको क्रेविंग्स होती हैं कि अभी कुछ खा लूँ, अभी कुछ मुंह में डाल लूँ, या छुप छुप के कहीं जाता है, अलग टाइम बिताता है, उसका जो पॉकेट मनी का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गया है, सीक्रेटली स्पेंडिंग मनी। और कभी कभी तो फिर क्लियरली दिखने लगता है, ये तो छुपी हुई बातें हैं, कई बार साफ दिख रहा होता है कि बच्चा स्मोक करके आया है, स्मेलिंग ऑफ स्मोक, ये चीजें होती हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, बट या इनके लिए थोड़ा सा बढ़ते बच्चों के पेरेंट्स को हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, और जब कुछ भी नया, कुछ भी डिफरेंट हो, तो थोड़ा सा केयरफुली उसके बारे में उन्होंने विचार करना चाहिए या पता करने की कोशिश करना चाहिए। भावना
0: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर ममता।
1: थैंक यू
2: दोस्तों। वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, वापस लौट कर आऊंगी, आप कहीं मत जाइएगा, छुटे रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडोलेसेंट हेल्थ एसोसिएशन हरियाणा के साथ। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये खास एसोसिएशन न सिर्फ युवाओं की हेल्थ का ख्याल रख रही है, लेकिन साथ के साथ उन्हें एक नई तरीके की सीख देने की भी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय टुटेजा से, जो कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है एडोलेसेंट हेल्थ एसोसिएशन हरियाणा और पास्ट प्रेसिडेंट है इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स हरियाणा। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में सर।
1: धन्यवाद भावना जी, नमस्कार।
0: डॉक्टर संजय, आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे और आज ना इसी के तहत हम बहुत सारी बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं पूछूं हार्मफुल इफेक्ट्स की, सो वाकई टोबैको अपने आप में बहुत हार्मफुल होता है, ये हम सबको पता है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं शरीर पर वो किस तरीके से होते हैं वो भी मैं चाहूंगी आप हमारे लिसनर्स को बताएं।
1: जरूर, टोबैको प्रोडक्ट्स बहुत हार्मफुल होते हैं और इसके फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, डिफरेंट ऑर्गन्स पे और ब्रेन फंक्शंस पे भी इफेक्ट होते हैं। तो अगर हम फिजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो हम इनहेल करते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स को तो वो सीधा लंग्स को डैमेज करते हैं, तो आपको आगे चलकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर आप लगातार पीते रहे कुछ साल तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी। फिर जब हम स्मोक करते हैं तो हमारा बीपी एकदम हाई शूट होता है उस वक्त, तो ये इनिशियली तो टेम्परेरी फिनोमिनन होता है, लेकिन अगर हम स्मोक करते रहे तो लेटर ऑन हाइपरटेंशन और हार्ट डिसऑर्डर्स जैसे हार्ट अटैक, ये सब होने का खतरा बहुत बन जाता है। अगर हम ब्रेन फंक्शंस की बात करें तो मेमोरी रिड्यूस हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है, एंग्जाइटी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, मूड स्विंग ज्यादा होते हैं स्मोकर्स में, और ब्रेन में फिजिकल इफेक्ट भी होता है। स्ट्रोक्स, जो ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं वो स्मोकर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सब फिजिकल एंड ब्रेन के इफेक्ट्स हैं, प्लस सबसे बड़ा जो इशू है एडिक्शन, इट इज हाईली एडिक्टिंग
0: जी,
1: तो बहुत ही यंग एज में एडिक्शन कर देता है।
0: डॉक्टर संजय, अल्कोहल के लिए भी ये कहा जाता है ओकेजनली अगर पीते हैं तो कुछ नहीं होगा, तो मैं अगर टोबैको के बारे में ये कहूँ कि अगर कोई ओकेजनल स्मोकर है या ओकेजनली कभी वेप किया तो क्या ये भी उतना ही हार्मफुल है?
1: जी हाँ, ये उतना ही हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि आप देखेंगे भावना, ये ओकेजनल से ही शुरू होता है और विद इन नो टाइम रेगुलर यूज में चला जाता है, से नो टू ओकेजनल ऑल्सो।
0: तो भाई देखिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज पहली बार ही ना कहेंगे तो जिंदगी भर आप उसे दूर रहेंगे, और एक बार आपने उसका स्वाद चख लिया तो कहीं ना कहीं, जैसे कि डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि बहुत एडिक्टिव होता है, शायद ये आपके ब्रेन में हर थोड़े दिनों में आपको ये कहे कि एक बार और पीकर देख लेता हूँ, तो वो वाला जो इम्पैक्ट है ना वो काफी खराब रहता है। डॉक्टर संजय, अब एक बड़ा अहम सवाल, अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक बार सिगरेट की लत लग गई या एक बार स्मोकिंग की लत लग गई तो ये निकोटीन जो है इसका एडिक्शन छूट नहीं सकता, क्या ये सच है कि नहीं छूट सकता? और ये जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं या फिर इतने सारी डी एडिक्टिव टैबलेट्स आजकल आने लगी हैं, सो क्या वाकई इसे खत्म किया जा सकता है, इससे बिल्कुल फ्री हुआ जा सकता है?
1: यस भावना, इट इज पॉसिबल, डी एडिक्शन इज पॉसिबल, ऑल्दो रिकरेंस बार बार होने के चांस रहते हैं बिकॉज इजीली अवेलेबल है, लेकिन डी एडिक्शन के लिए सबसे जरूरी है आपका विलिंगनेस और आपका विल पावर। सबसे पहले तो आप अपने आप से ये पूछें कि आप वाकई छोड़ना चाहते हैं, और अगर आप वाकई छोड़ना चाहते हैं तो उसके तरीके हैं। सबसे जरूरी होता है फैमिली सपोर्ट, फिर प्रोफेशनल काउंसलिंग अवेलेबल है, पीयर ग्रुप्स होते हैं जो डी एडिक्शन प्रोग्राम होते हैं जिसमें ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, उसमें देखो ये जो फ्लैश पॉइंट्स होता है कि कब सिगरेट पीने का मन करता है तो उसको कैसे टैकल करना है, वो तरीके दिए जाते हैं। अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज को डेवलप करें जो पहले अगर नहीं कर रहे तो उससे और हेल्प मिलती है, आपका ब्रेन फ्रेश रहता है, आप मेडिटेशन, योगा या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स को अपनाएं, जिससे आपको थ्रिल भी मिलता है और आपका स्किल भी डेवलप होता है और आप हेल्दी भी रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर किसी को देखते हो स्मोक करते हुए और आपको कूल फीलिंग आती है तो वहीं पर ही आप अपने थॉट्स को शट डाउन करिए, आप उसके ये सोचिए कि वो बंदा इज गोइंग टू डाई यंग और ही इज गोइंग टू डेवलप डिसेबिलिटी विच आई एम नॉट रेडी टू गेट. सो से नो देन एंड देयर ओनली. थोड़ा सा भी यूज किया तो एक चक्रव्यूह है, इसमें घुसना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है. तो इसलिए सबसे पहले तो आप इस हैबिट में ना ही पड़े. अगर आप हैबिट में पड़ गए हैं तो उसका भी इलाज संभव है, उसका पॉसिबल है. डी एडिक्शन वेरी मच पॉसिबल.
0: तो दोस्तों ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है हर किसी को जानना. सबसे पहले तो आप इसकी लत को लगने ही ना दें, यानी आप अपने आप को एडिक्शन की कोशिश ही ना करें कि आप एडिक्ट हो जाएं स्मोकिंग की. और खुदा ना खासा अगर मान लीजिए कि ऐसा हो भी जाता है तो आपके पास पूरा मौका है कि आप अपने जीवन को रिवर्स कर सकते हैं, वापस आप उसे उसी खुशियों के साथ भर सकते हैं, डी एडिक्शन से भर सकते हैं, जहां पर कि आप स्मोक से दूर हो सकते हैं, स्मोकिंग की इस आदत से दूर हो सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय.
1: थैंक यू भावना एंड थैंक यू यंग लिसनर्स, एडोलेसेंट्स, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट, स्टे कूल. थैंक यू.
0: दोस्तों वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, वापस लौट कर आऊंगी, आप कहीं मत जाइएगा. जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड फील लाइव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडोलेसेंट हेल्थ एसोसिएशन हरियाणा के साथ, जिसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, साथ के साथ सेक्रेटरी हरियाणा न्यूनेटल फोरम, एक्स प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड एक्स सेक्रेटरी न्योनेटल फोरम फरीदाबाद डॉक्टर सुमित चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। तो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दामा जी।
2: डॉक्टर सुमित, आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे। हर साल इसे मनाया जाता है एक नई थीम के साथ, और हम कोशिश करते हैं अपने यंगस्टर्स को खास तौर पर यह समझाने की कि वो अपने आप को इस टोबैको से, तंबाकू से दूर क्यों रखें। अब एक नया फैशन आ गया है और वो फैशन है वेपिंग, आपने भी देखा है। सो बड़ा इन है आजकल, ट्रेंडिंग है। इनफैक्ट अगर आप पब्स में जाते हैं या यंगस्टर्स पार्टी करने जाते हैं तो आजकल वहां पर भी मिलता है। अब एक जो बहुत अहम चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वर्किंग प्रोफेशनल्स एक बड़ा लंबा समय अपने ऑफिसेज में बिताते हैं और वहां पीयर के प्रेशर में आते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, ये स्कूल में एक बहुत बड़ा समय बिताते हैं। सो क्या स्कूल्स भी इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ कर सकते हैं?
1: यस सर्टेनली। आई थिंक पहला स्कूल तो हमेशा से घर होता है।
2: वाकई
1: घर से ही होती है। तो आपको पहले हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि भाई आप स्मोक खुद छोड़ें, अपनी हेल्थ के लिए जरूरी है। प्लस यू सेट एन एग्जांपल, बच्चा वही करता है जो होते हुए देखता है आसपास, है ना। तो अगर पेरेंट्स स्मोक नहीं करते तो चांसेस कम है कि बच्चा जाएगा। पेरेंट्स स्मोक करते हैं या वेप करते हैं तो डेफिनेटली

0: बच्चा भी इच्छुक होगा देखने का कि मैं भी करके देखूं। सो फर्स्ट थिंग इज सेट अ गुड एग्जांपल बाय सेइंग टोबैको फ्री फॉर द एंटायर फैमिली। देन आती है स्कूल की बारी। तो स्कूल्स में क्या है, बेसिकली हमें एजुकेट करना है एडोलेसेंट्स को कि भाई इसके क्या रिस्क हैं। एजुकेशन आपको पता होगा इफ़ यू आर अवेयर कि भाई इसके ये प्रॉब्लम हैं, तो आप डेफिनेटली उसको प्रिवेंट कर सकते हो कि बच्चा उस तरफ नहीं जाएगा। कम्युनिकेट करना जरूरी है, वी शुड एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए, अगर कोई बच्चा लेता है तो उसको बताना चाहिए आके कि भाई मैं ले रहा हूँ। एंड इनफैक्ट द टीचर शुड बी कैपेबल इनफ टू हाईलाइट इट एंड गाइड द चाइल्ड कि भाई उससे कैसे हमें बचना है, कैसे उसे छोड़ना है। इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटीज में अगर बच्चे को उसमें एनरोल करेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड बी अनदर स्टेप जिससे कि बच्चा हमारा थोड़ा सा इंक्लाइंड नहीं होगा टुवर्ड्स दिस टोबैको। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। टीनएजर्स ना अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फीलिंग, पेरेंट्स को बोलने से डरते हैं, फ्रेंड्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो आई थिंक द टीचर्स शुड बिकम देयर फ्रेंड्स, दैट इज हाउ स्कूल कैन हेल्प।
1: एक्चुअली सो वेरी ट्रू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब एक बड़ी अहम चीज है कि अगर हम इसको अपनाएं ही ना तो क्या इसके कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं?
0: हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स तो डेफिनेटली हैं, स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइज है, म्यूजिक है, योगा है, मेडिटेशन है, किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है, सो ऑल दोज थिंग्स आर डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, वी शुड प्रमोट देम। एंड जो फ्रेंड्स पॉजिटिव हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें।
1: ये तो एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है कि आप टोबैको से दूर रहेंगे और आप अपने परिवार के पास भी रहेंगे, थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे। आजकल वैसे भी हर परिवार के सदस्य की एक ही शिकायत होती है और वे कि शायद आजकल के जो बच्चे हैं ना वो अकेले अकेले कहीं बाहर रहते हैं लेकिन वो परिवार के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। डॉक्टर साहब आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, ढेर सारे लिसनर्स हमारे आपको आज सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, क्या खास संदेश आज के दिन आप देना चाहेंगे?
0: आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट, से नो टू निकोटीन एंड यस टू अ हेल्दी लाइफ।
1: सो स्वीट, वाकई। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल मैं उन सभी वुड बी पेरेंट्स के लिए जानना चाहूंगी जो वुड बी पेरेंट्स शायद अपना एक परिवार शुरू करना चाहते हैं, और उन सारे परिवार शुरू करने वाले पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो इस आदत को या तो छोड़ दें या इस चीज का ध्यान रखें कि ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी जो मदर है वो एक्सपोज ना हो। सो मेरा सवाल ये है कि अक्सर मैंने देखा है जो मेन होते हैं और जो स्मोक करते हैं कॉमनली, वो लोग शायद ये सोचते हैं कि उनके स्मोक करने से उनके बच्चे पर या होने वाले बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर हम प्री कंसेप्शनल की बात करें तो उस केयर में वेपिंग या स्मोकिंग का क्या इम्पैक्ट होता है?
0: बात प्री कंसेप्शन की नहीं करेंगे, बात हम शुरू करेंगे एडोलेसेंट एज ग्रुप से। अगर हम स्मोकिंग को या टोबैको को किसी भी फॉर्म में, वेपिंग के फॉर्म में या स्मोक के फॉर्म में एडिक्ट हैं तो ये आपकी बॉडी को हार्म करते हैं। दे अफेक्ट योर डीएनए, जो आपका बच्चा होगा वो आपके डीएनए से होगा। सो इफ योर डीएनए इज अफेक्टेड एट अर्ली एज तो इट माइट हैव अ लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंस। सो पहली चीज, वी शुड अवॉइड दैट कि भाई शुरू ही ना करें। दूसरी चीज, अब बात यह बार स्पेसिफिक प्री कॉन्सेप्शन की, तो प्री कॉन्सेप्शन में हमें क्या है कि ये हमें समझना है कि भाई अगर कोई पेरेंट्स स्मोक करते हैं तो हमारे बच्चे को रिस्क होते हैं, फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं, हो सकता है इनफर्टाइल हो, आईवीएफ ही कराना पड़े, हो सकता है बच्चा ही ना कर पाए बिकॉज ऑफ द डीएनए डैमेज विच स्मोकिंग और निकोटीन हैज डन। इसके अलावा मदर के चांसेस ऑफ मिसकैरेज बढ़ जाते हैं, प्री टर्म बर्थ, बच्चे का वेट कम होना है ना, एंड बच्चे की डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सो प्री कॉन्सेप्शन केयर में अगर हम बात करें कोई स्मोक करता है तो हमें डेफिनेटली पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से बैठ के बात करनी है कि भाई आप लोग दोनों अपना बंद करो, 3 महीने एटलीस्ट गैप दो, 3 महीने तो कोई भी स्मोक नहीं करेगा, उसके बाद यू शुड प्लान योर प्रेगनेंसी ताकि हम एक हेल्दी बच्चे को और एक हेल्दी डिलीवरी कर पाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 months बिफोर ट्राइंग टू कंसीव इज कंसिडर्ड एटलीस्ट द मिनिमम विंडो विच वी शुड बी गिविंग टू द बेबी हु इज गोइंग टू बी बॉर्न।
1: वाकई, मतलब सुनकर मुझे भी अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि अक्सर मैं ये देखती थी और इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर पिता स्मोक करते हैं तो उससे आने वाले बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आप ही का डीएनए है। और जिस तरीके से डॉक्टर सुमित ने इस बात को एम्फेसाइज किया कि ऐसा भी हो सकता है कि आज के जमाने में जहां पर इतने सारे केसेस हो रहे हैं इनफर्टिलिटी के, ये भी एक कारण हो सकता है। सो सावधान रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है आज ही इस बात को अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि आप तंबाकू से दूर रहेंगे।
0: एक आंसर और मैं करना चाहूंगा फार्मा जी,
1: जी
0: जो लोग हम समझते हैं कि वेपिंग सेफ है, बिल्कुल भी नहीं। इवन वेपिंग हैज शोन टू डैमेज योर डीएनए, सो वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड बी अवेयर कि वेपिंग इज नॉट सेफ एट ऑल। इट इज लेस हार्मफुल देन स्मोक बट इट इज डेफिनेटली हार्मफुल टू योर बॉडी एंड टू द नेक्स्ट बेबी व्हिच इज गोइंग टू बी बॉर्न।
1: तो भाई ये चीज भी ध्यान रखिएगा और ऐसा ना हो कि कहीं आप सिर्फ एक अल्टरनेटिव ढूंढने के चक्कर में अपना नुकसान करते रहें ये सोचकर कि शायद ये और कन्वीनियंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
0: थैंक यू
1: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो 107.8 FM के साथ। Feel good, feel light.

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ, और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: રેડિયો 107.8 FM પર ઢેર સારી મસ્તી, ખૂબ સારા ફન, ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम. जी हाँ, लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा शो जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पैशन से और डेडिकेशन से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. हर एपिसोड में हम किसी ऐसी पर्सनालिटी की लाइफ जर्नी को समझते हैं जिनकी कहानी हमें मोटिवेट करती है और लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला भी देती है. दोस्तों, सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलता, बल्कि उसके पीछे होती है लगातार करी हुई मेहनत, स्ट्रगल और खुद पर भरोसा. और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही व्यक्ति की. जी हाँ, ऐसे व्यक्ति की जो कि फैशन इंडस्ट्री के एक ऐसे नाम है जिन्होंने बॉलीवुड के स्टाइल को ही बदल दिया. आज का हमारा जो टॉपिक है, जो पर्सन है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा. जी हाँ, इनकी इंस्पायरिंग लाइफ की जर्नी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. एक ऐसा नाम जिसे आज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैशन और ग्लैमरस के नाम से पहचान मिली है. लेकिन उनकी सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई. इस सक्सेस के पीछे है सालों की हार्डवर्क, क्रिएटिविटी और अपने सपनों को सच करने का जज्बा. मनीष मल्होत्रा ने बिना किसी फॉर्मल फैशन डिग्री के अपना करियर शुरू किया और धीरे धीरे बॉलीवुड के सबसे बड़े डिजाइनर में से एक अपनी जगह बनाई. उन्होंने सिर्फ कपड़े ही डिजाइन नहीं किए बल्कि बॉलीवुड के फैशन को एक नई आइडेंटिटी भी दी. तो दोस्तों, आज के इस खास और स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे उनकी लाइफ की स्ट्रगल को, उनके करियर को और उनकी शुरुआत को, साथ ही उनके बॉलीवुड के राइज को, उनके फैशन लेवल की सक्सेस और उनकी लाइफ से मिलने वाले इंपॉर्टेंट लेसन को. तो बस आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं मनीष मल्होत्रा की सक्सेस स्टोरी के साथ. तो जुड़ जाइए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम लेकर आते हैं उन लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरी जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने पैशन के साथ सक्सेस को हासिल किया है। और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी फैशन डिजाइनर की। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मनीष मल्होत्रा की लाइफ जर्नी की। दोस्तों, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कहानी उसके बचपन और उसके सपनों से शुरू होती है। मनीष मल्होत्रा की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। बचपन से ही उन्हें फैशन, फिल्म्स और ग्लैमरस की दुनिया का बहुत ज्यादा शौक था। वो अट्रैक्ट होते थे इन सब चीजों को देखकर। जब दूसरे बच्चे नॉर्मल हॉबीज में बिजी रहते हैं, तब मनीष मल्होत्रा ने बॉलीवुड मूवीज देखकर एक्टर्स के कॉस्ट्यूम और उनकी स्टाइलिंग को ऑब्जर्व किया करते थे। उन्हें कपड़ों के कलर्स, डिजाइन और प्रेजेंटेशन में अलग ही इंटरेस्ट था। उनका सपना था कि वो कुछ क्रिएटिव करे, कुछ ऐसा जो लोगों को भी इंस्पायर करे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने किसी बड़े फैशन इंस्टीट्यूट से डिजाइनिंग की पढ़ाई नहीं की। और आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए एक्सपेंसिव डिग्री या फिर कोई कोर्स जरूरी होता है, लेकिन मनीष मल्होत्रा ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपका टैलेंट और डेडिकेशन है आपके पास, तो इंसान अपनी मंजिल खुद बना सकता है। करियर की शुरुआत में उन्होंने मॉडलिंग भी की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि कैमरा के सामने नहीं बल्कि कैमरा के पीछे रहकर क्रिएटिविटी दिखाना उनकी असली पैशन है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के एक बुटीक में काम करना शुरू किया। वहीं से उन्होंने फैशन इंडस्ट्री को प्रैक्टिकली समझना भी शुरू किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, फैशन ट्रेंड्स कैसे चेंज होते रहते हैं और स्टाइलिंग का रियल इम्पैक्ट क्या होता है। शुरुआत में उनके पास ना कोई बड़ा नाम था, ना ही कोई इंडस्ट्री कनेक्शन था, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग करने का कॉन्फिडेंस था। धीरे धीरे उनकी क्रिएटिविटी लोगों को पसंद आने लगी। उन्होंने हर छोटी अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लिया और उसमें अपना बेस्ट देना शुरू किया। दोस्तों, यही एक सक्सेसफुल पर्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। वो स्मॉल बिगनिंग से कभी नहीं डरते, क्योंकि मनीष मल्होत्रा ने भी स्ट्रगल्स को प्रॉब्लम नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। और शायद इसी पॉजिटिव थिंकिंग ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी की। आज जब हम उनका नाम सुनते हैं तो लग्जरी फैशन और बॉलीवुड ग्लैमरस याद आता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे एक यंग लड़के का सपना था जो बस अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हां, और आज हम बात कर रहे हैं फैशन वर्ल्ड के सुपरस्टार डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के इंस्पायरिंग सक्सेस जर्नी की। और अब तक हमने जाना कि उनके बचपन की ड्रीम्स और उनकी अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में, और अब वक्त है उस टर्निंग पॉइंट की बात करने का जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, हर सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। मनीष मल्होत्रा के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट था, बॉलीवुड में उनकी एंट्री और उनका पहला बिग ब्रेक। जी हाँ, बुटीक में काम करते करते उनकी स्टाइलिंग और फैशन सेंस लोग नोटिस करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। उन्होंने एक्ट्रेस जूही चावला के कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया, जो कि फिल्म स्वर्ग के लिए था। ये उनका फर्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट था। भले ही उस वक्त उनका नाम इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, लेकिन इंडस्ट्री में लोगों ने उनकी क्रिएटिविटी को नोटिस करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद मूवी आई रंगीला, जो कि असली गेम चेंजर फिल्म बनी। इस फिल्म में एक्ट्रेस उर्मिला का ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया। उस टाइम बॉलीवुड में फैशन का स्टाइल काफी सिंपल होता था, लेकिन मनीष मल्होत्रा ने एक फ्रेश और मॉडर्न फैशन को अप्रोच इंट्रोड्यूस किया। उर्मिला के आउटफिट, स्टाइलिंग और ओवरऑल लुक ने फैशन ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। दोस्तों, ये वही मोमेंट था जब बॉलीवुड ने रियलाइज किया कि कॉस्ट्यूम सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं, बल्कि एक कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और फिल्म की आइडेंटिटी भी होते हैं। और बस यहीं से मनीष मल्होत्रा का नाम इंडस्ट्री में स्ट्रांगली स्टेब्लिश हो गया। और इस सक्सेस के बाद उनके पास कई बड़े फिल्म्स के प्रोजेक्ट आने लगे। एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स स्पेशली उनके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि उनका स्टाइलिंग सेंस अलग और यूनिक था। उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स को सिर्फ फैशनेबल नहीं बनाया, बल्कि उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। सबसे इंस्पायरिंग बात ये थी कि सक्सेस मिलने के बाद भी मनीष मल्होत्रा ने लर्निंग और एक्सपेरिमेंटिंग कभी नहीं छोड़ा। वो हर फिल्म में कुछ नया ट्राई करते थे। उनका मानना था कि फैशन सिर्फ एक्सपेंसिव क्लोथ्स का नाम नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी का एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रैब करना चाहिए। मनीष मल्होत्रा ने भी अपने पहले ब्रेक को इतनी सिंसियरिटी और हार्डवर्क के साथ हैंडल किया कि वही उनकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन गया। और इसी टर्निंग पॉइंट के बाद शुरू हुआ बॉलीवुड में उनके स्टारडम का सफर। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर जाने का। म्यूजिकल ब्रेक पर आने के बाद हम मनीष मल्होत्रा की बॉलीवुड के फेवरेट डिजाइनर कैसे बने, उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपने एम्पायर को कैसे क्रिएट किया, उसके बारे में भी जानेंगे। पर अभी लुकी मैं एक बहुत ही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के मोस्ट आइकॉनिक फैशन डिजाइनर में से एक, जिनका नाम है मनीष मल्होत्रा। जी हाँ, मनीष मल्होत्रा की इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी की आज हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल से शुरुआत की और फिल्म रंगीला ने उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। अब बात करते हैं उनके बॉलीवुड स्टारडम और उनकी ग्रोइंग सक्सेस की। दोस्तों, रंगीला के बाद मनीष मल्होत्रा बॉलीवुड के एक ट्रस्टेड नाम में से एक बन चुके थे। डायरेक्टर्स और एक्टर्स उनके डिजाइन को काफी पसंद करने लगे थे, क्योंकि उनका फैशन सेंस मॉडर्न होने के साथ साथ ग्लैमरस भी था। उन्होंने बॉलीवुड स्टाइलिंग को कम्प्लीटली न्यू लेवल पर पहुंचा दिया। 90s और अर्ली 2000 का बॉलीवुड फैशन अगर याद किया जाए तो उसमें मनीष मल्होत्रा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कई सुपरहिट मूवीज ने उनके डिजाइन्स ऑडियंस के बीच ट्रेंड बना दिया था। और लोग सिर्फ मूवीज देखने नहीं जाते थे बल्कि उसके आउटफिट्स और लुक को भी नोटिस करते थे। पर्टिकुलरली कुछ कुछ होता है में काजल और रानी मुखर्जी के स्टाइलिश लुक यूथ के बीच फैशन ट्रेंड बन गए थे। कॉलेज फैशन हो या फिर पार्टी वियर, हर जगह बॉलीवुड स्टाइल कॉपी किया जाने लगा था। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि मनीष मल्होत्रा सिर्फ कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं कर रहे थे बल्कि इंडिया के फैशन कल्चर को भी चेंज कर रहे थे। दोस्तों, उनकी सक्सेस का एक और इम्पोर्टेंट रीजन था, वो था उनका सेलिब्रिटीज के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जी हाँ, चाहे बात हो शाहरुख खान की या फिर करीना कपूर, काजल, करिश्मा कपूर और बाद में दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स भी उनके फेवरेट क्लाइंट बन गए। सेलिब्रिटीज उन पर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी को समझकर स्टाइलिंग करते थे। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी मनीष मल्होत्रा ग्राउंडेड रहे। वो हर प्रोजेक्ट में इक्वली हार्ड वर्क करते थे। उनका फोकस सिर्फ फेम पर नहीं था बल्कि क्वालिटी और क्रिएटिविटी पर था। उन्होंने हमेशा अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। एक और इंस्पायरिंग बात यह है कि मनीष मल्होत्रा ने कभी किसी ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद ट्रेंड को क्रिएट किया है। उनका मानना था कि ओरिजिनलिटी ही किसी क्रिएटिव पर्सन की असली आइडेंटिटी होती है और शायद इसी वजह से उनके डिजाइन्स आज भी यूनिक और टाइमलेस लगते हैं। दोस्तों, सक्सेस तब और स्पेशल हो जाती है जब आप दूसरों को इंस्पायर करने लगते हैं। मनीष मल्होत्रा ने इंडिया के कई यंग डिजाइनर्स को मोटिवेट किया है कि वो भी बड़े सपने देखें और अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखें। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: ये सिर्फ मेरा नहीं पंचम, अब हम सबका है।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं उन पर्सनालिटीज की जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने पैशन से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है। और आज हम जान रहे हैं फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी के बारे में। अब तक हमने उनके बॉलीवुड जर्नी और उनके स्टारडम के बारे में बात की, अब वक्त है उनके नेक्स्ट बिग स्टेप की बात करने की। जी हाँ, उनके ओन फैशन लेबल और इंटरनेशनल सक्सेस की। दोस्तों, बॉलीवुड में इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी मनीष मल्होत्रा वहीं रुकना नहीं चाहते थे। उनका सपना और भी ज्यादा बड़ा था। वो अपना एक फैशन ब्रांड क्रिएट करना चाहते थे जो सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि पूरे फैशन इंडस्ट्री में एक लग्जरी आइडेंटिटी बन सके। और इसी सपने के साथ उन्होंने अपना एक क्वार्टर लेवल लॉन्च किया। जी हाँ, शुरुआत में उनके ब्राइडल और डिजाइनर कलेक्शन ने लोगों का अटेंशन खींचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका ब्रांड इंडियन वेडिंग और सेलिब्रिटी फैशन का सिंबल बन गया। आज अगर किसी ग्रैंड बॉलीवुड स्टाइल वेडिंग की बात होती है तो मनीष मल्होत्रा का नाम ऑटोमेटिकली लोगों को याद आ जाता है। उनके लहंगास, साड़ीज और ट्रेडिशनल आउटफिट्स में इंडियन कल्चर और मॉडर्न और ग्लैमरस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसी यूनिक स्टाइल ने उन्हें फैशन वर्ल्ड में अलग आइडेंटिटी दी है। सेलिब्रिटीज से लेकर बिजनेस फैमिलीज तक हर कोई उनका डिजाइनर आउटफिट पहनना पसंद करता है। दोस्तों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है विजन। मनीष मल्होत्रा ने सिर्फ करंट ट्रेंड्स पर ही फोकस नहीं किया बल्कि फ्यूचर फैशन को भी समझा है। उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल फैशन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक भी पहुंचाया है। आज उनके फैशन शोज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में भी नोटिस किए जाते हैं। उन्होंने ये प्रूव किया है कि इंडियन फैशन सिर्फ ट्रेडिशनल ही नहीं है बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी स्टाइलिश और लग्जरियस भी हो सकता है। फैशन इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग रहा है कि आज उनका नाम इंडिया के टॉप लग्जरी डिजाइनर में काउंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के साथ प्रेशर और कंपटीशन भी बढ़ता है। फैशन वर्ल्ड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर दिन नए ट्रेंड्स और नए डिजाइनर्स आते हैं। फिर भी मनीष मल्होत्रा इतने सालों से अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी और इनोवेशन पर कभी काम करना नहीं छोड़ा। और उनकी जर्नी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी देती है कि अगर आप अपने काम में ओरिजिनलिटी और पैशन रखते हैं तो आप सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि अनफॉरगेटेबल भी बन सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा जहां पर हम बात करते हैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज की जो हमें सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करती है, हमें मोटिवेट करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और आज भी लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक ऐसी ही इंस्पायरिंग जर्नी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फैशन वर्ल्ड के आइकॉनिक डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की लाइफ जर्नी की। अब तक हमने उनके स्ट्रगल्स, उनके बॉलीवुड सक्सेस और उनके लग्जरी फैशन लेवल की बात करी है, उसके बारे में जाना, पर अब बात करते हैं उनकी अचीवमेंट्स की, उनके रिकॉग्नाइजेशन और उनकी लाइफ लेसन की जो उनकी जर्नी हमें सिखाती है। दोस्तों, सक्सेस का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना या फिर फेम पाना नहीं होता, बल्कि असली सक्सेस तब होती है जब आपका नाम लोगों को इंस्पायर करने लगे। मनीष मल्होत्रा ने अपनी क्रिएटिविटी और हार्डवर्क से फैशन इंडस्ट्री में एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट किया है जिसे आज भी लोग एडमायर करते हैं। उन्होंने अपने करियर में हजारों कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया है, बॉलीवुड के कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स का इम्पोर्टेंट पार्ट भी रहे हैं। उनके डिजाइन्स ने एक्टर्स के स्क्रीन इमेज को और ज्यादा पावरफुल बना दिया है। चाहे बात करें करीना कपूर की, काजोल, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और कई बड़े सेलिब्रिटीज उनके डिजाइन्स पहनने हुए नजर आए हैं। ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट उन्होंने सालों की मेहनत से कमाया है और फैशन इंडस्ट्री में उनका कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें कई अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद यही है कि आज मनीष मल्होत्रा एक ब्रांड बन चुके हैं। जब भी ग्लैमर, लग्जरी और बॉलीवुड फैशन की बात होती है, उनका नाम अपने आप ही सबकी जुबान पर आ जाता है। लेकिन उनकी जर्नी का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट ये है कि उन्होंने कभी अपने स्ट्रगल को नहीं भूला। वो हमेशा यंग डिजाइनर्स जो हैं उनको एनकरेज ही करते रहते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखते हैं और बिना डर के नए आइडियाज को हमेशा ट्राई करते हैं। उनका मानना है कि फैशन सिर्फ कपड़ों का बिजनेस नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम है। दोस्तों, मनीष मल्होत्रा की स्टोरी हमें कई इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देती है। सबसे पहला लेसन है कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। अगर आपके अंदर पैशन है तो बिना फॉर्मल डिग्री के या परफेक्ट बैकग्राउंड के भी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। दूसरा लेसन है कि कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि मनीष मल्होत्रा ने सालों तक हार्डवर्क किया है इसके लिए, नए आइडियाज को एक्सप्लोर किया है और हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, उसको लर्निंग और अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। और तीसरा लेसन है, ओरिजिनलिटी ही आपका रियल आइडेंटिटी होती है। जी हाँ, उन्होंने कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपना खुद का स्टाइल क्रिएट किया और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने पैशन पर फोकस रखते हैं वही हिस्ट्री को क्रिएट भी करते हैं। और मनीष मल्होत्रा की स्टोरी इसी बात का परफेक्ट एग्जांपल भी है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज सक्सेस मंत्रा का हमारा स्पेशल एपिसोड था फैशन वर्ल्ड के सुपरस्टार, जी हाँ सुपरस्टार डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी पर। आज हमने जाना कि कैसे एक यंग बॉय जिसने अपने बचपन से ही फिल्म और फैशन का शौक दिखाया, जिसको शौक था फिल्म का और फैशन का, अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी के दम पर बॉलीवुड और इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बना लिया उन्होंने। दोस्तों मनीष मल्होत्रा की जर्नी सिर्फ फैशन की स्टोरी नहीं है बल्कि सपनों की है, डेडिकेशन की है और सेल्फ बिलीव की स्टोरी है। उन्होंने हमें दिखाया है कि अगर इंसान के अंदर पैशन हो और वो अपने काम को ऑनेस्टली करे तो सक्सेस एक ना एक दिन उसे जरूर मिलती है। एक सिंपल बिगनिंग से लेकर बॉलीवुड की टॉप डिजाइनर बनने तक का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके पास कोई बिग फैशन डिग्री नहीं थी, ना ही कोई शॉर्टकट था, लेकिन उनके पास एक क्लियर विजन जरूर था कुछ अलग और क्रिएटिव करने का, और इसी विजन ने उन्हें इंडस्ट्री में एक यूनिक आइडेंटिटी भी दी। उन्होंने फैशन को सिर्फ कपड़ों तक ही लिमिटेड नहीं रखा बल्कि उन्होंने फैशन को कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का सिंबल बना दिया। बॉलीवुड मूवीज में उनके डिजाइन ने सिर्फ एक्टर्स के लुक्स ही नहीं बदले बल्कि ऑडियंस के फैशन सेंस को भी इन्फ्लुएंस किया। दोस्तों लाइफ में बहुत लोग टैलेंट लेकर आते हैं लेकिन सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते हैं और लर्निंग कभी नहीं छोड़ते। मनीष मल्होत्रा की सक्सेस का सीक्रेट भी यही था, कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी। उनकी स्टोरी यंग जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है। आज बहुत से यंगस्टर्स अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास परफेक्ट रिसोर्सेज या फिर सपोर्ट नहीं होता, लेकिन मनीष मल्होत्रा ने ये प्रूव किया कि अगर आप अपने टैलेंट पर भरोसा रखते हैं और पेशेंस के साथ मेहनत करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं। और शायद इसी वजह से आज उनका नाम सिर्फ एक डिजाइनर का नाम नहीं है बल्कि सक्सेस और इंस्पिरेशन का सिंबल बन चुका है। दोस्तों इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे इजाजत क्योंकि घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा क्योंकि और मनीष मल्होत्रा की जर्नी से आपको अपने सपनों को फॉलो करने की मोटिवेशन भी मिली होगी। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा और आप सुन रहे हैं मेरा ये प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ हम फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। मिलेंगे अगले हफ्ते एक बार फिर से, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: हेलो पीपल, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम रेडियो रीबूट, जहाँ पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आजकल के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम रेडियो रीबूट। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मुद्दे की, एक ऐसी ही चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका असर हर घर तक पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की और उनके इंपैक्ट की जो हमारी जनरेशन पर पड़ रहा है। और आज का जमाना रील्स का, लाइक्स का और फॉलोअर्स का है। हर दूसरा बच्चा या फिर हर दूसरा जेंजी, क्या कहे तो हर दूसरी जनरेशन किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती है, चाहे वो गेमिंग हो, फैशन हो, फिटनेस हो या फिर डेली इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो। कभी तो लगता है कि जैसे सोशल मीडिया ही उनकी दुनिया बन गई है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दुनिया उन्हें इंस्पायर कर रही है या फिर कंफ्यूज? क्या इन्फ्लुएंसर कल्चर उन्हें क्रिएटिविटी सिखा रहा है या बस एक कॉम्पिटिशन के रेस में डाल रहा है? क्या लोगों की इंडिविजुअलिटी कहीं सच में सोशल मीडिया की वैलिडेशन के बीच में तो नहीं खोती जा रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए या समझदारी से बैलेंस बनाना चाहिए? इसी टॉपिक पर बस आज हम बात करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लुएंसर कल्चर ने हमारी नई जनरेशन के सोचने, बोलने और जीने के तरीके को किस तरीके से बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज इस थॉट प्रोवोकिंग और

0: इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि रेडियो रीबूट में हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम लोगों की सोच बदलते हैं और लोगों की पीओवी भी जानते हैं। तो चलिए आज इसी बात पर हम आ गए हैं मानव रचना के स्टूडेंट से कुछ बातें करने, बच्चों के कुछ थॉट्स के बारे में जानेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कहे तो उनके इम्पैक्ट से क्या समझ रहे हैं और क्या जानते हैं। सो सबसे पहले मेरे साथ है मुस्कान, आइए जानते हैं मुस्कान से कि वो उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में क्या राय है। मुस्कान, स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: हाय, सो दिस इज मुस्कान फ्रॉम बीएड कोर्स व्हिच इज द स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज फ्रॉम द थर्ड ईयर फिफ्थ सेम। सो आई एम रियली ग्लैड टू बी विद द रेडियो मानव रचना एंड आई विल डेफिनेटली टेल अबाउट माय व्यूज ऑन दिस।
0: सो मुस्कान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, आपको क्या लगता है कि असलियत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कौन? क्या हर एक कॉन्टेंट क्रिएटर जो कि थोड़ा सा फेमस होने के बाद कहता है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, क्या वो सच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है?
1: सो इन टुडेज जनरेशन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एवरीवन्स लाइफ। ये वो एक वैसे इंडिविजुअल है जिन्होंने बहुत सारी पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट गेन किया है थ्रू ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, जो कि हर एक यूथ देखता है। और फिर अभी के जनरेशन ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया है सर्टेन जैसे फिटनेस ट्रेंड्स पे या फिटनेस टिप्स पे, बहुत लोग रिलाई करते हैं फॉर सर्टेन फैशन टिप्स। इनफैक्ट कई लाइक फीमेल यूथ फोकस करती है ऐसे सर्टेन मेकअप टिप्स एंड मैनी मोर। और इफ़ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव साइड, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि जस्ट इट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। आप अपने घर पे रहकर सिंपली स्क्रॉल कर और बहुत कन्वीनियंसी के साथ आपको बहुत सारे फिटनेस टिप्स मिल जाते हैं, आपको अपने एपेटाइट के बारे में पता लगता है कि व्हाट ऑल यू कैन ऐड, सर्टेन फैशन ट्रेंड्स के बारे में पता लगता है। बट एज वी नो कि एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव साइड, तो टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड, एवरी वन टूडे वॉन्ट्स टू बी अ इन्फ्लुएंसर, बट उसका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स फॉलोअर्स, लाइक्स, अटेंशन, जो कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एज अ कंपेरिजन बेस कर देती है, बिकॉज पीपल लूज देयर सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं कि दे वॉन्ट टू गेन फॉलोअर्स, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत लाइक्स चाहिए। तो यार डेफिनेटली एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड।
0: मुस्कान, मुझे ऐसा लगता है आपके आंसर ने हमारे ऑडियंस को इतना तो समझा दिया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असलियत में होते क्या हैं। मैं आपसे ये एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि असलियत में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान करे कैसे?
1: इफ़ यू टॉक अबाउट रियलिटी, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो, बट हाँ हम सर्टेन एस्पेक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं, क्यों नहीं पॉजिटिव साइड पे फोकस करना, बिकॉज अभी के जनरेशन में एवरी थिंग हैज़ अ फ्यूचर, एवरी थिंग वी कैन रिलाई ऑन इट कि हम अपना एक फ्यूचर देख सकते हैं बींग अ एंटरप्रेन्योर और बींग अ इन्फ्लुएंसर। तो हाँ, टू सी अ गुड साइड सोशल मीडिया, आप अगर पॉजिटिव वे में ले जाए तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों को अच्छे लेसन्स दे सकते हैं जो कि उसे एक पॉजिटिव साइड में ले जाएगी, ना कि हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पर फोकस कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुस्कान।
1: थैंक यू सो मच।
0: अब हमारे साथ जुड़ गई है राशि, राशि से जानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। सो राशि, मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर जगह है और शायद उनके इन्फ्लुएंस से हम भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, पर आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो सच में रियल न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं या फिर फेक न्यूज़ के पीछे कुछ ऐसे प्रमोशंस करते हैं जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर हमारे असर पड़ता है?
1: सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर का मेन रोल क्या है? हमें मोटिवेट करना, एक गुड वे में लाइफस्टाइल को शो करना। सो लाइक जितना हम लोगों ने देखा है, हम लोग रील्स देखते हैं एट्सेट्रा एंड ऑल, तो हमने ये देखा है कि वो सिर्फ एक हैप्पी और गुड लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ शो करते हैं। सो बेसिकली विच इनक्लूड्स लग्जरी लाइफ, ट्रैवलिंग, ईटिंग एट फैंसी प्लेसेस एंड ऑल, बट आई गेस ये एक गुड पार्ट भी है बिकॉज जो बेसिकली अगर हम लोगों को देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करने का ट्राई करते हैं और वो उससे बहुत मोटिवेट भी होते हैं. तो अगर इन्फ्लुएंसर्स ही बहुत ही ऐसा डिमोटिवेटिंग और नेगेटिव वे शो करेंगे तो शायद वो भी एक रॉन्ग वे हो जाएगा. बट आई बिलीव कि इट शुड बी न्यूट्रल. प्लस इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ तो लाइक ब्लाइंडली किसी भी चीज़ में बिलीव करना इज हार्मफुल. सो लाइक पीपल शुड ऑलवेज like always not try to copy like what influencers are telling. They should like live in reality.
0: तो आपके आंसर में एक चीज़ थी कि कोई भी चीज़ को हम एक बार रीचेक करें. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राशि मुझे एक चीज़ बताइए कि आज के टाइम में अगर हम देखें हमारी यूथ 60% हमारी यूथ ऐसी है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन को और मिसलीडिंग चीज़ों को बिना रीचेक करे उसे शेयर कर देती है, अपनी स्टोरीज पर लगा देती है, आसपास में फ्रेंडों के पास शेयर कर रही है, तो क्या ये सही है? आप अपना क्या POV देना चाहेंगी उन लिसनर्स को जो ऐसा कर रहे हैं?
1: सी बेसिकली दिस इज वेरी रॉन्ग क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी अगर हम पास ऑन करते हैं पहले तो बिना कन्फर्म करे हमें कभी भी नहीं पास ऑन करनी चाहिए क्योंकि वही र्यूमर्स बहुत गलत चीज़ है. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड लाइक वी शुड ऑलवेज बिलीव ऑन गवर्नमेंट वेरीफाइड न्यूज़ जो कि हमारे वेरीफाइड न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़पेपर्स में आती है. एंड कभी भी वी शुड नॉट लाइक प्रमोट और लाइक शेयर द फेक न्यूज़. एंड आई नो सम इन्फ्लुएंसर्स डू दिस थिंग टू गेट व्यूज एंड ऑल दो स्टफ बट दिस इज़ रियली रॉन्ग. एंड लाइक बींग लाइक ऑडियंस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग भी पहले क्रॉस चेक करें एंड देन उस पर बिलीव करें.
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच राशि.
1: वेलकम.
0: अब हमारे साथ है आयुषी. आयुषी से जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए उनके क्या POV है. सो आयुषी आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना में.
2: हेलो.
0: सो आयुषी मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हमारा इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में से आता है सोशल मीडिया फ्रॉड के केसेस में. तो आप मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर जो क्रिप्टो करेंसीज हो गई या फिर कोई ऐसे स्कैम्स जिसको फॉरवर्ड करा जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है कि आप इसे खेलिए, उनका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो उससे कैसे बचें?
2: जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों में स्कैम हो जाता है उनके साथ क्योंकि उनको लगता है जो वो क्रिएटर्स लाइक इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी देखते हैं उनको लगता है दे आर लाइक दे ब्लाइंडली फॉलो देम. सो इस वजह से वो अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं, अननोन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से उनके साथ ही स्कैम हो जाता है, उनका अकाउंट हैक हो जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड वेरीफाई इट बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक.
0: सो आयुषी आपने कहा कि ओवर शेयरिंग हो रही है. ओवर शेयरिंग तो हम सब देखते हैं कि हम रील स्क्रॉल करने बैठते हैं, हम पता नहीं 25-30 रील ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं, चाहे वो रियल हो या फेक न्यूज़ हो या कोई भी चीज़ हो. तो आप मुझे एक बात बताइए कि ओवर शेयरिंग से कैसे बचें?
2: सो एक्चुअली आजकल जैसे स्टूडेंट्स एंड ऑल ये सब क्या करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे सीरियसली दे शेयर दे प्राइवेसी एंड यू नो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एंड वो कुछ भी शेयर कर देते हैं लाइक उनकी लोकेशन हो गई जहाँ वो पार्टी कर रहे हैं या कहीं भी वो घूमने जा रहे हैं. इससे क्या होता है साइबर क्राइम्स की जो रेट है काफ़ी बढ़ रही है क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो उनका अकाउंट हैक कर लेते हैं जो दैट डैमेजेस देयर प्राइवेसी. सो वी नीड टू थिंक बिफोर वी पोस्ट एंड ऑल्सो हमें अपनी यू नो सेटिंग्स में जाके एडवांस सेटिंग्स ऑन कर लेनी चाहिए फॉर प्राइवेसी रीजंस एंड 2-step वेरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से.
0: अच्छा तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी आपके पास ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसे फॉलो रिक्वेस्ट आई हो जो कि फेक आईडी से हो? ऐसा बहुत बार होता है लड़कियों के साथ, हमने देखा है कि कोई ना कोई ऐसे लड़के की इमेज लगा करके और उनके पास फॉलो रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप उन्हें कैसे पहचानते हैं?
2: पहली बात तो एक्चुअली अननोन रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, जो म्यूचुअल्स होते हैं मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ. सो ये चीज़ है.
0: तो आप हमारी ऑडियंस को हमारे लिसनर्स क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
2: मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि थिंक बिफोर यू पोस्ट एंड अपनी पर्सनल डिटेल्स डोंट ओवरशेयर इट ऑन सोशल मीडिया.
0: थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू.
0: ओके सो कीते मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आज हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमें हर जगह से ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये तो हमने देखा है, अपनी अनरियलिस्टिक दुनिया को दिखाना, लोगों को बताना कि हम कितने खुश हैं या हमेशा एक कहीं तो पॉजिटिव साइड को ही दिखाना लोगों को. तो आपको क्या लगता है कि हम अगर उन्हें फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली तो क्या वो सही है? क्या उन्हें कॉपी करते करते कहीं हम अपनी रियल दुनिया से पीछे तो नहीं भाग रहे?
2: यस आई फील कि वो अनरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड्स क्रिएट तो करते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज हो गई या समर ट्रिप्स हो गई, उसमें वो अपना लाइक प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए, तो हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, सो हम अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं एंड हम अपना फोकस जो हमारा जो रियल फोकस होना चाहिए लाइक स्टडीज हो गई, जैसे मेरा स्टडीज़ है तो उससे हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, तो आई वुड से कि हाँ हम थोड़ा अपने इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं और वो ट्रेंड हम भी चाह रहे हैं कि हम भी ऐसा करें।
3: सो कीर्ति, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़्यादा वल्गैरिटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं बिकॉज ऑफ चंद कहीं तो फॉलोअर्स या फिर लाइक्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि सच में सही है, कहीं आगे चल करके उनके लिए एक मुसीबत ना बन जाए?
2: हाँ, मुझे लगता है कि वल्गर कंटेंट जो थोड़ा है लाइक थोड़े ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा सा नहीं होता, वो नेगेटिविटी तो थोड़ा फैला रहा है एंड उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं रादर दैन जो इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन यूथ को पहुँचा सकते हैं। सो आई फील कि इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ अभी के लिए है, बाद में जाके धीरे धीरे वो नेगेटिविटी ही और फैलाएंगे आएंगे।
3: ओके, सो कीर्ति आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को
2: कि इफ़ वी यूज सोशल मीडिया, लाइक सोशल एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, सो सोशल मीडिया अगर आप अच्छे से यूज़ करें विद अ प्रॉपर टाइम लिमिट सही है सोशल मीडिया, अगर ज़्यादा यूजेज करें या थोड़ा नेविगेट हो जाए आप रॉन्ग उसमें चले जाएँ तो इट्स
3: कहीं ना कहीं वो गलत इम्पैक्ट डालेगा हमारे ऊपर।
2: हाँ जी
3: बिल्कुल, थैंक यू सो मच कीर्ति। अब हमारे साथ है पारस। पारस, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो शेयरिंग की भी बात होती है, शेयरिंग जो हम देखते हैं कि आज के टाइम में यूथ हर चीज़ को शेयर कर रहा है, चाहे अपनी फोटोज हो, वीडियोज हो या कहीं घूमने गए हो, हर चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें जो नॉर्मल लग रही है क्या ये सही है सच में?
4: नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आजकल देखो अब क्या होता है, आजकल लोग अपने ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब और सोशल मीडिया व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को असाइड वो सारे काम करते थे, लेकिन अब क्या होता है बी इट फूड, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, ट्रैवल, तो वो सब सारा का सारा अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया ऐप्स पर शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ वो अलग अलग हो जाती है और वो अपने इमोशन भूल जाते हैं।
3: आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो शायद नेगेटिविटी और ट्रोलिंग से ज़्यादा फेमस होते हैं, ये चीज़ तो हम सबने देखी होगी कि अगर कोई इंसान एक बार ट्रोलिंग के फेज में आ जाए तो उसके बाद उसका नाम हर जगह होता है, तो क्या ये सही है, क्या हम आज के टाइम में ट्रोल होकर के अपने आप को फेमस करके अपने कल के जीवन के लिए क्या ये सही कर रहे हैं?
4: हाँ, जैसे कि मान लो कोई किसी इंसान ने अपनी रिलेशनशिप अपलोड कर रखी है किसी सोशल मीडिया ऐप पे, लेकिन उससे क्या होता है कई इन्फ्लुएंसर उसको अपने सोशल मीडिया ऐप में डाल के उन लाइक्स के लिए और कमेंट्स के लिए वो लोगों की ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन वो ट्रोलिंग क्या होता है कि जिसके ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है वो उसको पसंद नहीं आती, उससे उसके जो फैमिली में होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको उसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है और जिससे उससे क्या होता है उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है।
3: अपना कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
4: या मैं कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखो, आप करो सोशल मीडिया के अंदर अपनी कंटेंट करो, पोस्ट करो, लेकिन पर्सनल लाइफ को भी अपना असाइड करके थोड़ा कम करो।
3: थैंक यू सो मच पैरल।
4: थैंक यू।
3: अब हमारे साथ है कुछ कुछ से जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया को देखकर ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत आसान हो गई है, ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको मुझे एक बात बताइए कि हम जब उन लोगों को देखते हैं हमें ये लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है तो हम वो चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं, पर मुझे एक चीज़ जाननी है कि उसकी वजह से हम जो अपनी लाइफ का जो असली फोकस है उसे खो करके हम कहीं उस दुनिया में तो नहीं जा रहे जो सच में फेम के लिए या फिर एक पॉपुलैरिटी के लिए बनी हो?
5: सोशल मीडिया फेम को बहुत ओवरनाइट फेम की तरह देखा जा रहा है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत सालों की मेहनत और फेलियर्स को छुपा देता है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओवरनाइट फेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा और आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। आप बिना मेहनत किए कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हमें अपनी लाइफ में अचीव करना है वो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। हम किसी और के भरोसे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आजकल बहुत लोग ट्रोलिंग की मदद से सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमें अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना चाहिए।
3: कुंश, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि वायरल ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी करते हैं, चाहे वो बात हो, अगर हम बात करें वीडियोज़ की, चाहे वो वल्गर वीडियोज़ हो या फिर हेरेसमेंट की वीडियोज़ हो या फिर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट या फिर

0: ऐसे मान लो कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, पर आपको क्या लगता है कि ये सच में एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है या फिर ये हमारे जान के लिए एक रिस्क हो सकता है या कहीं ये इंसान को क्राइम की तरफ लेकर जा रहा है?
1: अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी को हैरेस करके या किसी वल्गैरिटी को यूज़ करके फेमस हो रहे हैं तो वो खाली एंटरटेनमेंट तो नहीं रह जाता, मेरे हिसाब से वो क्राइम की तरफ चला जाता है। हमें ये दूसरों की ये समझना चाहिए कि दूसरों की डिग्निटी और प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी चाहिए हमें किसी, और मेरे हिसाब से इन क्राइम्स के लिए हमें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए उनको, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, ताकि जो लोग इस तरीके से फेम पाने की कोशिश करते हैं वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढे और मेहनत करके ही आगे बढ़े।
2: तो दोस्तों, आज के रेडियो रीबूट एपिसोड में हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वर्ल्ड में एक नजर डाली है, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर ग्लैमरस भी है, ग्रोथ भी है, पर कंफ्यूजन भी साथ में है। हमने समझा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये बच्चों के सेल्फ इमेज, उनके ड्रीम्स और उनके डिसीजन तक पहुंच चुका है। कहीं ये इंस्पिरेशन का सोर्स बन गया है तो कहीं कंपैरिजन का प्रेशर लेकर आ रहा है, और ये रीजन बहुत बड़ा है। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर हमेशा बुरा नहीं होता। अगर लोगों को राइट डायरेक्शन दी जाए वो डिजिटल वर्ल्ड में सीख भी सकते हैं नए स्किल्स, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी भी। जरूरत है सिर्फ एक बैलेंस और एक अवेयरनेस की, बच्चों को समझने की, बच्चों को समझाने की, ना कि उन्हें रोकने की। सोशल मीडिया को विलन नहीं बनाना बल्कि एक स्मार्ट फ्रेंड की तरह उसे यूज करना सीखना होगा, जिससे हम इंस्पायर हो पर उनके स्लेव्स ना बने। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज के लिए मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। आप बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, जहाँ पर हर बात होती है दिल से। तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए, फील गुड फील लाइव।
3: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमि और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं आने की आरजे साक्षी आ जाती हूँ आपके पास लेके अपने प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ आज है संडे का दिन और एक बहुत ही ज्यादा खास दिन है, आज है वर्ल्ड टोबैको डे। और इस दिन पर बहुत सारी बातें आज आपसे मैं करने वाली हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं। इन एक्सपर्ट के बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज एक छोटा सा ब्रेक अभी लेती हूँ। और अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, जरूर आप हमसे जो है वो बता सकते हैं हमें, और मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़ रही और सुन रही है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए, अब ना मैं आपको बता दूं, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। और जल्दी से ऐप, जैसे आप डाउनलोड करते हैं ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर उपर हिट एवरग्रीन सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और विदाउट एनी चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं ये ऐप को डाउनलोड। इसी के साथ आप हमें हमारे इंस्टा पर भी या फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे रेडियो मानव रचना के नाम से। तो बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है और सारी जानकारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी और वो भी चुटकियों में। तो बस देरी इस बात की, जुड़ जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। और इसी के साथ आज हमारे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुमित भटेजा फ्रॉम MRDC मानव रचना डेंटल कॉलेज से। बहुत सारी होने वाली इनसे बातें और आज वर्ल्ड टोबैको डे पे क्या खास जानकारी आप तक लेकर के मैं और देखिए आज हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं, बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है वर्ल्ड टबैको डे और इस स्पेशल एपिसोड में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तंबाकू के बारे में जानने वाले हैं, कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और साथ ही बहुत सारी जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुमित भटेजा, जो एक एक्सपीरियंस्ड ओरल हेल्थ एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ओरल डिजीज़ जो है और कैंसर अवेयरनेस पर ये काम करते हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ और एडिक्शन बिहेवियर को भी डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सुमित भटेजा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: डॉक्टर सुमित, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज वर्ल्ड टोबैको डे है, तो इसका मेन पर्पस क्या है?
1: जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, दिस इज़ बीन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ये हर साल 31 मई को जो है मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस, जो है अवेयरनेस, जागरूकता बनाने के लिए फॉर दी टोबैको यूज़ और उसके साथ एसोसिएटेड जो भी हेल्थ रिस्क हैं टोबैको से, तो वो सब चीज़ों के बारे में जो है जनता को अवेयरनेस करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ये दिन को है। ग्लोबली जो है WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था 1987 में, तब से अब तक रेगुलरली ये हर साल 31 मई को ये डे इस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्टली अमंग दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑल ओवर दी कंट्री। सो इसका जो बेसिक पर्पस ये है कि इस जो अभी अगर हम करंट ट्रेंड्स पे जाएं, 1.3 बिलियन टोबैको यूजर्स हैं इस समय वर्ल्ड वाइड, तो अब उसमें से ऐसा देखा जाता है टोबैको जो है 1 in 4 seconds जो है एक लाइफ क्लेम कर रहा है। सो रफली आप देखिए 8 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ्स होती हैं ग्लोबली हर साल। तो इस तरीके से जो है टोबैको के बहुत सारे हेल्थ रिस्क हैं जो कि लोग जानते नहीं हैं, तो उसी को जागरूकता, इसको आप, ये है तंबाकू का जागरूकता दिवस है जिस उसमें इनिशिएटिव जो है मनाया जाता है।
0: जी डॉक्टर सुमित, मैं जानना चाहूंगी कि इस बार की थीम क्या है?
1: हर साल जो है WHO एक नई थीम देता है वर्ल्ड नो टोबैको को, तो जो 2026 की जो थीम है वो उसका है अनमास्किंग द अपील। बेसिकली इसके अनमास्किंग द अपील के अंदर आता है जो भी ये जो मैन्युपुलेटिव जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं और जो फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो तंबाकू के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे यंग लोगों को टारगेट करते हैं और वो इस चीज़ के नशे में जो है एडिक्शन के प्रोसेस में आ जाते हैं। तो जिस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं और जो मीडिया प्रोजेक्ट करता है टोबैको को, तो इसीलिए जो है हमारा आज का यूथ है वो बहुत जल्दी इन चीज़ों की वजह से प्रभावित हो जाता है। तो इस बार की जो मेन जो थीम यही है कि जो मार्केटिंग टैक्टिक्स जो हो रही हैं इसको सेल करने की, चाहे कोई बड़ा कोई फिल्म स्टार हो, वो भी किसी और तरीके से, चाहे वो तंबाकू ना कहे पर वो किसी और तरीके से एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है, वो इसे इलायची बताएंगे या कुछ भी, तो ऐसे में क्या है जो यूथ में हैबिट पड़ जाती है, जो हमारा नौजवान है देश का, वो सबसे बड़ा टारगेट है इस चीज का, बिकॉज वो एज WHO बोलता है सबसे मोस्ट वल्नरेबल एज मानी जाती है कोई भी तरह की नशे पदार्थ की लत लगने के लिए।
0: जी जी
1: बिल्कुल, इसीलिए इस बार की थीम इस पे ही टारगेट कर रही है।
0: बिल्कुल, देखिए अगर आप भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट आज मौजूद है हमारे इस प्रोग्राम में, आज है वर्ल्ड टोबैको डे और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमित भटेजा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट भी है मानव रचना इंस्टीट्यूट से, और बहुत सारी बातें जो है आज हो रही है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज से आज हमारे साथ सुमित भटेजा जुड़े हुए हैं। अगर आप भी कुछ सवाल जानना चाहते हैं, आपके जवाब आपको चाहिए, जरूर मिल सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं हमारा जो नंबर है वो है 8010781078, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। आज वर्ल्ड टोबैको डे और आज हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर सुमित भटीजा। डॉक्टर सुमित, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ। आजकल यंगस्टर्स, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, इसमें स्मोकिंग और वेपिंग, यहाँ मैं वेपिंग पे थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पर जरूर डालूंगी क्योंकि ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है, आपके अकॉर्डिंग

0: हमारा रोज मिलना जुलना, उठना बैठना है, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं कोई भी तरह की हैबिट, बीट वेपिंग और तंबाकू किसी भी और फॉर्म में, नशे में लेने में। तो एक तो वो सबसे बड़ा कारण होता है इस चीज में, और दूसरा जो कि वेपिंग की हम बात करें तो ये आजकल एक स्टाइल स्टेटमेंट की तरह भी प्रोजेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो है थोड़ा सा हमारा जो मीडिया का ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इन चीजों में, कि इन चीजों का जो है ऐसा प्रोजेक्शन होता है कि ये चीजें करने से, अब अगर एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट या इस तरीके की चीजें आती हैं कि अगर एक लड़का है वो अगर ऐसी चीजें करता है, स्मोक कर रहा है, वेपिंग कर रहा है, तो ही अपीयर्स टू बी वेरी कूल या बहुत ही मैचो लग रहा है। तो ऐसी अगर एक इमेज हम एडवर्टाइजमेंट में बना रहे हैं तो नेचुरली जो यंगस्टर्स हैं इन चीजों को कॉपी करेंगे और वो भी ये स्टाइल, इसको एज अ अपना स्टाइल स्टेटमेंट मानेंगे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैं बहुत ज्यादा जो है अपोजिट जेंडर की जो मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है, जो कि इस एज में बहुत कॉमन होता है। तो जैसा उनकी जो थॉट प्रोसेस चलता है, सो ये यहीं पे जो चीजें आती हैं, जैसे जो हमारी इस बार की थीम से भी यही सब चीजें रिलेटिव हैं, कि यही जब जिस तरीके से हम जो उसकी अपील बनाते हैं उस चीज की, ताकि वो चीज ऐसे लगे कि अब जैसे किसी ने कोई वेपिंग में क्या है, लोगों को लगता है कि ये तो बहुत हेल्दी है, इसमें बहुत सारे फ्रूट के फ्लेवर्स डाले जाते हैं, तो ऑरेंज है, बीट, चेरी, एप्पल फ्लेवर्स, पाइन एप्पल ऐसे भी आते हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं ये तो हेल्दी ऑप्शन है, इसमें फ्रूट भी है, फ्रूट कॉम्पोनेंट, बट उनमें सिर्फ कुछ भी फ्रूट नहीं होता, ये सिर्फ बच्चों को, यंगस्टर्स को इन चीजों की एडिक्शन लग जाती है, उनमें कोई भी ऐसा कोई फ्रूट कॉम्पोनेंट नहीं होता इन चीजों में, इनमें सिर्फ आर्टिफिशियल ऐसे फ्लेवर्स डाले जाते हैं जो अपने आप में कैंसरस भी होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स जो कि अपने, या स्वीटनर्स जो अपने आप में बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो है मुख्य रूप से।
1: बिल्कुल डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो सिर्फ कभी कभी स्मोक करते हैं, हमें एडिक्शन नहीं है, तो क्या ये ओकेजनली स्मोकिंग भी बॉडी को हार्म करती है?
0: देखिए, जो टोबैको की जब हम बात करें तो ये शुरुआत तो ओकेजनल से ही होता है, ठीक है, कभी किसी दोस्त ने, यार दोस्त ने किसी को बोला कि एक बार करके देखो। तो हर चीज, जो भी कोई भी हैबिट हमारे को स्टार्ट होती है लाइफ में, वो होती एक से ही है, एक के बाद वो चीज अगेन होती है, अगेन के बाद वो एक हैबिट, एडिक्शन में कन्वर्ट होती है। चीजें ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, तो आपने वो चीजों का सेवन करते हो, फिर ये चीजें इंसान पहले तो ग्रुप में करता है, फिर उसको इसका धीरे धीरे इन चीजों की वजह से एक प्लेजर जैसे गुड जो है फील गुड फैक्टर जिसे हम कहते हैं, प्लेजर सेंसेशन आने लगती है। तो इंसान जब भी स्ट्रेस में या किसी तरह के मानसिक तनाव में, तो वो ये चीज खुद से ही अकेले में नशे शुरू करता है, तो ऐसे करके एडिक्शन बनती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे इजी वे आउट है अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए कि इसका सेवन करें, क्योंकि इसकी उन्होंने पहले ये चीजें ली होती हैं कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी ओकेजनल पार्टी में या जैसे भी, तो उनको उससे वो फील गुड फैक्टर आता है। ठीक है, बहुत से लोग ये चीजें करते हैं कि पार्टी में थोड़ा मजा लेने के लिए, लोगों के साथ थोड़ा इंजॉय होने के लिए, पर उस समय वो चीजें करते हैं ऐसे ही, फिर जब वो अकेले होते हैं, वो कोई भी तरह के मानसिक तनाव से गुजर होते हैं, तो वे चीजों को स्टार्ट कर देते हैं, यहां से हमारी एडिक्शन साइकिल जो है शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आपको भी कुछ जानना है टबैको के लिए रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ आज डॉक्टर सुमित भटेजा जुड़े हुए हैं, आप जान सकते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन. बहुत सारी होती हैं बातें. आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुमित भटेजा. आज है वर्ल्ड टोबैको डे और इस खास दिन पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी गाइडेंस हमारे साथ हमारे पास लेकर के आ गए हैं. और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं 8010781078 ये हमारा नंबर है, इस पे आप मैसेज द्वारा अपना सवाल भेज सकते हैं. डॉक्टर सुमित, मैं आपसे अब अगला सवाल जानना चाहूँगी. बात करें टबैको की तो सबसे पहला इफेक्ट बॉडी के किस पार्ट पर पड़ता है, दिखता है?
1: जो तंबाकू के जो इमीडिएट जो इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे पहले क्योंकि इसका जो सेवन है वो माउथ से किया जाता है, तो उसके जो भी लक्षण होते हैं वो मुंह से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे माउथ में, क्योंकि हम टोबैको, चाहे वो बीट सिगरेट स्मोकिंग फॉर्म में टोबैको या स्मोकलेस जिसे हम च्यूइंग टोबैको कहते हैं, तो उसके माउथ में हमें अर्ली साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं. तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मसूड़े हमारे गलने लगते हैं, मुंह के अंदर भी बहुत सारे छाले और लाल सफ़ेद धब्बे ऐसे दिखने शुरू होते हैं जो भी तंबाकू लेते हैं. उसके अलावा जो हम जैसे देखें बॉडी पार्ट्स में, सबसे पहले जो हमारी सर्कुलेशन जैसे बोलते हैं ब्लड फ्लो अफेक्ट करता है बॉडी का, उससे जो है हार्ट अटैक होने का चांस ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा डबल टेंडेंसी हो जाती है देन अ नॉन स्मोकर. तो और उसके साथ अगर जो नेक्स्ट जिस ऑर्गन पर अफेक्ट होता है वो होता है लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं. तो लंग कैंसर का एक सोल कॉज है टोबैको का सेवन करना, तंबाकू का. जो बाकी इलनेसेस जैसे जो और हो जाती हैं इसमें आती हैं ब्रेन के, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब कम होती है तो ब्रेन के, तो ऐसे में जो ब्रेन में स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. तो वैसे तो तंबाकू लगभग हर उसमें ऑर्गन्स पे काम करता है, मतलब उसका जो इफेक्ट दिखता है, पर जो ये मुख्य ये तीन होते हैं, हार्ट हो गया, उसमें लंग हो गया, और थर्ड हमारा जो होता है स्ट्रोक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है ब्रेन में.
0: जी, तो डॉक्टर ये भी एक धारणा है लोगों की कि अगर वो स्मोक करते हैं तो उनका वजन जो है वो कम हो जाएगा या फिर आवाज़ अच्छी हो जाएगी, ग्रेनी हो जाएगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, जहाँ तक कि ये बात है जो वेट से संबंधित है, तो ये एक ज़रूर इसका एक निकोटीन जो इसके अंदर होता है तंबाकू के अंदर, उसका एक एक्शन होता है, बस वो मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ हम कह सकते हैं 2 से 5 किलो वजन पे काम करता है, कम कर देता है. और उसका भी एक्शन क्या है, वो एपिटाइट जो हमारी भूख होती है उसको सप्रेस करता है, और हमारा जो टेम्परेरली जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, जिसे हम हमारा BMR बोलते हैं, जिसपे ज़्यादातर जब भी हम वेट लॉस प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो भी जो BMR पे वर्क करते हैं. तो यस, ये करता है. तो इसीलिए बहुत लोग जो स्मोकिंग करते हैं कई बार वेट लॉस के लिए, बट ये चीज़ बहुत ही गलत है, बिकॉज अगर वेट लॉस करना है तो उसके लिए बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और तरह के जो बैलेंस तरीके हैं जिनसे मैनेज करना चाहिए. और जहाँ तक कि आवाज़ और ऐसी चीज़ें भी जो आप बता रहे हैं संबंधित हैं, तो इन सब चीज़ों का भी बेसिकली वही होता है कि उस समय हम डेफिनेटली इन चीज़ों को जब करते हैं, बहुत सारे हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं बॉडी में, ब्रेन से बहुत सारे केमिकल्स जिसे हम बोलें रिलीज होते हैं, इन चीज़ों से इफेक्ट होता है हमारी जो है वॉइस, और इसकी जो हस्कीनेस बढ़ जाती है तो उससे हो जाता है. तो बहुत से सिंगर्स ये सब चीज़ें करते भी हैं, स्मोकिंग और ये सब चीज़ें, और जो स्मोक करके ही कोई अच्छा गाना, ये भी बड़ा जो हमारी अगर आप देखिए जो हमारी बॉलीवुड में तो ये बड़ा कॉमन है, जैसा मैंने सुना भी था ये किसी पीछे किसी न्यूज़पेपर में मैंने, आई विल नॉट नेम द सिंगर, उन्होंने बोला था कि मैं तो जब भी स्मोक करके गाना गाता हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आती है. तो ऐसी, बट ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब गलत तरह की धारणाएँ हैं, और इनकी वजह से गलत जो प्रचार होता है इन चीज़ों का, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए. चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. हमारे साथ आज के एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित भटेजा जुड़े हुए हैं, और आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.

0: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और आज वर्ल्ड टोबैको डे है और इस दिन पर बहुत ही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकर के जुड़ गए हैं डॉक्टर सुमित पटेटा और बहुत सारी बातें कर रहे हैं. डॉक्टर सुमित, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी. ओरल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं आप, तो क्या आप इजी लैंग्वेज में ये बता सकते हैं कि माउथ कैंसर के लिए जो अर्ली साइंस हैं वो क्या होते हैं?
1: जी, माउथ कैंसर का जो सबसे पहले तो आपको, अगर मैं प्रमुख कारण जो माना जाता है वो है टोबैको कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में. अब चाहे आप स्मोकिंग करते हो चाहे आप च्यू करते हो टोबैको, दोनों फॉर्म से कैंसर होने का जो है मुख्य कारण वो रहता है. सबसे पहले ज़्यादातर पेशेंट्स जो ये हमारे पास ऐसी कंप्लेंट लेके आते हैं और कि उनके माउथ में वाइट पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं जब भी वो अपने माउथ को एग्जामिन करते हैं, सफ़ेद धब्बे पैच दिखते हैं. ठीक है, सफ़ेद के बाद ये धीरे धीरे, ये एक इनिशियल स्टेज होती है. अगर इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट इसको इग्नोर कर रहा है सफ़ेद धब्बे को माउथ में, धीरे धीरे वो आगे जाके लाल भी बन जाते हैं जो कि और ज़्यादा कैंसर, जिसके अंदर जो और ज़्यादा कैंसर के जो मेलिग्नेंसी रेट हाई हो जाता है, जैसे कैंसर और जिसे हम कहेंगे आम भाषा में बढ़ने का और खतरा बढ़ जाता है. तो अगर ऐसा कुछ भी हम सबसे कहेंगे कि ऐसा सफ़ेद लाल धब्बे, मुंह में जलन होना, जलन ऐसा नहीं है कि कुछ तीखा खाने भी होगी, अगर वो नॉर्मल भी खाना खा रहे हैं और बाकी लोग घर में कह रहे हैं कि उनको ऐसा कुछ नहीं जलन होना पर उनके साथ उसी हल्के मसाले में भी उनको जलता है मुँह, तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण हो जाता है. ये है, इसको हम एक वार्निंग साइन मान सकते हैं. साथ में मुंह कम खुलना, नॉर्मल से जो है माउथ ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं वो कम हो जाती है. तो ये जो कुछ 4 साइंस हैं जो हम पेशेंट्स में देखते हैं, तो उससे हमें जो है, और जो सबसे पहला हमें इस चीज़ का एक क्लू मिलता है कि डायग्नोसिस की तरफ कि कैंसर होने का खतरा है. उसके साथ फिर हमें कुछ और परीक्षण कराने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जिससे हमें कंफर्म होती हैं आगे जो डायग्नोसिस.
0: बिल्कुल डॉक्टर, कई सारे लोग जो हैं वो गुटखा, पान मसाला या जो फ्लेवर तंबाकू है इसको सिगरेट से लेस हार्मफुल समझते हैं, क्या सच में ऐसा है या सिर्फ एक मिथ है?
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जैसे मैंने पहले भी एम्फसाइज किया, तंबाकू किसी भी फॉर्म में हम खाएंगे, चाहे वो च्यूइंग हो चाहे वो स्मोकिंग हो, वो ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, लंग कैंसर डेफिनेटली उसका होगा उससे. तो ये लंग कैंसर और माउथ कैंसर होने का मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन करना किसी भी फॉर्म में. जब हम तंबाकू को च्यू करते हैं, च्यूइंग फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे देश की अधिकतर जनता, जो खासकर की जो हमारे, मैं देखता हूँ जो फार्मर्स हैं या जो भी हार्ड तरह के जो लेबरर्स होते हैं, जो फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व हैं, जो हमारी मोस्टली जो हमारी जनता देश की इसमें इन्वॉल्व है, वो लोग ये चीज़ें बहुत कॉमन है अपने मुँह में जो इसको ऐसे थोड़ा सा इसका सेवन रखते हैं, पुड़िया सी दबा के रख लेते हैं, तो ये उससे इनको लगता है कि ठीक है हमें थोड़ा एक्टिव रहते हैं काम करने में, पर ऐसा कुछ होता नहीं. वो जो चीज़ है वो डायरेक्ट हमारे माउथ से एब्जॉर्ब होती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है. तो इस चीज़ का अगर, क्योंकि वो तो जो है लंग्स के थ्रू जाता है स्मोक, पर ये तो डायरेक्ट जो अगर हम रख रहे हैं तो हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है. और बहुत से लोग सिर्फ इसको च्यू करते करते निगल भी लेते हैं, तो या तो उसमें तो फिर बिल्कुल 100% जिसे हम बोलते हैं अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक कैंसर, मतलब गैस्ट्रिक कैंसर होने का भी साथ में चांस, स्टमक कैंसर का भी चांस हो जाता है. तो इसीलिए ये भी बिल्कुल ऐसी गलत धारणा है कि उसका कम इफेक्ट है या नहीं है, वो अलग तरह के कैंसर्स और प्रॉब्लम्स करेगा.
0: बिल्कुल डॉक्टर. अच्छा, ये भी होता है कि कई सारे, मैंने एक बार पेशेंट को अभी देखा था, तो हुआ ये कि उन्होंने पान मसाला या कुछ खाया, काफ़ी टाइम से खा रहे थे, लाल उनके दांत हो रखे थे, तो वो आए थे अपने दांतों की वाइटनिंग कराने के लिए. लेकिन क्या सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि मतलब अगर आपको जो है तंबाकू से भागना है तो बस आपने दांतों की वाइटनिंग करा ली है और उसके बाद कुछ टाइम तक वो चल जाते हैं, लेकिन दांतों पर इसका क्या असर पड़ रहा है जब आप रेगुलरली पान मसाला गुटखा खा रहे हैं तो?
1: देखिए, दांतों पे डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है. जो हमारे मसूड़े हैं जो दांतों को हमारे जड़ों से पकड़ के रखते हैं, उनकी सेहत को मेंटेन करते हैं जो हमारे मसूड़े होते हैं, तो मसूड़ों पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जिसे हम बोलते हैं पायरिया. एक बीमारी है, मैं लेन टर्म में आपको पायरिया शब्द यूज़ करके बता रहा हूँ. पायरिया लग जाता है, उससे क्या है हमारे मसूड़े गल जाते हैं, दांत हिलने डुलने लगते हैं, कुछ टाइम बाद और निकलने लायक हालत में हो जाते हैं. तो और ज़्यादा जो च्यूइंग टबैको जिस में फॉर्म में खाते हैं तो उससे दांत बिल्कुल घिस जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अब्रेसिव कंटेंट होता है, तो ये हमारे दांतों को घिस देते हैं बुरे तरीके से। उनके अंदर धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ठंडा गर्म, और अल्टीमेटली वो दांत जो हैं खराब हो जाते हैं
0: बिल्कुल।
1: तो ये इनका इसका है मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है दांतों
0: बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारी बातें आज हमारी हो रही हैं, कुछ और भी सवाल हैं और ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, आपके भी अगर कुछ सवाल हैं तो आप जान सकते हैं 8010781078 हमारा नंबर है। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुमित भटेजा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी मानव रचना डेंटल कॉलेज से। बहुत सारी आज हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर। मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी और वो ये कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से तंबाकू एडिक्शन सिर्फ फिजिकल होती है या मेंटली भी, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इंसान उस पर डिपेंडेंट हो जाता है कि आपको जो है अगर अच्छा फील करना है, जैसे कि आपने कहा फील गुड हार्मोन आपका रिलीज भी होता है, तो सिर्फ ये मेंटली, ये फिजिकली आपको परेशान कर रहा है ओरल या आपकी पूरी बॉडी में, या मेंटली भी इसका असर है?
1: देखिए, टोबैको या कोई भी ड्रग एडिक्शन हो, किसी भी तरीके का या अल्कोहल एडिक्शन हो, सबका जो है एक एडिक्शन का जो मेंटल कंपोनेंट ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ की आदत लगना, एडिक्शन होना, बीट एनीथिंग, वो दैट हैज़ टू डू विद हमारी जो मेंटल कैपेसिटी। तो इसके अंदर अब जैसे हम तंबाकू की बात करते हैं, तो तंबाकू में एक जो कॉम्पोनेंट है निकोटीन, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। अब निकोटीन क्या करता है, जब भी जैसे ही स्मोकिंग करेंगे या तंबाकू खाएंगे तो निकोटीन रिलीज होता है, वही हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, चाहे वो स्मोकिंग से चाहे डायरेक्ट च्यूइंग से। जैसे ही वो जाता है, वो ब्रेन को सबसे पहले स्टिमुलेट करता है, उसको टारगेट करता है। जैसे ही वो ब्रेन को हमारे टारगेट करता है, तो वहां से एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसका जो एक केमिकल है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर में आपको बता रहा हूं, तो उसका नाम है डोपामाइन। जो डोपामाइन है, ये एक जो है जैसे ही रिलीज होगा आपके ब्रेन में, तो ये एक जो है प्लेजर सेंसेशन देगा, जिसे हम फील गुड फैक्टर बोलते हैं। तो जब आपको उस चीज का आनंद आएगा, मजा आएगा, तो फिर वो इंसान उस चीज को दोबारा दोबारा करेगा। तो ये जो हमारा ब्रेन के थ्रू ये एक्टिविटी होती है, तो ये जो एडिक्शन प्रोसेस है, ये डेफिनेटली इट हैज टू डू विद मेंटल थिंग। तो इसके अंदर हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तभी हम चीज की हमें कोई लत लगती है, आदत लगती है।
0: बिल्कुल डॉक्टर, आजकल स्कूल्स और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी निकोटीन प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को कौन से अर्ली बिहेवियरल साइंस नोटिस करने चाहिए जो कि सामने आ सकते हैं और इससे बच्चे को फिर रोका जा सकता है?
1: देखिए, जो जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा एक रेस्ट्रिक्टिव एज ग्रुप होता है वो टीनेजर्स का है, WHO के अकॉर्डिंग भी। तो इनके वैसे तो एक एक्ट है जो WHO ने लागू किया हुआ है, पर हमारे इंडिया में भी वो चीज़ लागू है, कोटपा एक्ट इसे बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए स्कूल और कॉलेजेस के प्रीमाइसेस के कहीं भी, विच इज़ कम्प्लीटली। अगर कोई भी हॉकर या कोई भी जो वहाँ पे अपना तंबाकू का वो लगाता है शॉप या कोई तरह की दुकान, तो ये अगर स्कूल या कॉलेज अथॉरिटीज सिंपली वहाँ पे पुलिस को, प्रशासन को एक फोन करें, तो उसे वहाँ से हटाना होगा। तो ऐसा नंबर वन तो ये होता है कि इसमें स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि इन चीज़ों की सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों की खरीदारी पे बैन होना चाहिए इन एंड अराउंड अपने कैंपस के अंदर और आसपास भी प्रीमाइसेस के। तो जब तक इन चीज़ों की सेल होगी, तभी वहाँ से बच्चे इन चीज़ों की लत लगेगी। तो ये तो एक वो पार्ट रहा। बाकी जैसे कुछ बच्चे जो इन चीज़ों के नशे में ग्रस्त हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर होता है पेरेंट्स का रोल ये होता है कि अपने बच्चों को, खासकर जो इस एज ग्रुप में होते हैं, उनके साथ बहुत सारे ऑलरेडी जो ये जो हमारा टीन एज ग्रुप है, देयर अंडरगोइंग लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जा रहे होते हैं अपनी बॉडी में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। एंड अगर हम इसको उसमें साइकोलॉजिकल टर्म्स में स्टेज को डिस्क्राइब करते हैं, तो इस स्टेज के अंदर बच्चों में बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन रहता है। तो उनके अंदर ये बहुत, वैसे भी क्योंकि अभी उनको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट, तो ये उनके अंदर हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं। तो ना वो पूरे तरीके से बड़े होते हैं अडल्ट, ना वो बच्चे रह जाते हैं। तो अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं हॉर्मोनल, क्योंकि अगर एक लड़का है उसके अंदर जो है वैसे चेंजेस आ रहे हैं, लड़की के अंदर भी वैसे चेंजेस आ रहे हैं फीमेल, तो बॉडीली चेंजेस हैं। तो ऐसे में जो है बच्चों के अंदर बहुत सारे पहले ही सवाल होते हैं। तो जो पेरेंट्स का रोल होता है कि अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनकी रूटीन को शाम को भी उनके साथ थोड़ी देर बैठें, स्पेशली जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ बैठने का। बट मैं फिर भी कहूँगा कि उन्हें एक एफर्ट करना चाहिए, चाहे कुछ भी है, डिनर टाइम पे भी साथ बैठें अपने बच्चों के साथ, एटलीस्ट आधा घंटा उनके साथ जरूर क्वालिटी टाइम, जो इसे हम बोलते हैं, स्पेंड करिए। चाहे टाइम आपका कम हो, बट क्वालिटी टाइम होना चाहिए, जिससे आप अपने बच्चों के साथ जानें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बातचीत। बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे टेंशन होती है पर वो बताते नहीं है पेरेंट्स को, और उस टेंशन को कम करने के लिए ऐसी हैबिट्स में आ जाते हैं। तो अगर घर का माहौल वो एक तो अच्छा रखें, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, दूसरा बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उन्हें कोई तरह का अगर एकेडमिक या कोई तरह का पीयर प्रेशर है, कोई सोशल प्रेशर है, या बहुत से बच्चों में इस समय पे बॉडी इमेज डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है क्योंकि अपनी बॉडी के बारे में खुद ही नहीं पता होता कुछ लोगों को, तो ऐसे में इसे हम बॉडी इमेज डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं ओवरवेट हूं, कुछ को लगता है बहुत पतला हूं, कई बार अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके गर्ल्स में बहुत इश्यूज हो जाते हैं, डार्क हैं फेयर, तो इसे हम बोलते हैं बॉडी इमेज डिसऑर्डर। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भी लोग नशे में ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमें अपने बच्चों को खुद ही काउंसिल करके समझाना चाहिए पेरेंट्स को। अगर उन्हें लगता है कि वो ये चीजों पे खुल के बात कुछ ऐसे इश्यूज हैं नहीं कर पा रहे, मैं बच्चे उनके साथ नहीं खुल पा रहे, तो डेफिनेटली एक एक्सपर्ट हेल्प लेने में भी कोई बुराई नहीं है। और जनरली ऐसे जो नशे में बच्चे अगर ग्रस्त होंगे तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि ऐसा बच्चा ज्यादातर जैसे फैमिली के साथ पहले इंटरेस्ट लेता था, उठते बैठते थे, या जो कॉमन एक्टिविटीज फैमिली की, कोई मूवी देखना, बाहर घूमने जाना या टेम्पल जाना, ऐसी सब चीजें कम हो जाती हैं, और ऐसे बच्चे अपने में या अपने कमरे में या अलग रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये सब चेंजेस होते हैं जो पेरेंट्स को एकदम से वार्निंग साइंस होने चाहिए कि बच्चे से बात करें और जानने की कोशिश करें उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि मोस्टली ऐसे में ही बच्चे जो हैं सोशली सबसे पहले कट ऑफ फैमिली मेंबर से होते हैं और इन चीजों में रहते हैं।
0: डॉक्टर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर फैमिली में कोई एक इंसान है जो स्मोक कर रहा है तो दूसरे फैमिली मेंबर पर जो बाकी हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग बहुत डेंजरस है, इसके बारे में बताएं।
1: जी, आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट इशू ये रेज किया है। नॉट ओनली मैं इसको बोलूंगा फैमिली, इवन पब्लिक प्लेसेस में भी लोग जो करते हैं स्मोकिंग उसका भी इफेक्ट आता है आसपास के लोगों पे। तो इसे हम बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, जैसे आपने बताया। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है दुष्प्रभाव होते हैं हमारी बॉडी पे, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट इसको हम बोलते हैं हाफ ऑफ दी, जितना एक एक्टिव स्मोकर को इफेक्ट होंगे, हाफ इफेक्ट उसके आसपास के लोगों पे भी आ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली जो मेंबर्स हैं घर के, उन्हें ही इस चीज़ को, जो भी उनके घर में अगर कोई भी ऐसा स्मोकर है, सबके बीच में बैठ के स्मोकर है, तो ये उन सब मेंबर्स को भी उसे रोकना चाहिए कि उनके बीच में, खासकर घर में बच्चे होते हैं, कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो वो सब भी ये स्मोकिंग के थ्रू जा रही होती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ तो डेफिनेटली उन्हें ऐसे स्मोकिंग के एनवायरनमेंट में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो प्रूवन है ऐसे में जो है जो पैदा होता है बच्चा, एक तो लो बर्थ वेट होता है और प्री टर्म बर्थ हो जाते हैं, या और भी तरीके के जो हैं बीमारियां, या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरीज भी होती हैं, कई बार तो बहुत से केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो ऑटिज्म का भी एक बहुत बड़ा लिंक, जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों में पाया जा रहा है, उसका भी एक मेजर लिंक है इस चीज़ से, या तो मदर खुद ही स्मोक करती थी या आसपास में पैसिव स्मोक को इनहेल करती थी। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है जो रहते हैं इफेक्ट्स बॉडी में।
0: बिल्कुल डॉक्टर, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, जो क्विट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? क्या क्विटिंग इजी है या नहीं? क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि अब छोड़ नहीं पाते हैं, चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे हमारे पास भी ऐसे आते हैं लोग जिनको हम काउंसिल करते हैं, समझाते हैं, तो पहला तो इसमें एक चीज़ होती है, इसे हम बोलते हैं आप पहले उस चीज़ को पहचानें। जैसे आपने बताया, इस तरह के केस तो बहुत इजी होते हैं, जो हमारे पास खुद आ रहा है और खुद ही बोल रहा है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटनी नहीं, ये केस को हैंडल करना बहुत ईजी है। कई जहाँ प्रॉब्लम उन केसेस में आती है जिनको इस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं है, वो कर रहे हैं बस उनके घर वाले ये चीज़ समझ रहे हैं कि गलत है। तो पहले तो अगर कोई इतना भी, अगर जिसे बोलते हैं हाफ द बैटल वन, अगर आपने उतना रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये एक नेगेटिव हैबिट है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, अगर आपने सोच लिया तो वो चीज छूट भी जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं जिसे विल पावर ऑफ द पेशेंट, अगर उसकी इतनी विल पावर है तो वो इस चीज़ को जो भी तरह से वो डेफिनेटली छोड़ेगा। बट हाँ, जहाँ पे जो प्रॉब्लम यही आती है कि जब उनको खुद से ही रियलाइज नहीं होता कि इसका कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं बॉडी पे और अपने आसपास के लोगों पे, एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे, तो वहाँ पे तो वो जागरूकता जो है, इन्हीं मौक़ों से हम जागरूकता लाते हैं जिससे कि लोगों को ये चीज समझ आए कि ये एक गलत आदत है। बहुत सारे लोगों को जब तक ये नहीं, जब तक माइंडसेट होगा कि ये गलत आदत नहीं है, तो तब तक ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तो वहां एक बार किसी ने ये डिसीजन ले लिया या उसको इतनी समझ आ गई कि ये गलत हैबिट है, नेगेटिव हैबिट है, जिसका मेरी अपनी हेल्थ पे, मेरे अपने फैमिली की हेल्थ पे, सब पे इसका फर्क पड़ेगा। तो और डेफिनेटली अगर हम देखें देश के पे भी, क्योंकि अगर हमारी आदत, जो जनता अगर इन चीजों की आदत में ग्रस्त है, स्पेशली यूथ, तो आप सोचिए हमारा यूथ अगर इन नशे की आदतों में है, उसकी वजह से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमारी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री भी कम हो रही है। तो हम अपने लिए ही नहीं, अपने देश के लिए भी जो है ये हैबिट हानिकारक है।
0: बिल्कुल।
1: तो उससे ये चीज हमें रियलाइजेशन, तो जनरली जो हमारे पास इस तरह के ग्रस्त जो आदतों से लोग आते हैं, तो पहला ये जो होते हैं ऐसे होते हैं रियलाइजेशन कराना, जिसे हम साइकोलॉजिकल टर्म में इनसाइट बोलते हैं। आपको जब तक उस चीज का समझ नहीं आता कि आप इस चीज के, आपको ये बीमारी है, ये एक बीमारी के रूप से होता है, जिसको हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, अगर उनको ये समझा दें, जैसे कोई डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, वो भी एक बीमारी है, आप मान के आते हो डॉक्टर के पास कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको भी एक बीमारी मान के आएंगे, तो वो उसको मान लेंगे, तो वो फिर आगे ट्रीटेबल है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं, और साथ ही देखिए गवर्नमेंट और मानव रचना जो संस्थान है वो क्या कर रहा है टबैको पर, और क्या कुछ नया जो है ये हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे, क्या कुछ अहम कदम, कड़े कदम लिए जा रहे हैं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील बैड।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ बातें आज हमारी चल रही हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुमित भटेजा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी मानव रचना डेंटल कॉलेज से। बहुत सारी बातें हो रही हैं डॉक्टर, आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि पेशेंट्स काफी सारे आते हैं, तो मानव रचना जो है संस्थान जो है वो क्या कुछ कड़े कदम जो है उठा रही है इस आज के दिन पर भी, और साथ ही साथ पूरा जो लोग ग्रसित हैं या लोग क्विट करना चाहते हैं उनके लिए?
1: मानव रचना ने जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव 2018 से शुरू किया है अंडर मानव रचना डेंटल कॉलेज, जो टोबैको सेसेशन क्लिनिक जो है, तो तंबाकू का नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, जिसमें हम फ्री टोबैको या तंबाकू की जो है छुड़ाने की आदत की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, इन फॉर्म ऑफ काउंसलिंग करी जाती है पेशेंट्स की। अब काउंसलिंग चाहे वो पेशेंट्स की हमें जहाँ ज़रूरत लगती है इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, या जब हमारे पास कुछ पेशेंट्स को हम कुछ ऐसे स्लॉट्स देते हैं जिसमें हम उनकी ग्रुप काउंसलिंग भी, ग्रुप थेरेपी भी करते हैं। और उसके अलावा जो है हम जैसे जहाँ हमें लगता है कुछ पेशेंट्स को हमें ज़रूरत होती है, या जो लोग खुद भी एग्री करते हैं, तो हम उनको ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो देते हैं जिससे वो इस आदत को छोड़ने में और उनको मदद करती हैं, तो मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करते हैं, या एक तरह की फॉर्म ऑफ थेरेपी आती है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो कुछ ऐसे च्यूइंगम्स जिसे आती हैं जो कॉमनली आजकल बहुत इजीली फार्मेसीज पे भी अवेलेबल होती हैं, बस उसकी जो डोजेजेस वगैरह हम उस हिसाब से पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि ये उनको बहुत सहायता करता है उनके जो तंबाकू छोड़ने के या नशा मुक्ति प्रोग्राम में उनको बहुत मदद करता है। तो ये हमारा एक जो है तंबाकू का इनिशिएटिव जो है तंबाकू नशा मुक्ति का बहुत अच्छा हमारा इनिशिएटिव है जो मानव रचना डेंटल कॉलेज में चल रहा है। तो मैं सबसे ये भी इसमें आग्रह करूँगा कि फरीदाबाद या आसपास के हरियाणा में जो भी लोग हों जो, या जो भी फैमिलीज हों जो परेशान हैं अपने घर वालों की इस तरह की तंबाकू से जुड़ी नशा मुक्ति की जो चाहते हैं, तो वो ज़रूर यहाँ आएँ और अपनी हमारी जो इन सेवाओं का लाभ उठाएँ जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, फ्री हैं, और ये हमारे ऑल वर्किंग डेज होते हैं। उन सब में हम यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक यहाँ होते हैं, तो आप आइए और हमें इसका मौका दीजिए कि हम आपको किसी तरीके से इसमें आपकी जो है नशा मुक्ति की जर्नी में हेल्प कर सकें, और हमें भी इस चीज़ के लिए बहुत खुशी होगी कि हमने डेफिनेटली किसी की लाइफ में बहुत चेंज ला पाए। और गवर्नमेंट या सरकार के लेवल पे बहुत कड़े इसमें जो है स्टेप्स लिए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने एक नेशनल टोबैको क्विट लाइन नंबर लॉन्च किया है
0: जी।
1: जिसको भी कोई तरह, देखिए जो नहीं जा पा रहा भी, ठीक है कोई भी रीज़न की वजह से, ठीक है या उनको लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें, तो गवर्नमेंट ने फ्री सर्विसेज शुरू करी हैं, तो ऐसा एक क्विट लाइन, नेशनल क्विट लाइन नंबर है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, आप उस सबको, आप लोग प्लीज़ उसको नोट करिए। वो एक टॉल फ्री नंबर है, उस पर लोग कॉल करें, चाहे वो इंसान ना भी करे, जो उसके घर वाले भी करेंगे तो भी वो अटेंड करेंगे इस बात पे, अगर जो चाहते हैं नशा मुक्ति के लिए तो वो भी बात करेंगे, कोई तरह का तनाव है उससे रिलेटेड तो उस पे भी वहाँ पे सर्विसेज मिलती हैं। तो वो नंबर है 1800112356, मैं दोबारा बताऊंगा, रिपीट करूंगा, 1800112356। तो ये एक टॉल फ्री नंबर है जो कि ऑपरेट हो रहा है दिल्ली में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूशन से, जिसे कि नेशनल जो टोबैको सेसेशन सेंटर माना गया है, उसी के साथ गवर्नमेंट ने रीजनल सैटेलाइट सेंटर्स भी शुरू किए थे 2018 से, जहां पे फ्री जो है ऐसे पेशेंट्स की काउंसलिंग या कोई भी तरह की उन्हें जो भी जो इसको नशा मुक्ति या टोबैको को क्विट करने के लिए हेल्प करेंगी, तो उसमें जो है मेनली जो उसमें रूप से नाम है डॉक्टर भुवनेश्वर बुरा कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ

0: हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस नेमेंस बैंगलोर और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। तो ये भी जो गवर्नमेंट के निर्धारित सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इस चीज़ में जो उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी।
1: बिल्कुल, तो देखिए कई बार ऐसे होता है ना कि हम पूछते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, जब कोई ऐसे बोलता है कि अरे आपके अगर पिताजी को अगर उनको आदत है, बहुत ज़्यादा तंबाकू की आदत है, तंबाकू नहीं छोड़ पा रहा है, तो हम बच्चे यही बोलते हैं कि क्या करें, हम क्या ही कर सकते हैं। जो वाइफ होती है वो यही कहती है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो अब जैसा कि अभी डॉक्टर सुमित भटेजा ने बताया है कि आप बता सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं नंबर पे 1-800-112-356, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जो भी आपकी परेशानी है, आपके जो भी जिस फैमिली मेंबर को ये परेशानी है, आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आप जल्द से जल्द इससे आप जो है बाहर निकल पाएं, जो भी ग्रसित है उसको बाहर निकाला जाए और तंबाकू फ्री इंडिया बनाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए इसी के साथ डॉक्टर सुमित, एक आखिरी सवाल आपसे कि वो क्या खास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक आज पहुंचाना चाहेंगे?
0: देखिए जो इस मैं अपने जो यूथ जो हमारी कंट्री का है, मैं उनसे ही बस इस चीज़ में डेफिनेट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को देखें, जैसे हम बोलते हैं स्मोकिंग किल्स एंड नॉट थ्रिल्स। तो जो उनको लगता है कि ये बहुत ही, जैसे जो इस बार की हमारी थीम भी थी जिस पर हमने बात करी थी, तो ये हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी है, स्टाइल स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है सिंपली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम बोलते हैं उम्र भी कई सालों तक कम कर देता है। तो जो एक स्मोकर है और नॉन स्मोकर है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देर इज फाउंड टू बी अ डिफरेंस। ठीक है, हम अपनी उम्र को करीब 10 से 15 साल खुद कम करते हैं अगर हम इसे अपनी यंग एज में, यूथ स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं यूथ ऑफ द कंट्री से कहना चाहूँगा कि उन्हें देश की प्रोडक्टिविटी में जो है सहयोग देना चाहिए, ना कि इस तरह की जो है आदतों में ग्रस्त हो के अपना भी जीवन, अपने परिवार का भी और अपने देश का भी ले भी कुछ उधार ना कर पाना। तो इसीलिए इस बार मैं सबसे ये रिक्वेस्ट है स्पेशली जो हमारे यूथ से, कि इन आदतों को बिल्कुल भी जो है आप ना शुरू करिए, चाहे आपको कोई फ्रेंड एक दिन के लिए भी बोले कि आज पार्टी में करेंगे या कल, नहीं, आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे कोई भी आपसे, और आपने उसकी भी छुड़वानी है जो आपको ये चीज़ बोल रहा है कि एक बार करके देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है।
1: तो चलिए इसी के साथ अब ये सारी बातचीत आपने सुना, और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हम आपके सवाल ज़रूर हमारे एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर सुमित भटेजा आज हमारे साथ जुड़े और थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित, ये आप आए और इतनी सारी बातें जो है आपने करी है, गाइडेंस दी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस मंच के द्वारा हमने भी एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो कैंपेन था वो आप लोगों के द्वारा हमारा पूरा हो पाया। थैंक यू।
1: चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत और कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: Your city, your radio. Faridabad ka apna radio station. Radio Manorajna 107.8 FM.
1: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आरजे सागर। आज को हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और यकीनन कामयाब कहानियों की बात होती है यहाँ पर। कामयाब एजन जिनकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन पाए हैं, वो कामयाब कहानियां जो ये कामयाब हो पाया हमारा सपना। हम इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ पर इस शो के माध्यम से आपके दो फायदे हों। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको सर्व करता है ये शो, जो आपको बताता है कि क्या प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पीछे, एंड एग्जैक्टली इंडस्ट्री कैसे काम करती है कोई भी अगर करती है तो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से हम ऐसे अलग अलग सर्विसेज देख पाते हैं अपनी कंट्री में, और दूसरा ये कि हमारे देश में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसका। तो आज फिर से आए हूं लेकर के शो, बहुत सारी बातें करेंगे, बताएंगे आपको कौन सी इंडस्ट्री है, बात करेंगे कंपनी कौन सी है। बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उस म्यूजिकल ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी ये मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें। अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मींस कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसे हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने हैं, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा। उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपनी स्किन के ऊपर और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत हो गई है कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैज वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइक
1: ज्वाला। समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहाँ से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान की पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग।

को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसका अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यानी कि ब्यूटी टेक को एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स, फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा, क्या मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड फील

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है, जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रिडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों, जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीजें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं, या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट, लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां।

दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेस होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाईटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए, हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज होती है, तो तमाम चीजें पढ़ के जहां पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर आपको वहां आगे कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

बिना किसी देरी के आपको बताते हैं भैया, आज की जो कंपनी है उसका नाम है कलर बार। कलर बार 2004 में स्टार्ट हुई थी और एग्जैक्टली आप इसको टेक के स्टार्टअप के तौर पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस आपको टेक का फीचर नहीं देखने को मिलता है। बट देर आर सो मैनी थिंग्स जो इस कंपनी के विजन फॉलो करती हैं। इमेजिन यू आर एंटरिंग अ स्टोर जहाँ पर मेकअप का सामान आपको मिलता है, एंड दिस इज द टाइम ऑफ अर्ली 2000s, जहाँ पर आपको या तो एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स मिलते हैं या फिर आपको चीप लोकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं क्वालिटी के ऊपर। तो एक गैप था इन दो चीजों के बीच में। नाउ व्हाट दिस कंपनी डिड इज उन्होंने सिंपली इस थॉट को चैनलाइज किया कि इंडियन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज अफोर्डेबल प्राइस पर क्यों नहीं ले सकते, या फिर व्हाई कांट वी गेट क्वालिटी स्टफ विदाउट पेइंग फॉर लग्जरी प्राइस। दैट वाज अ थॉट बिहाइंड दिस कंपनी, एंड जिसके बाद ये कंपनी स्टार्ट हुई। तो एक इंडियन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स कंपनी है जो डील करती है मेकअप में, स्किन केयर में, नेल प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी एक्सेसरीज में, प्रीमियम ब्यूटी एक्सपीरियंस में। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली से, एंड इट ऑपरेट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड आउटलेट्स एंड मल्टी ब्रांड स्टोर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स। सो बेसिकली ये कंपनी जो है टाइम के साथ इवॉल्व हुई है काफ़ी, इसने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया है। सो दिस इज अ थॉट बिहाइंड इट कि आपको या तो लग्जरी ब्रांड मिलते थे या फिर चीप ब्रांड्स आपको मिलते थे जिनके ऊपर आप क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वालिटी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस कंपनी ने दोनों को मर्ज करके बीच का एक ऑप्शन आपको दिया कि अच्छी क्वालिटी का सामान आपको मिलेगा विदाउट पेइंग हाई एंड प्राइसेस। दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड इट। आई होप यहाँ तक आप शो को समझ पाए हैं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। ऑन दिस नोट शो को आगे लेकर चलेंगे। शो हमारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत एंड द स्टार्टअप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कलर बार। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। सो हाउ डिड स्टार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये कंपनी स्टार्ट इसलिए नहीं हुई कि किसी को मेकअप से प्यार था, ये कंपनी इनफैक्ट स्टार्ट इसलिए हुई किसी ने मेकअप से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस गैप को फिल किया, और वो इंसान थे समीर मोदी। उन्होंने देखा कि इंडियन कंज्यूमर्स बहुत फैशन कॉन्शियस तो हो गए हैं बट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, और जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि या तो आप हाई एंड प्राइस पे करेंगे अगर आपको अच्छी क्वालिटी का स्टफ चाहिए, या फिर अगर आप कम प्राइस में ले रहे हैं तो आप क्वालिटी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने लग्जरी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उन्होंने इंडिया के लिए उनको अफोर्डेबल बना दिया, और बिगिनिंग बहुत स्मॉल थी, मात्र 16 लिपस्टिक्स एंड 16 नेल कलर्स जो है इतना वो लेकर के आए थे। बट दैट वॉज द थिंग, पर्सनली इन्होंने खुद जाके स्टोर्स पे विजिट किया, रिटेलर्स को कन्विंस किया कि उनके प्रोडक्ट्स को आप रखिए यहाँ पर, लगाइए, देखिए लोग इनको पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो पैशन के साथ स्टार्ट नहीं करते, ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक स्टार्टअप आप इसको बोल सकते हैं। सिमिलर स्टोरी रितेश अग्रवाल की रही है, हु स्टार्टेड ओयो। उनका भी सेम था कि एक पर्टिकुलर चीज़ उन्होंने देखी कि यार यहाँ पर ना गैप है एक बहुत बड़ा, लोग बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं और जो होटल्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो उसको मर्ज किया। सो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग कि वो जाकर होटल्स को कन्विंस करते थे कि मैं आपके होटल को कुछ दिन के लिए लिस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लगे तो हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। और एग्जैक्टली ऐसे अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी मार्केट्स में आपको ऐसे गैप नजर आएंगे। इट्स जस्ट हाउ टू मर्ज दीज टू थिंग्स, दैट्स हाउ द आइडिया वर्क्स। सो ये एक उसका परफेक्ट एग्जांपल है कि आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट अगर आप नहीं हुए किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, आपको समझ में आ रहा है कि बॉस यहाँ पर गड़बड़ है, इसको फिक्स किया जा सकता है, यू आर स्टिल गुड टू गो। दैट्स हाउ दिस होल कंपनी स्टार्टेड। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

ऑल राइट, बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. व्हाट वाज द मेन आइडिया? सो द आइडिया वाज नॉट टू सेल द लिपस्टिक और सेल द ब्यूटी प्रोडक्ट्स. द आइडिया वाज लेट्स डेमोक्रेटाइज द ब्यूटी. मतलब हर एक इंसान का अधिकार है सुंदर दिखने का, हर एक इंसान का अधिकार है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का. तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्सेस दिलाने का काम किया इस कंपनी ने. कलर बार ने फोकस किया कि आपका फील प्रीमियम हो, आपके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हो, इंडियन स्किन टोन्स के साथ वो मर्ज हो, ठीक है, वाइडर कलर चॉइसेस आपको मिले, इंक्लूसिविटी आपको मिले. एंड लेटर ऑन उन्होंने बाद में अपग्रेड किया खुद को. उसके बाद ये वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ गए, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ गए, सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ गए. जैसे जैसे टाइम बढ़ा उन्हें समझ में आया कि ओके, एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंच रहा है और लोगों की चॉइसेस चेंज हो रही हैं एंड वी एज अ कंपनी कुछ करना चाहिए. तो उन्होंने बाद में उन चीज़ों का अडॉप्ट किया जिससे आप मदर नेचर को यू नो एटलीस्ट ज़्यादा डैमेज पहुंचने से या ज़्यादा हार्म पहुंचने से बचा सकते हैं. सो हिज नेम इज़ समीर मोदी. फाउंडर की स्टोरी की बात करते हैं. सो पहले थोड़ा सा बात करेंगे बिफोर कलर बार वर्ड. बिफोर कलर बार उन्होंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम किया एट फिलिप मॉरिस जो कि यूएस की कंपनी है, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने मोदी केयर बिजनेस जो है स्टार्ट किया. उसके बाद मल्टीपल ग्रुप वेंचर्स जो है उन्होंने अपने स्टार्ट किए, ठीक है. एंड ही इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन. स्टेट लेवल के बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, आर्ट एंथुजियास्ट रह चुके हैं, म्यूजिक लवर हैं, ठीक है. एंड दिस इज रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने सिर्फ बिजनेस पढ़ा होता है, बट ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स आपके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं. ओके, एंड कलर बार जो ये कंपनी है ये ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हुई थी. एंड याद रखिएगा 2004 की हम लोग बात कर रहे हैं, वे बिफोर यू स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल दिस स्टफ. उससे बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. उस टाइम पर इन्होंने इस चीज़ को देखा और वहाँ पर गिव अप नहीं किया अपना. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि ही वॉज कन्विंस्ड विद दिस बिजनेस आइडिया कि लोगों को पसंद आएगा. और अगर कोई आइडिया आपको अच्छा लग रहा है उस

सिर्फ अपने दिमाग तक क्यों रखना? Let's take a shot, execute करके देखते हैं। Then उसके बाद फिर बहुत सारे और competitors थे जो उस time पर, उनके साथ compete भी किया, उसके बाद अपने business को scale up किया and constantly innovate करते गए, constantly redesign करते गए, constantly improve किया stores experience को, constantly categories को expand किया, constantly ये भी track किया कि लोगों की choices क्या है। Education है इनकी Dune School, Hindu College and Harvard Business School। So this is the whole life of this founder, Mr. Sameer Modi. Now we'll take another musical break, उसके बाद show continue करेंगे। कुछ और चीजें हैं जो इस कंपनी के बारे में आपको बतानी चाहिए, but वो later on discuss होगी। फिलहाल मजा लीजिए गानों का। Stay tuned, feel good, feel।

उम्मीद यही कि आपको गाने पसंद आए, साथ साथ उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आ रहा है और जो पर्पज है हमारा शो का फुलफिल हो पा रहा है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। कलर बार हमारी आज की कंपनी है। अब बात करेंगे इसकी यूएसपी की, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है कि आपको हजारों कंपनीज नजर आएंगी लेकिन हर एक कंपनी की अपनी यूएसपी होती है कि कौन सी वो चीजें हैं जो उस कंपनी को खास बनाती है। सो इस कंपनी की यूएसपी है लग्जरी फील एट एक्सेसिबल प्राइस, ठीक है। बट इसमें बहुत डीप लेयर्स भी हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी रेंजेस मिल जाती हैं शेड्स की, लार्ज रेंज ऑफ शेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको मिलते हैं, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, वीगन प्रोडक्ट लाइंस आपको मिलती हैं, एंड ब्यूटी पर्सनलाइजेशन का भी एक यहाँ पर अभी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलता है विदाउट पेइंग फॉर द लग्जरी प्राइस। की ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें, कंज्यूमर शिफ्ट, ठीक है, इंडियन कंज्यूमर्स चेंज हुए, नीड बेस्ड बाइंग से हट करके हम लोगों के थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सपेंड हुई, हमने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। तो लोगों ने क्या चेंज किया, मुझे लिपस्टिक चाहिए यहां से लेकर के आई वॉन्ट दिस ब्रांड, ये अभी आप देखते हैं कि लोगों की चीजें चेंज हो रही हैं, लोग ज्यादा खुल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो अब नीड से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है और इस बात से हम सब लोग अग्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम एंड ब्यूटी क्रिएटर्स जो हैं उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ, बाइंग बिहेवियर, ठीक है। ब्यूटी बिकेम लाइफस्टाइल, ब्यूटी बिकेम एक्सप्रेशन, ब्यूटी बिकेम आइडेंटिटी। देन उसके बाद प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ लोग जाने लगे, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट हो, क्वालिटी हो, ये भी इस कंपनी ने अच्छे से अडॉप्ट किया और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये कंपनी 2004 से लेकर अभी तक काम करती आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट इनोवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर ले, कितना ही अच्छी आप मार्केटिंग कर ले, कितना ही अच्छी आप चीजें कर ले, लेकिन अगर आप रेलिवेंट नहीं है, अगर आप अप टू द डेट अपने प्रोडक्ट्स को नहीं रख पा रहे हैं, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाई देंगे कि अगर लेट्स से कोई कंपनी है जो डील करती है कि बर्थडे डेकोरेशन में, अब रिसेंटली कोई थीम आई है, कोई मूवी आई है, फॉर एग्जाम्पल बीते दिनों बार्बी एक मूवी आई थी, तो हमने देखा कि कुछ कंपनीज ने ना जैसी ही बार्बी मूवी लॉन्च हुई एग्जैक्टली वैसे ही अपनी किट्स बनानी शुरू कर दी बार्बी बेस्ड थीम। व्हाट वाज दैट? अ मार्केटिंग थिंग, कि ऑलरेडी हाइप चल रही है, ऑलरेडी क्रेज चल रहा है, हम आपको आपके घर पर ही डिलीवर करके देंगे, दिस इज द थिंग, और अच्छा किया उन कंपनीज ने। सिमिलरली आपको हर एक ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहना पड़ता है, हर एक ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा, और जब आपको ट्रेंड समझ आने लगते हैं तब आपको ये भी समझ में आता है कि लोगों का टेस्ट चेंज होता है और बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है उनके आसपास का। दैट वॉज द कोर आइडिया बिहाइंड दिस। सो आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो या इनफैक्ट अगर आप जॉब भी करते हो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर बिजनेस, स्टे अप टू डेट, दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। आई होप यहां तक मैं समझा पाया हूं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

इस उम्मीद के साथ कि आपको मजा आ रहा है, शो को अपने आगे बढ़ाएंगे। एंड नाउ इज द टाइम टू कंक्लूड आवर शो। आज हमने जिस कंपनी की बात करी, इस कंपनी का नाम है कलर बार। अभी इस कंपनी के 100 से ज्यादा खुद के स्टोर्स हैं, 1200 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, मतलब अलग अलग ब्रांड के आउटलेट्स पे आपको इनके प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान है इनके पास, ठीक है। स्किन केयर एंड फ्रेग्रेंसेस के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, वैसे वैसे कंपनी ने खुद को चेंज किया है, खुद को इवॉल्व किया है। दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड इट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो स्टार्ट ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ होती हैं या कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होती है, बट नो, दैट्स इनकरेक्ट। परफेक्शन इज अ मिथ। दिस इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, परफेक्शन इज जस्ट अ मिथ। और ये बात बार बार बार बार बार बार अलग अलग कंपनीज के थ्रू हमने प्रूव करके भी आपको दिखाई है। सिमिलरली यहाँ पर है, तो एक गैप देखा इन्होंने अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी के बीच का, उसको मर्ज किया, फिक्स किया उसको, देन उसके बाद खुद को इवॉल्व किया। लिपस्टिक और नेल पेंट से स्टार्ट करते करते आज इतनी वाइड वैरायटी इनके पास है कि लोग ट्रस्ट करने लगे हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, अफोर्डेबल प्राइस पर ये देते हैं और कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से जो बहुत लग्जरी आपको एक्सपीरियंस देते हैं। सिंपल आइडिया। आप मुझे बताइए आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी, और साथ साथ अगर आप ऐसा कोई सिमिलर केस जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं 8010781078 पे। फिलहाल वक्त है शो को यहाँ पर हॉल्ट देने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो, तब तक अपना ख्याल रखिए, कह रहे सर, दिस इज आरजे सागर साइनिंग आउट।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, बातें होती हैं आपकी सेहत की। और इस प्रोग्राम में हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग जनरली बात नहीं करते। बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और वो भी लेडीज यानी महिलाओं की। वो महिलाएं जो किसी भी घर की बैकबोन होती हैं। अगर किसी घर में महिलाएं हैं तो आप समझ लीजिए कि सिस्टम सब कुछ बेस्ट चल रहा है, और वहाँ के जो पुरुष होते हैं यानी जो मेल मेंबर्स होते हैं वो बहुत आराम से अपने जो जॉब है या बिजनेस है वो सब कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बागडोर लेडीज ने संभाल रखी है। लेकिन अगर घर में महिला ना हो, वो कुछ दिन के लिए कहीं घूमने ही चली जाए, तो फिर घर का क्या हाल हो जाता है ये आप सब जानते होंगे। तो आप समझ ही रहे होंगे कि घर को एकदम सही तरीके से चलाने वाली ये लेडीज कभी कभी फिजिकली नहीं मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हैं कि कभी कभी अपना दुख अपनी परेशानी शेयर तो कर पाती हैं पर एकदम गुस्से में, और तभी उन्हें कहा जाता है कि तुम चिड़चिड़ी क्यों रहती हो। आप खुद सोचिए, सुबह 5:30 बजे उठकर सारे घर के लिए नाश्ता तैयार करने वाली वो लेडी अगर ऑफिस भी जा रही है तो वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ निभा रही है, घर का खाना भी बना रही है, बच्चों को रेडी भी कर रही है, घर को ठीक भी कर रही है, और सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रही हैं। और अगर वो इसके बदले थोड़ा सा गुस्सा कर भी देती है तो फिर कहा जाता है कि तुम बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो। पर क्या कभी किसी ने आराम से बैठकर पूछा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तुम मेंटली एग्जॉस्ट तो नहीं हो? क्या तुम्हें आराम की जरूरत है, सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी? ऐसी कुछ बातें आज हम करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बहुत सारे घरों की है। और लेडीज अक्सर अपनी परेशानी तब तक नहीं बताती जब तक वो सिर के ऊपर से नहीं निकल जाती। सो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, खास तौर पर से वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि शर्मा, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर सुरभि, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर सुरभि, सबसे पहले तो हम मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो लोगों को ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि दिमाग की भी सेहत हो सकती है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ बेसिकली वुमेन के कंटेक्स्ट में क्या होती है?
3: वुमेन के कंटेक्स्ट में एंड इन जनरल मेंटल हेल्थ मतलब होता है कि हम सुकून से जी रहे हैं कि नहीं। हम जो भी आसपास एनवायरनमेंट है या जो भी सिचुएशन है उसमें भी हम खुश हैं, रिलैक्स्ड हैं, हमें नींद अच्छी आ रही है, हमारा बोलना चालना, हमारा रिलेशनशिप या हमारा काम का प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक चल रहा है, अगर वो सब ठीक है तो उसको हम मेंटल वेलबींग कहते हैं।
2: ओके, सो मेंटल वेलबींग यानी आपका दिमाग सुकून से है, शांति से है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर परेशानी में नहीं है, जो भी आपके आसपास है आप खुश तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही हैं और रेसिप्रोकेट भी कर रही हैं, ये वेलबींग होती है, मेंटल वेलबींग होती है। लेकिन डॉक्टर सुरभि, लेडीज़ के केस में हमने अक्सर देखा है कि लोग यही कहते हैं कि भाई तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और वो गुस्सा चाहे इन लॉज का हो, चाहे हस्बैंड का हो, चाहे ऑफिस का हो, वो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर उतरता है। सो ये गुस्सा भी क्या मेंटल हेल्थ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में सामने आता है?
3: ये एक बहुत बड़ा एंड बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है मेंटल स्ट्रेस का, या मेंटली बहुत हेल्दी ना फील करने का, जिसे आप एग्जॉशन का नाम दे दो या डिप्रेशन का नाम दे दो, कुछ भी लेबल लगा देते हैं, या फिर जनरली ज्यादातर लोग घर की औरतों को यही बोलते हैं कि तू तो मूडी हो गई है।
2: सो ये एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है।
3: राइट
2: जी। सो हम लेडीज़ की मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप अक्सर ऐसे पेशेंट से मिलती रहती होंगी। लेडीज़ के मेंटल हेल्थ के बारे में हम खुलकर चर्चा नहीं करते हैं। किसी पुरुष को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद जाकर डॉक्टर को दिखा देगा, या वाइफ उसको कन्विंस करेगी कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं, तुम डिप्रेशन में हो या बहुत स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हो। लेकिन लेडीज़ की हेल्थ को क्यों नहीं प्रेफरेंस दी जाती, स्पेशली मेंटल हेल्थ का तो मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जाता है।
3: ये अक्सर यही होता है, लेडीज को बोल दिया जाता है कि मतलब ज्यादातर हस्बैंड या फिर फैमिली मेंबर्स दे जस्ट से कि ठीक है थोड़ा सा बातचीत कर लो या फिर ये चीज नॉर्मल है या ये लेबल लगा दिया जाता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो. तो वो एक्चुअल में मेंटल हेल्थ या फिर इवन फिजिकल हेल्थ में भी ना उनको नेग्लेक्ट या फिर मिनिमाइज कर दिया जाता है उनका प्रॉब्लम. चाहे वो सर में दर्द हो या बॉडी पेन हो, नींद का दिक्कत हो, उसमें बस ये बोलते थे कि ठीक है थोड़ी देर आराम कर लो एंड आप ठीक हो जाओगे. मैक्सिमम इतना ही अटेंशन मिलता है उन चीज़ों को.
2: जी, तो क्यों ऐसा होता है कि लेडीज़ जो हैं वो बहुत साइलेंटली सफ़र ही करती रहती हैं?
3: वन इज़ द एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन. सोसाइटी या फिर हमारा जो कम्युनिटी है ना उसके हिसाब से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक नया ट्रेंड है.
2: ये है ही नहीं प्रॉब्लम एक्चुअली.
3: एक्चुअल में उनके हिसाब से प्रॉब्लम है ही नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह देंगे कि मे बी इनका नेचर ख़राब है या ये बदतमीज़ हो गए हैं या फिर अपनी अपनी चलाते हैं. इसके अलावा बीमारी का नाम नहीं दिया जाता है कई बार स्टिग्मा के कारण, कई बार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर, या फिर पागल घोषित कर दिए जाएंगे ये कह के. तो वो बयान नहीं किया जाता है, बस अपने अंदर ही रखा जाता है.
2: कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, बेसिकली ये रीज़न होता है जिसकी वजह से औरतों की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत ही नहीं की जाती. मेंटल हेल्थ यानी आपके दिमाग के अंदर जो इतना सब कुछ भरा हुआ है, कभी गुस्सा है, कभी एंग्जाइटी है, कभी स्ट्रेस है, तो कभी इमोशंस हैं, कभी दुख है, पछतावा है, या जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, अगर वो आपके दिमाग में भरी रहेंगी और वेंट आउट नहीं होगी तो ऑफकोर्स मेंटल हेल्थ को कुछ तो नुकसान होगा ही, जिसके बारे में आप बात नहीं करती हैं. ख़ासतौर पर से जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो फिर बातचीत भी कम हो जाती है क्योंकि समय नहीं बचता है, और जो समय बचता है वो आप रील्स देखने में गंवा रहे हैं, तो फिर ऐसे में मेंटल हेल्थ थोड़ा सा तो इफेक्ट होगी. बट अगर अभी भी आपने किसी से बात नहीं करी है तो आपको बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है. अगर आप अभी तक किसी से बात नहीं कर पाए हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको आपकी ये सारी बातचीत और हमारे इस सारे पॉडकास्ट को सुनने की ज़रूरत है, शायद उसे कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं या मेंटल हेल्थ की तरफ कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो ज़रूर हमारी ये पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा. हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको ये सारी जानकारी पॉडकास्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जिसको आप डॉक्टर सुरभि शर्मा के साथ हुई बातचीत कभी भी सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में. फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. आपके सवाल कुछ भी हो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हमसे जरूर पूछिएगा 8010781078 पर.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद बातचीत चल रही है बहुत सारी मेंटल हेल्थ इन वुमेन यानी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात चल रही है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जनरली बात नहीं करते हैं लेडीज में डिप्रेशन होता है और उन्हें ये कह दिया जाता है कि तुम तो ऐसे ही परेशान रहती हो हमेशा दुखी रहती हो सीरियल कम देखा करो वीडियो कम देखा करो फोन कम देखा करो और सोचा कम करो वही दिमाग है तो सोचेंगे इसे ही इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं तो वो गुस्सा या फिर जो अंदर एक भर जाता है ना गुबार सा वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा और फिर उसका शिकार बनते हैं घर के छोटे बच्चे जो मम्मी से डरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मम्मी बात बात पे डांट देती है बड़ों पर गुस्सा निकाल नहीं सकते हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है तो बच्चे ही बच्चे जिन पर गुस्सा निकलता है लेकिन यह सिर्फ मिडिल एज लेडीज की प्रॉब्लम नहीं है ये मेंटल हेल्थ क्या किसी और भी उम्र को इफेक्ट कर सकती है और अगर कर सकती है तो महिलाओं में किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो लोग मुझे सुन रहे हैं अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखकर परेशान हो जाते हैं या कुछ ऐसे केसेस सुनकर स्ट्रेस में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कभी कभी हमारे अंदर ही ये कहीं ना कहीं कुछ पनप रहा होता है जिसको समझना जिसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है सो डॉक्टर सुरभि शर्मा कंसल्टेंट एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि अभी हम लेडीज की जब बात करते हैं तो जनरली एक लेडी के फॉर्म में दिमाग में आता है कि 30-32 साल से ये प्रॉब्लम शुरू होती है शादी के बाद ज्यादा या फिर करियर प्रेशर में ज्यादा दिक्कतें शुरू होती हैं और उसके बाद आप दिक्कतों से पीछा ही नहीं छोड़ा पाते हैं फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं हार्मोनल चेंजेस बहुत आ रहे होते हैं और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं एंग्जाइटी में हो जाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की आजकल बहुत ज्यादा बात होती है लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ 30-35 साल की उम्र में मेंटल हेल्थ में दिक्कत आनी शुरू होती है या फिर किसी भी एज की लेडी को बच्चियों को ये प्रॉब्लम आ सकती है
1: मेंटल हेल्थ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो बच्चा हो एडल्ट हो या फिर एल्डरली पॉपुलेशन हो
0: जी
1: जैसे स्कूल गोइंग बच्चों में टीनेज ईयर्स में बहुत प्रेविलेंट है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बच्चियों में माँ बाप कहते हैं कि ये तो चिड़चिड़ा हो गया है या ये मूडी हो गया है या फिर ये अपने दोस्तों में ज़्यादा घुलने लग गया है बाहर से सीख कर आ जाता है बट कहीं ना कहीं उनका मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30-35 की उम्र में आके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं ये बचपन से भी स्टार्ट हो सकती हैं और बुढ़ापे तक कभी भी
0: मतलब आप 11-12 साल के हैं प्यूबर्टी की दहलीज पर हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई गर्ल्स को स्पेशली जैसे ही हार्मोनल चेंजेस हुए गुस्सा बहुत आने लगता है चिड़चिड़ापन हो जाता है या फिर लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है अलग कमरे में बैठे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है उनके मूड स्विंग्स सिर्फ नहीं हो रहे हैं मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है
1: राइट सब कुछ मूड स्विंग्स या फिर नॉर्मल बोल के निगेट करना उससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि असल में क्या प्रॉब्लम है समझना पड़ेगा अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेंबर्स महिलाओं को उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है या कोई चीज़ को लेके कोई बात को लेके या फिर बिना किसी बात को लेके भी क्या वो बहुत परेशान या स्ट्रेस्ड आउट या उदास महसूस कर रहे हैं क्या उनको नींद ठीक आ रही है क्या वो ठीक से खा पी रहे हैं ये सब बातें करनी पड़ेंगी तो ही लोग बताएंगे
0: बिल्कुल यानी ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर सुरभि अगर हम बच्चों की बात करें तो एज में आपने बताया कि टीनेजर में ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है फिर अगर कॉलेज में जाते हैं करियर की तरफ बढ़ते हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमें नोटिस करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्या क्या ऐसी स्थिति होती है
1: मैं एक एग्जांपल देके आपको ये बात बताना चाहूँगी मेरे पास कुछ समय पहले एक स्कूल गोइंग बच्चा आता है जो 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे रहा था एंड एग्ज़ाम्स के बीच में ही वो आके कंप्लेन करता है कि मैडम पढ़ा नहीं जा रहा है मैं हमेशा से अच्छा था पढ़ाई में बट अचानक पता नहीं क्या हो गया जब से एग्ज़ाम हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा या जो भी मैंने पढ़ा है मुझे कुछ याद नहीं है ना मैं सो पा रहा हूँ मेरे हाथ कांप रहे हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है
0: फोकस नहीं कर पा रहे हैं
1: एक आध एग्ज़ाम दिया है उसमें ठीक गया है लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि मैं शायद फेल हो जाऊँगा तो ये सब दिक्कतें मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ को ही डिपेक्ट करती हैं
0: ये बच्चों के केस में हो गया,
1: ये बच्चे या स्कूल गोइंग केसेस में हो गया है।
0: और अक्सर हमने देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाने से कई बार मना करते हैं। पेरेंट्स उनको स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ाई से बच रहे हैं, तो ज़बरदस्ती भेज देते हैं। और ये केसेस कई बार आए हैं कि बच्चा वापस आता है, परेशान होता है और सुसाइड भी कर लेता है। और ये स्कूल के बच्चों की बात है, कॉलेज तक हम यहाँ नहीं पहुँचे। कॉलेज में भी ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं, जैसे नीट के एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ तो पूरे देश भर में से कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बहुत जो साल है, प्रिपरेशंस है, वो ख़राब हो गई हैं, वेस्ट हो गया है सब कुछ, पता नहीं अगली बार अगला जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, ठीक जाएगा। सो ऐसे हमने बहुत सारे किस्से देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ कदम तब उठाए जाते हैं जब ये हादसे हो जाते हैं। सो डॉक्टर सुरभि, अब मैं बात करना चाहूँगी यंग वुमेन की। एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, शादी नहीं हो रही है, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उस पर बॉडी शेमिंग का एक धब्बा लगा दिया जाता है कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, या तुम्हारा रंग सांवला है इसलिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, और उसकी वजह से उनका जो एक मोरल है या फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी यंग बच्चियों में आजकल के पॉप कल्चर बहुत फेमस है, सो उनको एकदम के पॉप आइडल लगना है, उनको वैसा आर्टिस्ट दिखना है जो कोरिया में होते हैं। अब उनके जीन्स और उनका इन्वायरमेंट अलग है तो वो शक्ल हमें नहीं मिल सकती। और यही वजह है कि कोरियन स्किन केयर बहुत फेमस है इंडिया में, हज़ारों रुपए का कोरियन स्किन केयर खरीदते हैं लोग सिर्फ वैसा दिखने के लिए कि ग्लास लाइक स्किन हो जाए, कुछ वर्ड्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं। सो आपको क्या लगता है ये चीज़ें कैसे कंट्रोल हो सकती हैं, और इसमें क्या सिम्टम्स हैं जो लोगों को समझने चाहिए?
1: सबसे पहले हम सिम्टम्स समझते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करना अपने लुक्स को लेके, अपने बॉडी इमेज को लेके, मोटापा या वेट को लेकर। नॉर्मल वेट होने के बावजूद भी आजकल लड़कियों को बहुत लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, और वो डाइटिंग, स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती हैं, फिर खाते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट, जो कि एक्चुअली बहुत ही कम है ज़रूरत के हिसाब से। इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं क्यों? वही के पॉप कल्चर को देख के या फिर उस तरीके से बनना चाहते हैं। मेनली एक तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, जो कि ऑनलाइन क्यूरेटेड चीज़ें हैं जो वो अपनी रियल ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं ये। ये भी स्ट्रेस एड ऑन करता है। एंड यंग बच्चे, यंग लड़कियां बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती हैं इन चीज़ों को लेके, बिकॉज उनके लिए जो मेन चीज़ें मायने रखती हैं वो उनकी एज और उनके आइडल्स, ये दो चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। तो बाकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं, कैसी दिख रही हैं, कैसे कपड़े पहन रही हैं, क्या बॉडी शेप है, या फिर उनके जो आइडल्स हैं लाइक के पॉप आइडल्स, कोरियन स्टार्स, उनका क्या रहन सहन या कैसा दिखते हैं, उनसे मेन इन्फ्लुएंस होती हैं। और ये एक्चुअल में अनरियलिस्टिक हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो हम बच्चियां, टीनेज गर्ल्स, उनको अपने रियल लाइफ में ही अडैप्ट करना चाहती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, एंड देन उससे फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें लोग कुछ खाते ही नहीं हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल वेट से भी बहुत कम वेट अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, खा लिया तो उसको वॉमिट आउट कर देना या फिर परगेटिव्स ले लेना, मतलब उसको किसी तरीके से निकालना चाहते हैं अपनी बॉडी में से खाए पिए को। और ये मानसिक स्वास्थ्य को भी प्लस फिजिकल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करता है।
0: जी जी। सो डॉक्टर सुरभि, अब थोड़ी मिडिल एज वुमेन के बारे में बात करते हैं, वो जिनकी शादी हो चुकी है या फिर जो ऑलरेडी उस फेज से गुजर रही हैं जो मदरहुड से कनेक्टेड होता है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में अब धीरे धीरे लोग बात करने लग गए हैं, सो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सबसे बड़े सिम्टम्स क्या होते हैं?
1: ये जो एज की महिलाएं होते हैं ना, वो बहुत सारे रोल्स निभा रही होती हैं, एक बेटी का, एक बहन का, एक वाइफ का, बहू का, माँ का, बहुत सारे रोल्स हैं ये। एक्चुअली जितने रोल्स हैं उतने ही महिलाओं का काम है, लेकिन वो इकलौती एक महिला कर रही होती है, वो खुद में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, जिसमें एग्जॉशन बहुत कॉमन होता है, ऊपर से सोसाइटल एक्सपेक्टेशन की एक बहू या एक माँ ऐसी होनी चाहिए, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है लोगों को, लोग पॉइंट आउट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। प्रेगनेंसी जिसको एक बहुत ही खुशी का चीज़ माना जाता है और लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं उस होने वाली माँ से कि वो भी बस खुश रहे, बट उसके पीछे जो भी वो प्रॉब्लम्स, जो भी इमोशंस वो फेस कर रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं देता और ना ही कोई सुनना चाहता है।
0: बिल्कुल उन पे बात नहीं करना चाहते, और अगर बात कर भी लें तो उसका सोल्यूशन नहीं समझ पाते हैं। तो डॉक्टर सुरभि, बेसिकली अगर किसी को हम ऐसे सिम्टम्स में देख रहे हैं, वो बार बार गुस्सा कर रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, खाना नहीं खा रहा है या फिर ओवर ईटिंग कर रहा है, सो ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिनकी तरफ हमें बात करनी चाहिए। अब 60 प्लस एज में चलें, क्योंकि एज बढ़ रही है, आपकी बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस थे वो भी बदल चुके हैं और पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट आ गई है, तो अब क्या सिम्टम्स होंगे 60-65 में? जनरली लोग कह देंगे दवाइयों का असर होता है जी, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं, क्या एक्चुअली में ऐसा होता है?
1: दवाइयों के असर से गुस्सा नहीं आता है, इतने सारे बॉडी चेंजेस, हेल्थ में चेंजेस हो रहे हैं जिनको तुरंत कोप कर पाना डिफिकल्ट होता है, प्लस जो सोसाइटल एनवायरमेंटल स्ट्रेस थे वो कहीं गए नहीं है, वो स्टिल एग्जिस्टिंग है, और एड ऑन जो ये उम्र के साथ बॉडी और फिजिकल हेल्थ इश्यूज आए हैं वो एड हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस ज़्यादा कॉमन होता है। हार्मोन्स चेंज होना, मेनोपॉज मतलब महीना बंद होना, ये हार्मोनल चेंजेस डिपेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ जब उसी समय में बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं और माँ बाप अकेले रह जाते हैं, तो जो महिला हमेशा से अपने बच्चों के लिए ही पूरा समय व्यतीत करती आई थी, वो अचानक से खाली महसूस करती है। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक कारण होता है फैमिलीज में महिलाओं के लिए एक मेंटल हेल्थ इशू फेस करने का, जिसको नॉर्मल बोल के छोड़ दिया जाता है, बट एक्चुअल में इसकी तरफ ध्यान देना, इसको एड्रेस करना और अगर ज़रूरत है तो इलाज लेना बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज बुढ़ापा मतलब ये नहीं कि ऐसा ही चलेगा, बुढ़ापा बहुत अच्छा भी बीतता है।
0: बिल्कुल, यानी उम्र का बढ़ना ऐसा नहीं है कि आपको सब जो है बोल रहे हैं कि भैया आपकी तो उम्र बढ़ रही है इसलिए आप गुस्सा करते जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं और बहुत अपसेट रहने लगे हैं, तो इसका मतलब आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करने की भी ज़रूरत है, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की भी ज़रूरत है। आगे जानेंगे मेंटल हेल्थ इन वुमेन ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चली हैं मेंटल हेल्थ इन वुमेन के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने वाले आपको लोग बहुत कम मिलेंगे और यही एक ऐसा रीज़न है कि बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि यंग बच्चों से लेकर बड़ी उम्र की लेडीज़ बहुत गलत कदम भी उठा जाती हैं। गलत कदम, कभी खुद को ख़त्म कर लेना तो कभी कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जो सबके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है तो इसमें फिज़िकल जो भी आप फिटनेस चाहते हैं उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली महिलाओं के क्षेत्र में, क्योंकि नौकरी अगर आप कर रही हैं तो प्रेशर आप पर डबल है। ऑफिस के भी काम करने हैं, वहाँ का भी एक बैलेंस क्रिएट करना है, घर की जिम्मेदारियाँ भी निभानी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर कोई ले रहा है तो वो है घर की लेडीज़, और लेडीज़ का दिमाग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। तो ऐसे में इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, क्या ट्रीटमेंट कराना है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि देर हो जाए। सो डॉक्टर सुरभि शर्मा हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज के एक्सपर्ट। सो डॉक्टर सुरभि, बात करें हम मेंटल हेल्थ की। अब मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स तो आपने बता दिए कि बार बार गुस्सा जो कर रहे हैं या खाना वाना नहीं खा रहे हैं या ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं या फिर डिप्रेशन में अगर आप उनको देख रहे हैं तो ये आपको सिम्टम्स कुछ समझने चाहिए। और हर एज के सिम्टम्स जो होते हैं वो अक्सर मिले जुले ही होते हैं जिनको हम इग्नोर करते जाते हैं, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं और लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं तो बात कैसे करें? एक पेशेंट अपने दिल की बात समझाए कैसे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो खुद कैसे समझे कि ये प्रॉब्लम हो गई और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा?
1: सिम्टम्स से फोकस करते हैं तो हर एज में मोटा मोटा सिम्टम्स सेम होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जिससे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप प्रेजेंट करती है। जैसे बच्चों में, टीनेज में, वो चिड़चिड़ापन या बात ना मानना, रिबेल करना पेरेंट्स के अगेंस्ट, या फिर बहुत ही विड्रॉन या अकेलापन पसंद करना, ये सब दिक्कतें आती हैं, या फिर सडन एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाना, ये एक बहुत मेन पॉइंटर होता है कि ये लक्षण है मेंटल हेल्थ इशू के। बड़ों में, महिलाओं में, जब वो करियर प्रॉस्पेक्ट्स में या फिर शादी होती हैं तब मेन जो लक्षण होते हैं वो दर्द की तरह प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मन ना लगना, थकान होना, हाँ ये सब होता है, बट जो एक मेन पॉइंटर होता है पेन, सर में दर्द, शरीर में दर्द, बहुत ही जल्दी थकान हो जाना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि भाई मे बी शरीर नहीं मानसिक दिक्कत चल रही है। ऐसे ही उम्र के साथ एल्डरली महिलाओं में चिड़चिड़ापन, ठीक है, नींद का बहुत ज़्यादा दिक्कत होना और भूलपन होना, चीज़ें याद ना रहना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंटर होता है कि कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम हो रही है
0: जी।
1: इलाज हर एक एज ग्रुप के लिए है, इलाज पर्सनलाइज होता है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी को थेरेपी की ज़रूरत है, या किसी को दोनों की ज़रूरत है। जितना जल्दी डॉक्टर के पास या थेरेपिस्ट के पास जाएं उतना जल्दी चीज़ें पहचान सकते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट करें उतना अच्छा सुधार आता है, जिसको हम अपनी भाषा में प्रोग्नोसिस कहते हैं।
0: जी, यानी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर से मिलकर आखिर क्या हो जाएगा, फिज़िकल कोई प्रॉब्लम हो तो समझ आए भी, मेंटल प्रॉब्लम एक आम इंसान नहीं समझ पाता। लेकिन अगर आपके घर की कोई लेडी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील कर रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या एकदम शांत है, आपसे बात ही नहीं करना चाहती है, तो भी ये कुछ रेड सिग्नल्स होते हैं जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपकी डॉटर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, अगर ऐसा कुछ बिहेवियर आपको दिख रहा है तो उनसे बैठ के ज़रूर बात कीजिए, और फिर एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स दिखने में छोटी लगती हैं पर आगे जाकर ये पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर सुरभि, कैसे ये जो स्ट्रेस है इसको कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि ये स्ट्रेस आज से मुझे लगता है 20 साल पहले लोग ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, ये शब्द का इस्तेमाल करते ही नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली में नहीं था। लेकिन अब इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करें? बार बार आ रही स्ट्रेस मैनेजमेंट की रील्स देखने से क्या ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर थेरेपी में क्या किया जाता है जिससे लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके?
1: सो बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने का, और वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में क्या स्ट्रेस है, क्या प्रॉब्लम है, एंड हर एक इंसान के लिए वो चीज़ थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर इन जनरल टर्म्स में मैं बताऊँ तो स्ट्रेस एक अच्छे हेल्दी दिनचर्या से काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है कि रात में समय से सोना, फ़ोन बिना चलाए मिडनाइट तक, सवेरे टाइम से उठना, एक हेल्दी खाना खाना, जंक, तला भुना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज करना. एक्सरसाइज स्टडीज़ कहती हैं कि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है एंड हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. इसके अलावा मेडिटेशन या योगा, तो किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए. बट हाँ, जब बीमारी ही आ जाए स्ट्रेस के चलते, डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई और साइकेट्रिक इलनेस ही हो जाए, तब ये रूटीन नहीं हो पाएगा. चाहे लोग कितना ही बोल लें, परिवार वाले कितना ही समझा लें, जब बीमार हो जाता है इंसान तब उसको इलाज ही लेना पड़ता है. इलाज, दवाइयाँ, थेरेपी, जिसमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चीज़ें होती हैं, उनका तबीयत को ध्यान में रखते हुए, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए ही दवाई, सेफ दवाइयाँ चूज़ की जाती हैं. और आजकल मैं बहुत सुनती हूँ कि एक मिथ होता है कि मैडम साइकेट्री की दवाइयाँ एक बारी शुरू हो जाएं तो वो तो ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं, हमने ऐसा सुना है. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. एक कोर्स होता है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि बाकी स्पेशलिटीज़ में अगर हफ्ता दो हफ्ता की बुखार की दवाइयाँ चलती हैं तो साइकेट्री में 4-6 महीना की दवाइयाँ चलती हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू. बट जिंदगी भर चलेंगी ऐसा नहीं होता है. और दवाइयों की आदत पड़ जाएगी वो भी नहीं होता है.
0: बिल्कुल. सो दवाइयों की आदत नहीं पड़ेगी, दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग नहीं चलेंगी, इसीलिए डॉक्टर से मिलने में कोई हर्ज नहीं होता है. डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से आपको ज़रूर मिलना चाहिए अगर कहीं पर कोई ऐसा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का कोई भी आपको सिम्टम नज़र आ रहा है. डॉक्टर सुरभि, एक बहुत कॉमन सी चीज़ आजकल देखिए, बहुत सारे यंगस्टर्स कहते हैं पैनिक अटैक आ गया, तो ये पैनिक अटैक क्या होता है, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पाते.
1: पैनिक अटैक, सबसे पहले तो जब पैनिक अटैक आता है लोगों को लगता है कि कोई दिल का दौरा पड़ गया है, हार्ट अटैक आ गया है.
0: ओके.
1: उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, दिल का धड़कन बहुत तेज लगना, सांस ठीक से ना आ पाने लगना, चक्कर महसूस होना, बोल ना पाना या पूरा शरीर कांपने लगना, ऐसा महसूस होना कि अब तो मेरी जान निकल जाएगी. ये सब कुछ लक्षण है जिसको पैनिक अटैक का नाम दिया जाता है. और इसमें इतना तेज घबराहट होती है कि इंसान को लगता है कि बस अब मेरे को अस्पताल ले चलो, मैं नहीं बचूंगा. और लगता है कि शायद हार्ट अटैक का ही दिक्कत है. तो सबसे पहले वो जाके सारी हार्ट की जांचें कराते हैं और उसमें कुछ नहीं निकलता है, फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं कि इतना प्रॉब्लम में फेस किया और जांचों में कुछ नहीं आया, ये क्या हुआ. तो उसका जवाब फिर उनको मिल नहीं पाता है. बट एक्चुअल में ये पैनिक अटैक, और अगर पैनिक अटैक बार बार हो रहा हो तो पैनिक डिसऑर्डर, ये एक साइकेट्रिक बीमारी होती है जो कि जाने अनजाने समहाउ स्ट्रेस के कारण होती है, या फिर जो हमारे बॉडी के नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल रसायन है उनका ऊपर नीचे होने के कारण होती है.
0: जी बिल्कुल. यानी पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन आजकल आपने शब्द सुना होगा, लेकिन इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डॉक्टर सुरभि, आप चलते चलते बस आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखना है. सो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी लेडीज़ को कि कैसे अपने आप को फिट रखें मेंटली, स्ट्रेस से दूर रहें, एंग्जाइटी से दूर रहें, डिप्रेशन से दूर रहें, इसके लिए क्या वो ऐसी चीज़ें करें जिससे वो फिजिकली तो फिट रहें, मेंटली भी स्ट्रांग रह सकें.
1: उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को एक हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना.
0: जी.
1: मन में चीज़ें रखना, अपना गुस्से को अंदर पीना, या जो भी अगर किसी बात को बुरा लगा है वो ना कहना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो स्ट्रेस को बिल्डअप करता है. तो इट्स बेटर कि हम जो भी महसूस कर रहे हैं उसको बयान करें, उसको बोलें, बताएं, डिस्कस करें, तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है. एंड हस्बैंड की लड़ाई फ्रेंड से जाके डिस्कस करना, या फ्रेंड की लड़ाई घर पे आके डिस्कस करना, उससे एक्चुअली वेंट आउट तो होता है बट सोल्यूशन नहीं होता है. तो जिससे जो प्रॉब्लम है उससे वो ही डिस्कस करें हेल्दी तरीके से, वो बेस्ट वे है टू हैंडल स्ट्रेस.
0: जी.
1: उसके अलावा एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, एक अच्छा खान पान और अच्छी नींद, ये सब मेन चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छा सुकून की लाइफ जीने में मदद करती है.
0: जी बिल्कुल. और डॉक्टर सुरभि, अब लोग बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं 24 घंटे में से, मुझे लगता है 4 घंटे तो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो क्या ऐसा देखें जिससे आपका दिमाग खुश रह सके.
1: आजकल रील्स में नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लमैटिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं. और इसको हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, जिसमें इंसान ये सब नेगेटिव कंटेंट अपने अंदर बसाता जाता है, उसी के बारे में सोचता रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इश्यूज होने के बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसमें यह है कि पहला, अपना मोबाइल या स्क्रीन यूज़ को लिमिट करें। रील्स देखने से जो अटेंशन या कंसंट्रेशन में ख़राबी होती है, जो मेमोरी में ख़राब आती है, वो बहुत सारी स्टडीज़ प्रूफ कर चुकी हैं। सो आइडियली ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, अगर देखना भी है तो बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए।
0: जी।
1: अपना एक स्क्रीन फ्री जोन होना चाहिए, कि एक समय होना चाहिए कि इस समय बाद हमें फ़ोन या रील्स नहीं देखने हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये सब चीज़ें अपना लाइफ में ना पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, यानी कुछ समय ऐसा जब आपको फ़ोन से दूर रहना है, स्क्रीन टाइम दूर रहना है और खुद पे फोकस करना है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे गाने सुनिए, ये बहुत जरूरी है, जिनको हम थोड़ा भूलते चले आ रहे हैं। नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। पार्क में टहलना पसंद है तो पार्क में जाइए, अपने लिए शॉपिंग करना पसंद है तो वो भी करिए, लेकिन खुश रहने की कोशिश जरूर करिए। और अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसको जरूर शेयर कीजिए अपने परिवार या अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके दिल में वो चीज ना बसी रहे, वो आगे जाकर एक बड़ा सा जख्म भी बन सकती है और मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। डॉक्टर सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।
2: थैंक यू।
0: फिलहाल बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं प्रोग्राम ऑल इज वेल में। SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे नॉलेज पार्टनर रहे, और अब टाइम है आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दियो तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच विद फिटर और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो आज हर एज ग्रुप के लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड कर रही हैं। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लगभग 80 किलो से भी ज्यादा हो गया था और साथ ही PCOD, हाइपोथायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज से वो खुद भी जूझ रही थी। लो कॉन्फिडेंस और फिजिकली इतनी तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने चलने फिरने, दौड़ने और स्टेयर्स तक चढ़ने से मना भी कर दिया था। और इसी दौरान कोविड के वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस ने उनकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब लाइफ टफेस्ट होती है तो वही से स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी शुरू होता है। उन्होंने एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया और अपनी जर्नी को सीरियसली लेते हुए INFS से न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की पढ़ाई भी की, और फिर जो हुआ वो तो सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने 26 से 28 केजी वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ इम्प्रूव की, स्ट्रेंथ वापस पाई, और जहां उन्हें बेसिक मूवमेंट से भी रोका गया था वहीं आज वो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करती हैं, साथ ही वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और एंड्योरेंस एक्टिविटीज जैसे रनिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ICN में भी स्टेज पर कदम रखा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज वो लोगों को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को समझना, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना और एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कोच सिमरन का। तो सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
5: थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
4: ओके, तो सिमरन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेजिंग वंडरफुल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे की आपने इस जर्नी की?
5: तो गौरी, मेरी फिटनेस जर्नी ऑनेस्टली एक चॉइस से ज़्यादा नेसेसिटी था। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट 78-80 केजी तक चला गया, जहाँ मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, बैक पेन, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ। और कोविड के टाइम पर जब मैंने अपने फादर को लूज़ किया, उसके बाद हेल्थ मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना ही पड़ा।
4: सो जब मतलब आपने जर्नी स्टार्ट किया आपकी, तो बहुत से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा
5: जी,
4: फिजिकली भी और मेंटली, तो उसके बारे में आप हमें बताइए।
5: फिजिकली चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, इसीलिए ज़रूरी हो गया कि अभी हम अपने हेल्थ पर काम करें, लेकिन मेंटल चैलेंज ज़्यादा बड़ा आया जब मैंने सोचा इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेशेंस रखना, और सबसे बड़ी बात, क्विक रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से बाहर आना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो कल ही क्यों, दो हफ्ते बाद ही क्यों ना मेरा 2 किलो वेट गिर जाए
4: जी।
5: लेकिन तब समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने अपना कुछ पढ़ाई करने के बाद ये जर्नी शुरू करी, तो एक माइंडसेट जरूर मेरा ये बन गया था कि मुझे क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए
4: जी।
5: तो वो मेंटल ब्लॉक ज्यादा था, बट काम करते करते फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीजों पे मैंने जीत पाई डेफिनेटली।
4: तो सिमरन, आपको कितना समय लगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए?
5: वैसे सच बोलूँ तो मुझे जर्नी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। शुरुआत तो मैंने कुछ किलो वेट कम करने के लिए ही की थी, लेकिन जब मैं इस जर्नी पर आ गई तो मेरे गोल्स भी चेंज होने लगे। सो अगर आप वजन की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे 1-1.5 साल लगा पहला अपना 30 kg के आसपास लूज़ करने के लिए, बट उसके बाद मेरे गोल्स चेंज होते ही चले गए। फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए मसल कितना ज़रूरी है। क्यों ना मैं मसल ट्रेनिंग करके थोड़ा गेनिंग करूं एंड अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करूं। तो आज मुझे इस जर्नी पे लगभग 4 साल हो गए, 4.5 साल।
6: और आप इतनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रही हैं मतलब बहुत उम्दा मैं कहूँगी, आपने अपना एक जो वो चीज हासिल की है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग, वो तो देखकर ही आपको लग रहा है। सो उस टाइम पे आपका क्या, कितना वेट था?
5: तो मेरा आई थिंक 80 के आसपास थी मैं, और जिस दिन मैंने ये ठाना कि आज मैं, मतलब एक होता ना एक दिन जब आप सोचते हो कि आज तो स्टार्ट कर ही देंगे, कुछ दिनों से आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, तो मुझे आज भी याद है कि 78 किलो का वजन मैंने देखा था स्केल पर, और खुद को जब मैं शीशे में देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसी कब हो गई। तो वो मेरे सेकेंड बेबी के बाद जो शुरू के 5-6 महीने मैं उनके साथ बिजी रही, और ऐसा बोलूंगी कि 6 महीने बाद खुद को शीशे में देख कर होश आया कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं कैसी दिखने लगी, क्या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। और फिर फिजिकल चैलेंजेस अलग थे। तो वो 78 केजी का मार्क मुझे याद है, और एट द एंड 1.5 ईयर के बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज भी हिट किया तो मैं 52 केजीज पे थी।
6: वाओ, सुपर सुन के बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपका ये सफर, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ। सो सिमरन, जैसे आपको डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इवन स्टेयर्स चढ़ने में भी, तो मतलब क्या वो दिक्कतें रहती थी क्या, जैसे नी पेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे?
5: बिल्कुल। तो मुझे नी पेन, नी में क्रैकलिंग साउंड उठने बैठने पर, हालांकि मेरी उम्र शुरू के 30 सालों में ही थी, और बहुत ज़्यादा साउंड नी में आना, पेन होना सीढ़ी चढ़ते समय, और तब मैंने जस्ट ट्रेनिंग शुरू ही की थी। जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी तो जैसा होता है ना इंडिया में, वैसे ही सबको लगता है कि ट्रेनिंग करने से ही बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वही चीज़ हुई। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी बोल दिया अरे आप लिफ्ट मत कीजिए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि आपको जो चीज़ एक्चुअली हेल्प करने वाली है उसी को ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज भी एक टैबू है। और तो और डॉक्टर की एडवाइस भी यही थी कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों को उठाकर गोदी नहीं घूमना चाहिए, मुझे नीचे ज़मीन पर पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए। तो ये और भी बड़ा एक रीज़न बन गया कि मैं कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली 30-32 में आप ऐसा तो लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैं आज के बाद ये सब काम बंद कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूं, मैं ऑलरेडी अपना पढ़ाई शुरू कर चुकी थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फिटनेस के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, तो मुझे लगा मैं इसी पे प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके नीज़ में पेन है, यानी कि अगर आपको लगता है, जिसे हम बोल देते हैं कि गोंद कम हो गई है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार्टिलेज ख़राब हो रही है, उसको तो हम वापस नहीं डाल सकते, वो रिपेयर नहीं होगा, लेकिन कर क्या सकते हैं हम अपनी बॉडी की वो मसल्स जो कि आपकी नी को या आपके आपको चलने फिरने में हेल्प करती है, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आपकी क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल, जो कि लेग चेन की वो मसल्स हैं, अगर वो ताकतवर हैं तो आपकी नी पे स्ट्रेन ही कम पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसको बहुत ही माइंडफुली करना रहता है। अगर ऑलरेडी कहीं पेन है तो आपको इंजरी भी कॉज हो सकती है। तो वही, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए मैंने बहुत ध्यान से अपनी इंजरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बाकी सभी मसल्स को ऑब्वियसली ट्रेन किया। एंड फिर एक जिद ये भी हो गई कि मुझे चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया गया था, तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन भी रन किया 1.5 साल के बाद, तो 10 किलोमीटर्स पे मैंने पोडियम फिनिश भी किया।
6: वाओ, वंडरफुल। सो एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि मसल ट्रेनिंग क्या लेडीज़ के लिए भी उतनी ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए भी है?
5: हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे मैंने कहा कि एक टैबू है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विमेन के लिए भी है। तो आयरनी देखिए कि इंडिया में ही हम सबसे ज़्यादा इसमें मुझे लगता है डरते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेन करें या ना करें, लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जैसे कि आपने अगर कभी एक टर्म सुनी हो सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, सार्कोपीनिया मतलब नेचुरली 30s के बाद आप अपने मसल्स को लूज कर रहे हैं 1% रफली हर साल। सो एक हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट यू आर लूजिंग इट, अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरसिस मतलब पोरस, हॉलो बोन्स, तो अगर इसके बारे में भी मैं आपसे डेटा शेयर करूं, तो इंडिया में 5-6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात उनमें से लगभग 80% महिलाएं हैं, यानी कि जब हम देखते हैं कि 40s 50s के बाद अचानक से कोई गिरा या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बहुत इजीली फ्रैक्चर हो गया और फिर उनको बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी लोग बेड रिटन हो जाते हैं, क्योंकि इसको हम साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं। ये पता ही तब चलती है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। अच्छा। तब तक आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं। तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आप इस सब के शिकार और ज़्यादा होने के चांसेस में हैं। अगर आप 20s 30s से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग करें, भले ही बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मसल्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, सबकी बॉडी तो वही है, एनाटॉमी तो वही है। तो हमें मसल्स को ट्रेन करना चाहिए अपनी अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब एक वुमन ट्रेन करती है तो पूरा घर चेंज होता है। मैंने अपने घर में इसे ट्रेडिशन बनते देखा है। जहाँ हम इंडिया में कल्चर ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम जो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते देखा, हमने पूजा करना शुरू किया, हमने समझा कि भगवान है क्योंकि पेरेंट्स ने बताया, लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमें फिटनेस को देखना है, हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना है। तो मैं कहूँगी विमेन का ये करना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा। और इस सब का जो एक तरीका जो मैं देख रही हूँ मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा 12 साल का हो जाएगा, मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, आप उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पूछिए, आप उन्हें एक्सरसाइज की अहमियत पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो मेरी डॉटर को कभी मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो पुशअप और पुलअप्स करने के शौक रखती है। मुझे बोलती है मुझे बार पर लटकाओ, मुझे पुलअप करना है, पुशअप करके दिखाया उसने मुझे, स्क्वाट्स करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कल्चर की तरह फिटनेस आगे लेकर जा रही हूँ। तो वुमेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है।
6: बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है कि वुमेन को बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि हमें नहीं पता मसल ट्रेनिंग क्या है। हमें तो लगता है कि बस वेट कम करना है, डाइट कर लो या योगा या जिम चले जाओ एक घंटा, और वहाँ पे भी जिम में भी नहीं समझ आता है अगर आपके पास ट्रेनर अच्छा ना हो, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते हैं लोग। सो मतलब आपका ये कहना है कि मसल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल,
6: फिर चाहे वो एक लड़का ही हो चाहे लड़की,
5: बिल्कुल।
6: बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं सिमरन यहाँ पे। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे कोच सिमरन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच सिमरन, जो हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके बता रही हैं वेट लॉस के, मसल ट्रेनिंग के। और ये खुद भी इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। तो हमें अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है इनकी बात सुनने में। आगे और अपनी इस बात को जारी रखते हैं। तो सिमरन जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अराउंड 26 to 28 kg वेट लॉस किया
1: जी,
0: तो सबसे इफेक्टिव चेंज क्या था जो आपने इम्प्लीमेंट किया?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा और ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ेक्टिव चेंज क्या है। सबसे इफ़ेक्टिव चेंज है स्ट्रक्चर।
0: अच्छा,
1: अगर हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सोचते रहेंगे हाँ आज कम खाकर देखती हूँ, दो दिन मैंने ये किया, आज फास्टिंग कर लेती हूँ, कल डिटॉक्स कर लेती हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीज को समझना। कैलोरी क्या है? एक एनर्जी यूनिट है। मैंने कोई खाना खाया, उसने मुझे कितनी एनर्जी दी, उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी सब में होती है, पानी को छोड़कर। सो कैलोरी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इनटेक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत समझना, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं होता। स्मार्ट खाना, न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सो यही इफेक्टिव चेंज है कि मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रक्चर डाला कि मुझे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिकवर कर पाऊँ, मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैं लाइफ में एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, जिसको आप स्टेप काउंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप काउंट करना कोई मैजिकल है, लेकिन हम एक बस एक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि इतना तो मुझे कम से कम चल देना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000, जो आपका डेली का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और आप जानेंगे गौरी, यही 5 चीज़ें हैं जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। आज भी मैं यही फॉलो करती हूँ, शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और मेरे कितने सारे मेंटीज, आई थिंक मैंने 400-500 लाइफ्स को टच किया, ये सब भी यही करते हैं। बट सबको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना कैलोरी चाहिए, किसको कैसा स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, यही एक स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर पे टिका है फिटनेस आपका
0: जी। मतलब आपने जो 5 चीज़ें बोली, जैसे कि एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर पोर्शन आपको पता होना चाहिए,
1: क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी से अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं नाप तोल करके खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं घर में एक जैसा ही खाना खाना चाहती हूँ, हम क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी डॉटर की, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, या घर में और किसी की, या हमारे इन लॉज की, जो पेरेंट्स की, उन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, और सब एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं खा सकते। लेकिन हम वो देखते आए हैं कि हमने दाल रोटी बनाई और सब खा लिया। हाँ, लेकिन उसमें
0: सबकी बॉडी अलग अलग,
1: बॉडी अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा। यहीं पर स्मार्ट न्यूट्रिशन काम आता है, और कोचिंग भी काम आती है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को फिटर ऐप के थ्रू हेल्प कर रही हूँ, तो आप फिटर ऐप पर जाकर अगर सर्च करेंगे सिमरन कौर, आपको मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचेस में मिलूंगी, या वहाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशन
0: कोचेस। हमने आपकी बहुत अमेजिंग वीडियोस देखी हैं, मतलब मैंने तो
1: जी। तो यही स्ट्रक्चर एज अ कोच भी मैं औरों के साथ बिल्ड करती हूँ, और यही सबसे इफेक्टिव चेंज है जो आप लेकर आ सकते हो
0: जी। तो सिमरन, आपने बात की आप कोच हैं जैसे कि, और बहुत से लोगों को आप ट्रेन करिए, तो अभी आपके अंडर कितने लोग हैं?
1: मेरे पास अभी एक्टिवली 100 to 120 मेंटीज हैं, और टोटल फिटर ऐप पर आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 400 लाइव्स टच कर चुकी हूँ। आप देखेंगे ऐप पर, जब सिमरन कौर सर्च करेंगे वहाँ पर है। और फिटर से पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तो आई थिंक कुछ 100-150 लोगों को मैंने वहाँ भी ट्रेन किया है। सो मोर देन 500 पीपल मैं।
0: तो ये कैसे ऑनलाइन रहता है आपका?
1: हाँ, तो जैसे ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या वहीं पे प्लान्स हम शेयर करते हैं, डाइट वर्कआउट प्लान शेयर होते हैं। तो मेरे मेंटीज मुझे अपने वर्कआउट की वीडियोस, चाहे वो होम वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, जैसे आपने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं वो अपना वर्कआउट प्लान, वहाँ वीडियोज़ भी होती हैं, तो वो वीडियोज़ के थ्रू शेयर अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत पर्सनलाइज करके प्लान बनाती हूँ, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को नी में पेन है, किसी को और कोई इशू है, सब एक जैसा ट्रेन भी नहीं कर सकते, एज वाइज, हार्मोनल वाइज, वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेम फॉर न्यूट्रिशन। तो वहाँ प्लान्स होता है, एंड फिर वीकली हम अपने मेंटीज से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो अपना स्टैट्स अपने मेजरमेंट्स डालते हैं. अदरवाइज व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू हम डेली भी कनेक्ट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं पांच चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कि आज उनका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर इनटेक और उनके स्टेप काउंट कैसे रहे, क्या स्ट्रगल है. क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझा कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ एक कोच आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में.
0: और कोच क्या, हम तो कहेंगे हर चीज में गुरु होना तो बहुत जरूरी है ना. तो आप भी एक गुरु ही हैं जो दिशा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो वेट लॉस की जर्नी किसी की क्यों ना हो, तो वो बहुत जरूरी है. सो आपके जितने भी आप इंडिया में ही करते हैं, इंडिया से बाहर भी आपके कुछ हैं क्लाइंट्स?
1: फिटर बहुत सारी कंट्रीज में कर रहा है, मोर देन 100 कंट्रीज. तो मेरे पास बहुत सारे मेंटीज जो है NRIs भी हैं
0: जी,
1: जो बाहर रह रहे हैं, और उनके लिए स्ट्रगल्स और भी ज्यादा हैं. समझिए, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें के काम, उनके बच्चे और वर्किंग वेमेन है, और बहुत सारे पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ये वहाँ सक्सेसफुल ज़्यादा देखा है जहाँ पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की जर्नी समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेल्प चाहिए. इंडिया में तो हमें फिर भी हाउस हेल्प या पेरेंटल हेल्प भी हो जाती है, और यहाँ पे लाइफ ईजियर है थोड़ी सी, शायद मैं ये कहना चाहूँगी. ये मैं अपने जैसे मेरा मैं देखती हूँ मेंटीज के साथ काम करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ. बट फिर भी अगर आप बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है.
0: बिल्कुल. तो सिमरन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमेन के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, स्पेशली इंडिया में जहाँ मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं?
1: तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या सार्कोपीनिया, जहाँ पे मसल लॉस बहुत इजीली हो ही रहा है 30s के बाद, रफली 1%, या फिर मैंने आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, 80% से ज़्यादा वुमेन है. और दूसरी बात, इंडिया में ये इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें लगता है घर के काम तो हम कर ही रहे हैं
0: जी.
1: बहुत सारी वुमेन जो वर्किंग है, जिन्हें हम नॉन वर्किंग बता देते हैं, वो वर्किंग से भी ज़्यादा वर्किंग है, घर के काम उनके ख़त्म नहीं होते, फिर भी वही हैं जो स्ट्रेंथ लूज कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है झाड़ू पोछा कर देना या घर में कुकिंग कर देना या बच्चों की सारा दिन हेल्प करना, तो हम काम तो कर रहे हैं. लेकिन समझिए, ट्रेनिंग और काम एक ही चीज़ नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो ट्रेनिंग मतलब हर मसल को, कहाँ आपका मसल जॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको ट्रेन कैसा कर सकते हैं. तो मसल को आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है, आप उसे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप हर मसल को, भले ही वो चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल, ग्लूट मसल, सब मसल्स को हम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे इलास्टिक बैंड को अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे उसके कुछ कुछ रेशे आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ही मसल के भी फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
0: अच्छा.
1: अब बॉडी, अगर आपको एक चोट भी आए तो रिपेयर करेगी ना, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे ही जब आपने मसल को ट्रेन किया माइंडफुली कि मुझे आज ये मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, जो कि झाड़ू पोछे से या घर के काम से अकेले नहीं हो पाएगा, तो जब हमने माइंडफुली मसल्स को ट्रेन किया, आज मुझे यहाँ ट्रेन करना है ताकि उनकी रिकवरी भी हो पाए, रोज मैं एक ही काम करके ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो उसके बाद बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिकवर करती है. उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक भी अच्छा चाहिए. तो वेट लॉस में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कम खाने से वेट कम हो रहा है
0: जी.
1: लेकिन आपको क्या पता कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है.
0: अच्छा, कुछ लोग सिमरन ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डाइट बहुत कम होती है, बट वो बहुत मोटे क्यों होते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो अगर हम मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो हमारा BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है. यानी कि बॉडी जो एनर्जी बना पा रही है हमें प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, वो बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसे पता है आप स्लो खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो वो प्रिजर्व करती है. अब जब बॉडी ने मेटाबॉलिक रेट ही कम कर दिया और आप वैसे भी मसल ट्रेन नहीं कर रहे थे, आप किसी भी तरीके का फैट डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, यानी अपने आपके फैट से ज़्यादा आपका मसल गया. आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चल चल कर या खाना कम खाकर वेट लॉस करते हैं. तो आपने जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ये चीज़ आपको उनमें नहीं दिखेगी. वो एक बड़े एप्पल से एक छोटा एप्पल बन जाएंगे, लेकिन फैट जहाँ था वहीं रहेगा. तो जब हमारा मसल ही कम हो गया, हमारा BMR नीचे आ गया, अब हमारी बॉडी को कैलोरी रिक्वायरमेंट ही कम है, हम जितना भी कम खा लें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेन करें. ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को पता चलेगा इन्हें प्रोटीन्स और मसल्स की ज़रूरत है। अब वो जो डेफिशिट या आप 200-300 कैलोरी कम खाकर जो कर रहे थे, वहाँ फैट लॉस कर पाएगी और आपके मसल्स को बचा पाएगी।
0: आज तो मतलब हमें बहुत नॉलेज मिल रही है आपके थ्रू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरली जो लोग होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, बिल्कुल ही नहीं पता हमें, जिसने आपने इतनी इसमें, आप कह रहे हो कि पढ़ाई भी की है और बहुत आगे आप और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं। डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को आज बहुत ही ज्ञान की बातें मिल रही होंगी।
1: धन्यवाद।
0: सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन। तो सिमरन, अभी आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अब एक यहाँ पे मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग में आप किस तरीके से गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, इसके बारे में बताइए।
1: मैंने जैसे बोला कि मेरी जर्नी की शुरुआत तो एक नेसेसिटी से ही हुई कि मुझे अब खुद के लिए कुछ तो करना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब आप जिस जर्नी में जाते हैं, आप अपने आसपास का वैसा ही माहौल ढूंढते भी हैं, आप और लोगों की तरफ देखते हैं जो आपके जैसी जर्नी पर हैं, तो वहाँ मुझे पता चला ICN के बारे में, आई कॉम्पीट नेचुरल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे वेमेन एंड मैन आते हैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और कैसे करा के लिए, तो मैं बोलूँगी इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, साथ में आप अपनी फैमिली और अपने काम को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेंटीज़ को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है आपको उस लेवल तक जाना जहाँ पर आप एक जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच जाते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज भी आप काफ़ी कम कैलोरी पर होते हैं उस बॉडी की शेप के लिए जो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, आपके मसल्स की विजिबिलिटी के लिए। तो वहाँ मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैं अपने आप को जान पाई कि मैं कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ या कितना डिसिप्लिन ला सकती हूँ अपने अंदर।
0: और आप कितने घंटे मेहनत करते थे इसके लिए, मतलब दिन में कितनी, मतलब बोला जाए तो कितने आवर्स आप देते थे?
1: देखो, जनरली तो मैं एक घंटे से डेढ़ घंटा या दो घंटा वर्कआउट करती हूँ, और हफ्ते में चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, ऐसा मैं अपने गोल्स के हिसाब से चेंज करती हूँ कभी कभी। लेकिन ICN के टाइम पर मैंने ढाई घंटे के आसपास वर्कआउट, और फिर अलग से मुझे अपनी वॉक के लिए जाना या फिर ट्रेडमिल करने के लिए या कुछ HIIT के लिए जाना, वो भी मैंने साथ में किया। तो उसमें भी मुझे एक डेढ़ घंटा शाम को भी डिवोट करना पड़ता था। एंड देन जैसे मैंने कहा कि मेंटल चैलेंज है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रिसाइज होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वहां भी काफी मेहनत लगती है।
0: जी सिमरन, आज की बिजी लाइफ में और आज का ये जो दौर आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं ये PCOS और PCOD और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और छोटी छोटी गर्ल्स में भी, मतलब 15-16 साल 20 साल, मतलब इस एज में भी लड़कियों को हो रही है और बड़ी एज की लेडीज को भी है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं?
1: जी, तो गौरी, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मुझे पूछी है। मैं खुद आपको बताऊंगी, आई थिंक 2008 में मुझे पता चला था मुझे PCOD है। तो और आज की भी अगर मैं बात करूँ, तब आई थिंक अराउंड 10% वेमेन इससे अफेक्टेड थी। आज इंडिया में लगभग 17% वेमेन PCOD से अफेक्टेड है।
0: अच्छा
1: जी। और इसमें जानने वाली बात ये है, 17% से मतलब है दिस इज़ नॉट रेयर एनी मोर, ये रेयर कंडीशन तो नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है? ये हमारे लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे या जानेंगे PCOD के लिए हम क्या करें, जो आपने मुझे पूछा, तो आपको बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जो मुझे भी बोला जाता था। मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरा वेट तब हालांकि 55 के आसपास ही रहा होगा 2008 में
0: जी।
1: तब भी वो मुझे कहते थे थोड़ा वेट लॉस करिए, प्रोटीन ऐड करिए। प्रोटीन कैसे खाइए, क्या खाना है मुझे, तो बोलते थे चिकन खा लो। मैं थी ही वेजिटेरियन तब।
0: अच्छा।
1: तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रोटीन्स ऐड करने हैं। तो ये कुछ ट्रबल्स थी वहाँ पर और जो आज भी हैं। तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करिए बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे करें नहीं पता। तो जो पांच चीज़ें हम अभी बात कर रहे थे, वही है इसका भी आंसर, कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर खाएं, जहाँ अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी को शायद वेट लॉस नहीं करना, लेकिन अगर मैं PCOD थायराइड्स की भी बात करूं, तो अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लेट ऐसा बनाएं जहां हमारे हर मील में कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आ जाए, है ना, हम वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स, किसी से भी वो ले सकते हैं। तो अगर हम 20-25 ग्राम प्रोटीन, अच्छा फाइबर, 1/4 प्लेट को हम फाइबर यानी अच्छे सैलड से या सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं वहाँ उससे कवर करते हैं, एंड देन 1/4 पोर्शन कार्ब, अगर हम ऐसी प्लेटिंग भी फॉलो करना शुरू कर दें और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि मसल सिर्फ मांसपेशियाँ जो हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, मसल्स भी एक ऑर्गन है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा BMR अच्छा होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो बॉडी एफिशिएंसी से उससे एनर्जी बना पा रही है जो आप खा रहे हैं। तो यानी कि आपका खाना जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है, उसमें वैसे भी प्रोटीन ज्यादा है जो आपकी रिकवरी में यूज हो रहा है। कार्ब्स या फैट्स को हम थोड़ा लिमिटेड रखें, बंद नहीं करना है, ना तो आपको आटा ना दूध ना चावल कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इवन इन PCOD आई वुड से यू डोंट रियली नीड दैट, यू नीड टू बैलेंस योर प्लेटिंग।
0: हाँ जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, वो छोड़ दो।
1: देखो मैं तो आती हूँ एक पंजाबी फैमिली से और ऑनेस्टली अगर आपने बोला कि आप मेरी कुछ रील्स देखते हैं, मैंने रिसेंटली भी डाला, मैं आज भी नाश्ते में परांठे खाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, वो परांठे मेरी मम्मी के तरीके से नहीं बनाए जाते, वो परांठे एक सिंपल रोटी की तरह या कुछ स्टफिंग वेजीज की अगर डाल देते हैं, बीच में ऊपर हमने 2 ग्राम घी रखा, इस तरीके से वो बना के, एंड फिर उसको हम पेयर अप करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, है ना। हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसमें टोफू ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, हम एग्ज ऐड या वे प्रोटीन हमने ले लिया और कुछ नहीं, तो ऐसी बैलेंसिंग की हमें जरूरत,
0: मतलब चीजें वही है, बस
1: तरीका बदल गया, स्ट्रक्चर आ गया जो मेरी बॉडी के लिए सही है, कितना मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो और

0: है, तो इस तरीके की कंडीशंस, और पीसीओडी एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशन है। अगर पीसीओडी है तो आप समझिए ये पूरा क्लस्टर है, आप उसमें जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे और चीजों के साथ जुड़ के,
1: थायराइड,
0: इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये एक क्लस्टर में मेटाबॉलिक कंडीशंस की आप क्लस्टर में फंसेंगे। मुझे भी पीसीओडी के काफी सालों बाद फिर थायराइड हो गया, फिर हाइपोथायराइड में वो आ गया जहाँ मैं 125 mg की पिल ले रही थी। लेकिन देखिए यही लाइफस्टाइल, यही पांच चीज़ें फॉलो करते करते मैं आज पीसीओडी से भी बाहर हूँ। मैं बहुत गंदा एक्ने हुआ करता था मेरे फेस पे, हिर्सुटिज्म, एक्ने, एंड देन थायराइड का पिल, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो।
1: एंड आजकल एक दो चीजें बहुत ही कॉमन है कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मेलिज्मा बहुत ज्यादा कॉमन है, और हेयर फॉल तो पूछिए ही मत। मतलब कुछ यहाँ का पानी भी बहुत ही हम अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कितने भी आरओ लगा लो, क्या किस भी कंपनी के लगा लो, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का भी है कुछ फर्क, पानी वगैरह का।
0: हम जो ह्यूमन है ना, हमें अपनी गलती का दोष कहीं और डाल देना बहुत आसान लगता है। तो जहाँ हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, जहाँ हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो हम ढूंढ रहे हैं सबसे ईजी क्या है, शायद कॉर्पोरेशन ने पानी ही खराब दिया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो कि यू नो आप सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से अच्छा हो जाता है। आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज करके तो देखिए, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपको पेन फ्री हार्मोन बोलते हैं उसको, हमारे डोपामिन रिलीज होंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, पूरा दिन काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो सब चीज़ें सही रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हमें स्ट्रेस को भी कम करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर लाइफ बनानी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बिजी हों, आप कर सकते हैं।
1: जी, और ये जो स्लीप की बात आपने की, तो क्या 8 घंटे की ही जरूरी है या 6 में भी काम चल सकता है?
0: कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम रिकवर करें, डिपेंड करता है। कुछ लोगों की नेचुरली नींद 6 आवर्स होती है, कोशिश करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उसको कहीं से बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, रात का नेटफ्लिक्स कम कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ें टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, बच्चों को हम रूटीन पे जल्दी बेड पे डालें, ताकि हम अगर आधा घंटा खुद के लिए लेना भी चाह रहे हैं हम थोड़ा जल्दी जाएं। लेकिन हम तो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और सुबह आपके पास उठने की शक्ति नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपको सोना चाहिए, और ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। मैं भी इन्हीं 24 घंटे पे जीती हूँ, जहाँ यही 100 mentees, 120 mentees से भी कनेक्ट करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, 2 घंटे जिम में भी देती हूँ, टाइमली सोती भी हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे की नींद भी पूरी कर पाऊँ।
1: जी, तो मतलब 8 घंटे की नींद जरूरी है।
0: हाँ, नहीं हो रहा है तो 6.5-7 घंटे तो पहुँचिए, वहाँ तो पहुँचिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड। लेकिन स्लीप ना बहुत कंपाउंडिंग चीज़ है, हमें लगता है 5 दिन 5-5 घंटे सो के सैटरडे संडे मैं ज़्यादा सो लूँगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर मेरे फ़ोन की बैटरी 100 थी जब मैंने उसे चलाना शुरू किया, अगले दिन मैं 50% 30% पे वो भी डिम हो जाता है, एंड वो आपको बताता है कि अभी रिकवरी चाहिए, और वो बैटरी जो है वो लो होती जा रही है। सो अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूँ, जहाँ आपने पूरी एफिशिएंसी से day 1 शुरू किया, वहाँ जहाँ पे आप day 2 पे पहुँचे, आपकी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी 80-70% है, क्योंकि आपने रिकवर नहीं किया। फिर दूसरे दिन उस थकी हुई बॉडी से, जहाँ ऊपर रेड बैटरी हो चुकी है 20%, उस थकी हुई बैटरी से जब आप अगला दिन निकाल रहे हैं तो आप और ज़्यादा थक रहे हैं। तो जहाँ शायद उस दिन 8 घंटे की ज़रूरत या 7 घंटे की ज़रूरत थी, आप सोचें कि कल 2 घंटे फालतू सो लूँगी, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। वहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, आपकी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाएगा। आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर पीसीओडी या थायराइड जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी।
1: जी सिमरन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमारे लिसनर्स को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बातें आपसे जान के समझ के, क्योंकि वो जो एक तरीका है आपके समझाने का, तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर, और काफी इंस्पायर हो रहे होंगे लोग आज, इवन मैं भी हो रही हूँ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
0: थैंक यू गौरी।
1: सिमरन, अभी हमने बात की पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, और आपने जैसे खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सो क्या डायबिटीज भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिवर्स हो सकती है? मतलब हम सुनते हैं बहुत से एड्स भी आते हैं कि हो सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो, तो ये कहाँ तक सच है ये चीज़ या फिर मिथ है?
0: नहीं नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है. मैं खुद बहुत सारे ऐसे मेंटीज के साथ काम कर रही हूँ और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैंने अपने ऐप पर या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हैं जहाँ पे हमने डायबिटीज़

0: रिहर्सल भी किया है, जहाँ एच बी ए वन सी 7-8 से नीचे लाकर हम 5.1 नॉर्मल रेंजेस में लेकर आए हैं. तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है. डिपेंड करता है आप ये कब शुरू कर रहे हैं. अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, आज 7-8 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है
1: जी.
0: और बहुत बड़ी बात यह है कि 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में जब आता है, धीरे धीरे धीरे जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है, तब जाके इस चीज़ का डायग्नोसिस होता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है. तब तक आपके ब्लड वेसल्स या आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके होते हैं
1: जी.
0: तो एक तो अपना रूटीन में खून की जाँच, अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगाना 3-6 महीने में बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए. जहाँ तक बात रिवर्सल की है, लाइफस्टाइल से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं. हाँ, अगर आप इंसुलिन पे पहुंच गए हैं या कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, तो टाइम जरूर लग सकता है, बट ये नॉट डूएबल नहीं है. डेफिनेटली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं. ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके ही ठीक किया जा सकता है.
1: और अब तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सो टाइप 2 डायबिटीज जो है बहुत यंग एज में भी आने लगी है धीरे धीरे. तो वो कुछ नहीं है, वो वही पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और बोलते हैं, अरे हम भी तो दाल चावल रोटी खा के पूरा दिन काम कर रहे थे, तो तभी तो उनको ये कंडीशंस थी. हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को 40 के बाद 50 के बाद उनकी एनर्जीज नहीं है, उनके इधर उधर हर जगह पे पेन है, और फिर भी हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं, हम भी तो यही, तो वही तो गड़बड़ है, वहीं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहीं तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है. आज की लाइफ तो और भी सिडेंट्री हो गई है. हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो फिर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारी लाइफ तो और सिडेंट्री होती चली जा रही है. तो यहाँ कुछ घंटे अपने लिए निकालना और अपनी डाइट को मैनेज करना, और वेट लॉस भी उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के क्लस्टर में फंसे हैं, तो वेट भी डेफिनेटली काफ़ी ऊपर होता है मोस्टली लोगों का. तो अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, आपका एच बी ए वन सी, आपके शुगर लेवल्स भी नीचे आ सकते हैं और आते हैं. जैसे मैंने कहा, मसल्स आपके एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी बाकी की चीज़ें जो बॉडी की हैं वो खुद से सुधरने लगती हैं
1: जी. मतलब डायबिटीज़ से हम शुरू होने से पहले ही बच भी सकते
0: बच हैं. तो सकते हैं 100%. तो जब अगर हमें आज कोई कंडीशन नहीं है, तब हेल्थ के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सब जब आए, जैसे मैंने आपको पोरस बोन्स के बारे में बताया, ये तब पता चलता है जब 60-70 की उम्र में गिर जाते हैं और पता चलता है कि हड्डी तो जुड़ भी नहीं रही, पोरस बोन्स थी आपकी, बहुत जल्दी से कोना लगते ही फ्रैक्चर आ गया. तो अगर वही ट्रेनिंग आप 30-40, आप बाहर की वेमेन को देखिए कैसे उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ट्रेनिंग. मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जहाँ बैटल रोप हो रहा है
1: जी.
0: एक तरफ में साड़ी वाली सारी जो हमारी गांव वाली विलेज वाली जो वुमेन है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो ताज़ा घर का खाना पीना और अच्छा भैंस का दूध लेती हैं और घी ले रही हैं, वो सारी विमेन अच्छी हट्टी कट्टी विमेन जिन्हें हम बोलते हैं कि ये हेल्दी हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं. और जहाँ दूसरी तरफ हमें लीन बॉडी विमेन दिख रही हैं ट्रेन करती हैं, जो शायद नहीं बोलूँगी डेफिनेटली, तभी वो इन विमेन से जल्दी वो बैटल रोप में जीत गए, क्योंकि वहाँ मसल की इंपॉर्टेंस है. घर के घी दूध की ज़रूरी ठीक है, आप ले रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, लेकिन जहाँ आप ट्रेन करेंगे तो वहाँ विन विल बी डेफिनेटली योर्स
1: जी. और साथियों, अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से कोच सिमरन के साथ अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच फिटनेस, जो हमें हमारी बॉडी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें बता रही हैं। तो सिमरन, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत से लिसनर्स हमारे शो को सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच को, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारा शो सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से या तो डर रहे होंगे, बट डेफिनेटली करना चाहते होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट, कि उन्हें भी अपना वेट लॉस करना तो होगा। और आजकल 70% लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बिना वेट ट्रेनिंग के भी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं?
1: गौरी, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेनिंग के बिना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, शायद रिजल्ट और भी तेज़ होगा। ये जानकर आपको बहुत अलग लगेगा कि फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बोल ही क्यों रही हूँ। लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं, देखिए, हमें वेट लॉस करने के लिए एक कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, यानी कि मेरी बॉडी को अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 कैलोरी खाना शुरू किया और मुझे लगा कि जो 200 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी, मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन होता क्या है, बॉडी के लिए स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करना उससे ज़्यादा ईजी है आपके प्रोटीन से एनर्जी बनाना, यानी मसल से एनर्जी बनाना। तो वज़न तो आपको स्केल पर गिरता हुआ दिखेगा, तो ये जो स्केल का ऑब्सेशन है, इसको छोड़कर अगर हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बॉडी गेट्स अ रिस्पांस कि हमें मसल की रिक्वायरमेंट है। याद है मैंने आपको ब्रेकिंग ऑफ फाइबर के बारे में बताया, तो वहां जब बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, अभी बॉडी को सिग्नल है डेफिशिट का, अभी बॉडी को सिग्नल है रिपेयर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का, अब वो फैट को यूटिलाइज कर पाएगी आपके वेट लॉस के लिए। दोनों में फर्क क्या है, स्केल पे वजन तो गिर रहा है लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट का फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ की जर्नी में फंस जाते हैं, वो वेट लॉस करते हैं, शायद वहां मसल लॉस ज्यादा था। आपका BMR, आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मसल नीचे जाता है, तो अब वो मुझे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई। तो ऐसे लोग बाद में आते हैं, सिमरन मुझे तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाता है, क्योंकि उन्होंने मसल लॉस कर दिया। स्केल पे तो वजन गिरा लेकिन ना तो वो सस्टेन रहेगा, ना वो लॉन्ग टाइम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे,
0: नहीं कर पाएंगे।
1: जहां मैंने ट्रेनिंग किया, मैंने बॉडी की ट्रेनिंग से BMR थोड़ा अपना बचाया या बढ़ाया, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आज भी ज़्यादा है और मैं अब थोड़ा सा भी अभी डेफिशिट कर रही हूँ तो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, आप डेफिनेटली कम खाना खा के कर सकते हैं, जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो आई थिंक हम में से 90% लोगों ने ट्राई किया ही होगा कि आज कम खाना खाता हूँ, या मैं तो फास्टिंग, या सिमरन मैं तो खाना ही नहीं खाता फिर भी मेरा वेट नहीं जाता। इसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कम कैलोरीज में भी कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। तो आप 200-300 कैलोरी का डेफिशिट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ऐसे प्लान्स पे चले जाते हैं जो 1200 कैलोरी, क्या आप 1200 कैलोरी खा के लिटरली सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ट्रेनिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, छोटे से डेफिशिट से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स भी अचीव करेंगे और सस्टेन कर पाएंगे उस वेट लॉस को। आपको बार बार ऑन एंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
0: जी, तो लिसनर्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो थोड़े टाइम वाला, 3 महीने कम होगा, देन उसके बाद फिर सेम। और सिमरन, हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो बस दिन में एक ही मील लेते हैं शाम को 6:30 बजे या 6 बजे, तो ये क्या इससे वेट लॉस होता है?
1: सेम चीज़ है कि अगर आप सिर्फ कम खाना खा रहे हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि मैं तो 12 घंटे का फास्टिंग कर दे रहा हूँ, है वो भी कैलोरी डेफिशिट ही है। कैलोरी डेफिशिट के काफ़ी तरीके हैं कि या तो आप कैलोरी नाप तोल के ले रहे हैं आपको क्लॉक से, तो मेरी बॉडी को ये नहीं पता कि 7 बज गए हैं, अभी चावल जो है वो 800 कैलोरी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर दिमाग को देने के लिए, मैं जो मेंटली नहीं कर पा रही हूँ क्वांटिफाइड डाइट कि मेरे को इतना राइस लेना है या इतना राइस नहीं लेना है, तो मैं उसको टाइम से बांध देती हूँ। तो टाइम से बांधिए या आप क्वांटिटी से बांधिए, करना तो आपको डेफिशिट ही है। और अगर आप बहुत ही कम, यानी कि एग्रेसिव डाइट पे चले जाएंगे, तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड, यानी जो मैंने आपको बताया अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस, अडैप्टिव, बॉडी अडैप्ट कर जाती है। और अगर आप बहुत बड़े बड़े डेफिशिट्स क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी प्लैट्यू हिट करेंगे। फिर आप यही बोलेंगे कि हम तो एक ही मील खाते हैं लेकिन वेट तो जाता ही नहीं।
0: और बट मुझे लगता है कि उससे बॉडी अंदर से वीक होती है।
1: बिल्कुल होगी, अगर आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सो हम बात कर रहे हैं मैक्रोस की, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का फंक्शन, जो आपकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप एक सिंगल मील से कैसे कवर कर पाएंगे. तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखें.
0: जी, तो सिमरन, हमने आपसे बहुत सी बातें आज सीखी, सुनी, और काफ़ी हमारे लिसनर्स आज इंस्पायर भी हो रहे होंगे ये सब सुन के कि वेट लॉस जर्नी अगर उन्हें शुरू करनी है तो किस तरीके से वो करें. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. सो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड. तो आप रेडी हैं उसके लिए?
1: जी बिल्कुल.
0: ओके, सो सिमरन, डाइट या वर्कआउट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
1: दोनों, बैलेंस इज रिक्वायर्ड.
0: कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?
1: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म.
0: ओके, चीट मील या डिसिप्लिन?
1: डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी.
0: अच्छा, स्मार्ट आंसर. मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट?
1: जो आप सस्टेन कर पाए.
0: नाइस. एक फिटनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी?
1: कि कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा.
0: वाओ, ये तो सुपर. थैंक यू सो मच. तो सिमरन, अब लास्ट में हमारे लिसनर्स जो ये शो आज सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच पर आप आई हैं, क्योंकि क्रिएटिव मंच पे क्रिएटिव फील्ड के लोग आते हैं, और मैं तो ये मानूंगी कि आपने भी जो ये चीज़ की, ये कला ही है आपकी, जो आपने अपनी बॉडी को, क्या इतना वेट था और इतना खूबसूरत अब आपने बनाया है, तो ये भी एक कला ही है, फिर चाहे वो अलग तरीके से, अलग जरिए से बनाया है. सो अभी तक हमारे शो पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, फैशन इंडस्ट्री के भी लोग भी आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम क्रिएटिव मंच में एक फिटनेस कोच आई हैं. तो सिमरन, आप हमारे जो लिसनर्स अभी हमारा ये शो सुन रहे हैं, उन्हें आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे आपने बात की कला की, जी बहुत सारे कला, हर एक अपनी फील्ड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम कला की ही बात करें, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं हमें, उनका भी कोई ना कोई फील्ड है, और उस फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है उनका गोल.
0: जी,
1: तो ऐसे ही जब हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, लेकिन वो खुद ब खुद आ जाती है, तब जब हमारे पास कुछ गोल है और उसे अचीव कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बेसिक पांच चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, जो एक स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, वो शेयर करूं. और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना एक गोल क्रिएट करिए, उस गोल को देखिए, आप वीकली अपना प्रोग्रेस लीजिए, नॉट ओनली थ्रू वेट बट थ्रू इंचज ऑल्सो, और उसको रखते हुए आप आगे चलते जाइए. और एग्रेसिव अप्रोच मत रखिए, ना तो आपको बहुत एक्सट्रीम इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको एग्रेसिव कैलोरी डेफिशिट की ज़रूरत है. बैलेंस रखते हुए, छोटे से डेफिशिट के साथ, लिटिल बिट स्टिम्युलेशन ऑफ मसल्स के साथ, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं.
0: जी, थैंक यू सो मच सिमरन, इतना अच्छे तरीके से आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
1: थैंक यू सो मच गौरी फॉर कॉलिंग मी हेयर. मैं भी फर्स्ट टाइम किसी टॉक शो का हिस्सा बनी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर कर, और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आज सुन रहे होंगे, अगर मैं कुछ 10% लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ उनकी जर्नी में, या उन्हें स्ट्रक्चर दे पाऊँ, या उन्हें एक पाथवे बता पाऊँ कि ये कैसे करना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ. और अगर कोई इसमें मेरी गाइडेंस या हेल्प लेना चाहे तो वो मुझे फिटर ऐप पे सर्च कर सकते हैं, सिमरन कौर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच. आई एम ऑल देयर टू गाइड देम. एंड मैं बहुत धन्यवाद करूँगी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए. ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा.
0: थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच. एंड हम आशा करते हैं फिर से आपसे जल्दी मुलाकात हो, और ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग बातों का ज्ञान हमें और हमारे लिसनर्स को मिलता रहे. सो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी इसी शो में, क्रिएटिव मंच में. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.
2: हाय, आई एम दिग्मांशु धूलिया. यू आर लिस्निंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
3: तुझे भी मैं करा दूं तमन चेपे डिस्को.
4: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ. शो बहुत खास होता है, हर बार एक एपिसोड हम लेकर के आते हैं हर हफ्ते, और जिसमें हम बहुत सारी बातें यहां पर करते हैं. हमारे साथ एक मेहमान होते हैं जो अपनी लाइफ से, ओवरऑल एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं. आज वापस से मैं एक और शो लेकर के आया हूँ, लेकिन आज का शो एक यूजुअल शो जैसा शो नहीं होने वाला है, हमारा थोड़ा सा हटके होने वाला है। हमारे साथ हैं आज भुवन, भुवन सागरन का पूरा नाम है, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वॉरियर। बहुत सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, आप भुवन के बारे में जान रहे होंगे जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी दिस स्टोरी कैन बी समड अप विद दिस वर्ड एंड टाइटल वॉरियर। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा होगा कि आप लोएस्ट पॉइंट पे अपने पहुंच जाओ, ठीक है, विच इज अगेन पॉसिबल, हर इंसान की लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आता है जब वो नीचे जाता है, एंड इट्स नॉट अबाउट सर्कमस्टेंसेस, इट्स नॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स, इट्स सिंपली अबाउट हाउ यू बाउंस बैक। एंड टुडे वी हैव द सेम स्टोरी। भुवन की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे और भी जो उस सिमिलर फेज से गुजरे हैं, शायद वो नहीं उठ पाते हैं इजीली या नहीं निकल पाते हैं, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, बट हाउ ब्यूटिफुली ही हैज परसीव्ड दैट एंटायर थिंग, एंटायर सिचुएशन, और कितना ब्यूटिफुल तरीके से इतना पॉजिटिवली अपनी लाइफ को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया, आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। सो वी गोना टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, लेकिन सबसे पहले भुवन का स्वागत करेंगे। सो हाई भुवन, वेलकम टू आवर शो।
5: थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
4: एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू, प्लीज Tell our listeners and tell me exactly आप क्या करते हो, क्या डोमेन है, क्या पैशन है, क्या क्या चीज़ें आपने करी हैं लाइफ में, जो भी ओवरऑल जर्नी रही है।
5: ओके, सो आई हैव कम्प्लीट माई कॉलेज इन 2017।
4: ओके,
5: सो सिंस देन आई एम वर्किंग, आई हैव वर्कड इन लाइक फोर डिफरेंट कंपनीज। फर्स्ट कंपनी वॉज इवेंट कंपनी फॉर 4 years, देन आई वेंट इन गेमिंग इन Roblox, where I used to test games, then I used to moderate the games. Then after that, I went for sales,

0: Then again I switched it according to the circumstances. I went for US banking. Then after 2 years I met with an accident after that only.
1: Yeah, we're going to talk about the accident part, but I just want to know the Bhuvan side more as of now. Bhuvan, so
0: okay,
1: you said that you love DIY, yes. You love creative stuff, and you showed me the aquarium. So I'm interested in knowing ki what exactly does it चेंज विद इन यू, मतलब ये जो क्यूरियोसिटी होती है एक इंसान में, क्रिएटिव जो फील्ड होता है, ऑब्वियसली दिस इज अ क्रिएटिव साइड ऑफ यू, ओके, क्या चेंज करता है एक इंसान के अंदर ये, सो दैट पीपल शुड नो दिस कि क्रिएटिविटी इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी पार्ट और द फेम पार्ट, इट डज मोर देन दैट इन योर लाइफ.
0: लाइक व्हेन आई फाइंड समथिंग डीआईवाई, इट मेक्स मी फील लाइक आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग. सो even if I find any scrap metals or like even broken LEDs, I can make something out of it. Like when I was small, I used to find like small glasses at home. I patched them up, I made my own aquarium from scratch.
1: Okay,
0: so that became a hobby. I made terrariums for like for friends, for myself. Then I went into gaming again. Like that's my oldest passion, for games. Still I play games. And like when you do creative things, like you're at your peace, like there's no disturbance, so it's like my zone.
1: So amazing. There are so many people out there, theek hai, jin society bolti hai find your passion. Sometimes it's always against the passion, theek hai, it works two ways. I'm interested in knowing ki what if someone doesn't even know about their passion, what should they do? जिसको पता ही नहीं मेरा पैशन क्या है, उसको क्या करना चाहिए टू डिस्कवर दैट ट्रू पैशन?
0: दे शुड गो ऑन अ सोलो ट्रिप. लाइक दे विल फाइंड देमसेल्फ लाइक व्हाट दे आर लैगिंग इन. दे विल गेट मोर एक्सपोजर, दे विल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मोर बेटर वे, इंस्टेड ऑफ लाइक पीपल टेलिंग हिम व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. दैट टाइम ही विल गेट टू नो लाइक व्हाट ही शुड डू एट द एंड. व्हेन यू फेस द रियलिटी एंड इट हिट्स यू वेरी हार्ड, then your instincts comes in and you know, yes, I should do this, and this is the right way to do it. Then nobody is helping you, your instincts will tell you, and you'll feel good that at least you have done something on your own.
1: Yeah, so amazing. So the bottom line is ki agar aapko nahi pata aapka passion kya hai, just go on a solo trip, akele nikaliye apne ghar se. Uska ek bahut logical एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि जब आप अपने घर से निकल के अकेले जाते हो तो 50 तरह की अलग प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आपको इंस्टेंटली फिक्स करना होता है, एंड यू विल रियलाइज अबाउट योर सेल्फ कि आप कहाँ पर आपके इमोशंस ज़्यादा हावी होते हैं, कहाँ पर आपका रैशनल माइंड ज़्यादा हावी होता है, क्या चीज़ें करने में आपको ज़्यादा मजा आता है और कौन सी चीज़ें आप कभी नहीं करना चाहते हो. थिंग्स वर्क दिस वे. फिलहाल इसी नोट पर लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे. भुवन हमारे साथ हैं एंड ट्रस्ट मी दिस इज द ट्रेलर ऑफ इट. अभी आगे हम कहानी को और थोड़ा अनफोल्ड करेंगे और लेयर्स की बात करेंगे. We'll take it ahead. But फिलहाल मजा लीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक का. Stay tuned, feel good, feel life.

0: वेलकम बैक मैच सागर शो यहाँ पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ. आप लोग इस टाइम सुन रहे रेडियो मारवाश टाउन 107.8 FM. फील गुड फील लाइव शो बहुत खास है. हमारे साथ भुवन यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में. भुवन के बारे में अभी तक हमने बात करी है और बेसिक चीज़ें डेवलप करी हैं कि भुवन का एग्जैक्टली पैशन क्या है, क्या चीज़ें करते हैं, क्या इनको इंस्पायर करती हैं एंड एग्जैक्टली क्या इनका डोमेन रहा है. भुवन के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनके पैर को चॉप ऑफ करना पड़ा और करने का डिसीजन इनके हाथ में छोड़ा गया था, बट ही चोज दैट पेनफुल थिंग कि निकाल दो, दैट इज द थिंग. भुवन मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक्सीडेंट से, बताइए क्या था वो दिन, क्या था वो इंसिडेंस एंड कैसे हुआ और उसके बाद का टाइम कैसे रहा, सब कुछ मैं जानना चाहूंगा.
1: मेरा जैसे ही प्रमोशन हुआ था लास्ट जॉब का, उसके जस्ट वेरी नेक्स्ट डे आया उसका मीटिंग करके वापस घर आ रहा था अर्ली मॉर्निंग 5:30. तो जिस रास्ते से मैं आ रहा था उसके ऊपर वाला फ्लाईओवर रेनोवेट हो रहा था, तो मैं पहली बार नीचे से आया, नीचे बहुत सारे कट्स हैं, तो एक रेड लाइट पे मैं रुका और जैसे ही वो ग्रीन लाइट हुई मैं आगे बढ़ा. मैं आई वॉज नॉट इवन लाइक अबव 5 or 10. उतने में लेफ्ट साइड से एक ट्रक आता है स्पीड से और एकदम से वो चढ़ाता हुआ निकाल देता है. मेरे पैर पे बाइक गिरती है, वो बाइक के ऊपर से ट्रक निकाल देता है. अगर वो देख के मेरे को बाहर भी खींच के निकाल देता तो मैं बच जाता शायद. आई नो उसने भगा दिया डर के मारे क्या किया, तो आई पेड द प्राइस ही डिन, सो आई पेड अ वेरी बिग प्राइस. सो एंड नोबडी केम टू सेव मी ऑल्सो ऑन द रोड. So before fainting, I called my mom and my brother. So they came from Faridabad to Noida to pick me up, and they took me to the hospital. Not the people who were watching me, not even the police. They like nobody did nothing. So my family came. That's why like better than anyone, your family should like be the first priority.
0: कब की बात है?
1: Like 2024 May 4th, 5th May. आप रोज पेन में हो, आपके पैर पे पट्टियां चिपकी हुई है, उसे कोई ऐसे फाड़ रहा है, फिर उस पर कुछ थिनर डाल रहा है, ऐसी जलन भी हो रही है साथ में, और हड्डियाँ टूटने, आपका हल्का सा भी कुछ भी बॉडी पार्ट हिलता है, यू कैन फील द क्रैकलिंग ऑफ योर बोन्स, नॉट इवन हेयर देम. इट वॉज दैट पेनफुल. और ऐसा 1.5 साल तक हुआ मेरे साथ, क्योंकि आफ्टर फ्यू मंथ्स पेन किलर बंद कर देते हैं. आई वेंट थ्रू वेरी डार्क पैच ऑफ माई लाइफ, लाइक बट वेंट ओवर इट बिकॉज ऑफ माई फैमिली. They didn't lose the hope and then didn't let me also lose it. So like, even मैं अपने दुश्मन को भी नहीं चाहूंगा ऐसा हो उसके साथ. Imagine it was that painful.
0: What kept driving you? What kept you positive?
1: Like, after 3 months when I got my conscious back, so I started thinking, like, if this pain ends, what will I do? So I made a bucket list that I have to do so many things. So I have like thrown that bucket list also again and again because of the pain ki I don't want to live anymore. But whenever I used to see that list, like there was a hope that I have to do many things still. It's just one leg. I still have another leg with me. I know it's very painful, like couldn't help myself also sometimes. I used to cry, shout, people were holding me down. I went through it. I have to because I have no other choice. I had to for my family also.
0: The reason why I'm asking this question is कि हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ पर छोटी सी भी चीज़ होती है हमें लगता है कि this is the end of the world. ठीक है, now there's no way that I can live. Okay, let me give you an example. There was a girl. She used to create content. She was a content creator and she was chasing a mark of 1 million followers. And
1: nice.
0: She got almost 300,000 followers on Instagram. But all of a sudden something happened that her followers started unfollowing her. I don't know what was the pattern. She literally died by suicide just because of this one thing, that I am not able to reach 1 million followers. And that is a real case of Gurgaon, of a content creator. I am not even taking the name of her, but so आई सी दीज एजेस ऑफ लाइफ, देर आर डिफरेंट फेजेस एंड यू आर कमिंग फ्रॉम दैट ब्लैक होल ऑफ लाइफ. लाइक देर वॉज नो होप, नथिंग वॉज लेफ्ट इन यू एंड प्रोबेबली अगर आपने वो भी नहीं किया होता शायद वहां से बाहर ना आते, शायद हम भी ना मिलते, शायद यहाँ पर ये शो भी ना हो रहा था, ये बात भी ना होती थी और ये लोग जो सुन रहे हैं आपको ये भी ना सुन रहे होते. दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, यू डिड इट. बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो द मेंटेलिटी कि हाउ, बिकॉज दो साल सम अप करने में 2 साल हैं बट एक्चुअली उसको देखा जाए तो 650 से ज्यादा दिन हो जाते हैं, ठीक है ना. तो एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके ऊपर बहुत आ भी रहा होगा. सो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट माइंड सेट, दैट आई डोंट नो हाउ टू से इट, दैट ईगल माइंड सेट. बट ओके, आई एम बाउंसिंग बैक. व्हाट व्हाट ड्रोव यू इन दैट फेज?
1: लाइक माय मदर, आई कैन से दैट. लाइक शी वाज द ओनली वन हु इज लाइक हु वाज विद मी 24 आवर्स and she was going through so much pain, even though I wanted to end my life in between, but I've already seen her like crying in front of me, so I don't want to see her cry again just because of me. I still have life left in me, so I want to make her happy again. Like, I don't want her to that you failed yourself. No, I don't want to do that. That's why I want to live for myself and for my mother, that you did everything perfectly, you're the perfect person. So I don't want to fail you, so that's why I have to. That was my have to, like, do it. Couldn't back down from it. If your mother is there and crying, something like lights up in you, na, you can't go back.
0: So amazing, yaar. So amazing. And the way how you bounced back is just exceptional. More power to you and more power to Mataji, more power to Aunty ji. Genuinely from heart, man. Salute to her. And this courage has to be there. मतलब bottom line यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पड़ाव चल रहा है, कोई भी ऐसा phase चल रहा है, if you're getting a rough patch, just remember this thing कि यार आपको एक hope ढूंढनी है. Okay, let's take it this way. आप बोल रहे हो कि मेरे को ना यार, मैंने अभी तक ना 100 doors को मैं knock कर चुका हूँ, एक भी दरवाज़ा नहीं खुला है, ठीक है. But यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक दरवाजे को खुलना है. अब 100 करें, 200 करें, 500 करें, सिर्फ एक दरवाज़ा खुलेगा, life completely change हो सकती है. So take it this way, don't do regret of not opening the 100 doors, just be hopeful for that one door जो कभी खुल सकता है. Just think about it and that's how life works. तो मैं ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. मैं आज का शो बहुत अलग जा रहा है मेरे लिए और आप भी ये चीज़ महसूस कर पा रहे होंगे क्योंकि मैं एक बहुत अलग फेज़ में हूँ आज. आज मैं सिंपली उस एक माइंडसेट को देख रहा हूँ, जीवन को देख रहा हूँ, जीवन की खूबसूरती को देख रहा हूँ, जहाँ पर आपके पास 1000 वजह हैं गिव अप करने के लिए. जहाँ पर आप कह रहे हो कि जॉब चली गई है, एक पैर आपका चॉप ऑफ हो गया है, ठीक है, आपके पास वजह नहीं बची है, आप दुनिया से कट ऑफ हो गए हो, यू आर अनश्योर अबाउट योर फ्यूचर कि चल पाओगे, उठ पाओगे, क्या होगा. बट डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज थिंग्स, यू आर स्टिल होल्डिंग द हैंड ऑफ लाइफ एंड दैट्स अ मोस्ट ब्यूटिफुल.

पार्ट अबाउट इट कि लाइफ इन इट सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद इन लाइफ. दैट्स हाउ इट वर्क्स. जस्ट रिमेंबर दिस. फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भाई साहब यहाँ उठ के आए हैं एग्जैक्टली ये कैसा फेज है, आगे क्या प्लान है और कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे पास, मैं डेफिनेटली यहाँ पर जानूंगा. बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ और मजा लीजिए गानों.

0: वंस अगेन वेलकम बैक, आई एम आरजे सागर। शो चल रहा है पर वॉइस ऑफ यूथ, आप लोग सुन रहे हैं स्ट्रीम रेडियो 107.8 एफएम। मिस्टर भुवन हमारे साथ हैं और बहुत सारी बातें अभी तक हम कर चुके हैं। एक्सीडेंट की बात कर चुके हैं, क्या हुआ, कैसे वो वहां से निकल के आए, क्या वो होप थी, कैसे वो उसको होल्ड ऑन करके रहे, उस लाइट को पकड़ के रहे और यहां तक पहुंच पाए। अब आगे बात करना चाहूंगा। नाउ यू आर बैक ऑन द ट्रैक, सो टेल मी अबाउट योर करंट लाइफस्टाइल। आप क्या करते हो?
1: जब ये चॉप ऑफ हुआ, उसके 4 मंथ बाद से आई स्टार्टेड वॉकिंग, क्योंकि मैं चाहता था मेरी मॉम भी जाए जिम, और मॉम अकेले जाएंगी नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा भी करा रही हूँ तो साथ चल। तो शी टुक मी टू द जिम विद हर। सिंस देन आई हैव लॉस्ट लाइक 19 kgs इन 2 मंथ्स एंड

0: आपकी जो आपका एक नजरिया रहा होगा, यू मस्ट बी हैविंग योर प्लान्स, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर.
1: यस,
0: ठीक है. लेकिन अचानक से लाइफ ने आपको बोला सब चेंज, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, कि पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया. ठीक है, यू वेंट टू दैट होल जहां से आप निकल के आए हो. व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ नाउ?
1: लाइक आई शुड लिव इन प्रेजेंट, नॉट टेक, लाइक नॉट overthink about future or my past. Like, don't even think about your past, just be in the present right now, because you don't know about future, you can't predict that, so don't waste time on thinking of that. Enjoy present, so you don't have to fly also straight like rocket, but be on the road, on the ground, just go slow.
0: And how to make it happen, how to live in the present? सुनने को बहुत कुछ मिलता है, सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मैं भी जीना चाहता हूँ. बट मैं अपने दिमाग के कंट्रोल में, दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मेरा दिमाग भागता है. बट यू मस्ट हैव कंकर्ड दैट पार्ट. इफ यू कैन शेयर समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट.
1: डू थिंग्स व्हाट आर राइट फॉर यू एंड योर फैमिली, नॉट फॉर योर फ्रेंड्स. लाइक दे विल टेक यू टू अ डच एंड दे विल एंजॉय एंड थ्रो यू देयर, यू वोंट इवन नो. Like in this accident, I got to know the people who are with me and who are not with me. That was the biggest life change I had. इतने लोगों को मैंने blindly देखा है कि trust किया सबको, सब कुछ दे दिया कि घर वालों को छोड़ो कि मैं एक बार इसकी मदद करके आता हूँ. जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई भी नहीं था, not even the one, that single person जिसको मैं हमेशा count करता था. तो तब बहुत बुरा लगा था मुझे. फिर उसके बाद घर वालों ने बोला, देख तेरे को समझाया था कि लाइक अपने पे ध्यान दे, लोग तेरे पे आएंगे ना कि तेरे को जाना पड़ेगा लोगों के पास. तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ. लाइक अपने पे ध्यान दे रहा हूँ, स्किल्स अपग्रेड कर रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल चूज किया है इंस्टेड ऑफ पार्टीइंग एवरी वीकेंड, एंड लाइक एंजॉयिंग द पीसफुल एंड शॉर्ट शॉर्ट मोमेंट्स विद फैमिली.
0: ओके, वन मोर थिंग, पीपल टेक हेल्थ फॉर ग्रांटेड.
1: यस,
0: अपनी लाइफ को मतलब हमेशा लगता है कि दिस बॉडी इज इमॉर्टल. ठीक है, एंड वी हैव बीन अब्यूजिंग इट, वी हैव बीन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर देयर. ठीक है, जिनको लोग ऐसे यूज़ करते हैं, एंड दे आर नॉट वर्किंग आउट, दे आर नॉट इवन मूविंग. ठीक है, दे आर जस्ट यूजिंग द जंक फूड, दे आर कंज्यूमिंग एवरी सिंगल डे, एंड योर लिवर इज लाइक आई एम गिविंग अ ब्रो, आई एम गिविंग अ ब्रो, आई एम गिविंग अ ब्रो, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी. व्हाट डू यू वांट टू से टू दैम? द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी.
1: Like I've seen my dad doing all that. Like a bottle a day, it's a very bad for you, a whole bottle. So I've seen him, he also have lost his leg because of diabetes. He still was smoking and drinking, but at the end he has to give up, otherwise he'll die. And then he left everything. Now he's so healthy. Like he was not, matlab itne healthy nahi the wo kabhi bhi. तो फिर मेरे को उनको देख के भी थोड़ा सीखने को मिला कि आई शुड ऑल्सो स्टॉप एवरी थिंग, थोड़ा सा हेल्दी लाइफ लो. बहुत जी लिया हम तो 15 साल से यही कर रहे हैं, तो अब थोड़ा हेल्दियर लाइफ लिया है तो अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है. और रोज़ जिम जाके भी अच्छा लगता है, कि लाइक थोड़ा हल्का फील होता है रोज़ ही.
0: एंड ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लिसनर्स को, वापस से बोलता हूँ कि आपको बाहर की अगर नशों की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि आपको जीवन का जो जिंदगी का असली नशा है वो आपको अभी चढ़ा नहीं है. ठीक है, वो नशा होता है कुछ सीखने का, नशा होता है कुछ करने का, नशा होता है कि एक मिशन सेट करने का, उसके ऊपर निकलने का, उसको अचीव करने का. वो नशा सबसे अच्छा होता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो, कि उसका रिटर्न थोड़ा लंबा होता है, इंस्टेंट डोपामाइन आपको नहीं देता है वो. बट देयर हैज टू बी अ मिशन, आई मीन दैट्स द बॉटम लाइन, कि हर एक इंसान के पास अपना एक मिशन होना चाहिए. अब क्या चीज कर रहे हो, व्हाट्स द प्लान?
1: Ab I'm changing for like more skills. Like even I have no job now, still people will come to me for my skills, so I'm looking for that. Like AI is getting like big now, so I'm going in AI and app developments, doing everything home. Like I don't have to pay nothing, everything is on online only. So I'm putting my head and work over there now.
0: Aren't you afraid of it, ki aap swimming wagera jaate ho to?
1: Yeah, first day I was like, what if I drown? It's already like 8 feet deep. So I went in, I tried. It was like I can feel my left leg, which is not there. I could feel it, and I was doing normally.

0: than other people who was, they have both the legs. So since that day I'm doing swimming now. Even my mother was skeptic, like तुम नहीं कर पाओगे. मैंने कहा एटलीस्ट ट्राई तो करके आऊँ, क्या पता हो गया तो एटलीस्ट मेरी ये प्रॉब्लम मतलब अंदर से निकल जाएगा कि ये नहीं हुआ तो कोई नहीं. लेकिन हो गया अब, so, अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है.
1: ओके लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एज पर यू?
0: स्ट्रॉन्ग फ्रॉम माय साइड, स्ट्रॉन्ग शुड बी लाइक मेंटली स्ट्रॉन्ग. पर्सन शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, नॉट फिजिकली.
1: एक्सप्लेन.
0: लाइक लाइक यू हैव फॉलन डाउन वेरी बैडली, उठने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, लेकिन उस फिजिकल स्ट्रेंथ को आपका माइंड पुश करता है. तो उसके लिए मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक माई डैड, ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग वाइल वॉकिंग ऑन हिज प्रोस्थेटिक लेग. सो आई ऑलवेज मोटिवेट हिम दैट आई एम विद यू. सो वेन आई एम नॉट देयर ऑल्सो ना, ही इज ऑल्सो ट्राइंग. कि लाइक मेंटली ही हैज लाइक टॉट हिमसेल्फ नाउ, लाइक इट्स लाइक री इंजीनियरिंग ऑफ योर बॉडी और मसल. इट वर्क्स इन दैट सेम वे. लाइक यू हैव टू मेंटली बी वेरी स्ट्रांग. कोई तुम्हें कुछ भी बोल देगा, रोड पर देखते हो आप लड़ाइयाँ होती रहती हैं आजकल, कोई कुछ भी बोल देता है और फिर बस फट जाते हैं दोनों तरफ से लोग. मतलब वो दिमाग से स्ट्रांग है ही नहीं. जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो शांति से सुनते हैं और देखते हैं विच इज़ द पीसफुल वे एंड द राइट वे. दे चूज दैट, नॉट द रॉन्ग वे विच इज शॉर्ट.
1: सो अमेजिंग. और यहाँ पर मुझे जावेद साहब की बात याद आ रही है. मतलब जावेद अख्तर साहब ने, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था एंड ही सेड दिस ब्यूटीफुल थिंग कि आपकी गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो एक स्मूथ रोड के लिए नहीं होते हैं. स्मूथ रोड पे आपके नॉर्मल टायर चल रहे हैं, ठीक है. आपकी गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो रफ एंड टफ रोड जो होते हैं वहाँ के लिए होते हैं. जब गाड़ी ऊपर नीचे टप टप टप होती है, जब आपको लगता है कि नॉर्मली काम नहीं हो पाएगा, वहाँ पर शॉक एब्जॉर्ब होता है वहाँ पर. तो एग्जैक्टली आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है, आपकी जो मेंटल टफनेस है या जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो वहाँ पर दिखती है जब रफ एंड टफ कुछ जा रहा है लाइफ में, ठीक है. स्मूथ रोड पे तो सब स्ट्रांग होते हैं. स्मूथ जब लाइफ चल रही है तो हर एक इंसान के पास स्ट्रेंथ है, वो उतना स्ट्रांग भी है. बट दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट कि जब रफ एंड टफ कुछ होता है तो वहाँ पर आप कितना अच्छे से कोप अप कर पाते हो. आई एम डन विद माई क्वेश्चन भुवन. कोई भी चीज़ है जो मैं ना पूछ पाया और आप कहना चाहते हो, प्लीज़ फील फ्री.
0: नथिंग, जस्ट डोंट लूज होप. चाहे आप कितने भी नीचे जाओ, जॉब छूट जाए या लड़ाई हो जाए किसी से, शांत रहो, ठंडे दिमाग से सोचो, सब अच्छा ही होगा आगे वैसे भी.
1: होप इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि होप, आपके पास सब कुछ खत्म हो गया लेकिन अगर होप है तो आप बाउंस बैक कर लोगे. होप हैज टू बी देयर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर भुवन. इट मींस अ लॉट टू अस. इट मींस अ लॉट रियली. आई अप्रिशिएट इट.
0: थैंक यू फॉर हैविंग मी.
1: थैंक यू. एंड आई जेन्युइनली वांट टू से ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर फैमिली ऑफ दिस वर्क स्पेस एंड फैमिली ऑफ लिसनर्स, प्लीज डू वेल एंड जस्ट कीप दिस पॉजिटिव एरा ऑलवेज. ओके, दिस इज सो इंस्पायरिंग टू मी एज वेल. मतलब आप मेरे जनरली शो सुनोगे इस तरह के नहीं होते हैं. आज का शो मेरा बहुत अलग हुआ है क्योंकि मैं बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है, एक जोन में हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पॉजिटिव वो मिला है आज कि मैं हर चीज़ को रीथिंक कर रहा हूँ एंड आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू फॉर कमिंग यार.
0: मोस्ट वेलकम.
1: थैंक यू. अरे दोस्तों, वक्त है अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का. भुवन से आज मैंने बात करी और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो एक एनर्जी है जो यहाँ पर अभी जनरेट हुई है, भुवन यहाँ पर बैठे, भुवन ने जो बातें करी वो आप तक कन्वे हो पाई है. फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन अब मुलाकात होगी हमारी अगले हफ्ते. अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए. दिस इज आरजे सागर साइन.

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंग ढंग बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर अब तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र, अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था। उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए। अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी।
यहाँ कोई पहला

और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसा ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है, यहाँ तख्ती लगी चुंदी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना, यहाँ संसार खत्म, उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंदी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंदी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ,
कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाए फकीर के कदमों में, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाकर बेचा। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेचने लगा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा रखो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता उन्होंने, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आए अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे, तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरण में झुका दिया तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में इच्छा है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा झापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वरग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं, ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर, अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों में, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन
प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना हो, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती। तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं, महाभाग तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है, प्रमाण नहीं पूछता। तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी, जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता है, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता है, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता है। वो तो कहता आओ, जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पगध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो
कार में बैटरी की भांति है। यात्रा शुरू हो जाती है लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आग का हर कुआं है, तने इंद्र धनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुको, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब ये है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा आ। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा जितनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ।
लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है, उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है।

ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ, स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जिससे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी, दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं, सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उसी एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है, नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणता तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ, इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस से हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा, देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सदी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो, तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, ईसा ने तो कुछ तर्क नहीं दिए लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती।

0: दर्शन तो तर्क की दुनिया है, तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते हैं, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसीलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी आसान है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होगा, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत ना हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत ना हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा, कुछ बातें छोड़नी होगी, कुछ बातें पकड़नी होगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो, जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो, अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण हो। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं, तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती, तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल, तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए।
1: जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात। तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने? क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना। असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा? जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो, और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो, वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरिनो वैरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत जीवाम आतुरेसु अनातुरा, आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका, उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा, राजा और भी सक्षम और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझे। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मा... मालिक खींचे चले आए, तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें, हाथ, नाक, कान नौकर है और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है। और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जफर कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो, कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा दी, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया, खेत प्यासे के प्यासे खड़े हैं।

रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते हैं। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी हूं। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्ट का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: देन अगेन माइंड सेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंड सेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग,
4: हाँ,
5: अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूँ। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड, जैसे हम सोचते, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया कि मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, there you go,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत इजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे attitude.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जब कोई सामने से गुस्सा करता है, नाउ फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा. और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And isliye jo hum kehte hain meditation ke liye time nahi hai, ya I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
4: For my all loved ones, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, अनअवेयरनेस में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और मतलब ये मेरे लिए जरूरी
5: है. वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका. वो भूल चुके हैं अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माय ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन. ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे. ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. तो सर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त हो के सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस. फॉरगिव करना या क्षमा करना, जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो.
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँ,
5: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी। तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं। से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रीलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा। तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या।
4: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
5: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
4: पेन में हूँ,
5: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? This I will have to ask, because otherwise मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ with this thought कि मैं victim, you know, और वो जीवन फिर quality बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं victim हूँ, एक incident था, over, I have to move ahead. Victim वाली feeling से बाहर निकलना होगा. और बहुत important बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट, कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
4: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
5: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan, jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहाँ पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
4: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, because it's kind of a vicious circle. Again, शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized, जो खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं, वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें कोशिश कर सकते?
5: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस, स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
4: वही हो रही होती है,
5: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
4: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. एंड नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
5: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
4: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
5: right? But we're not really helping.
4: Yes,
5: यू नो हेल्प एट दैट टाइम वुड मीन एम्पावरमेंट. लेकिन बार बार कह कर के हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनी वन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वी आर सेइंग कि अभी सब गलत है. यू नो, तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
4: बहुत बहुत धन्यवाद.
5: ओम शक्ति.
4: ओम शक्ति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवाकर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्तमुनि सबको